0: शहर का गौरव,
1: सारण प्रमंडल की शान,
0: गोपालगंज की धड़कन
1: और अपने भाषा की पहचान।
0: रेडियो रिमझिम 90.4 FM
1: सुनो दिल से।

सुबह सवेरे आपको जगाता, दिन भर आपका साथ निभाता। रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो हर पल का है, सुनो दिल से।

0: सुन रहे हैं जिले की आवाज रेडियो रिमझिम 90.4 FM। सुनो दिल से।
1: बड़े प्यारे, किसी से मत कहो, किसी से मत, चुपचाप मौन हो के सह जाओ। तुम्हारा स्वामी विधान करके तुम्हें दुख भेजा है तो बहुत बड़ा उसमें कोई सुख है। वो मंगल भवन है, तुम्हारा मंगल होने नहीं दे सकता, दिखाई दे सकता है कि अब अमंगल हो गया हमारा, मुंह का कुछ नहीं। धैर्य पूर्वक अपने मार्ग में सीधे चलते रहो, उसका विधान आया है। वो दुखद हो या सुखद, सुखद है तो हर्षित मत हो, दुखद है तो शोकित मत हो, आगे बढ़ो। देखो ये अध्यात्म है, ये कमर कस लो कि इस जन्म में मुझे इस भव समुद्र से पार होना ही है। ये जो कमजोर दिल के होते हैं ना, अनुकूलता जहां मिली तो बोले जब से हमने भक्ति शुरू की सब काम चकाचक बन रहे। ये भक्ति का फल नहीं है, भूल मत करना, ये तुम्हारे सुकृत चल रहे इसलिए है। और जिस दिन दुष्कृत का फल आएगा उस दिन भक्ति करते हुए भी कदम रखना मुश्किल हो जाएगा, पग पग पर तुम्हें दुख मिलेगा। इस सिद्धांत को समझ लीजिए तो कभी आप निराश नहीं होंगे, शूरवीर होकर आगे बढ़ते रहेंगे। जो हमारी भक्ति ये नई फसल है और इस फसल की जो आनंद वृत्ति है वो भगवदानंद है, ज्ञानानंद है, अखंडानंद है, प्रेमानंद है। वो ये भोगानंद नहीं है, विषयानंद नहीं कि भगवान की बड़ी कृपा जो चाहो भोग मिल गए। ये सुकृतों के फल है, ये सुकृत और दुष्कृत दोनों को यही नष्ट कर दो और निकल चलो भगवान की परम धाम में, जहां नित्य सेवा सुख का आनंद सहचरिया ले रही है। श्रीपाद कह रहे संतर्जयस ताड़यन, कोई मुझे बहुत डांटे भर्त्सना करे और ताड़यन पिटाई भी कर दे, मुझे कुछ कभी शिकायत नहीं करनी प्रभु से। देख रहे हैं ना, वो उन्होंने विधान किया है ना कि इसको पीटो तो हम चुपचाप पीट लेंगे, किसी से नहीं कहना। रहीमन मन की मन व्यथा रखिए मन में गोए, सुनिठ ले हैं लोग सब बांटने। इसीलिए असंगो हम असंग, किससे कहें अपने दुख सुख की बात। अपना दिल तो दिलवर को दे दिया, जो बीते सो दिल तो उनके पास है, वो तो जाने दुख सुख की बात, हम क्या जाने, हम तो बस आपके हैं। मौन, अपने विषय में न सुख की बात करे न दुख की, मौन। बात करे तो प्रभु की करे, नहीं तो मौन। मान लीजिए अगर ये मौन आप धारण कर लेंगे तो निकल जाएंगे माया से, नहीं तो किसी की निंदा कर देंगे, किसी का ऐसा कटु वचन बोल देंगे, परुख वचन बोल देंगे, भजन छीण हो जाएगा, भजन करने की वृत्ति नष्ट हो जाएगी। सैकड़ों लोगों के प्रश्न है कि पहले भजन अच्छा होता था अब नहीं होता। उसमें दो बातें होती है, एक तो भजन की ऐसी भूख बढ़ गई है कि अब उतने भजन से नहीं और भजन होना चाहिए। ये उत्तम महापुरुषों की कृपा पात्र भक्तों की वृत्ति होती है। और एक होता है कि आपसे वैष्णव अपराध बन गया, कुसंग हो गया, इस कारण से ऐसा। अगर आपके हृदय में कोई दोष वृत्ति नहीं है फिर भजन में ऐसा लगता है कि मेरे से बहुत कम भजन होता है, वैसा भजन नहीं होता जैसा होना, ऐसा बड़े बड़े महापुरुषों को भी अनुभव होता है। ये कोई निंदनीय बात नहीं है, वंदनीय बात है। पर वास्तविक यदि भजन नहीं हो रहा है, वास्तविक यदि आपका रुक गया है आनंद, तो आप ढूंढ लीजिए, आपका भोजन गलत है, आपका संग गलत है, आपने कोई वैष्णव निंदा की है, बस यही कारण है। यही खोज लेना, यही सुधार कर लेना, किसी से क्षमा याचना की जरूरत नहीं। अंदर देखो और आचार्य गुरु से प्रार्थना करो, सब ठीक हो जाएगा। बड़े कृपाल हैं जिन्होंने अपराधी मुझ जैसे को घसीटा तो अब अपराध बन जाएगा तो थोड़ी छोड़ देंगे वो, विश्वास कीजिए। उन्हीं से प्रार्थना कीजिए, नाथ यदि आपको अपराध मोचन कराना है तो भेज दीजिए मुझे उसके पास, या उसको बुला दीजिए, मैं पैर पकड़ लूं, हाथ जोड़ लूं यदि अपराध बन गया है, और यदि आप चाहें तो आप क्षमा कर दें, आगे से सावधान रहेंगे। बड़े कृपालु हैं प्रभु, क्षमा कर देते। भजन की वृत्ति को रुकना ये सहन मत कीजिए, समय नहीं है कि आज नहीं तो कल भजन चल पड़ेगा, नहीं, तुरंत वाचिक में आ जाइए, तुरंत वाणियों का गायन कीजिए, नाम कीर्तन कीजिए, ढूंढिए अपराध क्या बना जो आंतरिक हमारा भजन रुक गया, और प्रभु से प्रार्थना करके उसको चलवाइए, वो बड़े कृपालु है, क्षमा कर दे। अगर आपने प्रगट में किसी का अपराध किया और वो उपस्थित हो तो जाओ उनके चरण पकड़ो, उनसे प्रार्थना करो। भजन का रुकना सहन मत करो, बहुत कठिन है भजन करके भगवत प्राप्ति करना, वो हमारे अंदर सरलता पूर्वक भजन चल रहा उसको बचाओ। किसी की निंदा मत करना, किसी की अवहेलना मत करना, तुम्हारी कोई निंदा करे तुम्हारी अवहेलना करे सह जाना, कह रहे हैं इसमें, कह रहे संतर्जयस ताड़यन बधनन। यदि वो कहीं मुझे बांध दे मैं बंधना में स्वीकार कर लूंगा। ऐसा भक्तों को कोई बांधता है क्या? हाँ बांध देते हैं, तितिक्ष ब्राह्मण की कथा में पढ़ी है, उसको बांध दिया। एक सखी बहुत भजनानंदी थी, उसके परिवार के लोग रोज उसे पीटते थे और उसे बांध देते थे, सखूबाई नाम उसका सखी का था। एक सखी बहुत नागरी दास जी के संग में रहकर भजन की वृत्ति उच्च कोटि की सीखी थी, भागमती बाई, उनके पति ही उनके ऊपर सैया लगाकर नई नवीन रानी के साथ बैठते हुए सब पिटाई करते, इतना कष्ट देते, पर वो उच्च कोटि की ऐसी महान भक्ता परम सिद्ध बरसाने के जो वास करने वाले अपने नागरी दास जी थे हरिवंश महाप्रभु के शरणागत, उनके सत्संग से ऐसी उच्च कोटि की दशा प्राप्त थी उसे कोई फर्क नहीं पड़ा। उसके कष्ट देने के लिए उसके ऊपर सैया लगाते, राजा थे और नवीन रानी के साथ उसके ऊपर बैठते और उपद्रव करते, मारते पीटते, लेकिन वो सम रहती। संतर्जयस ताड़यन बधनन, शांत, वो देख रहा है, बस तुमको यही सोचना, वो देख रहा है, मेरा स्वामी देख रहा है, वो देखते हुए मौन है ना, वो चाह रहा है ना तो तेरा किया मीठा लगे, बस बात समझ लो। इतना तो बहुत बड़ी वस्तु प्राप्त होगी, बहुत बड़ी। एक मिट्टी जब कुम्हार को अर्पित हो जाती है तो पीट पीट कर एक छोटा राई भर भी दाना नहीं रहने देता, क्योंकि राई भर भी अगर दाना रहा वहीं से मटकी फूट जाएगी, राई भर भी अहंकार रहा वहीं से भक्ति रस निकल जाएगा। पीट पीट के उसको एकदम बराबर, फिर भी चैन नहीं, जल डाल के रौंदा फिर भी चैन नहीं, हाथों से मल कर अपने अनुसार बनाया, फिर चाक पे चढ़ाया, जो चाहा आकार दिया, सूर्य के ताप में तपाया, फिर उसको दहकते हुए आवे के बीच में रख के पकाया, फिर उसमें रस रसने रखने लायक क्षमता आ गई उस मिट्टी में। ऐसे ही हम जब संत महापुरुषों को श्री भगवान को समर्पित होते हैं तो ये सब होगा। रस रखने लायक हृदय तभी होता है जब आवे में तपता है, इसलिए तैयार रहो। तभी नागरी दास जी ने कहा बड़ो ही कठिन है भजन ढिग ढरिबो, एक सूरवीर योद्धा की तरह जैसे उसके अंग घाव से युक्त होते हैं, वो कदम पीछे नहीं आगे ही बढ़ाता है, ऐसे भजनानंदी चाहिए। चाहे मुझे चोर कहा जाए, पतित कहा जाए, गाली दिया जाए, मुझे मारा जाए, बांध लिया जाए, तो भी मैं भगवान पर दोषारोपण नहीं करूंगा। मैं यही निश्चय करूंगा प्रभु मेरे देख रहे हैं, जोई जोई प्यारो करे सोई मोई भावे, उनका विधान परम मंगलमय है। अंतः क्लेश मतीव दुस्सह तरम प्राप्नोति नाना विधि, मुझे अंदर से भी बहुत पीड़ा दी जाए, काम पीड़ा क्रोध पीड़ा लोग बाहर से तो ये दिया जाए और अंदर से भी ये दिया जाए तो भी हे प्रिया जो आपसे नहीं कहूंगा। प्रेम में कभी शिकवा शिकायत नहीं होती, ना इष्ट से और अपने प्रीतम के विधान से दिए हुए कष्ट को हम दूसरे से कह दें, धिक्कार हमारी प्रीति को, प्रीतम सहावे और मैं दूसरे से शिकायत करूं, नहीं, हर विधान आपका सहु, ए प्रेम है मस्ती का, ए लज्जू पंजू ऐसे काम नहीं है इनके, हे ये तो देखते हैं पैर धर के अगर गर्म लगा तो हटा लेंगे, मत रखना गर्म ही गर्म है, और छाती मजबूत करके कि आग पे चलूंगा तो पैर रखोगे तो चंदन हो जाएगा आग में भी, पूरे जीवन की बात कह रहा हूं, पूरे जीवन की। सोचो उस समय जब 13 वर्ष की अवस्था है और घर से निकले थे, कोई साथी नहीं है, कोई समझाने वाला नहीं, और आज इतना जीवन हो गया इसी यार के सहारे हुआ है, इसी यार, ना एक रुपया कभी था न रहा है और न रहेगा। प्रेमानंद का एक रुपया नहीं है, प्रेमानंद की एक वस्तु नहीं, ना रहा ना रहेगा। हाँ प्रेमानंद की सब वस्तुएं हैं, ना होते हुए भी पूरा विश्व मेरा, क्यों? प्रेमानंद भगवान का है, भगवदानंद को प्रेमानंद कहते, वही संपत्ति। जीवन भर एक ही साथी रहा है और हे नाथ ऐसी कृपा करना दूसरा साथी बने ना। अब आओ तो मृत्यु रूप में ही आओ और किसी रूप में मत आना। साथी हो तो आपका साथ हो, सर्वहरण करने वालों में मैं मृत्यु हूं, बस उस रूप का इंतजार है। आओ उस रूप में और समेट लो अपनी लीला। बस कभी किसी से शिकायत, कभी किसी ने कैसे हो, आनंद है। नहीं सुना है किडनी खराब है तो सुना ही होगा, कोई दुख नहीं, कोई दुख नहीं। वर्तमान दुख वर्तमान के आनंद से बहुत छोटा है, क्या दुख है। स्वामी के द्वारा दिया हो यह आप हमारी प्रार्थना मान लीजिए। इस मार्ग में चलने पर जो दुख मिले कभी किसी से कहना नहीं, नहीं तो प्रीति में कलंक लग जाएगा, वो तुम्हें प्रभु से हटा देगा। नहीं रहिमन मन की मन व्यथा रखिए मन में गोए, सुनिठ ली है लोग सब बाट न ली है। ये भगवत मार्ग सूरवीरों का मार्ग, कभी अपनी अंतर व्यथा को किसी से मत कहो। जीवन में अगर कोई हमें कष्ट दे रहा है तो हमारा कर्म है, ना कि कोई व्यक्ति। ये बिल्कुल सिद्धांत तक चर्चा समझ लो। वही व्यक्ति जो मुझे द्वेष करता, वही व्यक्ति जो मुझे कष्ट और दंड देता, वही व्यक्ति प्रणाम करके छाती से लगाकर आंसुओं की धारा से अभिषिक्त किया, तो वो व्यक्ति था या कर्म। जब कर्म भोग हो गया तो वही हृदय से लगा के अश्रु धारा से क्षमा कीजिए। बहुत ऐसा ऐसा नहीं, नहीं आप तो बड़ी कृपा की, व्यक्ति कभी कष्ट नहीं देता, मेरा कर्म उसके ऊपर सवार होकर मुझे दंड देता, इसलिए मैं किससे कहूं। अपनी जबान से दांत कट जाए तो किससे कहूं, ये जो दांत इससे जबान हमारी पीड़ा को किससे कहूं। अपने हाथ से चोट लग जाए किसको कहूं। ऐसे सब आत्मस्वरूप हैं, हमारा कर्म ही उनके ऊपर सवार होकर हमें दंड दे रहा है। इसलिए भाई श्रीपाद का सिद्धांत जो कह रहे कि अगर भगवत प्रेम प्राप्त करना है तो मुंह बंद। 22 बाजार में कोड़े मारे गए, एक बार भी श्री कृष्ण से नहीं कहा। पूज्य भाई जी महाराज का जीवन कष्ट कष्टमय, कभी श्री कृष्ण से नहीं, बाबा नहीं सह पाए, बाबा ने श्री कृष्ण से कहा, श्री कृष्ण चंद्र जी से, ये क्या है, इतना कष्ट क्यों दे रहे हो उनके शरीर को। मुस्कुरा दिए, बोले मैं नहीं दे रहा हूं, ये तुम्हारे कर्म का फल भाई जी भोग रहे हैं। ऐसा, बोले हाँ। सीधे अस्पताल गए, भाई जी से कहा ये आप हमारा प्रारब्ध क्यों भोग रहे हैं। कहा आज ये कौन सा खेल रच रहे हो बाबा, क्या बात कर रहे हो, जीव का अपना कर्म भोगना होता है किसी और का निजीकृत कर्म भोग। तो उनका आप हमको बहका नहीं सकते, हमें परम तत्व से पता चला है कि आप हमारे कर्म। तो हंस दिए भाई जी और बोले देखो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको फर्क पड़ जाता, आप चढ़ो जिस साधना की चढ़ाई पर चढ़ रहे हो चढ़ो, मंगलमय श्री कृष्ण तुम्हारी यात्रा को पूर्ण करें। हम तो अस्पताल में पड़े पड़े प्रिया प्रीतम के साथ खेल रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। ये बड़े महापुरुषों ने अपने कष्ट की तो बात जाने दो, दूसरों के कष्टों को लेकर भोगाए हम। जरा सा कष्ट आ जाए तो बोले हमारे अंदर श्रद्धा थी अब खत्म हो रही क्योंकि कष्ट आने लगा, उसमें भगवान का क्या दोष है। वो तो बड़े कृपालु हैं कि ऐसे पापात्मा होने पर भी मुझे महात्माओं का संग दिया, धाम का वास दे रहे, नाम जपवा रहे, अब हमारे पूर्व प्रारब्ध हमें कष्ट दे रहे, इस समय भी वो हमें दुलार कर रहे। जीव समझता नहीं, केवल दोषारोपण भगवान और भगवत मार्ग पर कर देता है। इसलिए उपासक को अंतः क्लेश मति व दुस्सहतरम, ये जो आप काम क्रोध से जल रहे हो ना, ये तपस्या है, इसका बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। और अगर भोग रहे हो ना, गिर रहे हो, पतित हो रहे हो, तो वो सुख नहीं, वो शांति नहीं, वो विश्राम नहीं। तो एक बार ध्यान रखना, इस शब्द को याद रखना, ऐसे रहने पर भी हमारे द्वारा जो भी, वो हमारे स्वामी ऐसे लेते हैं, जन अवगुण प्रभु मान न काऊ, दीन बंधु अति मृदुल स्वभाव। कल शाम के पूज्य परमहंस राम मंगलदास जी की वाणी का चिंतन हो रहा था, उसमें कह रहे कि जो 30 मिनट भगवान नाम कीर्तन कर लेता, मेरी बात पर विश्वास रखना हो, उसको भगवत प्राप्ति होगी। 24 घंटे में 30 मिनट नाम कीर्तन कर लेता है और अन्य समय विस्मरण रखता है, तो 30 मिनट का नाम कीर्तन उसे भगवत प्राप्ति करा देगा। तुम्हें जो पाठ प्रिय हो 30 मिनट पाठ कर लोगे, भगवत प्राप्ति हो जाए।
2: दिल बोले म्यूजिक, म्यूजिक म्यूजिक बोले दिल, दिल की फ्रीक्वेंसी 90.4
3: रेडियो रिमझिम,
2: सुनो दिल से।
4: अगर आपको हो रहा है घुटने, हड्डी या रीढ़ की हड्डी का दर्द या महिलाओं से जुड़ी समस्या, तो याद रखिए गोपालगंज जिले में सबसे भरोसेमंद नाम स्टार एडवांस ऑर्थो एंड मेटर्निटी सेंटर, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
5: यहाँ है डॉक्टर इमरान हुसैन खान, कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक एवं जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन, MBBS MS, एक्स रेसिडेंट KGMU लखनऊ।
4: और महिलाओं के लिए डॉक्टर सूफिया शादाब, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, MBBS MS, ऑब्स एंड गायनेकोलॉजी।
5: साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
4: ध्यान दे, हर शुक्रवार को है फ्री OPD, तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें।
5: पता, कमला राय कॉलेज रोड नियर रालसन होटल, गोपालगंज।
4: संपर्क करें 9006978856 या 6203139564।
6: डॉक्टर अनुज मिश्रा, न्यूरो सर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
7: तो भौजी, आज सुबह रही से गोपालगंज गई रनिया, घूम लेनी नू सारा मार्केट, देख लेनी नू सारा बाजार, कोनो साड़ी पसंद आई ला की ना।
8: अरे ना देवर जी, कपड़ा तो बहुते देखनी है, पर कोनो जचल है ना।
7: ई बात बा, तो ऐसन करी कि अब चली सीधे हमरा साथे कमल श्री में।
9: महिलाओं की सबसे पहली पसंद कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री। सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए और नए नए डिजाइनों के फैंसी लहंगा, दुल्हन के लिए साड़ी, सूट पीस, लक्ष्मीपति साड़ियों के अलावा रेमंड्स के कोट पैंट और शूटिंग शॉटिंग बाजार से कम रेट में ले जाएं।
10: जी हाँ, कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री। सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए, बारी मार्केट, फर्स्ट फ्लोर।
11: अब बेटा, बहू घर आने वाली है, सोच रही हूँ कुछ सोने की नई ज्वेलरी ले ली जाए, पर भरोसे की दुकान।
12: माँ, अब घबराइए नहीं, चलते हैं मास्टर साहब की जेवर की दुकान, गुप्ता ज्वेलर्स, BIS अप्रूव्ड, शानदार डिजाइन और असली ज्वेलरी की गारंटी।
13: अपने सपनों की खूबसूरती के लिए गुप्ता ज्वेलर्स ही चुने, सिल्वर, गोल्ड या डायमंड, हर ज्वेलरी BIS अप्रूव्ड और किफायती दाम के साथ। विश्वास की परंपरा, नई डिजाइन का खजाना, बस गुप्ता ज्वेलर्स में।
14: आज ही आए गुप्ता ज्वेलर्स, मास्टर साहब की जेवर की दुकान, चंद्रगोखो लोड, गोपालगंज। मोबाइल नंबर 9493045651 या 9707065575।
15: सुप्रभात, रवा सब जी कर करनी बेसब्री से इंतजार, वो कार्यक्रम लेके हाजिर बाड़ी राव रेडियो दोस्त दीपाली, आपन दे आपन देखभाल। रोज की तरह आज भी हम लेके आयल बानी अपना साथ कुछ स्वास्थ्य वर्धक घरेलू नुस्खा, जौन रखी रुआ के अंदर से फिट आ रहम रुआ खुशहाल। तो चली हम अपना कार्यक्रम के श्री गणेश करी। श्रोतागण, आज हमने के जानल जाई सबसे पहले कि मोटापा आखिर काहे होला। ऐसन बीमारी है जौन स्त्री, पुरुष व बच्चा केहो के भी हो सकेला। मोटापा व्यक्ति की सुंदरता नष्ट कर देला और ज्यादा मोटापा समाज में हास्यास्पद स्थिति पैदा कर देला। मोटापा कई कारण से हो सकेला, जैसे खान पान, बैठ के काम कइल, व्यायाम ना कइल आदि। कई बार मोटापा वंशानुगत भी होला। अगर परिवार में सब लोग मोटा बा, तो आवे वाला संतान भी मोटा हो सकेला। जी प्रकार खा खांसी के कब्ज के रोग के घर कहल जाला, वैसे ही मोटापा के भी कई बीमारी के जनक मानल जाला। ब्लड प्रेशर संबंधी, गैस संबंधी, डायबिटीज संबंधी आदि कई तरह की बीमारी के संबंध मोटापा से होला। शरीर के अतिरिक्त चर्बी जम जाए पर ई प्रकट होला। मोटापा शरीर के कुछ अंग, पेट, जांग, हाथ, नितंब, कमर आदि के अनावश्यक रूप से फुलाते हुए अपना आसपास के अंग के दबावत चलल जाला। इस तरह ई पूरा शरीर के अपना कब्ज में ले लेला। एके सबसे ज्यादा प्रभाव दिल, दिल के धमनी आदि पर होला। मोटापा में दिल के आसपास धमनी में चर्बी जमा हो जाला और ई दिल के परेशानी बढ़ जाला। व्यक्ति के शरीर में चर्बी ही बढ़ेला, अन्य धातु उतना ना बढ़ेला। मोटा व्यक्ति अल्पायु तो होला ही, पुरुष त्वहीन, वीर्यविहीन, पसीना से परेशान, भूख प्यास से व्याकुल और अनेक बीमारी से ग्रस्त होला। मोटा व्यक्ति भूख शांत करे खातिर ना खाला, बल्कि स्वादेंद्रिया के शांत करे खातिर नाना प्रकार के भोजन करेला। ऐसा भी कहल जा सकेला कि अतिरिक्त भोजन मिले पर, आराम होके पर और परिश्रम ना करे पर हमनी के शरीर में अनावश्यक चर्बी एकत्र करे लागेला। यह चर्बी मोटापा के रूप होला। शरीर खातिर आवश्यक होला, लेकिन जरूरत से ज्यादा चर्बी हानिकारक होला। चर्बी शरीर के सेल बनावे खातिर जरूरी है। सामान्य शरीर खातिर प्रतिदिन 60 ग्राम चर्बी जरूरी होला, एक चौथाई चम्मच में 9 कैलोरी होला। यही प्रकार एक ग्राम प्रोटीन या कार्बोहाइड्रेट में मात्र 4 कैलोरी होला। चले जानल जाओ मोटापा के कारण। मोटापा के सबसे प्रमुख कारण है आराम लिहल, अयाशी के जीवन जियल और परिश्रम ना कैल। चाहे जब भोजन कैल, भोजन में वसा, मिठाई, तेल, घी, दूध, अंडा, शराब, मांस, धूम्रपान, अन्य तरह के नशा आदि के अति कर दिहल। मोटापा फैले के कारण में भोजन में अति, भोजन के पश्चात दिन में सूतल व परिश्रम कम कैल, गर्भवती स्त्री के गर्भस्थ शिशु के नाम पर अनावश्यक खिलाते रहल। प्रसव बाद भी मेवा के अति सेवन कैल और शारीरिक श्रम कम कैल, हमेशा घर में ही बनल रहल आदि प्राय बाहर काम करे वाला स्त्री हाउसवाइफ की अपेक्षा कम मोटा होला लो। बच्चा के मोटापा के कारण भी यह है कि माता पिता लाड़ प्यार में बच्चा की वसा, प्रोटीन से भरपूर पदार्थ अनावश्यक खिलाते रहेला। शरीर में मेद वृद्धि बचपन से ही आ जाला। कई बार दुबला माता पिता के बच्चा यही कारण मोटापा के गिरफ्त में आ जाला। शरीर के कुछ ग्रंथि भी मोटापा के कारण होला। मौलिक चयापचय के क्रिया व शारीरिक क्रियाशीलता के ऑटुका ग्रंथि और पीयूष ग्रंथि के स्त्राव के कमी के वजह से मोटापा पनपेला। वंश परंपरा भी मोटापा के कारण है। यहाँ ये नहीं कहल जा सकत मोटा माता पिता के बीच से पैदा होकर बच्चा भी मोटा ही होला। दोस्त लोग अब चली जानल जाओ मोटापा घटावे के घरेलू नुस्खा। भोजन में गेहूं के आटा के चपाती लिहल बंद करी। जौ चना के आटा के रोटी लिहल शुरू कर दी। एके अनुपात में 10 किलो चना व 2 किलो जौ होके के चाही। एके मिला के पिसवाली और ई आटा की रोटी खाई। इसे सिर्फ पेट और कमर ही ना बल्कि सारा शरीर के मोटापा कम हो जाई। एक ग्लास ठंडा पानी में 2 चम्मच शहद घोल के पिए से भी कुछ दिन में मोटापा कम होके लगेला। दुबला होके खातिर दूध और शुद्ध घी के सेवन कैल बंद कर दी। वरना शरीर में कमजोरी, रुखापन, वात विकार, जोड़ में दर्द, गैस, ट्रबल आदि होके के शिकायत पैदा होके लगी। कमर के आकार कम करे खातिर सुबह उठे के बाद या रात के सूते से पहले नाभि के ऊपर के उदर भाग के वफार के भाप से सेक करे के चाहिए। एक तपेली पानी में 1 मुट्ठी अजवाइन और 1 चम्मच नमक डाल के उबाले के रख दी। आज जब भाप उठे लगे तब ए पर जाली या आटा चाले वाला छलनी के रख दी। दो छोटा नैपकिन या कपड़ा ठंडा पानी में गीला करके निचोड़ ली और तह करके एक एक कर जाली पर रख के गरम करी और पेट पे रख के सेकी। प्रतिदिन 10 मिनट से कैल पर्याप्त है। ऐसा करे से कुछ दिन में पेट के आकार घटे लगी। सुबह उठ के शौच से निवृत्त होके के बाद कुछ आसन के अभ्यास करी यानी व्यायाम करी या प्रातः 2 से 3 किलोमीटर तक घूमे खातिर जाया करी। दोनों में से जौन भी उपाय करे के सुविधा हो सके करी। रात भर अच्छा से सूते से भी मोटापा कम होला। कम खाई अधिक चली और खूब सूती यदि डाइटिंग और जिम में पसीना बहावे के बावजूद वजन बतावे वाला मशीन के सुई पीछे नहीं के खिसक रहत होके तो रात के बढ़िया नींद ली। अध्ययन में पावल गईल बा कि रात भर मीठा नींद सूते से भी मोटापा कम होला। एगो नया शोध के अनुसार रात की अच्छा नींद ना आवे पर वजन बढ़े और हार्मोन्स के स्तर बढ़ जाला। एकरा चलते नींद के मारे लोग के मीठा और वसा युक्त चीज खाए के ललक पड़ेला। नींद के मारे लोग के थकान और एकाग्रता की कमी से भी जूझे के पड़ेला। ऐसे एगो दुष्चक्र भी पैदा हो जाला। नींद के कमी से मीठा चीज से मन ललचेला और अपौष्टिक खाना खाए के बाद शरीर पर और चर्बी चढ़ेला। शोधकर्ता बतावे लालो कि 5.5 घंटा से लेके 8.5 घंटा तक के बढ़िया नींद और पौष्टिक आहार लेवे से वजन कम करे में सहायता मिलेला। वजन कम करे के साधारण फॉर्मूला ई ना हा कि कम खाई अधिक चली और ई खूब सूती। वजन कम करे खातिर खान पान के साथ ही नींद के भी अनदेखा नहीं कैल जा सकत। तो दोस्त लोग आज खातिर बस इतना ही। तो अब हमरा के दी खुशी खुशी जाए के इजाजत। नमस्कार।
3: अरे सुनते हो जी, शादी में बस कुछ ही दिन बचे हैं। दूल्हे के कपड़े अभी तक नहीं बने
16: और दुल्हन का लहंगा साड़ी कुछ भी तय नहीं हुआ। इतना बड़ा फंक्शन है, सब लोग क्या कहेंगे?
17: मम्मी पापा, मुझे चाहिए रॉयल कोट पैड का कपड़ा और रिसेप्शन के लिए एक शानदार कुर्ता पजामा।
18: और मुझे चाहिए ट्रेंडिंग लहंगा, सुंदर साड़ी और कुछ बढ़िया सूट पीस भी।
19: अरे बस इतनी सी बात, आप लोग गए नहीं क्या मुरारी लाल विजय कुमार?
17: मेन रोड गोपालगंज में स्थित मुरारी लाल विजय कुमार क्लोथिंग स्टोर, जहां दूल्हे के लिए मिलता है कोट पैंट, पैंट शर्ट और कुर्ता पजामा का बेहतरीन कपड़ा, और दुल्हन के लिए लहंगा साड़ी सूट पीस, हर डिजाइन हर रंग हर बजट में।
16: तो फिर देर किस बात की, चलो अभी चलते हैं मुरारी लाल विजय कुमार।
17: मुरारी लाल विजय कुमार, मेन रोड गोपालगंज, प्रोप्राइटर विजय कुमार केडिया।
19: कॉल करें 87-894-18744।
20: घर बन रहा हो तो सिर्फ ईंट और सीमेंट नहीं, टाइल्स और फिटिंग्स का चुनाव भी होना चाहिए शानदार।
17: इसीलिए गोपालगंज जिले के लोगों की पहली पसंद बन चुका है बीके टाइल्स। बीके टाइल्स, यहाँ मिलेंगे सभी प्रकार के डिजाइनर टाइल्स, मार्बल, ग्रेनाइट, बेसिन, कॉमोड, बाथ फिटिंग्स और घर सजाने के कई आधुनिक प्रोडक्ट,
19: वो भी किफायती दामों पर। और खास बात, गोपालगंज जिले में हमारी 4 सुविधाजनक शाखाएं,
17: अरार मोड़ SP कोठी के पास गोपालगंज, दूसरा ब्रांच भटवा मोड़ के पास कुचायको,
19: तीसरा ब्रांच इस्लामिया कॉलेज के पास मेन रोड ठावे मीरगंज, और चौथा ब्रांच बंतरिया मोड़ भोरे।
17: और अब सिवान जिले में भी हमारी 2 शाखाएं उपलब्ध हैं, सिवान ब्रांच कुशवाहा चौक हकाम बाईपास सिवान,
19: और मैरवा ब्रांच बबनौली चौक मैरवा सिवान।
17: तो आज ही अपने सबसे नजदीकी बीके टाइल्स ब्रांच पर आए और करे बेहतरीन खरीदारी।
19: अधिक जानकारी के लिए संपर्क करे गोपालगंज ब्रांच में 8460571406, मीरगंज ब्रांच 9693101611,
17: कुचाई कोट ब्रांच में 9693101602, भोरे ब्रांच में 8207856404,
19: सिवान ब्रांच में 9942071405, मेरवा

मुनि अगस्त्य के एक परम ज्ञानी शिष्य थे सुतीक्ष्ण, जिनकी श्री राम चरणों में अथोर प्रीति थी। वन में विचरण करते हुए जब उन्होंने अपने आराध्य के आगमन का समाचार सुना तो प्रेम और भक्ति भरे पुलक से उनका शरीर कंटकित हो गया। उन्हें विश्वास नहीं होता कि वे प्रभु के दर्शन पाएंगे। प्रेम में मग्न सुतीक्ष्ण प्रभु का गुणगान करते राह में नाचने गाने लगे। उनके पग आगे पड़ते हैं या पीछे, इसकी भी सुधि नहीं रही। श्री राम एक पेड़ की आड़ लेकर उनकी उन्मत्त दशा देख रहे थे। भक्तों का उद्धार प्रभु की बान है, वे सुतीक्ष्ण के हृदय में प्रकट हुए। मुनि प्रेमोन्मत्त होकर बीच राह में अचल समाधि सी स्थिति में स्थिर बैठ गए। अपने आराध्य के निकट आ जाने के बाद भी जब उनका ध्यान नहीं टूटा तो प्रभु ने उनके हृदय में अपना राजसी रूप छोड़ चतुर्भुज रूप प्रकट किया, और उस रूप के अंतर ध्यान होते ही सुतीक्ष्ण को श्री राम, लक्ष्मण और सीता के प्रत्यक्ष दर्शन प्राप्त हुए। वे दंड की भांति श्री राम के चरणों में गिरे ही थे कि प्रभु ने उठाकर उन्हें हृदय से लगा लिया।

अगस्त्य मुनि के एक परम ज्ञानी शिष्य थे सुतीक्ष्ण। उन्हें ये विश्वास नहीं होता था कि उन्हें भक्ति, वैराग्य अथवा ज्ञान कुछ भी प्राप्त है। चित्रकूट से पंचवटी जाते हुए श्री राम, सीता तथा लक्ष्मण के दर्शन जब मुनि सुतीक्ष्ण को प्राप्त हुए तो अपने आश्रम में ले आकर उन्होंने अनेक प्रकार से अपने आराध्य की पूजा अर्चना की। फिर भी उन्हें संतोष नहीं होता था कि वे किस प्रकार प्रभु की विनती करें। नील कमल के समान श्री राम का शरीर है, जिस पर मुनियों जैसा वेश और सिर पर जटाओं का मुकुट सुशोभित है। सुतीक्ष्ण की कामना है कि मोह रूपी वन को भस्म करने वाली आग तथा संत रूपी कमलों के वन को प्रफुल्लित करने वाले सूर्य के समान प्रभु सदा मुनिगण की रक्षा करें। संशय रूपी सूर्य को ग्रसने के लिए प्रभु गरुड़ हैं। अत्यंत कठोर तर्क से उपजने वाले विषाद का वो परिष्कार करते हैं। यद्यपि उनका निर्मल, व्यापक तथा अविनाशी रूप भक्तों के हृदय में सदा निवास करता है, फिर भी मुनि सुतीक्ष्ण प्रभु के वनवासी रूप को ही अपने हृदय में बसाना चाहते हैं।

आराध्य से मनचाहा वरदान प्राप्त कर मुनि सुतीक्ष्ण की साध पूरी हुई। प्रभु की इच्छा के अनुसार तब वो उन्हें अपने गुरु अगस्त्य मुनि के आश्रम ले चले। श्री राम लक्ष्मण सीता का आगमन सुन अगस्त्य मुनि उनके दर्शनों को दौड़े। नाना प्रकार से श्री राम की पूजा वंदना करने हेतु जब उन्हें आसन पर बिठाया तो मुनियों का समूह प्रभु दर्शन के लिए एकत्र हो गया। पूरी ऋषि मंडली में श्री राम इस मुद्रा में बैठे हैं कि प्रत्येक उपस्थित जन को वो अपनी ही ओर देखते दिखाई देते हैं। श्री राम ने अगस्त्य मुनि को वहां अपने आगमन का उद्देश्य बताया। उन्होंने कहा, हे मुनिवर, मुझे ऋषि मुनि द्रोही राक्षसों के विनाश का उपाय बताएं। अगस्त्य मुनि ने श्री राम से दंडक वन में पंचवटी जाकर गौतम मुनि के कठोर शाप का दमन करने की प्रार्थना की।

0: कई दिनों से पेट के निचले हिस्से में बहुत दर्द है। रिपोर्ट में पथरी और बच्चेदानी की भी दिक्कत बताई गई है।
1: डॉक्टर ने कहा है ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन जगह ऐसी हो जहां अच्छा सर्जन भी हो और महिला डॉक्टर भी।
2: अब हर चिंता का समाधान है शल्यम हॉस्पिटल।
0: अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूरब भोजपुरवा में NH 27 पर दक्षिण साइड गोपालगंज में स्थित शल्यम हॉस्पिटल।
2: यहां आयुष्मान कार्ड से 5 लाख रुपए तक मुफ्त ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
0: सर्जरी विभाग हो या स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग, इलाज होता है अनुभवी विशेषज्ञों द्वारा।
2: डॉक्टर मनोज कुमार गुप्ता MBBS MS सर्जरी लैप्रोस्कोपिक सर्जन और डॉक्टर डेजी सिन्हा MBBS MD DNB स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
0: शल्यम हॉस्पिटल में उपलब्ध है आधुनिक मशीनें और एक ही छत के नीचे OPD IPD ICU मॉड्यूलर OT अल्ट्रासाउंड पैथोलॉजी लैब फार्मेसी और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा।
2: आज ही विजिट कीजिए शल्यम हॉस्पिटल मल्टी स्पेशलिटी एंड ट्रॉमा सेंटर अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूरब भोजपुरवा NH 27 गोपालगंज।
0: कॉल करें 70 70 75 63 100 या 70 70 75 42 100 या हमारी वेबसाइट पर विजिट करें www.shalyamhospital.com।
3: नन्ना मुन्ना लाही हूँ देश का सिपाही हूँ।
4: रुको रुको बेटा, अब तो बड़ा अच्छा गा रहे हो।
3: हाँ कल मेरे टीचर मुझे अच्छे से याद करने के लिए बोले हैं।
4: अच्छा, तो कौन से स्कूल में पढ़ते हैं आप?
3: मैं पढ़ता हूँ श्री भारती एकेडमी में।
5: श्री भारती एकेडमी जो है CBSE नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त स्कूल।
6: हमारे यहाँ बोलचाल के साथ ही बच्चों को खेल खेल में पढ़ाया जाता है। इसके साथ ही छात्रवास के अलावा आने और जाने के लिए परिवहन की भी सुविधा उपलब्ध है।
5: श्री भारती एकेडमी आपके बच्चों को बनाता है होनहार और देता है उनके फ्यूचर को एक नई उड़ान।
6: आज ही एडमिशन के लिए आए चैन पट्टी के उत्तर ग्राम डेरवा तिलंगही मैदान के पूरब गोपालगंज।
5: हमारा जूनियर ब्रांच सरिया वार्ड नंबर 5 हनुमान गढ़ी गोपालगंज में है।
6: जानकारी है तो कॉल करें 6205-62112 पे।
7: सोहन, मैं बहुत परेशान हूँ। मुझे तुरंत अपने भाई को कुछ पैसे भेजने हैं, लेकिन बैंक में तो इतनी लंबी लाइन है कि घंटों लग जाएंगे और मेरा जियो सिम भी एक्टिवेट नहीं हो रहा। अब मैं क्या करूँ?
8: अरे टीना, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। चलो मेरे साथ माया क्लासिकल में आधार और बैंक से आसानी से पैसे निकाला जाता है और किसी भी खाते में तुरंत भेजा जा सकता है बिना किसी झंझट के। और सिम की बात कर रही हो ना, BSNL जियो एयरटेल VI जो भी चाहिए तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा।
7: मुझे कुछ जरूरी PDF प्रिंट करवाने हैं, वहाँ ये सब हो जाएगा ना?
8: बिल्कुल, माया क्लासिकल में PDF लेमिनेशन प्रिंट फोटोकॉपी सब कुछ मिलेगा। तुम्हें एक धमाकेदार ऑफर भी बताता हूँ, फोटो स्टेट सिर्फ 1 रुपए प्रति प्रिंट आउट, कम से कम 50 पेज, हर ग्राहक को शानदार गिफ्ट भी मिलता है। माया क्लासिकल में सब कुछ है। माया क्लासिकल सिनेमा रोड शिव मंदिर के ठीक सामने गोपालगंज, प्रोपराइटर सोनू जी। संपर्क करें 99-399-66-999।
0: सुनिए जी, पेट में दर्द कई दिनों से ठीक ही नहीं हो रहा,
1: तो फिर देर क्यों? चलो अभी चलते हैं साई कृपा क्लिनिक में, जहां मौजूद है अनुभवी डॉक्टर डॉक्टर स्वाति के गुप्ता MBBS स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, पूर्व वरीय चिकित्सक पारस हॉस्पिटल चंडीगढ़, और डॉक्टर PK गुप्ता MBBS BMC जनरल फिजिशियन एवं सर्जन SVBPN न्यू दिल्ली।
0: यहां नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन, हर्निया, अपेंडिक्स, पित्त की थैली, बवासीर, भगंदर आदि ऑपरेशन की सुविधा और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
2: यहाँ सभी प्रकार का ऑपरेशन बिना टाका का आधुनिक विधि द्वारा किया जाता है। साई कृपा क्लिनिक, थावे रोड बस स्टैंड के सामने गोपालगंज।
0: संपर्क करें 9939365923।

0: अगर आपका फर्नीचर डोलता है और बोलता है तो एक्सचेंज तो मांगता है।
1: संतोष फर्नीचर लेकर आ गए हैं ग्रेट एक्सचेंज ऑफर।
2: ग्रेट एक्सचेंज ऑफर, अपने घर के पुराने सोफा और डाइनिंग को ले आएं और नए सोफा तथा डाइनिंग को ले जाएं और बनाएं अपने घर को सुंदर तथा आकर्षक।
1: आज ही विजिट करें संतोष फर्नीचर, चिराईगर पेट्रोल पंप के सामने, कॉलेज रोड, गोपालगंज। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 82 101 87 952। नियम और शर्तें लागू।
3: जिले का गौरव, संतोष मेडिकल हॉल, घोसमोड़, दरगाह रोड, गोपालगंज।
4: गोपालगंज जिले का प्रतिष्ठित अंग्रेजी दवा की दुकान संतोष मेडिकल हॉल।
5: हमारे यहाँ भारत के प्रसिद्ध डॉक्टरों द्वारा लिखी गई सभी प्रकार की अंग्रेजी दवाएं उपलब्ध हैं, जैसे गोरखपुर, पटना, कलकत्ता, लखनऊ, बनारस, चेन्नई और मुंबई के डॉक्टरों द्वारा लिखी गई दवाइयाँ भी मिलती हैं।
6: एक सूचना, संतोष मेडिकल हॉल अब चला गया है कॉलेज रोड चिराई घर के पहले, गोपालगंज। संपर्क सूत्र है 62042434003 62042434403।
7: कूल्हा एवं घुटना प्रत्यारोपण, आर्थ्रोस्कोपिक या दूरबीन विधि से घुटने के टूटे लिगामेंट की सर्जरी, एलिजारोव रशियन विधि से हाथ पैर की लंबाई बढ़ाना, स्पाइन सर्जरी और हड्डी जोड़ की सभी समस्याओं का समाधान।
8: मिले वरिष्ठ सर्जन डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से, संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एवं सर्जिकल सेंटर, रुस्तमपुर ढाला, गोरखपुर।
7: आज ही संपर्क करें 7388894700 या 9198886973।
9: डॉक्टर अनुज मिश्रा, न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज। ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
10: गोपालगंज, अब आपकी राइड होगी और भी स्टाइलिश और पहले से ज्यादा पावरफुल,
11: क्योंकि आ चुकी है हीरो ग्लैमर एक्स और एक्सट्रीम 125R। अब उपलब्ध है नारायणी हीरो गोपालगंज में।
10: ग्लैमर एक्स, दमदार माइलेज, शानदार लुक और भरोसेमंद परफॉर्मेंस, ताकि हर दिन बने खास और सफर रहे बेफिक्र।
11: और एक्सट्रीम 125R, स्पोर्टी डिजाइन, दमदार पावर और एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ हर राइड बने और एक्साइटिंग।
10: तो फिर देर किस बात की, आज ही विजिट करें नारायणी हीरो, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
11: शानदार ऑफर्स और आसान फाइनेंस सुविधा के साथ
10: नारायणी हीरो, भरोसे का नाम हर राइड के साथ।
11: कॉल नाउ 9656 59536 या 9656 57902।

0: नमः शिवाय।
1: सावन के पावन अवसर पर बाबा भोलेनाथ के दर्शन का सुनहरा अवसर लेकर आया है दीपक राज टूर एंड ट्रेवल्स गोपालगंज।
0: श्रद्धालुओं के लिए विशेष तीर्थ यात्रा एवं कांवर यात्रा की व्यवस्था। पहला रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, राजगीर होते हुए पुनः वापसी।
1: दूसरा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, तारापीठ, जगन्नाथपुरी, गंगा सागर, काली घाट, कोलकाता, रजरप्पा, राजगीर होते हुए वापस गोपालगंज।
0: तीसरा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, गया, बोधगया, वाराणसी, अयोध्या, गोरखनाथ मंदिर होते हुए वापस गोपालगंज।
1: चौथा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, गुवाहाटी, माँ कामाख्या धाम, दार्जिलिंग, सिलीगुड़ी, गंगटोक, जनकपुर, अरेराज होते हुए वापस गोपालगंज।
0: गोपालगंज जिले के श्रद्धालु अब घर बैठे अपनी तीर्थ यात्रा के लिए वाहन बुक करा सकते हैं।
1: बिचौलियों से बचे और सीधे हमारे कार्यालय या बुकिंग नंबर पर संपर्क करें।
0: बुकिंग नंबर 9155548507 या 9162933538।
1: हेल्पलाइन नंबर 9934498845।
0: दीपक राज टूर एंड ट्रेवल्स, मुख्य कार्यालय चिराई घर पेट्रोल पंप के पास गोपालगंज, उपशाखा NH27 काली स्थान बंजारी गोपालगंज।
1: बोलबम हर हर महादेव।
2: अपने जिले के मशहूर डॉक्टर जे शरण MD फिजिशियन अब बैठ रहे हैं सुबह 10 बजे से आशा मेडिको जनता सिनेमा रोड गोपालगंज, और डॉक्टर जे शरण जी शाम 5 बजे से 7 बजे तक बैठ रहे हैं अपने निवास स्थान शबनम होटल के पीछे आजाद नगर गोपालगंज।
3: डॉक्टर साहब के यहाँ पर्ची का नंबर मोबाइल से भी लगाया जा सकता है।
4: आशा मेडिको में किसी भी प्रकार की लिखी दवाएं मिलती है, मोबाइल से दवा का ऑर्डर भी किया जा सकता है। मोबाइल नंबर है 7545-67666।
5: जो लोग डायबिटीज से परेशान हैं, वो डरे नहीं, परहेज करे नहीं। वैद्य SP त्यागी जी आयुर्वेदिक दवा द्वारा शुगर यानी डायबिटीज का इलाज कम खर्च में सब कुछ खाते हुए सफलता पूर्वक कर रहे हैं। आप भी दवा खा कर इलाज करा कर निराश एवं परेशान हो गए हैं तो एक बार अवश्य मिले वैद्य SP त्यागी जी से। डायबिटीज के अलावा और सब बीमारी का इलाज, जैसे
6: सभी प्रकार के नशा जैसे शराब, टेबलेट, इंजेक्शन, सिरप, गांजा, स्माइक के इलाज और गठिया, टीका, पथरी, कमर दर्द, घुटना दर्द, दमा, मिर्गी, दाद, दिनाए और सभी चर्म रोग एवं लिकोरिया, मासिक खराबी, बवासीर, पेट रोग, शुगर, गैस्ट्रिक, शीघ्र पतन, शुक्राणु में कमी, नपुंसकता, धातु चिंता और चर्म रोग में दाग, दिनाए, खुजली, एक्जिमा, सोराइसिस तथा
5: पथरी इत्यादि सभी रोगों का इलाज वैद्य SP त्यागी जी आयुर्वेदिक दवा द्वारा सफलता पूर्वक करते हैं।
7: वैद्य SP त्यागी जी से मिलने का पता
5: प्रत्येक शनिवार गोपालगंज बस स्टैंड थावे रोड भी मार्केट के बगल में कृष्णा जी के मकान में।
7: अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 99554943
5: और 9097160602।
8: अरे माँ, ये दांत का दर्द तो जान ले लेगा, क्या करूँ?
1: अब चिंता छोड़िए, गोपालगंज में है महावीर डेंटल एंड मैक्सिलोफेशियल ट्रॉमा केयर, मल्टी स्पेशलिटी डेंटल और फेस क्लिनिक, जहाँ दांत, जबड़े और चेहरे से जुड़ी हर समस्या का आधुनिक इलाज उपलब्ध है।
9: यहाँ सेवा दे रहे हैं गोपालगंज के फर्स्ट MDS डॉक्टर पल्लव राज, वरिष्ठ जबड़ा एवं फेस सर्जन और कैंसर रोग विशेषज्ञ, साथ में डॉक्टर अभिलाषा अग्रवाल, दंत एवं मुख रोग विशेषज्ञ और कॉस्मेटिक डेंटल सर्जन।
1: यहाँ टेढ़े मेढ़े दांत, रूट कैनाल, चेहरे और मुंह से जुड़ी सभी समस्याओं का विशेषज्ञ इलाज किया जाता है।
9: ध्यान दे, आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए टूटे हुए जबड़े और मुंह का कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का मुफ्त इलाज उपलब्ध है।
1: पता शनिवार और रविवार महावीर मेडिकल हॉल, अम्बेडकर चौक, हॉस्पिटल रोड, गोपालगंज। अन्य दिन केडिया मैक्सिलोफेशियल एंड कॉस्मेटिक केयर, मुंशी प्रेमचंद पार्क के पास, बेतिया हाता, गोरखपुर।
9: हर दिन दोनों क्लिनिक पर डॉक्टर पल्लव राज और उनके विशेषज्ञ टीम द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है।
1: संपर्क करें 84710309 या 9765665750।
10: नमस्कार, रेडियो रिमझिम से प्रस्तुत है स्थानीय हालचाल। पहले मुख्य हालचाल। जिले के 9 प्रखंडों में खुला राजकीय डिग्री कॉलेज, मुख्यमंत्री ने किया उद्घाटन। स्कूल वैन में फंसकर 1.5 किलोमीटर तक घसीटता रहा मासूम बच्चा। 2 कुख्यात अपराधियों पर पुलिस ने जारी किया 50,000 रुपए का इनाम। ज्वेलरी की दुकान में लूट करने वाले अपराधियों को पुलिस ने दबोचा और जिला विकास समन्वय समिति की हुई बैठक। स्थानीय हालचाल के इस अंक के साथ मैं अनिकेत मिश्र, अब हालचाल विस्तार से। ग्रेजुएशन करने के लिए अब बच्चों को दूर नहीं जाना पड़ेगा। सरकार ने जिले के 9 प्रखंडों में राजकीय डिग्री कॉलेज की शुरुआत कर दी। आज मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने पटना से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पूरे बिहार में 200 से अधिक डिग्री कॉलेज की शुरुआत की, जिसमें गोपालगंज जिले को भी 9 डिग्री कॉलेज मिले हैं। बताया जा रहा है कि इस दौरान पंचदेवरी में डीएम समीर सौरभ और बिहार सरकार के मंत्री सुनील कुमार ने डिग्री कॉलेज का उद्घाटन किया। सिधवलिया और बैकुंठपुर में शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी कार्यक्रम में मौजूद रहे। अब डिग्री कॉलेज के शुभारंभ होने से ग्रामीण छात्रों को घर के पास ही ग्रेजुएशन की सुविधा मिल सकेगी। उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने की दिशा में सरकार का यह बड़ा कदम माना जा रहा है। छात्रों और अभिभावकों में इसको लेकर खुशी का माहौल दिखाई दे रहा है। गोपालगंज के जादोपुर मोड़ पर एक बड़ा हादसा हो गया। बताया जा रहा है कि मेरिडियन द स्कूल के एक वैन में 11 साल का एक बच्चा फंस गया और वैन चालक लगातार गाड़ी चलाता रहा और यह बच्चा गाड़ी में फंसकर घसीटता रहा। 1.5 किलोमीटर तक इस गाड़ी में बच्चे को घसीटा गया। ड्राइवर को जानकारी नहीं हुई। स्थानीय लोगों ने जब देखा तो लोग पीछे पीछे दौड़ने लगे, चिल्लाने लगे। इसके बाद लगभग 1.5 किलोमीटर दूर जाकर गाड़ी चालक ने गाड़ी रोका और वहां से फरार हो गया। फिर स्थानीय लोगों ने काफी मशक्कत के बाद इस मासूम बच्चे को जो गाड़ी में फंसा था उसको वहां से निकाला गया और हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। बच्चे का इलाज चल रहा है। यह बच्चा नगर थाना क्षेत्र के वार्ड नंबर 4 के विजय गुप्ता का 11 वर्षीय पुत्र ईशान कुमार बताया जा रहा है। यह स्कूल में पढ़ने के बाद लौट रहा था और वैन से उतरते समय यह उसमें फंस गया और वैन चालक गाड़ी लेकर जाने लगा। काफी दूर तक गाड़ी में यह बच्चा घसीटता रहा और स्थानीय लोग गाड़ी के पीछे पीछे दौड़ते चिल्लाते रहे। फिलहाल बच्चे के परिजन काफी परेशान हैं और इसका इलाज सदर हॉस्पिटल में चल रहा है। पुलिस अधीक्षक विनय तिवारी ने कुख्यात अपराधियों को गिरफ्तार करने के लिए अभियान शुरू किया है। इसी कड़ी में जिले के 2 कुख्यात अपराधियों पर पुलिस ने 50,000 रुपए का इनाम घोषित किया है। इसमें एक कुख्यात आरोपी मन्नू यादव है। यह ऊंचका गांव थाना क्षेत्र के भगवान टोला गांव के ललन यादव का पुत्र है। पुलिस ने इसकी गिरफ्तारी में पुलिस को सहयोग करने वाले व्यक्ति को 50,000 रुपए का इनाम देने की घोषणा की है। पुलिस अधीक्षक ने कहा है कि सूचना देने वाले की पहचान गुप्त रखी जाएगी। इसके लिए कोई भी व्यक्ति स्थानीय थाना या पुलिस अधीक्षक को भी फोन कर इसकी सूचना दे सकता है। मनु यादव पर लूट, डकैती सहित कई गंभीर आपराधिक मामले दर्ज हैं और यह लंबे समय से फरार चल रहा है। इसके अलावा कुख्यात अपराधी मनिंदर मिश्रा पिता छेदी मिश्रा, जो कटिया थाना क्षेत्र के सुल्तानपुर का रहने वाला है, इस पर भी पुलिस ने 50,000 रुपए का इनाम घोषित किया है। मनिंदर मिश्रा के विरुद्ध भी हत्या, लूट, डकैती, चोरी सहित कई अन्य गंभीर आपराधिक मामले कटिया, भोरे, विजयपुर तथा नगर थाना गोपालगंज में दर्ज है। यह अभी लंबे समय से फरार चल रहा है। पुलिस ने कहा है कि जो भी व्यक्ति इसकी गिरफ्तारी में पुलिस की सहयोग करेगा, पुलिस को सूचना देगा, उसे 50,000 का इनाम दिया जाएगा और उसकी पहचान भी गुप्त रखी जाएगी। भोरे थाना के जगतौली ओपी क्षेत्र के लाला छापर बाजार के दीपक ज्वेलर्स में हुई लूट कांड में शामिल अपराधियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि इस लूट कांड में पुलिस ने अनुसंधान करते हुए एक विशेष टीम का गठन किया था। इस कांड में पहले भी 4 अभियुक्तों की गिरफ्तारी हो चुकी है। इस बार फिर से पुलिस ने इस मामले में भोला अंसारी उर्फ बाबूदीन अंसारी, जो देवरिया जिला के भाट परानी के खड़ेसर का निवासी है, इसको गिरफ्तार किया है और ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह उर्फ अंकित सिंह, यह भी उत्तर प्रदेश देवरिया के बनकटा थाना क्षेत्र के जंजीरहा का रहने वाला है, इसको भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ के दौरान इन्होंने इस लूट कांड में अपनी संलिप्तता स्वीकार की है। आज इन दोनों आरोपियों को पुलिस ने न्यायिक हिरासत में भेज दिया और इस कांड में आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है। आज जिला पदाधिकारी समीर सौरभ की अध्यक्षता में जिला विकास एवं समन्वय समिति की बैठक की गई। इसमें विभिन्न विभागों की विकास योजनाओं तथा लंबित परियोजनाओं की अद्यतन प्रगति की समीक्षा की गई। इसमें उप विकास आयुक्त, अपर समाहर्ता, वर्जन पदाधिकारी और राजस्व शाखा प्रभारी सहित तमाम जिला स्तरीय पदाधिकारी भी उपस्थित रहे। तो वहीं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जिले के सभी प्रखंडों के प्रखंड विकास पदाधिकारी और अंचलाधिकारी भी जुड़े हुए थे। आज एक दिवसीय ग्रामीण प्रशिक्षण शिविर कार्यशाला का आयोजन किया गया। इसका उद्घाटन श्रम अधीक्षक ने किया। प्रशिक्षण शिविर में उपस्थित विभिन्न पंचायतों से आए श्रमिकों को न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948, बिहार भवन एवं अन्य स्वनिर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड के अंतर्गत संचालित योजनाओं की जानकारी, बिहार शताब्दी असंगठित कार्य क्षेत्र कामगार एवं शिल्पकार सामाजिक सुरक्षा योजना संशोधन 2024, बिहार प्रवासी मजदूर दुर्घटना अनुदान योजना 2008, बाल श्रम अधिनियम 1986 के संबंध में भी जानकारी और सुझाव दिया गया। जिले के 234 पंचायतों से आए हुए श्रमिकों को नाश्ता एवं भोजन के साथ एक दिन की मजदूरी भी 413 रुपए एवं मार्ग व्यय अधिकतम 100 रुपए की दर से भुगतान भी किया गया है। जिलाधिकारी ने भूमि उपलब्धता के कारण लंबित योजनाओं का शीघ्र समाधान करने, भू अर्जन की प्रक्रिया में तेजी लाने, पंचायत सरकार भवन, आंगनबाड़ी केंद्र, छात्रावास, विवाह मंडप, स्वास्थ्य संस्थानों एवं अन्य सार्वजनिक भवनों के निर्माण कार्यों में तेजी लाने का निर्देश दिया। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को समयबद्ध कार्रवाई करते हुए निर्धारित समय सीमा के भीतर प्रगति प्रतिवेदन उपलब्ध कराने को कहा। आपूर्ति विभाग की समीक्षा के दौरान जन वितरण प्रणाली की दुकानों का भी नियमित निरीक्षण किया गया। खाद्यान्न वितरण की निगरानी तथा अनियमितता पाए जाने पर कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित करने का भी निर्देश दिया गया। गोपालपुर थाना की पुलिस ने 399 लीटर से अधिक देशी विदेशी शराब को बरामद किया और 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। एक बोलेरो और एक मोटरसाइकिल भी जब्त की गई। बताया जा रहा है कि पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर सिपाया पुल के पास छापेमारी की और यहां से शराब के इस कंसाइनमेंट को पकड़ा गया। इसमें 381 लीटर देशी और 18 लीटर विदेशी शराब है। बताया जा रहा है कि इस कार्रवाई के दौरान मोहम्मद आस्तिक, पिता मोहम्मद हसीन, साकिन कमला मोहल्ला, बनारस बैंक चौक, जेल चौक, जिला मुजफ्फरपुर को गिरफ्तार किया गया और बलिंदर यादव, पिता राजेंद्र गोड़ तथा सूरज कुमार, पिता प्रभु शाह, ये दोनों मुजफ्फरपुर के मीनापुर के निवासी हैं, इन्हें भी गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने एक मोटरसाइकिल और इनकी एक बोलेरो गाड़ी और शराब को जब्त करने के बाद आज तीनों आरोपियों को उत्पाद अधिनियम के तहत न्यायिक हिरासत में भेज दिया। कटिया थाना की पुलिस ने भी 95 लीटर देशी शराब के साथ 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि पुलिस ने वाहन जांच के दौरान करकटहा नहर के पास छापेमारी की, जहां मोटरसाइकिल से 90 लीटर देशी शराब मिली। इस मामले में संदीप पाल, पिता बंका पाल, साकिन मलवा बार बन रही थाना बघौज घाट जिला देवरिया को गिरफ्तार किया गया। इसके मोटरसाइकिल को भी जब्त किया गया। वहीं गुप्त सूचना के आधार पर खुदी छापर गांव में भी छापेमारी की गई। यहां नथुनी चौहान, स्वर्गीय गणेश चौहान, थाना कटिया, जिला गोपालगंज को भी 5 लीटर देशी शराब के साथ गिरफ्तार किया गया। दोनों अभियुक्तों को आज उत्पाद अधिनियम के तहत न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। इधर उत्पाद विभाग की पुलिस ने भी कोट नरहवा में छापेमारी की और यहां सुकुल कुमार राम को शराब के साथ पकड़ा गया। इसके पास से 13 लीटर से अधिक देशी शराब मिली है। इसकी मोटरसाइकिल को भी जब्त किया गया है। यह आरोपी गोपालपुर थाना क्षेत्र के धर्मनाथ राम का पुत्र बताया जा रहा है। पुलिस अब इसे भी पूछताछ के बाद न्यायिक अभिरक्षा में भेज रही है। जादोपुर थाना की पुलिस ने भी पॉक्सो मामले में फरार चल रहे प्राथमिकी अभियुक्त बादल कुमार राम को गिरफ्तार कर लिया। यह आरोपी जादोपुर के पताहरा गांव के दशरथ राम का पुत्र बताया जा रहा है। इस आरोपी को सिवान जिले के लकड़ी नबीगंज से पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी कर गिरफ्तार कर लिया और इसे आज पूछताछ के बाद न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। और आज के मौसम का तापमान, गोपालगंज में न्यूनतम 26 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 37 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। हालचाल के इस अंक को आप हमारे YouTube, Facebook और Instagram पर भी सुन सकते हैं। इसके लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। साथ ही प्ले स्टोर से आप रेडियो रिमझिम के एप्लीकेशन को डाउनलोड कर दुनिया के किसी भी कोने में अपने मोबाइल फोन से ही रेडियो रिमझिम की सेवा का लाभ उठा सकते हैं। अंत में मुख्य हालचाल एक बार फिर। जिले के 9 प्रखंडों में खुला राजकीय डिग्री कॉलेज, मुख्यमंत्री ने किया उद्घाटन। स्कूल वैन में फंसकर 1.5 किलोमीटर तक घसीटता रहा मासूम बच्चा। 2 कुख्यात अपराधियों पर पुलिस ने जारी किया 50,000 रुपए का इनाम। ज्वेलरी की दुकान में लूट करने वाले अपराधियों को पुलिस ने दबोचा। और जिला विकास समन्वय समिति की हुई बैठक। इसके साथ ही स्थानीय हालचाल का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
11: राधा, तुमने अपने चाचा जी के अपेंडिक्स का ऑपरेशन कहाँ कराया था?
12: सम्राट हॉस्पिटल में, वो भी कम से कम खर्च में।
13: क्या आप भी ऑपरेशन कराना चाहते हैं? तो घबराए नहीं, आज ही आए सम्राट हॉस्पिटल, जहाँ है डॉक्टर कुंदन सिंह MBBS MS जनरल एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जन, जो सदर हॉस्पिटल गोपालगंज में भी सेवा देते हैं।
14: हमारे यहाँ दूरबीन विधि से भी ऑपरेशन किया जाता है।
13: आज ही हर तरह के सफल ऑपरेशन के लिए आए सम्राट हॉस्पिटल, जो है कमला राय कॉलेज के पश्चिम आरआर रोड गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 94704-34468 पे।
15: कूल्हा एवं घुटना प्रत्यारोपण, आर्थ्रोस्कोपिक या दूरबीन विधि से घुटने के टूटे लिगामेंट की सर्जरी, एलिजारोव रशियन विधि से हाथ पैर की लंबाई बढ़ाना, स्पाइन सर्जरी और हड्डी जोड़ की सभी समस्याओं का समाधान।
16: मिले वरिष्ठ सर्जन डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से। संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एवं सर्जिकल सेंटर, रुस्तमपुर ढाला गोरखपुर।
15: आज ही संपर्क करें 7388894700 या 9198886973।
17: अब बेटा, बहू घर आने वाली है, सोच रही हूँ कुछ सोने की नई ज्वेलरी ले ली जाए, पर भरोसे की दुकान।
18: माँ, अब घबराइए नहीं, चलते हैं मास्टर साहब की जेवर की दुकान, गुप्ता ज्वेलर्स, BIS अप्रूव्ड, शानदार डिजाइन और असली ज्वेलरी की गारंटी।
19: अपने सपनों की खूबसूरती के लिए गुप्ता ज्वेलर्स ही चुने। सिल्वर, गोल्ड या डायमंड, हर ज्वेलरी BIS अप्रूव्ड और किफायती दाम के साथ। विश्वास की परंपरा, नई डिजाइन का खजाना, बस गुप्ता ज्वेलर्स में।
1: आज ही आए गुप्ता ज्वेलर्स, मास्टर साहब की जेवर की दुकान, चंद्रगोखो लोड गोपालगंज। मोबाइल नंबर 94395461 या 97076575।
20: ये सफेद दाग बढ़ता ही जा रहा है, लोगों की नजरें, बातें, सब कुछ बदल गया है।
21: अरे क्यों घबराती हो, गोपालगंज में एक जगह है जहां लोग सिर्फ हिम्मत ही नहीं, उम्मीद भी लेकर लौटते हैं।
1: हाँ, अब सफेद दाग का समाधान है। चरक सफेद दाग स्पेशलिस्ट डॉक्टर इरशाद अहमद द्वारा एडवांस्ड एक्यूपंक्चर मशीन टेक्निक से
21: सिर्फ 1 से 2 सप्ताह में रोग में राहत महसूस करें। आज ही संपर्क करें डॉक्टर इरशाद अहमद, ल्यूको क्लिनिक, हर शनिवार, समय सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक।
1: पता, जंगलिया मोहल्ला, नूर मेडिकल के पास, गोपालगंज। कॉल करें 94512-11001।
22: डॉक्टर अनुज मिश्रा, न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज। ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
23: कहते हैं राजा का बेटा पैदा होते ही राजकुमार कहलाता है। उसे राजा बनने के लिए कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती। फिल्म इंडस्ट्री में भी लोग यही मानते हैं कि डायरेक्टर्स या एक्टर्स के बच्चे बचपन से ही स्टार्स होते हैं, उन्हें कोई स्ट्रगल करने की जरूरत नहीं पड़ती। जबकि सच कुछ और ही है। आज आपको एक ऐसे एक्टर से मिलवाएंगे जिन्होंने देश के सबसे सफलतम डायरेक्टर के घर जन्म लेने के बावजूद बॉलीवुड में एंट्री स्ट्रगल करके अपने टैलेंट के दम पर ली और अपनी डेब्यू फिल्म से ही खुद को साबित किया। ये है मेरी कहानी में आज हमारे साथ हैं।
24: हाय, मैं हूँ वरुण धवन।
23: आइए सुनते हैं वरुण धवन की साधारण सी शुरुआत के बारे में।
24: मैं पैदा हुआ था एक 1-बेडरूम हॉल किचन में। सो मैं, मेरा भाई, मेरे माँ बाप उसी घर में रहते थे। मेरे पिताजी इतने सक्सेसफुल नहीं थे उस वक्त। फिर जब उनकी तरक्की हुई और जैसे जैसे उनको सक्सेस मिला, वी कैप शिफ्टिंग। पर जब मैं छोटा था तो बहुत ही बेसिक लाइफ होती थी। मैं ऑटो से स्कूल जाता था, स्कूल बस में जाता था। मेरा जो फेवरेट रेस्टोरेंट होता था वो शिव सागर होता था, अपने दोस्तों के साथ जाता था। और मतलब स्लीप ओवर्स एट फ्रेंड्स हाउसेस एंड टिफिन कभी कभी दोस्तों के साथ शेयर करते. सो आई थिंक लाइक एनी नॉर्मल जो बॉम्बे के लड़के हैं उनकी तरह मेरी जो परवरिश वैसी हुई थी. तो जब बड़ा होता रहा, मैं फिफ्थ स्टैंडर्ड सिक्स स्टैंडर्ड में पहुंचा और लोग ज्यादा पूछने लगे कि तुम किसके बेटे हो, अरे यू आर दिस डायरेक्टर सन, दैट्स व्हेन आई काइंड ऑफ रियलाइज दैट ही इज अ फेमस मैन. राजा बाबू रिलीज हुई थी तब मुझे रियलाइज हुआ था. एक वॉचमैन ने मुझे बोला था कि मेरे लिए टिकट दिला दो ना भैया, बहुत अच्छी पिक्चर. ऐसे कौन सी पिक्चर, आई डिडंट, क्योंकि उसके पहले तो मैं बहुत छोटा था तो मुझे रियलाइज नहीं होता था, बट उसके बाद मुझे पता चला. और स्कूल में मैं अक्सर लोगों को अपने पिताजी का नाम बताता भी नहीं था.
0: अपनी एक से बढ़कर एक कॉमेडी फिल्म्स के जरिए बॉलीवुड पर राज करने वाले डेविड धवन को डायरेक्टर के तौर पर पूरी दुनिया जानती है. आइए आज वरुण धवन की नजरों से उन्हें एक पिता की भूमिका में जानते हैं.
24: वो बहुत ही एक हसमुख किस्म के इंसान है.

0: दूर ना जाए उनसे. उनके जो दोस्त है, उनके गिने चुने आई थिंक 3-4 दोस्त है जो वो सुबह सुबह फोन करते हैं. जैसे रूमी जाफरी है, उनको रोज सुबह शायद 8 बजे 7 बजे फोन करेंगे अभी भी और बोलते तो उठा नहीं क्या. सो आई थिंक ही इज नॉट चेंज्ड मच. वो पार्क कैथलिक नहीं है, पर जब वो छोटे थे तो हमारे जो नेबर्स होते थे दिल्ली में, दे वो कैथलिक, दे वो ब्रिटिशर्स, तो वो उनके घर पे हमेशा जाता था खेलने के लिए. सो दे नेम्ड हिम डेविड एंड दैट पेट नेम स्टक ऑन. अदरवाइज उनका असली नाम रजिंद्र है. जिस तरीके से उन्होंने सक्सेस देखी है वो शायद बहुत कम लोग जिंदगी में देख पाते इतने कंसिस्टेंट लेवल पे. आई मीन ही हैज अ सक्सेस रेट ऑफ इजीली 75-80% एंड ही हैज मेड 45 फिल्म्स. बहुत कम डायरेक्टर मतलब 10 फिल्मों के ऊपर बना देते हैं. ही अलोन हैज मेड 45. तो उस हिसाब से टू कीप अप टू दैट सक्सेस लेवल इज अ बिग प्रेशर एंड कंसिस्टेंटली एंटरटेनिंग एन ऑडियंस अ नेशन, वही मेरे जहन और मेरे दिमाग.
1: मासूम आंखों वाले वरुण धवन बचपन में अपनी शरारतों के लिए काफी पिटे हैं. उनकी माने तो उनके घर वाले और उनके करीबी दोस्त आज भी उन्हें ना तो सीरियसली लेते हैं, ना ही इम्पोर्टेंस देते हैं और ना ही उन्हें स्टार मानते हैं.
0: स्कूल में तो बहुत मस्ती की है, बहुत बहुत ज्यादा ही मस्ती की है. कभी बंक किया है, कभी ये किया है, कभी कभी जो हम लोग के जो स्पोर्ट्स पीरियड होते थे तो सब जो बॉल्स होते थे, क्रिकेट बॉल, फुटबॉल, ऑल दीज बॉल्स वर लॉक्ड इनटू वन प्लेस. तो लंच ब्रेक के बाद मेरा और एक दोस्त होता था मयूर, हम लोग छुप जाते थे और वो खोल लेते थे जितने भी बॉल्स थे. हम लोग वो मतलब वो दरवाजा खोल लेते और वो सारे बॉल्स नीचे ग्राउंड पे आ जाते एंड हम लोग हाइड करते थे, देखते थे. जब टीचर वो देखता था वो कैसे खुला, हम लोग ने एक चाबी चुरा ली थी एक्चुअली, तो जस्ट टू सी द टीचर कि उन्होंने कैसे पकड़ा वो बॉल. मतलब जब उन्होंने देखा कि ये दरवाजा खुला है उनका रिएक्शन देखते हैं, हम लोग हंसते थे. फिर टीचरों के साथ बहुत मस्ती करते थे हम लोग.

0: ये सुनिए,
1: आपके शहर गोपालगंज में खुल गया है श्री कृष्णा साड़ी,
2: जिसमें आपको मिल रहा है सस्ते दामों में एक से बढ़कर एक डिजाइनों के लहंगा, फैंसी साड़ी, लेडी सूट, क्रॉप टॉप एवं कुर्ती।
1: श्री कृष्णा साड़ी दुकान है केडिया भवन, केडिया लेन, मेन रोड, गोपालगंज।
2: एक बार सेवा का मौका जरूर दें श्री कृष्णा साड़ी को।
3: नई बाइक का सपना अब होगा पूरा, वो भी सबसे कम दाम में।
4: इस सीजन अपने घर लाइए हीरो की नई चमचमाती बाइक या स्कूटर श्री गोपाल मोटर्स से, वो भी ऑन रोड रेट पर।
3: श्री गोपाल मोटर्स गोपालगंज में पाए स्प्लेंडर प्लस सिर्फ 86,168 रुपए में, HF डिलक्स सिर्फ 75,405 रुपए में, ग्लैमर एक्स सिर्फ 97,456 रुपए में, एक्सट्रीम 125R सिर्फ 110,881 रुपए में, इंश्योरेंस और रजिस्ट्रेशन के साथ।
4: विजिट कीजिए श्री गोपाल मोटर्स, NH 27 बंजारी, चैन पट्टी, गोपालगंज,
3: या अभी कॉल कीजिए 92899225 67 या 97746861।
5: ठक ठक।
6: काजी, आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
7: अच्छा मिला ही नहीं।
6: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें, अब चलिए सीधे कमल श्री में।
2: जी हाँ, कमल श्री, याद रखे सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
6: आप भी आए कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, बारी मार्केट, गोपालगंज।
2: याद रहे सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ, सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है।
8: अरे माँ, ये दांत का दर्द तो जान ले लेगा, क्या करूँ?
3: अब चिंता छोड़िए, गोपालगंज में है महावीर डेंटल एंड मैक्सिनोफेशियल ट्रॉमा केयर, मल्टी स्पेशलिटी डेंटल और फेस क्लिनिक, जहाँ दांत, जबड़े और चेहरे से जुड़ी हर समस्या का आधुनिक इलाज उपलब्ध है।
4: यहाँ सेवा दे रहे हैं गोपालगंज के फर्स्ट MDS डॉक्टर पल्लव राज, वरिष्ठ जबड़ा एवं फेस सर्जन और कैंसर रोग विशेषज्ञ, साथ में डॉक्टर अभिलाषा अग्रवाल, दंत एवं मुख रोग विशेषज्ञ और कॉस्मेटिक डेंटल सर्जन।
3: यहाँ टेढ़े मेढ़े दांत, रूट कैनाल, चेहरे और मुंह से जुड़ी सभी समस्याओं का विशेषज्ञ इलाज किया जाता है।
4: ध्यान दे, आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए टूटे हुए जबड़े और मुंह का कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का मुफ्त इलाज उपलब्ध है।
3: पता, शनिवार और रविवार महावीर मेडिकल हॉल, अम्बेडकर चौक, हॉस्पिटल रोड, गोपालगंज। अन्य दिन केडिया मैक्सिलोफेशियल एंड कॉस्मेटिक केयर, मुंशी प्रेमचंद पार्क के पास, बेतिया हाता, गोरखपुर।
4: हर दिन दोनों क्लिनिक पर डॉक्टर पल्लव राज और उनके विशेषज्ञ टीम द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है।
3: संपर्क करें 84710309 या 97665750।
6: अरे मुन्नी, तुम आ गई, चल मेरा कान का झुमका ला।
9: ओ माय गॉड, आज फिर से भूल गई।
6: मैं तुमसे कितनी बार बोली हूँ कि अब महिलाओं के सारे सामान एक ही छत के नीचे नाइस गैलेक्सी में मिल रहा है।
9: सॉरी यार, कल पक्का नाइस गैलेक्सी में जाऊंगी।
2: महिलाओं की स्पेशल दुकान नाइस गैलेक्सी,
9: आर्टिफिशियल फ्लावर, आर्टिफिशियल गहने, सौंदर्य प्रसाधन, गृह कार एवं गृह सजा के सामान के साथ गिफ्ट, फूलों का गुलदस्ता एवं चांदनी का विशाल भंडार हमारे यहाँ मौजूद है।
2: तो अगर आपको कुछ अच्छा, कुछ अलग चाहिए हो तो आज ही आए नाइस गैलेक्सी, हजियापुर रोड, एक्सिस बैंक के सामने, तड़कुल के पास, गोपालगंज।
9: याद रहे, शादी विवाह, जन्मदिन या किसी भी शुभ अवसर पर गिफ्ट और सजाने का सारा सामान थोक एवं खुदरा मिलता है।
2: साथ ही प्लास्टिक के सारे सामान भी उपलब्ध हैं।
10: कहानी ये है मेरी कहानी।
11: ये हमारे घर में एक नया कंप्यूटर आया था, मैं भी बहुत एक्साइटेड हो गया कि कंप्यूटर आया, तो मैं भी बैठ गया। तो उसका जो स्पेस बार होता था ना, तो मैंने वो निकाल दिया मिस्टेक से। उसी दिन पे जब नया कंप्यूटर आया, मैंने स्पेस बार उतारा एंड दे लॉस्ट इट, मतलब पूरी फैमिली, मम्मी पापा भैया, मतलब जो नौकर भी था वो भी मारने को आ गया था मुझे। तो मैं अकेले बेड पे ऐसे खड़ा हूँ, भाई ने मेरे को धक्का वक्का मारा है, मम्मी ने मतलब बोला है कि व्हाट आर यू डूइंग, यूज़लेस। उस दिन ही वाज सो एंग्री, मतलब फुल आईज आर रेड एंड वो उन्होंने ऐसे किया और मैंने उनको देखा। उस दिन मुझे पता चला ये कभी मुझे मारेगी नहीं।
12: माई क्लेम टू फेम वॉजंट दैट आई एम डेविड धवन सर, माई क्लेम टू फेम वॉज दैट आई शेयर माई बर्थडे विद सचिन तेंदुलकर। इट वॉज द बिगेस्ट थिंग एवर, क्योंकि टाइम्स ऑफ इंडिया के फ्रंट पेज पे हमेशा वो फोटो आता था कि हैप्पी बर्थडे सचिन, सचिन कटिंग अ केक एंड ऑल माई फ्रेंड्स, तेरा भी बर्थडे। सो इट वॉज लाइक द बिगेस्ट थिंग फॉर मी। आई डोंट थिंक माई पेरेंट्स और माई ब्रदर या कोई भी घर पे जो नौकर भी है, वो लोग रियलाइज नहीं करते कि मैं एक्टर हूँ बाहर, क्योंकि मैं बॉक्सर्स में घूमता रहता हूँ घर में, तो इसको ये लोग को लगता है ये फालतू ही है। अभी इसलिए वही ट्रीटमेंट मिलती है मुझे. मतलब इनफैक्ट वन टू ऑफ माय बेस्ट फ्रेंड्स अमन एंड अंकित आर स्टिल माय फ्रेंड्स, वेरी क्लोज फ्रेंड्स. आई मीन फॉर देम अभी भी जब मैं एक्टर बना हूं तो उनका रवैया तो बिल्कुल सेम टू सेम है. दे डोंट एक्चुअली केयर कि कुछ है या नहीं है, क्योंकि दे नो मी एज द वरुण दट मैं हमेशा से था.
3: अक्षय कुमार और जॉन अब्राहम स्टारर देसी बॉयज फिल्म के डायरेक्टर रोहित धवन वरुण के बड़े भैया हैं. आइए अब सुनते हैं वरुण धवन से उनके बड़े भैया के बारे में.
11: बहुत बहुत करीबी रिलेशनशिप है. मतलब मैं कहूंगा कि जिंदगी में मैं आज कुछ भी हूँ, इट्स आई मीन आई ऑब्वियसली मैं अपने पेरेंट्स को शेयर देता हूँ, पर इट्स बिकॉज ऑफ माई ब्रदर रोहित. वो इतने मॉरलिस्टिक इंसान है. मतलब एक किस्सा है मैं आज बता सकता हूँ. एक बार कुछ मैं आई जस्ट स्टार्टेड गोइंग आउट, तो मैं बाहर जाने लगा था वो टाइम. और आई वाज 16, मैं 16 साल का था. तो मैं रात को बाहर गया था, 1 बजे मेरे दोस्तों ने मुझे वापस भेजा था. मेरा डेडलाइन था 1:30. तो मैंने बोला 30 मिनट है, कुछ करना चाहिए. आई हैड नॉट टच्ड अल्कोहल कुछ नहीं. तो मैं वापस आया तो बिल्डिंग में दो लड़कियां थी, मुझसे बड़ी थी, कुछ 35, मच ओल्ड. उन्होंने बोला कि मतलब बच्चा था मैं, तो दे सेड व्हाई डू कम अप टू आवर प्लेस वी आर हैविंग अ पार्टी एंड ऑल. मैंने बोला कि ठीक है. अभी रात के 4 बज गए. मैं बहुत खुश था कि मतलब इतने बड़े उम्र के लोग हैं और मेरे को मतलब लड़कियां मुझे क्यूट बोल रही है, ये हो रहा है. तो मैं भूल गया, मेरा फोन भी ऑफ हो गया था. मैंने बोला बिल्डिंग में ही हूँ शायद, सब लोग सो गए हैं, मैं आराम से आई स्नीक इन एंड ऑल. 4 बजे टक टक दरवाजा हुआ और वो लड़की आके बोलती है योर ब्रदर्स देयर. मेरा ओ गॉड. तो मैं बाहर आया तो मैं ब्रदर वो लड़की के सामने थैंक यू. दरवाजा बंद हुआ, मैं बोला भैया आई एम सॉरी, मम्मी पापा अवेक. वो चलता गया या सेकंड फ्लोर पे आए. मैं बोला दे डोंट टेल देम एनीथिंग, प्लीज कुछ मत बताना इन लोग. बोला ठीक है. ऐसे हम लोग चढ़ते गए, वी लिव्ड ऑन द 6th फ्लोर. उन्होंने मुझे 6 चाटे मारे. अब मेरे को लगा है कि मेरे भाई ने मेरे को चाटा मारा तो मेरे पेरेंट्स को कुछ बोलेगा नहीं. मतलब मार भी दिया है. मैंने बोला कुछ एक्सक्यूज बना ले, आखिर में तो भाई है ना. He was with a girl in the room alone. I can't take this. He's spoiling my name. मैं खाली ऐसे देखता रहा ऊपर से. मेरे को बहुत बुरा लगा. नेक्स्ट डे माई ब्रदर केम एंड टोल्ड मी, तूने जो किया है बहुत गलत किया, इसलिए नहीं क्योंकि यू वेंट एंड एंजॉयड, इसलिए क्योंकि यू डिडंट एक्सप्लेन योर फैमिली वे यू वेंट. तेरे को जो करना है जिंदगी में कर, जितने भी गलत काम करने कर, पर मुझको पहले बोल के कर.
3: अपने पिता को खो देने का ख्याल मात्र भी किसी इंसान को अंदर से हिला कर रख देता है. वरुण की जिंदगी में भी एक ऐसा हादसा हुआ था जब उन्होंने अपने पिता को अपनी फिल्म के सेट पर ही लगभग खो दिया था. ये बात है मैं तेरा हीरो फिल्म की शूटिंग के वक्त की.
11: मतलब लिटरली इट वाज अ मैटर ऑफ सेकंड्स. उन्होंने कहा कि आई एम गोइंग एंड आई वाज सो मतलब यू डोंट थिंक एट दैट टाइम क्या होने वाला है. आई वाज लाइक नो पापा, ऐसा पापा स्टॉप टॉकिंग रबिश, कम ऑन वी विल गोवा. मैंने लिटरली ऐसे बोला था, कुछ ड्रामेटिक कुछ नहीं हुआ था. वॉट एवर आई हैव सीन ऑफ डेथ, मतलब मेरे सामने किसी को ऐसा कुछ हुआ नहीं है कभी. तो मैंने जितना भी देखा है वो देखा है टीवी पर, देखा है पिक्चरों में देखा है, तो या वॉट एवर रेड. तो मतलब लोग चिल्लाते विलाते कुछ नहीं हुआ था. आई एम नॉट जोकिंग, ही पास्ड आउट, देयर वाज साइलेंस, देयर वर अराउंड कुछ 50 लोग थे उधर सेट पे अगल बगल, सब शांत है. एवरीवन बिलीव्ड एट दैट मोमेंट दैट ही इज गॉन, एवरीवन. एंड मैं उधर खड़ा हूँ और अंदर से मैं अपने आप को बोल रहा हूँ कि कुछ कर कुछ कर कुछ कर. मैं हिल नहीं पा रहा था, मैं कुछ कर नहीं पा रहा था. मेरे अंदर से ये अजीब थिंग्स स्टार्टेड फ्लैशिंग दैट यू नो दैट ही इज गॉन एंड समथिंग हैज हैपेंड. एंड आई समहाउ जस्ट ओपनड हिज माउथ एंड पुट माय फिंगर्स टू मेक हिम वॉमिट. I don't know why I did it. I till today, मतलब मैंने कभी I've gone back and I've tried to think कि मैंने ऐसा क्यों किया, क्यों मुंह खुला, क्यों डाला. किसी ने मेरे को बोला नहीं, कोई डॉक्टर नहीं था, क्या कुछ नहीं था. It's just a I don't know. I think it's a father son thing maybe कि मतलब your what his body needed to do at that point I understood probably. I don't know क्या था. It was almighty and he vomited and he came back because he was choking.

0: तब रामू काका हई इलेक्ट्रिक के इतना सारा सामान कहाँ से खरीद के ले आओ तनी?
1: ये सब सामान संतोष इलेक्ट्रॉनिक से लेके आओ तनी बाबू।
0: अरे ये सामान तो एक नंबर बुझाता और काफी डिजाइनदार भी बा।
1: अरे हाँ बाबू, अपना गोपालगंज में इतना अच्छा दुकान कहाँ बा? संतोष इलेक्ट्रॉनिक्स में सस्ता में एक नंबर के सामान मिलेला।
0: हम तो अपना नौका घरवा खातिर इलेक्ट्रॉनिक के सारा सामान दिल्ली से लेके आवे के सोचत रहनी, लेकिन हम काले संतोष इलेक्ट्रॉनिक्स से जाके अपन पूरा सामान लिया।
1: अरे हाँ बबुआ, संतोष इलेक्ट्रॉनिक्स से लिया, दिल्ली जाके पैसा बर्बाद कर ले से का फायदा?
2: संतोष इलेक्ट्रॉनिक हाउस, जहाँ सस्ते दामों में बेस्ट क्वालिटी के इलेक्ट्रिक के सारे सामान मिलते हैं।
0: हमारा पता है चिराई घर पेट्रोल पंप के सामने, संतोष फर्नीचर के नीचे, कॉलेज रोड, गोपालगंज।
3: कूल्हा एवं घुटना प्रत्यारोपण, आर्थ्रोस्कोपिक या दूरबीन विधि से घुटने के टूटे लिगामेंट की सर्जरी, एलिजारोव रशियन विधि से हाथ पैर की लंबाई बढ़ाना, स्पाइन सर्जरी और हड्डी जोड़ की सभी समस्याओं का समाधान।
4: मिले वरिष्ठ सर्जन डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से, संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एवं सर्जिकल सेंटर, रुस्तमपुर ढाला, गोरखपुर।
3: आज ही संपर्क करें 7388894700 या 9198886973।
5: कई दिनों से पेट के निचले हिस्से में बहुत दर्द है, रिपोर्ट में पथरी और बच्चेदानी की भी दिक्कत बताई गई है।
6: डॉक्टर ने कहा है ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन जगह ऐसी हो जहां अच्छा सर्जन भी हो और महिला डॉक्टर भी।
7: अब हर चिंता का समाधान है शल्यम हॉस्पिटल,
8: अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूरा भोजपुरवा में, NH 27 पर दक्षिण साइड, गोपालगंज में स्थित शल्यम हॉस्पिटल।
7: यहां आयुष्मान कार्ड से 5 लाख रुपए तक मुफ्त ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
8: सर्जरी विभाग हो या स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग, इलाज होता है अनुभवी विशेषज्ञों द्वारा।
7: डॉक्टर मनोज कुमार गुप्ता MBBS MS सर्जरी, लैप्रोस्कोपिक सर्जन, और डॉक्टर डेजी सिन्हा MBBS MD DNB स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
8: शल्यम हॉस्पिटल में उपलब्ध है आधुनिक मशीनें और एक ही छत के नीचे OPD IPD ICU मॉड्यूलर OT अल्ट्रासाउंड, पैथोलॉजी लैब, फार्मेसी और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा।
7: आज ही विजिट कीजिए शल्यम हॉस्पिटल, मल्टी स्पेशलिटी एंड ट्रॉमा सेंटर, RR मोड़ से करीब 800 मीटर पूरा, भोजपुरवा, NH 27, गोपालगंज।
8: कॉल करें 7070-7563 या 7070-7542 या हमारी वेबसाइट पर विजिट करें www.shalyamhospital.com।
9: सोहन, मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे तुरंत अपने भाई को कुछ पैसे भेजने हैं, लेकिन बैंक में तो इतनी लंबी लाइन है कि घंटों लग जाएंगे, और मेरा जियो सिम भी एक्टिवेट नहीं हो रहा, अब मैं क्या करूँ?
10: अरे टीना, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं, चलो मेरे साथ माया क्लासिकल में। आधार और बैंक से आसानी से पैसे निकाला जाता है और किसी भी खाते में तुरंत भेजा जा सकता है बिना किसी झंझट के। और सिम की बात कर रही हो ना, BSNL, जियो, एयरटेल, VI, जो भी चाहिए तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा।
9: मुझे कुछ जरूरी PDF प्रिंट करवाने हैं, वहाँ ये सब हो जाएगा ना?
10: बिल्कुल, माया क्लासिकल में PDF, लेमिनेशन, प्रिंट, फोटो कॉपी सब कुछ मिलेगा। तुम्हें एक धमाकेदार ऑफर भी बताता हूँ, फोटो स्टेट सिर्फ ₹1 प्रति प्रिंट आउट, कम से कम 50 पेज, हर ग्राहक को शानदार गिफ्ट भी मिलता है। माया क्लासिकल में सब कुछ है, माया क्लासिकल सिनेमा रोड, शिव मंदिर के ठीक सामने, गोपालगंज। प्रोपराइटर सोनू जी, संपर्क करें 99399-66999।
11: नन्ना मुन्ना लाही हूँ, देश का सिपाही हूँ।
12: रुको रुको बेटा, अब तो बड़ा अच्छा गा रहे हो।
11: हाँ कल मेरे टीचर मुझे अच्छे से याद करने के लिए बोले हैं।
12: अच्छा, तो कौन से स्कूल में पढ़ते हैं आप?
11: मैं पढ़ता हूँ श्री भारती एकेडमी में।
13: श्री भारती एकेडमी जो है CBSE नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त स्कूल।
14: हमारे यहाँ बोलचाल के साथ ही बच्चों को खेल खेल में पढ़ाया जाता है। इसके साथ ही छात्रवास के अलावा आने और जाने के लिए परिवहन की भी सुविधा उपलब्ध है।
13: श्री भारती एकेडमी आपके बच्चों को बनाता है होनहार और देता है उनके फ्यूचर को एक नई उड़ान।
14: आज ही एडमिशन के लिए आए चैन पट्टी के उत्तर, ग्राम डेरवा तिलंगही मैदान के पूरब, गोपालगंज।
13: हमारा जूनियर ब्रांच सरिया वार्ड नंबर 5 हनुमानगढ़ी, गोपालगंज में है।
14: जानकारी है तो कॉल करे 6052-62112 पे।
15: तुम आज भी गुमसुम क्यों बैठी हो?
9: क्या बताऊं, 15 साल शादी के हो गए और संतान सुख मिला नहीं, कई जगह इलाज कराया लेकिन कोई फायदा नहीं, अब समझ नहीं आ रहा क्या करूं?
15: अरे मेरे साथ एक बार चलो डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी के पास, जादवपुर में। कई निसंतान माताओं का इलाज उन्होंने सफलतापूर्वक किया है।
9: ध्यान दे, स्त्री रोग, बांझपन, ल्यूकोरिया, दिमाग की कमजोरी या दाश्त की कमी, पेट रोग, गैस्ट्रिक, लीवर में सूजन, बवासीर, कान रोग, पुराना बुखार, नस रोग, किडनी की पथरी, पीठ की थैली में पथरी, पेशाब की थैली में पथरी, गठिया,
3: पुराना जोड़ों का दर्द, साइटिका, चर्म रोग एवं पुराने असाध्य बीमारियों का इलाज आयुर्वेदिक विधि से 30 वर्षों से सफलतापूर्वक किया जा रहा है।
15: आज ही आएं डॉक्टर गोरखपुरी निवास, डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी, जादवपुर मेन रोड, गोपालगंज। संपर्क करें 99554-97644।
16: मैं थोड़ा सा शील्डेड ह्यूमन बीइंग हूँ, जहाँ मैं अगर मैं कहता हूँ मैं किसी से प्यार करता हूँ तो फिर जेन्युइनली करता हूँ, वरना मैं कहता नहीं हूँ। तो अपनी माँ को मैं हमेशा बोलता हूँ लव यू, आई लव यू, आई लव यू। हम एज मेन और वट एवर लॉक रहता है कि यू कांट होल्ड योर फादर एंड से आई लव यू डैड, पर उस दिन के बाद मैं मतलब पूरे दुनिया के सामने बोल सकता हूँ आई लव यू डैड।
17: तो चलिए अब जाते जाते सुनते हैं वरुण के रियल लाइफ हीरोइज्म और उनके हीरोइक थॉट्स के बारे में।
18: ये बात मुझे हमेशा अपने नेशन में लगी है एक्चुअली, जब भी व्हेन यू रीड अबाउट रिचुअल्स लाइक सती और डाउरी और विमेन्स राइट, जनरली विमेन के राइट्स के ऊपर, आई मीन हमारे इतिहास में वी सप्रेस्ड विमेन अलॉट, और जितने भी मेरे घर पे जो हेल्प है मैं उनसे भी बात करता हूँ बट हाउ विमेन आर ट्रीटेड इन द विलेजेस एंड स्टफ, और जो स्थिति है वो एक्चुअली बहुत अच्छी नहीं है, जेन्युइनली अच्छी नहीं है। सो आई थिंक एक अगर चेंज करना है इसको, आई थिंक मोर एंड मोर पीपल हैव टू, आई थिंक इफ यू आर अ मैन यू शुड बिहेव लाइक अ मैन एंड यू शुड फाइट फॉर द राइट कॉजेस। तो मेरे हिसाब से ये जो बात है बहुत गलत है। एक औरत को हम लोग भगवान का स्टेटस देते हैं, उनकी मूर्तियां रखते हैं हमारे घर में, पर जब इज्जत करने की चीज आए तो इज्जत करते नहीं है। माँ बहन की घर पे इज्जत करेगी पर रोड पे आ जाए तो मतलब उस औरत को विल जस्ट ट्रीट लाइक दैट, वो भी किसी की माँ है, किसी की बहन है, किसी की कुछ हो सकती है। सो आई थिंक इक्वालिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट, ट्रीट वुमेन इक्वली, दैट्स इट। एंड व्हाट आई वांट टू से इज दैट आई होप वुमेन बिकम मोर प्रोएक्टिव, और किसी लड़के ने बदतमीजी की है तो जाके झापड़ मार दो उधर ही, होता है डिफिकल्ट आई नो, बट आई जस्ट आई होप कि अगर एक औरत ने झापड़ मारा और मैं उधर खड़ा हूँ और अगर उस मर्द ने उसको वापस छेड़ा फिर मैं कुछ करूंगा, बट आई होप कि दे जस्ट इट वी नीड टू चेंज दैट एटीट्यूड।
16: इवेंचुअली एंड ऑफ द डे अगर किसी भी इंसान को कुछ करना है जिंदगी में ना, उसको खुद करना है। लोग होते हैं जो मदद करते हैं, जो ये होता है वो होता है, बट यू हैव टू डू इट योरसेल्फ, यू कैन नॉट डिपेंड ऑन अदर पीपल। एंड मैं एटलीस्ट नॉट दैट आई डोंट, आई हैव अ लॉट ऑफ सपोर्ट एट होम, करण जो इज अ मेंटर ऑफ माइन, ही इज ऑलवेज बीन देयर फॉर मी, बट एट द एंड ऑफ द डे इफ यू डोंट गेट ऑफ योर रेयर एंड, गो आउट देयर और खुद कुछ करो, डोंट टेक मैटर्स इन योर ओन कंट्रोल, थिंग्स विल नॉट हैपन।
17: जमीन से आसमान की बुलंदियों तक पहुंचने की कहानी किस्मत की बंजर जमीन पर अपनी मेहनत और पसीने से कनक सोना उगाने की, कभी खुद को साबित कर गुजरने की, तो कभी जिंदगी बदल देने वाली हार की, और कभी दुनिया जीत लेने की। ऐसी ही कहानियां करेंगी आपका इंतजार।

0: अब आपको कॉस्मेटिक के लिए और परेशान होने की जरूरत नहीं, क्योंकि अब गोपालगंज में खुल गया है श्रृंगार वाटिका, जहां मिलते हैं डिजाइनर और ब्रांडेड प्रोडक्ट्स जैसे लैक्मे, शुगर, नायका, कलाबा जैसी ढेर सारी कंपनियां। साथ ही साथ डिजाइनर पर्स, होम डेकोरेशन, टॉयज एंड गिफ्ट्स, ब्राइडल ज्वेलरी और चूड़ियों की नए कलेक्शंस। और तो और वहां इंपोर्टेड परफ्यूम्स भी मिलते हैं। यहां हर शॉपिंग पे गिफ्ट्स और 5-25% तक का डिस्काउंट भी मिल रहा है। एक सामान लेना हो या शादी की शॉपिंग करनी हो, इससे अच्छी जगह कोई नहीं, श्रृंगार वाटिका।
1: आज ही आए चंद्र गोखुल रोड नियर पंजाब नेशनल बैंक गोपालगंज, या कॉल करें 8604348652 पे।
2: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज। ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
3: नई बाइक का सपना अब होगा पूरा, वो भी सबसे कम दाम में।
4: इस सीजन अपने घर लाइए हीरो की नई चमचमाती बाइक या स्कूटर श्री गोपाल मोटर्स से, वो भी ऑन रोड रेट पर।
3: श्री गोपाल मोटर्स, गोपालगंज में पाए स्प्लेंडर प्लस सिर्फ 86,168 रुपए में, HF डिलक्स सिर्फ 75,405 रुपए में, ग्लैमर एक्स सिर्फ 97,456 रुपए में, एक्सट्रीम 125R सिर्फ 1,10,881 रुपए में, इंश्योरेंस और रजिस्ट्रेशन के साथ।
4: विजिट कीजिए श्री गोपाल मोटर्स, NH 27 बंजारी, चैन पट्टी, गोपालगंज,
3: या अभी कॉल कीजिए 9289922567 या 9779746164।
5: ओम नमः शिवाय।
6: सावन के पावन अवसर पर बाबा भोलेनाथ के दर्शन का सुनहरा अवसर लेकर आया है दीपक राज टूर एंड ट्रेवल्स गोपालगंज।
5: श्रद्धालुओं के लिए विशेष तीर्थ यात्रा एवं कांवर यात्रा की व्यवस्था। पहला रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, राजगीर होते हुए पुनः वापसी।
6: दूसरा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, तारापीठ, जगन्नाथपुरी, गंगा सागर, काली घाट, कोलकाता, रजरप्पा, राजगीर होते हुए वापस गोपालगंज।
5: तीसरा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, गया, बोधगया, वाराणसी, अयोध्या, गोरखनाथ मंदिर होते हुए वापस गोपालगंज।
6: चौथा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, गुवाहाटी, माँ कामाख्या धाम, दार्जिलिंग, सिलीगुड़ी, गंगटोक, जनकपुर, अरेराज होते हुए वापस गोपालगंज।
5: गोपालगंज जिले के श्रद्धालु अब घर बैठे अपनी तीर्थ यात्रा के लिए वाहन बुक करा सकते हैं।
6: बिचौलियों से बचे और सीधे हमारे कार्यालय या बुकिंग नंबर पर संपर्क करें।
5: बुकिंग नंबर 9155548507 या 9162933538।
6: हेल्पलाइन नंबर 9934498845।
5: दीपक राज टूर एंड ट्रेवल्स, मुख्य कार्यालय चिराई घर पेट्रोल पंप के पास गोपालगंज, उपशाखा NH 27 काली स्थान बंजारी गोपालगंज।
6: बोलबम हर

0: सुबंधु, तुम जानते हो तुम्हारे इस आरोप का परिणाम क्या होगा?
1: जी महाराज बिंदु सर, मुझे इसके परिणाम का ज्ञान है।
0: सुबंधु, महामात्य चाणक्य सिर्फ महामात्य नहीं है बल्कि वे इस मौर्य साम्राज्य के संस्थापक हैं। और तुम कह रहे हो कि मेरी माता के हत्या के दोषी हैं, उन्होंने मेरी माता दुर्धरा के पेट को चिरवा दिया?
1: जी महाराज बिंदु सर।
0: प्रमाण, प्रमाण क्या है तुम्हारे पास?
1: प्रमाण है महाराज, प्रमाण है।
0: एकांत।
1: जी।
2: चाणक्य मौर्य साम्राज्य के सबसे प्रभावशाली महामात्य से महाराजा बिंदुसार की मां की हत्या के दोषी हो गए। इस आरोप से चाणक्य बहुत आहत हुए और मंत्री पद त्याग कर जंगल में चले गए। सुबंधु अपने षड्यंत्र में कामयाब हुआ। कौटिल्य की कहानी मंत्री पद छोड़ने पर ही खत्म नहीं हुई, क्योंकि सच्चाई कुछ और ही थी। जल्द ही बिंदुसार के पास एक दूसरी दासी पहुंची।
3: महाराज, आपने अपने मस्तक का चिन्ह देखा है?
0: हाँ देखा है।
3: आपका नाम बिंदुसार क्यों पड़ा जानते हैं?
0: नहीं।
3: महाराज, आपका नाम बिंदुसार विष की एक बूंद के कारण है।
0: कहना क्या चाहती हो?
3: महाराज, आपकी माता का पेट आचार्य चाणक्य ने चिरवाया जरूर था, किंतु उनकी हत्या के लिए नहीं, बल्कि इसलिए कि आपकी जान बचाई जा सके।
0: व्यर्थ की बातें मत करो।
3: महाराज, आपके पिता हमेशा शत्रुओं से घिरे रहते थे। हमेशा यही डर बना रहता था कि कहीं उनके भोजन में विष मिलाकर उनकी हत्या ना कर दी जाए। इसीलिए महाराज, आचार्य चाणक्य के कहने पर उनके खाने में थोड़ी थोड़ी मात्रा में विष मिला दिया जाता था, ताकि उनका शरीर इसका अभ्यस्त हो सके। किंतु महाराज, आपकी माता को इसका ज्ञान नहीं था, और एक दिन आपकी माता दुर्धरा, जो उस समय गर्भवती थी, आपके पिता के साथ भोजन लिया, और भोजन खाते ही विष की वजह से उनकी मृत्यु हो गई।
0: तो फिर मैं?
3: हाँ देव, जब आचार्य चाणक्य को इसका पता चला, उन्होंने तुरंत आपकी माता का पेट चिरवाकर आपको बाहर निकलवा लिया और आपकी जान बचा ली।
4: जब बिंदुसार को ये बातें पता चली तो वो क्षमा मांगने चाणक्य के पास पहुंचा। चाणक्य ने उसे क्षमा तो कर दिया, लेकिन वापस महल में नहीं लौटे। सुबंधु भी क्षमा मांगने चाणक्य की कुटिया पहुंचा, उसे भी चाणक्य ने क्षमा कर दिया। चाणक्य, कौटिल्य, विष्णुगुप्त, इनसे जुड़ी ये कहानियां हैं जो हम तक अलग अलग जरिए से पहुंची हैं, लेकिन इनकी ऐतिहासिक प्रामाणिकता पर सवाल उठाए जा सकते हैं। जिस तरह से हमारी सोच में, हमारी नीतियों में उनकी कई बातें जीवित हैं, वो सिर्फ कल्पना हो ऐसा नहीं लगता। राजा, राजा नहीं, एक ऋषि भी होना चाहिए, संत होना चाहिए। शत्रु का शत्रु तुम्हारा मित्र है, संविधान से ऊपर और कोई नहीं होता। ये बातें मात्र उदाहरण है। चाणक्य को पढ़कर, उनको समझकर शायद हम खुद को और बेहतर समझ सकें।
2: भारतवर्ष, महानायकों की गौरव गाथा, अनुपम खेर के साथ।

0: आपको हो रहा है घुटने, हड्डी या रीढ़ की हड्डी का दर्द या महिलाओं से जुड़ी समस्या, तो याद रखिए गोपालगंज जिले में सबसे भरोसेमंद नाम स्टार एडवांस ऑर्थो एंड मेटर्निटी सेंटर, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
1: यहाँ है डॉक्टर इमरान हुसैन खान, कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक एवं जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन, MBBS, MS, एक्स रेसिडेंट KGMU, लखनऊ।
0: और महिलाओं के लिए डॉक्टर सूफिया शादाब, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, MBBS, MS, ऑब्स एंड गायनेकोलॉजी।
1: साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
0: ध्यान दे, हर शुक्रवार को है फ्री OPD, तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें।
1: पता, कमला राय कॉलेज रोड, नियर रालसन होटल, गोपालगंज।
0: संपर्क करें 9006978856 या 6203139564।
2: तुम आज भी गुमसुम क्यों बैठी हो?
3: क्या बताऊं, 15 साल शादी के हो गए और संतान सुख मिला नहीं। कई जगह इलाज कराया लेकिन कोई फायदा नहीं। अब समझ नहीं आ रहा क्या करूं?
2: अरे मेरे साथ एक बार चलो डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी के पास, जादवपुर में। कई निसंतान माताओं का इलाज उन्होंने सफलता पूर्वक किया है।
3: ध्यान दे, स्त्री रोग, बांझपन, ल्यूकोरिया, दिमाग की कमजोरी, याददाश्त की कमी, पेट रोग, गैस्ट्रिक, लीवर में सूजन, बवासीर, कान रोग, पुराना बुखार, नस रोग, किडनी की पथरी, पीत की थैली में पथरी, पेशाब की थैली में पथरी, गठिया, पुराना जोड़ों का दर्द, साइटिका, चर्म रोग एवं पुराने असाध्य बीमारियों का इलाज आयुर्वेदिक विधि से 30 वर्षों से सफलतापूर्वक किया जा रहा है।
2: आज ही आएं डॉक्टर गोरखपुरी निवास, डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी, जादवपुर मेन रोड, गोपालगंज। संपर्क करें 99554-97644।
4: क्या हुआ? अरे ये तेरा रोज रोज का पेट दर्द।
5: अरे तो उसे डांटती क्यों हो, उसे जल्दी से ले जाओ डॉक्टर सुनील कुमार रंजन के पास।
6: यहाँ पर हर्निया, अपेंडिस, वंध्याकरण, प्रोस्टेट, पीत की थैली, किडनी की पथरी, पेशाब की नली एवं पेशाब की थैली की पथरी तथा गोला का ऑपरेशन दूरबीन विधि से, साथ ही लेजर एवं स्टेपलर विधि के द्वारा बिना चीड़ा और बिना दर्द के बवासीर, भगंदर और नासूर का ऑपरेशन सस्ते दर पर किया जाता है।
2: ध्यान दें, हमारे यहाँ आयुष्मान भारत योजना के तहत ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
6: आज ही आए JB हॉस्पिटल एवं स्टोन क्लिनिक, थावे रोड, गोपालगंज।
4: अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 91-626-64-498 पे।
1: गोपालगंज, अब आपकी राइड होगी और भी स्टाइलिश और पहले से ज्यादा पावरफुल,
0: क्योंकि आ चुकी है हीरो ग्लैमर एक्स और एक्सट्रीम 125R। अब उपलब्ध है नारायणी हीरो गोपालगंज में।
1: ग्लैमर एक्स, दमदार माइलेज, शानदार लुक और भरोसेमंद परफॉर्मेंस, ताकि हर दिन बने खास और सफर रहे बेफिक्र।
0: और एक्सट्रीम 125R स्पोर्टी डिजाइन, दमदार पावर और एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ हर राइड बने और एक्साइटिंग।
1: तो फिर देर किस बात की, आज ही विजिट करें नारायणी हीरो, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
0: शानदार ऑफर्स और आसान फाइनेंस सुविधा के साथ
1: नारायणी हीरो, भरोसे का नाम हर राइड के साथ।
0: कॉल नाउ 9656-59536 या 9656-57902।

0: ठक ठक।
1: काजी, आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
2: अच्छा मिला ही नहीं।
1: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें, अब चलिए सीधे कमलश्री में।
2: जी हाँ कमलश्री, याद रखें सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
1: आप भी आए कमलश्री, कमलश्री, कमलश्री, बारी मार्केट, गोपालगंज।
2: याद रहे सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है।
3: ये सफेद दाग बढ़ता ही जा रहा है, लोगों की नजरें, बातें, सब कुछ बदल गया है। अरे क्यों घबराती हो, गोपालगंज में एक जगह है जहां लोग सिर्फ हिम्मत ही नहीं उम्मीद भी लेकर लौटते हैं।
4: हाँ, अब सफेद दाग का समाधान है। चरक सफेद दाग स्पेशलिस्ट डॉक्टर इरशाद अहमद द्वारा एडवांस्ड एक्यूपंक्चर मशीन टेक्निक से
3: सिर्फ एक से दो सप्ताह में रोग में राहत महसूस करें। आज ही संपर्क करें डॉक्टर इरशाद अहमद, ल्यूको क्लिनिक, हर शनिवार, समय सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक।
4: पता जंगलिया मोहल्ला, नूर मेडिकल के पास, गोपालगंज। कॉल करें 94512-11001।
5: अरे सुनते हो जी, शादी में बस कुछ ही दिन बचे हैं, दूल्हे के कपड़े अभी तक नहीं बने
6: और दुल्हन का लहंगा, साड़ी कुछ भी तय नहीं हुआ। इतना बड़ा फंक्शन है, सब लोग क्या कहेंगे?
7: मम्मी पापा, मुझे चाहिए रॉयल कोट पैड का कपड़ा और रिसेप्शन के लिए एक शानदार कुर्ता पजामा।
8: और मुझे चाहिए ट्रेंडिंग लहंगा, सुंदर साड़ी और कुछ बढ़िया सूट पीस भी।
9: अरे बस इतनी सी बात, आप लोग गए नहीं क्या मुरारी लाल विजय कुमार?
4: मेन रोड गोपालगंज में स्थित मुरारी लाल विजय कुमार क्लोथिंग स्टोर, जहां दूल्हे के लिए मिलता है कोट पैंट, पैंट शर्ट और कुर्ता पजामा का बेहतरीन कपड़ा, और दुल्हन के लिए लहंगा, साड़ी, सूट पीस, हर डिजाइन, हर रंग, हर बजट में।
6: तो फिर देर किस बात की, चलो अभी चलते हैं मुरारी लाल विजय कुमार।
4: मुरारी लाल विजय कुमार, मेन रोड गोपालगंज, प्रोप्राइटर विजय कुमार केडिया।
3: कॉल करे 87894-18744।
10: अब आपको कॉस्मेटिक के लिए और परेशान होने की जरूरत नहीं, क्योंकि अब गोपालगंज में खुल गया है श्रृंगार वाटिका, जहां मिलते हैं डिजाइनर और ब्रांडेड प्रोडक्ट्स जैसे लैक्मे, शुगर, नायका, कलाबा जैसी ढेर सारी कंपनियां। साथ ही साथ डिजाइनर पर्स, होम डेकोरेशन, टॉयज एंड गिफ्ट्स, ब्राइडल ज्वेलरी और चूड़ियों की नए कलेक्शंस। और तो और वहां इंपोर्टेड परफ्यूम्स भी मिलते हैं। यहां हर शॉपिंग पे गिफ्ट्स और 5-25% तक का डिस्काउंट भी मिल रहा है। एक सामान लेना हो या शादी की शॉपिंग करनी हो, इससे अच्छी जगह कोई नहीं, श्रृंगार वाटिका।
1: आज ही आए चंद्र गोखुल रोड नियर पंजाब नेशनल बैंक गोपालगंज, या कॉल करें 86034 पे।

0: राधा, तुमने अपने चाचा जी के अपेंडिक्स का ऑपरेशन कहाँ कराया था?
1: सम्राट हॉस्पिटल में, वो भी कम से कम खर्च में।
2: क्या आप भी ऑपरेशन कराना चाहते हैं? तो घबराए नहीं, आज ही आए सम्राट हॉस्पिटल, जहाँ है डॉक्टर कुंदन सिंह MBBS MS जनरल एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जन, जो सदर हॉस्पिटल गोपालगंज में भी सेवा देते हैं।
3: हमारे यहाँ दूरबीन विधि से भी ऑपरेशन किया जाता है।
2: आज ही हर तरह के सफल ऑपरेशन के लिए आए सम्राट हॉस्पिटल, जो है कमला राय कॉलेज के पश्चिम आरआर रोड गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 94704-34468 पे।
4: ओम नमः शिवाय।
5: सावन के पावन अवसर पर बाबा भोलेनाथ के दर्शन का सुनहरा अवसर लेकर आया है दीपक राज टूर एंड ट्रेवल्स गोपालगंज।
4: श्रद्धालुओं के लिए विशेष तीर्थ यात्रा एवं कांवर यात्रा की व्यवस्था। पहला रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, राजगीर होते हुए पुनः वापसी।
5: दूसरा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, तारापीठ, जगन्नाथपुरी, गंगा सागर, काली घाट, कोलकाता, रजरप्पा, राजगीर होते हुए वापस गोपालगंज।
4: तीसरा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, गया, बोधगया, वाराणसी, अयोध्या, गोरखनाथ मंदिर होते हुए वापस गोपालगंज।
5: चौथा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, गुवाहाटी, माँ कामाख्या धाम, दार्जिलिंग, सिलीगुड़ी, गंगटोक, जनकपुर, अरेराज होते हुए वापस गोपालगंज।
4: गोपालगंज जिले के श्रद्धालु अब घर बैठे अपनी तीर्थ यात्रा के लिए वाहन बुक करा सकते हैं।
5: बिचौलियों से बचे और सीधे हमारे कार्यालय या बुकिंग नंबर पर संपर्क करें।
4: बुकिंग नंबर 9155548507 या 9162933538।
5: हेल्पलाइन नंबर 9934498845।
4: दीपक राज टूर एंड ट्रेवल्स, मुख्य कार्यालय चिराई घर पेट्रोल पंप के पास गोपालगंज, उपशाखा NH 27 काली स्थान बंजारी गोपालगंज।
5: बोलबम, हर हर महादेव।
6: अगर आपका फर्नीचर डोलता है और बोलता है तो एक्सचेंज तो मांगता है।
7: संतोष फर्नीचर लेकर आ गए हैं ग्रेट एक्सचेंज ऑफर।
8: ग्रेट एक्सचेंज ऑफर, अपने घर के पुराने सोफा और डाइनिंग को ले आएं और नए सोफा तथा डाइनिंग को ले जाएं और बनाएं अपने घर को सुंदर तथा आकर्षक।
7: आज ही विजिट करें संतोष फर्नीचर, चिराई घर पेट्रोल पंप के सामने, कॉलेज रोड, गोपालगंज। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 82 101 87 952। नियम और शर्तें लागू।

0: इतना परेशान क्यों दिख रही हो मेघा?
1: आसपास हर जगह चाचा जी का इलाज करा लिया, अब लगता है उन्हें दिल्ली लेकर ही जाना पड़ेगा।
0: अरे अपने गोपालगंज में गोरखपुर, पटना और दिल्ली जैसे बेहतर मेडिकल सुविधाओं के साथ खुल गया है एम्स के पूर्व चिकित्सक डॉक्टर अभिषेक रंजन जी के देखरेख में जिले का पहला वेंटिलेटर युक्त सक्षम हॉस्पिटल, जहाँ पर 24 घंटे ICU इमरजेंसी सेवा, एक्सपर्ट मेडिकल टीम द्वारा विभिन्न रोग जैसे हृदय रोग, शुगर, दमा, नस रोग, लकवा और पेट से जुड़ी गंभीर बीमारियों का अत्याधुनिक मशीनों के द्वारा सफलतापूर्वक इलाज किया जा रहा है।
1: आज विजिट करें सक्षम हॉस्पिटल, कमला राय कॉलेज रोड, इंडियन गैस एजेंसी के बगल में, गांधी टेक्निकल कॉलेज के सामने, डॉक्टर कॉलोनी, गोपालगंज। कॉल करें 7050061444 या 7870331444।
2: नन्ना मुन्ना लाही देश का सिपाही हूँ।
3: रुको रुको बेटा, अब तो बड़ा अच्छा गा रहे हो।
2: हाँ कल मेरे टीचर मुझे अच्छे से याद करने के लिए बोले हैं।
3: अच्छा तो कौन से स्कूल में पढ़ते हैं आप?
2: मैं पढ़ता हूँ श्री भारती एकेडमी में।
4: श्री भारती एकेडमी जो है CBSE नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त स्कूल।
5: हमारे यहाँ बोलचाल के साथ ही बच्चों को खेल खेल में पढ़ाया जाता है। इसके साथ ही छात्रवास के अलावा आने और जाने के लिए परिवहन की भी सुविधा उपलब्ध है।
4: श्री भारती एकेडमी आपके बच्चों को बनाता है होनहार और देता है उनके फ्यूचर को एक नई उड़ान।
5: आज ही एडमिशन के लिए आए चैन पट्टी के उत्तर ग्राम डेरवा तिलंगही मैदान के पूरब गोपालगंज।
4: हमारा जूनियर ब्रांच सरिया वार्ड नंबर 5 हनुमानगढ़ी गोपालगंज में है।
5: जानकारी है तो कॉल करे 6052 62112 पे।
6: घर बन रहा हो तो सिर्फ ईंट और सीमेंट नहीं, टाइल्स और फिटिंग्स का चुनाव भी होना चाहिए शानदार।
7: इसीलिए गोपालगंज जिले के लोगों की पहली पसंद बन चुका है BK टाइल्स। BK टाइल्स, यहाँ मिलेंगे सभी प्रकार के डिजाइनर टाइल्स, मार्बल, ग्रेनाइट, बेसिन, कॉमोड, बाथ फिटिंग्स और घर सजाने के कई आधुनिक प्रोडक्ट,
8: वो भी किफायती दामों पर। और खास बात, गोपालगंज जिले में हमारी 4 सुविधाजनक शाखाएं,
7: RR मोड SP कोठी के पास गोपालगंज, दूसरा ब्रांच भटवा मोड के पास कुचायको,
8: तीसरा ब्रांच इस्लामिया कॉलेज के पास मेन रोड ठावे मीरगंज, और चौथा ब्रांच बंतरिया मोड़ भोरे।
7: और अब सिवान जिले में भी हमारी 2 शाखाएं उपलब्ध हैं, सिवान ब्रांच कुशवाहा चौक हकाम बाईपास सिवान,
8: और मैरवा ब्रांच बबनौली चौक मैरवा सिवान।
7: तो आज ही अपने सबसे नजदीकी BK टाइल्स ब्रांच पर आए और करे बेहतरीन खरीदारी।
8: अधिक जानकारी के लिए संपर्क करे गोपालगंज ब्रांच में 8460571406, मीरगंज ब्रांच में 9693101611,
7: कुचाय कोट ब्रांच में 9693101602, भोरे ब्रांच में 8207856404,
8: सिवान ब्रांच में 9942071405, मेरवा ब्रांच में 8207856403।

0: सब भौजी आज सुबह रही से गोपालगंज गई रनिया, घूम लेनी नु सारा मार्केट, देख लेनी नु सारा बाजार, कोनो साड़ी पसंद आई ला की ना?
1: अरे ना देवर जी, कपड़ा तो बहुते देखनी है, पर कोनो जचल है ना।
0: ई बात बा, तो ऐसन करी कि अब चली सीधे हमरा साथे कमल श्री में। महिलाओं की सबसे पहली पसंद कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री। सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए और नए नए डिजाइनों के फैंसी लहंगा, दुल्हन के लिए साड़ी, सूट पीस, लक्ष्मीपति साड़ियों के अलावा रेमंड्स के कोट पैंट और शूटिंग शॉटिंग बाजार से कम रेट में ले जाएं।
2: जी हाँ, कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री। सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए, बारी मार्केट, फर्स्ट फ्लोर।
3: अरे मुन्नी, तुम आ गई, चल मेरा कान का झुमका ला।
4: ओ माय गॉड, आज फिर से भूल गई।
3: मैं तुमसे कितनी बार बोली हूँ कि अब महिलाओं के सारे सामान एक ही छत के नीचे नाइस गैलेक्सी में मिल रहा है।
4: सॉरी यार, कल पक्का नाइस गैलेक्सी में जाऊंगी।
0: महिलाओं की स्पेशल दुकान नाइस गैलेक्सी।
4: आर्टिफिशियल फ्लावर, आर्टिफिशियल गहने, सौंदर्य प्रसाधन, गृह कार एवं गृह सज्जा के सामान के साथ गिफ्ट, फूलों का गुलदस्ता एवं चांदनी का विशाल भंडार हमारे यहाँ मौजूद है।
0: तो अगर आपको कुछ अच्छा, कुछ अलग चाहिए हो तो आज ही आए नाइस गैलेक्सी, हजियापुर रोड, एक्सिस बैंक के सामने, तड़कुल के पास, गोपालगंज।
4: याद रहे, शादी विवाह, जन्मदिन या किसी भी शुभ अवसर पर गिफ्ट और सजाने का सारा सामान थोक एवं खुदरा मिलता है।
0: साथ ही प्लास्टिक के सारे सामान भी उपलब्ध हैं।
5: जो लोग डायबिटीज से परेशान हैं, वो डरे नहीं, परहेज करे नहीं। वैद्य एसपी त्यागी जी आयुर्वेदिक दवा द्वारा शुगर यानी डायबिटीज का इलाज कम खर्च में सब कुछ खाते हुए सफलतापूर्वक कर रहे हैं। आप भी दवा खा खा कर इलाज करा कर निराश एवं परेशान हो गए हैं तो एक बार अवश्य मिले वैद्य एसपी त्यागी जी से। डायबिटीज के अलावा और सब बीमारी का इलाज, जैसे
6: सभी प्रकार के नशा, जैसे शराब, टेबलेट, इंजेक्शन, सिरप, गांजा, स्माइक के इलाज और गठिया, टीका, पथरी, कमर दर्द, घुटना दर्द, दमा, मिर्गी, दाद, दिनाए और सभी चर्म रोग एवं लिकोरिया, मासिक खराबी, बवासीर, पेट रोग, शुगर, गैस्ट्रिक, शीघ्र पतन, शुक्राणु में कमी, नपुंसकता, धातु चिंताएं और चर्म रोग में दाग, दिनाए, खुजली, एक्जिमा, सोराइसिस तथा
5: पथरी इत्यादि सभी रोगों का इलाज वैद्य एसपी त्यागी जी आयुर्वेदिक दवा द्वारा सफलतापूर्वक करते हैं।
7: वैद्य एसपी त्यागी जी से मिलने का पता,
5: प्रत्येक शनिवार गोपालगंज बस स्टैंड, थावे रोड, भी मार्केट के बगल में, कृष्णा जी के मकान में।
7: जानकारी के लिए कॉल करें 99554943
5: और 90971602।

0: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सीरिया रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज। ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
1: सुनिए,
2: आपके शहर गोपालगंज में खुल गया है श्री कृष्णा साड़ी,
1: जिसमें आपको मिल रहा है सस्ते दामों में एक से बढ़कर एक डिजाइनों के लहंगा, फैंसी साड़ी, लेडी सूट, क्रॉप टॉप एवं कुर्ती।
2: श्री कृष्णा साड़ी दुकान है केडिया भवन, केडिया लेन, मेन रोड, गोपालगंज।
1: एक बार सेवा का मौका जरूर दें श्री कृष्णा साड़ी को।
3: राधा, तुमने अपने चाचा जी के अपेंडिक्स का ऑपरेशन कहाँ कराया था?
4: सम्राट हॉस्पिटल में, वो भी कम से कम खर्च में।
1: क्या आप भी ऑपरेशन कराना चाहते हैं? तो घबराए नहीं, आज ही आए सम्राट हॉस्पिटल, जहाँ है डॉक्टर कुंदन सिंह MBBS MS जनरल एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जन, जो सदर हॉस्पिटल गोपालगंज में भी सेवा देते हैं।
5: हमारे यहाँ दूरबीन विधि से भी ऑपरेशन किया जाता है।
1: आज ही हर तरह के सफल ऑपरेशन के लिए आए सम्राट हॉस्पिटल, जो है कमला राय कॉलेज के पश्चिम RR रोड, गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 9974434468 पे।
6: तब रामू काका, हई इलेक्ट्रिक के इतना सारा सामान कहाँ से खरीद के ले आओ तनी?
7: ये सब सामान संतोष इलेक्ट्रॉनिक्स से लेके आओ तनी बाबू।
6: अरे ये सामान तो एक नंबर बुझाता और काफी डिजाइनदार भी बा।
7: अरे हाँ बाबू, अपना गोपालगंज में इतना अच्छा दुकान कहाँ बा? संतोष इलेक्ट्रॉनिक्स में सस्ता में एक नंबर के सामान मिलेला।
6: हम तो अपना नौका घरवा खातिर इलेक्ट्रॉनिक के सारा सामान दिल्ली से लेके आवे के सोचत रहनी, लेकिन हम काले संतोष इलेक्ट्रॉनिक्स से जाके अपन पूरा सामान ले आए।
7: अरे हाँ बबुआ, संतोष इलेक्ट्रॉनिक्स से लिया या? दिल्ली जाके पैसा बर्बाद कैले से का फायदा?
4: संतोष इलेक्ट्रॉनिक हाउस, जहाँ सस्ते दामों में बेस्ट क्वालिटी के इलेक्ट्रिक के सारे सामान मिलते हैं।
6: हमारा पता है चिराई घर पेट्रोल पंप के सामने, संतोष फर्नीचर के नीचे, कॉलेज रोड, गोपालगंज।
8: नन्ना मुन्ना लाही हूँ, देश का सिपाही हूँ।
9: रुको रुको बेटा, अब तो बड़ा अच्छा गा रहे हो।
8: हाँ अंकल, मेरे टीचर मुझे अच्छे से याद करने के लिए बोले हैं।
9: अच्छा, तो कौन से स्कूल में पढ़ते हैं आप?
8: मैं पढ़ता हूँ श्री भारती एकेडमी में।
1: श्री भारती एकेडमी, जो है CBSE नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त स्कूल।
10: हमारे यहाँ बोलचाल के साथ ही बच्चों को खेल खेल में पढ़ाया जाता है। इसके साथ ही छात्रवास के अलावा आने और जाने के लिए परिवहन की भी सुविधा उपलब्ध है।
1: श्री भारती एकेडमी आपके बच्चों को बनाता है होनहार और देता है उनके फ्यूचर को एक नई उड़ान।
10: आज ही एडमिशन के लिए आए चैन पट्टी के उत्तर, ग्राम डेरवा तिलंगही मैदान के पूरब, गोपालगंज।
1: हमारा जूनियर ब्रांच सरिया वार्ड नंबर 5 हनुमानगढ़ी, गोपालगंज में है।
11: ₹5,000 तक होल्डिंग टैक्स लगेगा। मकान, दुकान और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों पर शुल्क वार्षिक, जबकि जलापूर्ति शुल्क मासिक देना होगा। उन्होंने बताया कि इसके लिए कैबिनेट ने ग्राम पंचायत कर दर शुल्क नियमावली 2026 को स्वीकृति दी है।
12: बिहार पंचायत राज अधिनियम 2006 के अंतर्गत गठित बिहार ग्राम पंचायत नियमावली 2026 की स्वीकृति दी गई। ये अब ग्राम पंचायतों को भी कर लगाने का अधिकार है। एक्ट में पहले से प्रावधान है, सरकार को उसके लिए नियमावली बनाना था। अभी ये नियमावली बन गई, तो नियमावली के तहत अलग अलग तरीके के कर लगाने का उनको आधार मिलेगा और इससे उनकी अपनी भी एक आय बनेगी।
11: कैबिनेट ने कुल 25 प्रस्तावों को मंजूरी प्रदान की। राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग NMC ने राज्य के सरकारी और निजी मेडिकल कॉलेजों में MBBS की कुल 740 नई सीटों को मंजूरी दी है। सरकारी मेडिकल कॉलेजों में 190 और निजी मेडिकल कॉलेजों में 550 सीटों की वृद्धि हुई है। सीटें बढ़ने के बाद अब राज्य के सरकारी और निजी मेडिकल कॉलेजों में कुल 4160 MBBS सीटों पर नामांकन होगा। बढ़ी हुई सीटों के बाद बिहार के सरकारी मेडिकल कॉलेजों में अब 1710 और निजी मेडिकल कॉलेजों में 2450 सीटों पर नामांकन लिया जाएगा। इस बार पीएमसीएच और एनएमसीएच में 50-50 सीटों की बढ़ोतरी हुई है। वहीं जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज भागलपुर, श्री कृष्ण मेडिकल कॉलेज मुजफ्फरपुर और दरभंगा मेडिकल कॉलेज में 30-30 सीटों की बढ़ोतरी हुई है। कृषि मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने विभाग में योजना मद की अब तक केवल 3% राशि खर्च होने पर नाराजगी जताई है। विभागीय योजनाओं की समीक्षा करते हुए उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि एक सप्ताह के भीतर योजनाओं के क्रियान्वयन और व्यय की प्रगति में सुधार सुनिश्चित किया जाए ताकि किसानों को समय पर योजनाओं का लाभ मिल सके। मंत्री ने योजनाओं की स्वीकृति में हुई देरी की जाँच कर 3 दिनों के भीतर रिपोर्ट देने तथा पिछले 3 वर्षों की जिलावार प्रगति रिपोर्ट पेश करने के भी निर्देश दिए। बिहार सरकार ने बेतिया राज्य की 7272.16 एकड़ भूमि को राज्य 7 करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने इस संबंध में 6 जिलों पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, गोपालगंज, सारण, सिवान और पटना की भूमि के लिए अधिसूचनाएं जारी की हैं। विभाग के अनुसार यह कार्रवाई बेतिया राज संपत्तियों को राज्य 7 करने संबंधी अधिनियम 2024 और नियमावली 2026 के तहत की जा रही है। रेल मंत्रालय ने टिकट बुकिंग को आसान और अधिक सुविधाजनक बनाने के लिए भारतीय रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन IRCTC की वेबसाइट का नया संस्करण जारी किया है। IRCTC ने इस संस्करण में 4 सुधार किए हैं। एक रिपोर्ट।
13: इन सुधारों में पहला सुधार है कि इसमें कैप्चा, पॉपअप या ध्यान भटकाने वाली दूसरी चीजें नहीं हैं। दूसरा, यात्री सभी क्लास में सीट की उपलब्धता देख सकते हैं। तीसरा, इसमें टिकट बुक करने के लिए जरूरी स्टेप्स की संख्या कम है और वेबसाइट अब यात्रियों की जानकारी सेव कर लेगी, जिससे दोबारा बुकिंग करना आसान हो जाएगा। मौजूदा वेबसाइट के होम पेज पर भी इस नए बीटा वर्जन का लिंक उपलब्ध है। मंत्रालय ने उपयोगकर्ताओं से इसके आसान फीचर्स पर फीडबैक देने का अनुरोध किया है। IRCTC वेबसाइट पहली बार 2002 में शुरू की गई थी और अभी यह हर दिन औसतन लगभग 14.5 लाख टिकट की बुकिंग संभालती है। सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
11: बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव के लिए आज नाम वापसी का अंतिम दिन है। नामांकन पत्रों की जांच में कुल 26 उम्मीदवारों के पर्चे वैध पाए गए थे। वहीं जांच में जनशक्ति जनता दल की वीणा मानवी समेत 14 उम्मीदवारों के पर्चे रद्द हो गए थे। प्रमुख उम्मीदवारों में एनडीए की ओर से भाजपा के नीरज कुमार, राजद से रेखा कुमारी और जन स्वराज पार्टी से प्रशांत किशोर शामिल हैं। उपचुनाव के लिए मतदान 30 जुलाई को होगा और मतों की गिनती 3 अगस्त को की जाएगी। शेष समाचार एक अंतराल के बाद।

समाचारों में आपका फिर स्वागत है। प्रदेश में मॉनसून पूरी तरह सक्रिय बना हुआ है। मौसम विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार अगले एक सप्ताह तक राज्य में बारिश की परिस्थितियां बनी रहेंगी। विभाग ने आज दरभंगा और मुजफ्फरपुर जिले में कुछ स्थानों पर भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। वहीं राज्य के कई हिस्सों में तेज हवा के साथ मेघ गर्जन और वज्रपात का अलर्ट है। हालांकि पटना समेत आसपास के जिलों में कम बारिश से गर्मी और उमस की स्थिति बनी हुई है। इधर पिछले 24 घंटों के दौरान सिवान जिले के महाराजगंज में सबसे अधिक 81.2 मिलीमीटर बारिश हुई है। नेपाल में हो रही भारी बारिश के चलते गंडक, बागमती, कोसी और कमलावला नदियों के जलस्तर में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। गंडक नदी का जलस्तर गोपालगंज के टुमरिया घाट में खतरे के निशान से 34 सेंटीमीटर ऊपर चला गया है। वहीं बागमती नदी रून्नी सैदपुर और बेनीबाद में लाल निशान से ऊपर बनी हुई है। कमलावला नदी का जलस्तर झंझारपुर में खतरे के निशान से 40 सेंटीमीटर ऊपर रिकॉर्ड किया गया। वहीं कोसी नदी खगड़िया के बलतारा में लाल निशान से 42 सेंटीमीटर ऊपर चली गई है। नदियों के जलस्तर में बढ़ोतरी से सुपौल, मधेपुरा, सहरसा, खगड़िया, अररिया, पूर्णिया, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण और दरभंगा जिले के कई निचले इलाकों में पानी फैल गया है। पूर्वी चंपारण के भलुवाहिया गांव के पास तिलावे नदी का बांध टूटने से सैकड़ों एकड़ धान की फसल जलमग्न हो गई है। वहीं पश्चिम चंपारण में वाल्मीकि नगर गंडक बराज से पानी छोड़े जाने के बाद कई गांवों में बाढ़ के हालात उत्पन्न हो गए हैं। दरभंगा में कमलावला नदी में उफान से कई गांवों का सड़क संपर्क टूट गया है और विद्यालयों में पठन पाठन प्रभावित हुआ है। प्रशासन ने प्रभावित क्षेत्रों में राहत और निगरानी तेज कर दी है तथा लोगों से सतर्क रहने की अपील की है। बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग ने नव स्थापित 211 डिग्री महाविद्यालयों में सहायक प्राध्यापक की नियुक्ति के लिए संशोधित अधिसूचना जारी की है। अधिसूचना के अनुसार अब संविदा आधारित सहायक प्राध्यापक के 2532 पदों पर भर्ती की जाएगी। आयोग के अनुसार यह बदलाव उच्च शिक्षा विभाग से प्राप्त संशोधित अधियाचना के आधार पर किया गया है। इससे पहले इस पद के लिए 3687 पदों पर बहाली के लिए विज्ञापन जारी किया गया था। देश भर में आज भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा निकाली जा रही है। पटना में इस्कॉन की ओर से भगवान जगन्नाथ की भव्य रथ यात्रा निकाली जाएगी। आषाढ़ शुक्ल पक्ष की द्वितीया के अवसर पर आयोजित इस धार्मिक यात्रा में भगवान जगन्नाथ, बड़े भाई बलराम और बहन सुभद्रा रथ पर विराजमान होकर भक्तों को दर्शन देंगे। फीफा विश्व कप फुटबॉल में मौजूदा चैंपियन अर्जेंटीना ने दूसरे सेमीफाइनल में इंग्लैंड को 2-1 से हरा दिया है। अब फाइनल मुकाबले में रविवार को अर्जेंटीना का सामना स्पेन से होगा। इधर क्रिकेट में भारत और इंग्लैंड के बीच 3 मैचों की एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय श्रृंखला का दूसरा मैच आज शाम 5:30 बजे से कार्डिफ में खेला जाएगा। राजधानी पटना में सरकारी नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी करने वाले साइबर गिरोह के 3 सदस्यों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। ये सभी बीपीएससी सिपाही भर्ती और बिहार पुलिस सेवा आयोग में नौकरी दिलाने का झांसा देकर बेरोजगार युवकों से लाखों रुपए ठगते थे। सारण जिले के गड़खा थाना क्षेत्र में पुलिस ने छापेमारी कर एक मिनीगन फैक्ट्री का उद्भेदन किया है। मौके से 2 पिस्टल, 4 मैगजीन और हथियार बनाने के उपकरण के साथ एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया। भोजपुर जिले के जगदीशपुर नगर पंचायत में विकास योजनाओं में कथित वित्तीय अनियमितताओं के मामले में नगर विकास विभाग ने संबंधित अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराने का निर्देश दिया है। पूर्वी चंपारण के मोतिहारी में पुलिस ने कुख्यात अपराधी नरेश पांडे के ठिकाने पर छापेमारी कर 16,71,000 रुपये नकद, नेपाली मुद्रा, हथियार, कारतूस, सोने चांदी के आभूषण और जमीन के कागजात बरामद किए हैं। कार्रवाई के दौरान नरेश पांडे फरार हो गया जबकि उसके सहयोगी उज्ज्वल कुमार को गिरफ्तार कर लिया गया है।
उत्तर प्रदेश के नोएडा सेक्टर 66 में इलेक्ट्रिक स्कूटी की चार्जिंग के दौरान हुए विस्फोट से 5 मंजिला मकान में आग लग गई। इस हादसे में मुजफ्फरपुर की महिला समेत 2 लोगों की मौत हो गई। अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां। आज के सभी समाचार पत्रों ने राज्य मंत्रिपरिषद के फैसलों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। हिन्दुस्तान की सुर्खी है, ग्राम पंचायत कर दर शुल्क नियमावली 2026 को मंजूरी, गांव में 50 रूपये से 5,000 रूपये तक होल्डिंग टैक्स लगेगा। दैनिक जागरण ने लिखा है, 2 और 3 पहिया वाहनों पर 1% बढ़ा रोड टैक्स। प्रभात खबर ने मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के हवाले से लिखा है, भागलपुर में AI और कंप्यूटर साइंस यूनिवर्सिटी खुलेगी। दैनिक भास्कर ने केंद्रीय कैबिनेट के फैसले को प्रमुखता देते हुए लिखा है, सेमिकॉन 2.0 मंजूर, मिसाइल से मोबाइल तक की हर चिप भारत में बनेगी। राष्ट्रीय सागर के शब्द हैं, भारत पर 100% टैरिफ लगा सकता है अमेरिका, रूस से तेल खरीदने वाले देशों पर शिकंजा कसने की तैयारी। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश में नए परिसीमन के आधार पर होंगे पंचायत चुनाव। राज्य मंत्रिपरिषद ने परिसीमन के प्रस्ताव को दी मंजूरी। राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग ने राज्य के सरकारी और निजी मेडिकल कॉलेजों में MBBS के कुल 740 नई सीटों को मंजूरी दी। रेल मंत्रालय ने टिकट बुकिंग को आसान बनाने के लिए IRCTC की वेबसाइट का नया संस्करण जारी किया। और नेपाल में लगातार हो रही भारी बारिश के चलते गंडक, बागमती, कोसी और कमला बलान नदी उफान पर निचले इलाकों में फैला पानी। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन दोपहर 2 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

0: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
1: सुनिए,
2: आपके शहर गोपालगंज में खुल गया है श्री कृष्णा साड़ी,
1: जिसमें आपको मिल रहा है सस्ते दामों में एक से बढ़कर एक डिजाइनों के लहंगा, फैंसी साड़ी, लेडी सूट, क्रॉप टॉप एवं कुर्ती।
2: श्री कृष्णा साड़ी दुकान है केडिया भवन, केडिया लेन, मेन रोड, गोपालगंज।
1: एक बार सेवा का मौका जरूर दें श्री कृष्णा साड़ी को।
3: राधा, तुमने अपने चाचा जी के अपेंडिक्स का ऑपरेशन कहाँ कराया था?
4: सम्राट हॉस्पिटल में, वो भी कम से कम खर्च में।
1: क्या आप भी ऑपरेशन कराना चाहते हैं? तो घबराए नहीं, आज ही आए सम्राट हॉस्पिटल, जहाँ है डॉक्टर कुंदन सिंह MBBS MS जनरल एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जन, जो सदर हॉस्पिटल गोपालगंज में भी सेवा देते हैं।
5: हमारे यहाँ दूरबीन विधि से भी ऑपरेशन किया जाता है।
1: आज ही हर तरह के सफल ऑपरेशन के लिए आए सम्राट हॉस्पिटल, जो है कमला राय कॉलेज के पश्चिम RR रोड, गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 9974434468 पे।
6: तब रामू काका, हई इलेक्ट्रिक के इतना सारा सामान कहाँ से खरीद के ले आओ तनी?
7: ये सब सामान संतोष इलेक्ट्रॉनिक्स से लेके आओ तनी बाबू।
6: अरे ये सामान तो एक नंबर बुझाता और काफी डिजाइनदार भी बा।
7: अरे हाँ बाबू, अपना गोपालगंज में इतना अच्छा दुकान कहाँ बा? संतोष इलेक्ट्रॉनिक्स में सस्ता में एक नंबर के सामान मिलेला।
6: हम तो अपना नौका घरवा खातिर इलेक्ट्रॉनिक के सारा सामान दिल्ली से लेके आवे के सोचत रहनी, लेकिन हम काले संतोष इलेक्ट्रॉनिक्स से जाके अपन पूरा सामान ले आए।
7: अरे हाँ बबुआ, संतोष इलेक्ट्रॉनिक्स से लिया या? दिल्ली जाके पैसा बर्बाद कैले से का फायदा?
4: संतोष इलेक्ट्रॉनिक हाउस, जहाँ सस्ते दामों में बेस्ट क्वालिटी के इलेक्ट्रिक के सारे सामान मिलते हैं।
6: हमारा पता है चिराई घर पेट्रोल पंप के सामने, संतोष फर्नीचर के नीचे, कॉलेज रोड, गोपालगंज।
8: Now pick it up.
9: Hello.
8: Now pick your phone up.
9: Hello.
8: Pick it up.
9: Hello.
8: Now pick your phone up.

0: हेलो, नमस्ते, नमस्कार, कैसे आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। मैं हूं आप सबकी दोस्त भारती और आप सुन रहे हैं रेडियो रंजन 90.4 FM। और समय हो चुका है हेलो माय चॉइस कार्यक्रम का, तो बिल्कुल समय के साथ हाजिर हूँ। यदि आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो नंबर है 8029-94911। जी हाँ, 8029-94911 पर कॉल करके जुड़ सकते हैं और अपनी फरमाइश सुन सकते हैं। और बढ़ते हैं आगे और लेते हैं पहला कॉल और सुनते हैं इनकी फरमाइश।
1: जी नमस्ते।
2: नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो 90.4 FM में।
1: बाल भी सुंदर से
2: है आप?
1: ठीक है, अपन बताइए
2: और क्या हो रहा है
1: फिलहाल।
2: अच्छा,
1: वर्षा पानी।
2: अच्छा, सॉन्ग किसी को सुनाना भी है?
1: जी जी, बारिश हुआ की नहीं? आज
2: हुआ है, इधर भी बारिश हुआ है। चलिए फिर गाना प्ले कर रहे हैं, सुनते रहिए सबके साथ रेडियो 90.4 FM।

0: बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रंजन 90.4 एफएम।
1: हेलो रितिक कुमार, हाल चाल?
0: अच्छा जी, क्या हाल चाल है आपका?
1: जी अपना सुनिए, बारिश हुई?
0: हाँ हाँ, बारिश तो हुआ है आज, थोड़ा थोड़ा
1: थोड़ा थोड़ा इधर हुआ। गाना सुनिए।
0: बता दीजिए कौन सा गाना सुनिएगा।
1: बदल गई है दुनिया।
0: क्या?
1: हिंदी बदल गई है दुनिया, दुश्मन बन गया है।
0: और गाना किसी को डेडिकेट भी है?
1: पहले आपको सुनी मैं
0: जी, बिल्कुल। तो गाना प्ले कर रहे हैं और सुनते रहिए सबके साथ रेडियो रंजन 90.4 FM।

0: नन्ना मुन्ना लाही हूँ, देश का सिपाही हूँ।
1: रुको रुको बेटा, अब तो बड़ा अच्छा गा रहे हो।
0: हाँ अंकल, मेरे टीचर मुझे अच्छे से याद करने के लिए बोले हैं।
1: अच्छा, तो कौन से स्कूल में पढ़ते हैं आप?
0: मैं पढ़ता हूँ श्री भारती एकेडमी में।
2: श्री भारती एकेडमी जो है CBSE नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त स्कूल।
3: हमारे यहाँ बोलचाल के साथ ही बच्चों को खेल खेल में पढ़ाया जाता है। इसके साथ ही छात्रवास के अलावा आने और जाने के लिए परिवहन की भी सुविधा उपलब्ध है।
2: श्री भारती एकेडमी आपके बच्चों को बनाता है होनहार और देता है उनके फ्यूचर को एक नई उड़ान।
3: आज ही एडमिशन के लिए आए चैन पट्टी के उत्तर ग्राम एक डेरवा तिलंगही मैदान के पूरब गोपालगंज।
2: हमारा जूनियर ब्रांच सरिया वार्ड नंबर 5 हनुमानगढ़ी गोपालगंज में है।
3: जानकारी है तो कॉल करें 6205-62112 पे।
4: कई दिनों से पेट के निचले हिस्से में बहुत दर्द है। रिपोर्ट में पथरी और बच्चेदानी की भी दिक्कत बताई गई है।
5: डॉक्टर ने कहा है ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन जगह ऐसी हो जहां अच्छा सर्जन भी हो और महिला डॉक्टर भी।
6: अब हर चिंता का समाधान है शल्यम हॉस्पिटल।
4: RR मोड़ से करीब 800 मीटर पूरा भोजपुरवा में NH 27 पर दक्षिण साइड गोपालगंज में स्थित शल्यम हॉस्पिटल।
6: यहां आयुष्मान कार्ड से 5 लाख रुपए तक मुफ्त ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
4: सर्जरी विभाग हो या स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग, इलाज होता है अनुभवी विशेषज्ञों द्वारा।
6: डॉक्टर मनोज कुमार गुप्ता MBBS MS सर्जरी लैप्रोस्कोपिक सर्जन और डॉक्टर डेजी सिन्हा MBBS MD DNB स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
4: शल्यम हॉस्पिटल में उपलब्ध है आधुनिक मशीनें और एक ही छत के नीचे OPD IPD ICU मॉड्यूलर OT अल्ट्रासाउंड पैथोलॉजी लैब फार्मेसी और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा।
6: आज ही विजिट कीजिए शल्यम हॉस्पिटल मल्टी स्पेशलिटी एंड ट्रॉमा सेंटर RR मोड़ से करीब 800 मीटर पूरा भोजपुरवा NH 27 गोपालगंज।
4: कॉल करे 70-70-75-63-100 या 70-70-75-42-100 या हमारी वेबसाइट पर विजिट करे डब्ल्यू डब्ल्यू डब्ल्यू

0: सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, गुवाहाटी, माँ कामाख्या धाम, दार्जिलिंग, सिलीगुड़ी, गंगटोक, जनकपुर, अरेराज होते हुए वापस गोपालगंज।
1: गोपालगंज जिले के श्रद्धालु अब घर बैठे अपनी तीर्थ यात्रा के लिए वाहन बुक करा सकते हैं।
0: बिचौलियों से बचे और सीधे हमारे कार्यालय या बुकिंग नंबर पर संपर्क करें।
1: बुकिंग नंबर 9155548507 या 9162933538।
0: हेल्पलाइन नंबर 9934498845।
1: दीपक राज टूर एंड ट्रेवल्स, मुख्य कार्यालय चिराई घर पेट्रोल पंप के पास गोपालगंज, उपशाखा NH27 काली स्थान बंजारी गोपालगंज।
0: बोलबम, हर हर महादेव।
2: अब आपको कॉस्मेटिक के लिए और परेशान होने की जरूरत नहीं, क्योंकि अब गोपालगंज में खुल गया है श्रृंगार वाटिका, जहां मिलते हैं डिजाइनर और ब्रांडेड प्रोडक्ट्स जैसे लैक्मे, शुगर, नायका, कलाबा जैसी ढेर सारी कंपनियां। साथ ही साथ डिजाइनर पर्स, होम डेकोरेशन, टॉयज एंड गिफ्ट्स, ब्राइडल ज्वेलरी और चूड़ियों की नए कलेक्शंस। और तो और वहां इंपोर्टेड परफ्यूम्स भी मिलते हैं। यहां हर शॉपिंग पे गिफ्ट्स और 5-25% तक का डिस्काउंट भी मिल रहा है। एक सामान लेना हो या शादी की शॉपिंग करनी हो, इससे अच्छी जगह कोई नहीं, श्रृंगार वाटिका।
3: आज ही आए चंद्र गोखुल रोड नियर पंजाब नेशनल बैंक गोपालगंज, या कॉल करें 86034-48652 पे।
4: के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने के फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029-94-911। जी हाँ, 8029-94-911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
5: हेलो
6: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो 90.4 FM में।
5: जी नमस्कार मैम।
6: नमस्कार,
5: मैं पप्पू ठाकुर थाना कटे जिला गोपालगंज से बोल रहा हूँ।
6: जी जी, कैसे हैं आप?
5: बहुत बढ़िया है जी, आप बताइए कैसे हैं?
6: हम भी अच्छे हैं।
5: बारिश हुई है मैम?
6: हाँ हाँ, आज तो बारिश हुआ है हल्का हल्का।
5: आज सुबह बारिश हुआ है हमारे यहाँ से, भी बदली छाई हुई है चारों ओर। अपेक्षा है की और बारिश हो जाए।
6: जी
5: सबको मैम बोल रही
6: है।
5: और तो बताइए कैसे हैं?
6: मैं अच्छी हूँ, आप सब बताइए आप कैसे हैं?
5: बढ़िया है, अब दो चार रोज में हम लोग यहाँ भी रोपनी स्टार्ट हो जाएगा।
6: जी हमारे यहाँ भी देखिए, दो चार दिन हमारे यहाँ भी होगा।
5: हाँ हाँ, नहीं इधर भी हो रहा है, जिसका पहले बिजली गिरा हुआ है उन लोगों का हो रहा है, हम लोग का छोटा छोटा है तो अभी नहीं हो रहा है, लेकिन दो चार दिन के अंदर हो जाएगा।
6: नहीं रोपाई होगा उस टाइम और हो जाए तो।
5: जी जी जी, सूखने का चांस नहीं रहेगा ना, अभी रोपाई हो जाएगा तो लपट पकड़ लेगा वो। गाना की शुरुआत दीजिए, पुराना मूवी का गाना है दीवाना, राज कपूर था आपका, पते की बात कहेगा जब भी कहेगा दीवाना, ये सॉन्ग है।
6: जी जी, और सॉन्ग किसी को डेडिकेट
5: करना? हाँ, जितने पुराने लिसनर्स है सब लोग सुनने वाले, हो सकता है कि कुछ नए लोग न सुने ये गाने को, लेकिन ये गाने में बहुत रहस्य छिपा है, लोगों को सुनना चाहिए ये गाना, बहुत अच्छा गाना है, जरूर प्ले करिएगा। सही है मैडम?
6: जी जी बिल्कुल प्ले करेंगे। तो फिर गाना प्ले कर रहे हैं, सुनते रहिए सबके साथ रेडियो 90.4 FM।

0: हेलो
1: हेलो नमस्कार मैडम।
0: नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 FM में।
1: जी मैं डल पास में बोल रहा हूँ।
0: जी जी, कैसे हैं आप?
1: मैं बानी का हूँ, आप कैसे हो?
0: हम भी अच्छे हैं।
1: जी मुझे गाना सुनना था एक मैडम।
0: बता दीजिए।
1: मुझे गाना सुनना था अरफान फिल्म का।
0: गाना कौन सा है?
1: गाने का बोल है परदेश से जाके परदेसिया भूल में जाना पिया।
0: ओके, और सॉन्ग किसी को डेडिकेट दिया है?
1: जी सबसे पहले तो आपको मैं डेडिकेट करना चाहता हूँ और जितने भी श्रोतागण है हमारे रिमझिम का सभी को हमें कुछ सुनना चाहता हूँ मेरे परिवार।
0: जी जी बिल्कुल, चलिए फिर गाना प्ले कर रहे हैं, सुनते रहिए सबके साथ रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
1: धन्यवाद मैडम।

0: घुटना एवं घुटना प्रत्यारोपण, आर्थ्रोस्कोपिक या दूरबीन विधि से घुटने के टूटे लिगामेंट की सर्जरी, एलिजारोव रशियन विधि से हाथ पैर की लंबाई बढ़ाना, स्पाइन सर्जरी और हड्डी जोड़ की सभी समस्याओं का समाधान।
1: मिले वरिष्ठ सर्जन डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से। संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एवं सर्जिकल सेंटर, रुस्तमपुर ढाला गोरखपुर।
0: आज ही संपर्क करें 7388894700 या 9198886973।
2: अरे मुन्नी तुम आ गई, चल मेरा कान का झुमका ला।
3: ओ माय गॉड, आज फिर से भूल गई।
2: मैं तुमसे कितनी बार बोली हूँ कि अब महिलाओं के सारे सामान एक ही छत के नीचे नाइस गैलेक्सी में मिल रहा है।
3: सॉरी यार, कल पक्का नाइस गैलेक्सी में जाऊंगी।
4: महिलाओं की स्पेशल दुकान नाइस गैलेक्सी,
3: आर्टिफिशियल फ्लावर, आर्टिफिशियल गहने, सौंदर्य प्रसाधन, गृह कार एवं गृह सज्जा के सामान के साथ गिफ्ट, फूलों का गुलदस्ता एवं चांदनी का विशाल भंडार हमारे यहाँ मौजूद है।
4: तो अगर आपको कुछ अच्छा कुछ अलग चाहिए हो तो आज ही आए नाइस गैलेक्सी, हजियापुर रोड एक्सिस बैंक के सामने, तड़कुल के पास, गोपालगंज।
3: याद रहे, शादी विवाह, जन्मदिन या किसी भी शुभ अवसर पर गिफ्ट और सजाने का सारा सामान थोक एवं खुदरा मिलता है।
4: साथ ही प्लास्टिक के सारे सामान भी उपलब्ध हैं।
5: इतना परेशान क्यों दिख रही हो मेघा?
6: आसपास हर जगह चाचा जी का इलाज करा लिया, अब लगता है उन्हें दिल्ली लेकर ही जाना पड़ेगा।
5: अरे अपने गोपालगंज में गोरखपुर, पटना और दिल्ली जैसे बेहतर मेडिकल सुविधाओं के साथ खुल गया है एम्स के पूर्व चिकित्सक डॉक्टर अभिषेक रंजन जी के देखरेख में जिले का पहला वेंटिलेटर युक्त सक्षम हॉस्पिटल, जहां पर 24 घंटे आईसीयू इमरजेंसी सेवा, एक्सपर्ट मेडिकल टीम द्वारा विभिन्न रोग जैसे हृदय रोग, शुगर, दमा, नस रोग, लकवा और पेट से जुड़ी गंभीर बीमारियों का अत्याधुनिक मशीनों के द्वारा सफलतापूर्वक इलाज किया जा रहा है।
6: आज विजिट करें सक्षम हॉस्पिटल, कमला राय कॉलेज रोड, इंडियन गैस एजेंसी के बगल में, गांधी टेक्निकल कॉलेज के सामने, डॉक्टर कॉलोनी, गोपालगंज। कॉल करें 7050061444 या 7870331444।
7: अरे माँ, ये दांत का दर्द तो जान ले लेगा, क्या करूँ?
8: अब चिंता छोड़िए, गोपालगंज में है महावीर डेंटल एंड मैक्सिलोफेशियल ट्रॉमा केयर, मल्टी स्पेशलिटी डेंटल और फेस क्लिनिक, जहां दांत, जबड़े और चेहरे से जुड़ी हर समस्या का आधुनिक इलाज उपलब्ध है।
9: यहां सेवा दे रहे हैं गोपालगंज के फर्स्ट MDS डॉक्टर पल्लव राज, वरिष्ठ जबड़ा एवं फेस सर्जन और कैंसर रोग विशेषज्ञ, साथ में डॉक्टर अभिलाषा अग्रवाल, दंत एवं मुख रोग विशेषज्ञ और कॉस्मेटिक डेंटल सर्जन।
8: यहां टेढ़े मेढ़े दांत, रूट कैनाल, चेहरे और मुंह से जुड़ी सभी समस्याओं का विशेषज्ञ इलाज किया जाता है।
9: ध्यान दे, आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए टूटे हुए जबड़े और मुंह का कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का मुफ्त इलाज उपलब्ध है।
8: पता, शनिवार और रविवार महावीर मेडिकल हॉल, अंबेडकर चौक, हॉस्पिटल रोड, गोपालगंज। अन्य दिन केडिया मैक्सिलोफेशियल एंड कॉस्मेटिक केयर, मुंशी प्रेमचंद पार्क के पास, बेतिया हाता, गोरखपुर।
9: हर दिन दोनों क्लिनिक पर डॉक्टर पल्लव राज और उनकी विशेषज्ञ टीम द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है।
8: संपर्क करें 8470103992 या 9765665750।
10: Now pick your phone up.
11: Hello?
10: Pick it up, pick it up.
11: Hello?
10: Now pick your phone up.
11: Hello?
12: Jab phone ring de bajte hai to kehte hai hello.
13: के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने के फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029994911। जी हाँ, 8029994911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
14: जी बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिम जिम 90.4 FM में।
15: नमस्ते। अरे 12 घंटे तुम परेशान थे, 11 बजे सुबह हो गया क्या?
14: नहीं नहीं, अभी तो 15 हो रहा है और 15 मिनट रिकॉर्ड होगा। मेरा बढ़िया, आप बताइए आप कैसे हैं?
15: मेरा भी ठीक है, आज तो थोड़ा राहत है।
14: जी जी, आज थोड़ा राहत है, बारिश हुआ है ना थोड़ा थोड़ा, इसीलिए।
15: फिल्म का नाम है नाम
14: और गाना कौन सा है?
15: गाना ये है कल चला जाएगा।
14: और सॉन्ग किसी को
15: बहुत है वो गुड़िया और सूरज विकास रंजीत है, मेरा मोहम्मद डरमा, लाल बाबू है मैंने डरमा।
14: हाँ हाँ, चलिए बढ़िया है। तो गाना प्ले कर रहा है, सुनते रहिए सबके साथ रेडियो रिमझिम 90.4 FM।

0: हेलो,
1: हेलो, सलामकुम।
0: वालेकुम अस्सलाम। बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिंजन 90.4 FM में। आज थोड़ा मौसम ठीक है, बारिश हुआ है ना, इसीलिए
1: बारिश थोड़ा सा बढ़ा।
0: चलिए कम से कम उतना भी तो हुआ।
1: हाँ, उतना तो हो गई, बहुत बहुत बड़ी होते से पंजी आ गई बा। हाँ सर, वो गाना सुना दी हमने।
0: बता दी कौन सा गाना सुने।
1: रामचंद्र कह गए सिया से एक दिन कलयुग आएगा, गोपी फिल्म का।
0: जी जी
1: हाँ।
0: और ये सब ठीक बा ना।
1: हाँ सब ठीक बा, आशीर्वाद बा।
0: चलिए ठीक है, क्या काम बा। तो फिर गाना प्ले कर रहे हैं, सुनते रहिए सबके साथ रेडियो रिंजन 90.4 FM।
1: हाँ ठीक बा।

0: सोहन, मैं बहुत परेशान हूँ। मुझे तुरंत अपने भाई को कुछ पैसे भेजने हैं, लेकिन बैंक में तो इतनी लंबी लाइन है कि घंटों लग जाएंगे और मेरा जियो सिम भी एक्टिवेट नहीं हो रहा। अब मैं क्या करूँ?
1: अरे टीना, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। चलो मेरे साथ माया क्लासिकल में आधार और बैंक से आसानी से पैसे निकाला जाता है और किसी भी खाते में तुरंत भेजा जा सकता है बिना किसी झंझट के। और सिम की बात कर रही हो ना, BSNL, जियो, एयरटेल, VI, जो भी चाहिए तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा।
0: मुझे कुछ जरूरी PDF प्रिंट करवाने हैं, वहाँ ये सब हो जाएगा ना?
1: बिल्कुल, माया क्लासिकल में PDF, लेमिनेशन, प्रिंट, फोटोकॉपी सब कुछ मिलेगा। तुम्हें एक धमाकेदार ऑफर भी बताता हूँ, फोटो स्टेट सिर्फ ₹1 प्रति प्रिंट आउट, कम से कम 50 पेज, हर ग्राहक को शानदार गिफ्ट भी मिलता है। माया क्लासिकल में सब कुछ है। माया क्लासिकल, सिनेमा रोड, शिव मंदिर के ठीक सामने, गोपालगंज। प्रोपराइटर सोनू जी। संपर्क करें 99-399-66-999। तुम आज भी गुमसुम क्यों बैठी हो?
0: क्या बताऊं, 15 साल शादी के हो गए और संतान सुख मिला नहीं। कई जगह इलाज कराया लेकिन कोई फायदा नहीं। अब समझ नहीं आ रहा क्या करूं?
2: अरे मेरे साथ एक बार चलो डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी के पास, जादवपुर में। कई निसंतान माताओं का इलाज उन्होंने सफलता पूर्वक किया है।
0: ध्यान दे, स्त्री रोग, बांझपन, ल्यूकोरिया, दिमाग की कमजोरी, याददाश्त की कमी, पेट रोग, गैस्ट्रिक, लीवर में सूजन, बवासीर, कान रोग, पुराना बुखार, नस रोग, किडनी की पथरी, पीत की थैली में पथरी, पेशाब की थैली में पथरी, गठिया, पुराना जोड़ों का दर्द, साइटिका, चर्म रोग एवं पुराने असाध्य बीमारियों का इलाज आयुर्वेदिक विधि से 30 वर्षों से सफलता पूर्वक किया जा रहा है।
2: आज ही आएं डॉक्टर गोरखपुरी निवास, डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी, जादवपुर मेन रोड, गोपालगंज। संपर्क करें 99-554-97-644।
3: ठक ठक।
4: काजी, आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
5: अच्छा मिला ही नहीं।
4: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें, अब चलिए सीधे कमल श्री में।
6: जी हाँ, कमल श्री। याद रखें, सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
4: आप भी आए कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, बारी मार्केट, गोपालगंज।
6: याद रहे, सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ, सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है।
7: अब बेटा, बहू घर आने वाली है, सोच रही हूँ कुछ सोने की नई ज्वेलरी ले ली जाए, पर भरोसे की दुकान।
8: माँ, अब घबराइए नहीं, चलते हैं मास्टर साहब की जेवर की दुकान, गुप्ता ज्वेलर्स, BIS अप्रूव्ड, शानदार डिजाइन और असली ज्वेलरी की गारंटी।
9: अपने सपनों की खूबसूरती के लिए गुप्ता ज्वेलर्स ही चुने। सिल्वर, गोल्ड या डायमंड, हर ज्वेलरी BIS अप्रूव्ड और किफायती दाम के साथ। विश्वास की परंपरा, नई डिजाइन का खजाना, बस गुप्ता ज्वेलर्स में।
10: आज ही आए गुप्ता ज्वेलर्स, मास्टर साहब की जेवर की दुकान, चंद्र गोखो लोड, गोपालगंज। मोबाइल नंबर 94-309-45-651 या 97-097-06-575।
9: ये सफेद दाग बढ़ता ही जा रहा है, लोगों की नजरें, बातें, सब कुछ बदल गया है। अरे क्यों घबराती हो, गोपालगंज में एक जगह है जहां लोग सिर्फ हिम्मत ही नहीं उम्मीद भी लेकर लौटते हैं।
10: हाँ, अब सफेद दाग का समाधान है। चरक सफेद दाग स्पेशलिस्ट डॉक्टर इरशाद अहमद द्वारा एडवांस्ड एक्यूपंक्चर मशीन टेक्निक से
9: सिर्फ 1-2 सप्ताह में रोग में राहत महसूस करें। आज ही संपर्क करें डॉक्टर इरशाद अहमद, ल्यूको क्लिनिक, हर शनिवार, समय सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक।
10: पता, जंगलिया मोहल्ला, नूर मेडिकल के पास, गोपालगंज। कॉल करें 94-512-11-001।
11: डॉक्टर अनुज मिश्रा, न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज। ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
12: Now pick your phone up.
13: ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने के फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029-94-911। जी हाँ, 8029-94-911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
14: हेलो
15: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 FM में।
14: इसके लिए दिल से धन्यवाद है भारती जी को, और सुनाइए कैसे हैं।
15: हम अच्छे हैं, आप बताइए आप कैसे हैं।
3: मैं भी बहुत अच्छा हूँ। मैं रामलीलास प्रसाद कुशवाहा बोल रहा हूँ, क्रीतपुर बजा पूर्वी चंपारण से।
15: जी और बताइए क्या हो रहा है।
3: जी अभी तो दुकान पे हूँ और आपकी कोयल जैसी मधुर आवाज सुनकर बातें कर रहा हूँ।
15: अच्छा जी,
3: और मौसम कैसा है उधर?
15: मौसम अभी तो बारिश हुआ है तो ठीक है।
3: जी जी वैसा ही मौसम, 2 घंटा पहले हल्का बारिश हुई है इधर, मौसम सुहाना बना हुआ है।
15: चलिए बढ़िया है, कुछ तो राहत मिला।
3: जी जी गर्मी से कुछ राहत मिली है।
15: और बताइए कौन सा गाना सुनना है आपको?
3: जी फिल्म का नाम है अंदाज और गाने का बोल है आएगा मजा बताता।
15: अच्छा चलिए ठीक है, और गाना किसी को डेडिकेट भी है?
3: जी सबसे पहले भारती जी आपको सुनाना चाहता हूँ।
15: जी
3: और दोस्त लोग संजय शाहजी, दीपक कुमार दास जी, रामचंद्र मुखिया जी, अंचल कुमार जी, कंसराज जादू जी, पारसनाथ कुशवाहा जी, नगीना प्रसाद कुशवाहा जी, धनलाल प्रसाद कुशवाहा जी, राजा बाबू उस विकास, अभय कुमार, सुधीर कुमार, अजय कुमार, आयु कुमार, सोनू कुमार, उपभोग प्रसाद कुशवाहा जी, रविन्द्र प्रसाद कुशवाहा जी और गोपालगंज जिले के संतरा कुशवाहा जी, काजल जी, गुड़िया जी, नेहा जी, मुस्कान जी, उदिता जी, सुजीता जी, सूर्यमोहन जी, नवीन सिंह जी, जितेंद्र जश्मी जी, दिलीप राम जी, राम कुमार पांडे जी और अभी भारती जी की प्रस्तुति कार्यक्रम सुन रहे सभी श्रोताबंधु को सुनाना चाहता हूँ।
15: जी चलिए बढ़िया, तो फिर गाना प्ले करते हैं।
3: जी धन्यवाद,
15: सुनते रहिए सबके साथ रेडियो 90.4।

0: हेलो
1: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रेंजम 90.4 FM में।
0: जी नमस्ते मैम।
1: नमस्ते,
0: विकास कुमार बोल रहा हूँ हिंसापुर से।
1: जी कैसे हैं आप?
0: बढ़िया हैं, आप कैसे हैं मैडम?
1: हम भी अच्छे हैं।
0: सोनी जी बोल रहे हैं ना?
1: नहीं
0: नहीं क्या
1: सच है, भारती ही है।
0: आज तो आपका आवाज हम पहचान गए कि हाँ सोनी जी बोल रहे हैं।
1: नहीं हम भारती बोल रहे हैं, सोनी जी तो उधर हैं आप।
0: और बताइए क्या हाल है मैडम?
1: मेरा बढ़िया है।
0: और बताइए खाना वाना हो गया?
1: हाँ हाँ खाना हो गया, तो आ गए दिल्ली?
0: हम भी आ गए अपना दिल्ली ना। अब यहाँ आने के बाद से मैडम मन नहीं लगता है।
1: जी, घर परिवार को छोड़ के जाने के बाद कहाँ मन लगता है।
0: बहुत याद आता है।
1: जी
0: जब काम में लग जाएंगे ना तो सब भुला जाएगा। हाँ आप लोग से बात रहेगा ऐसा कोई ना।
1: हाँ चलिए बढ़िया है,
0: आप लोग से तो बात आते रहेंगे हम लोग।
1: आज गाना बता दीजिए।
0: आज ओम सिंह के गाना सुनवा दीजिएगा तो होते प्यार हमारे कितना हम बताएंगे।
1: और सॉन्ग किसी को डेडिकेट भी है?
0: सबसे पहले आपको डेडिकेट करना चाहते हैं
1: जी,
0: जितना रेडियो सुनने वाले हैं सब।
1: ओके।
0: यहाँ पर मेरा दो चार साला है उनको लिए।
1: चलिए बढ़िया है।
0: वो भी गया है मार्केट में। आज जा रहा था वो तो कंपनी, लेकिन मैं रोक दिया। बोले कि नहीं भाई फोन नहीं लगेगा, रुक जाना। तो गया मार्केट से कुछ लाने के लिए खाने के लिए।
1: जी अभी नाश्ता नहीं हुआ है? हेलो,
0: नहीं अभी तो नाश्ता उसका नहीं हुआ अभी।
1: टाइम तो हो रहा है इतना ज्यादा, नाश्ता कर लेना चाहिए। अब तो भोजन का टाइम होने वाला है।
0: बात ये है ना, वैशाली जो वैशाली ट्रेन होता है ना, उस वैशाली ट्रेन से हम आए,
1: लेट से पहुंचे हैं।
0: तत्काल टिकट भी नहीं मिल रहा था तो हमको जर्नल में आना पड़ा। जर्नल में आने के बाद से जानते हैं कितना मुसीबत आ जाता है मैडम, बहुत ज्यादा मुसीबत झेलना पड़ता
1: है। ये तो बात है,
0: इंसान दुखे नहीं जाता है परदेश।
1: चलिए कोई नहीं, ठीक है फिर।
0: चलिए और सब बढ़िया है ना मैडम?
1: हाँ हाँ बढ़िया है। चलिए फिर गाना प्ले कर रहे हैं, सुनते रहिए सबके साथ रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
0: ओके मैडम, नमस्ते
1: नमस्ते।

0: जो लोग डायबिटीज से परेशान हैं, वो डरे नहीं, परहेज करे नहीं। वैद्य एसपी त्यागी जी आयुर्वेदिक दवा द्वारा शुगर यानी डायबिटीज का इलाज कम खर्च में सब कुछ खाते हुए सफलतापूर्वक कर रहे हैं। आप भी दवा खा खा कर इलाज करा कर निराश एवं परेशान हो गए हैं तो एक बार अवश्य मिले वैद्य एसपी त्यागी जी से। डायबिटीज के अलावा और सब बीमारी का इलाज जैसे
1: सभी प्रकार के नशा जैसे शराब, टैबलेट, इंजेक्शन, सिरप, गांजा, स्माइक के इलाज और गठिया, साइटी का, पथरी, कमर दर्द, घुटना दर्द, दमा, मिर्गी, दाद, दिनाए और सभी चर्म रोग एवं लिकोरिया, मासिक खराबी, बवासीर, पेट रोग, शुगर, गैस्ट्रिक, शीघ्र पतन, शुक्राणु में कमी, नपुंसकता, धातु चिंता और चर्म रोग में दाग, दिनाए, खुजली, एक्जिमा, सोराइसिस तथा
0: पथरी इत्यादि सभी रोगों का इलाज वैद्य एसपी त्यागी जी आयुर्वेदिक दवा द्वारा सफलतापूर्वक करते हैं।
2: वैद्य एसपी त्यागी जी से मिलने का पता
0: प्रत्येक शनिवार गोपालगंज बस स्टैंड थावे रोड भी मार्केट के बगल में कृष्णा जी के मकान में।
2: अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 99554943
0: और 9097160602।
3: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
4: कान में दर्द के मारे जान ही निकल रही है, कहाँ जाऊँ, किससे इलाज कराऊँ, कुछ समझ नहीं आ रहा।
5: इसमें इतना समझना क्या, आज ही चलो डॉक्टर एमडी सादाब के पास जो है ईएनटी स्पेशलिस्ट।
6: जी हाँ, उत्तर भारत के सबसे विश्वसनीय कान नाक एवं गले के विशेषज्ञ डॉक्टर एमडी सादाब पिछले 10 वर्षों से सिवान में सेवा दे रहे हैं, जो कि 10,000 से भी ज्यादा कान नाक गले के सर्जरी का अनुभव रखते हैं। साथ ही आयुष्मान भारत योजना के तहत स्वास्थ्य कार्ड धारक मरीजों का निःशुल्क में इलाज किया जाता है। तो आज ही पहुँचिए इस वक्त ईएनटी केयर सेंटर सिसवन ढाला के उत्तर आरके मॉडल स्कूल के बगल सिवान में।
7: ये सफेद दाग बढ़ता ही जा रहा है, लोगों की नजरें, बातें, सब कुछ बदल गया है। अरे क्यों घबराती हो, गोपालगंज में एक जगह है जहां लोग सिर्फ हिम्मत ही नहीं उम्मीद भी लेकर लौटते हैं।
8: हाँ, अब सफेद दाग का समाधान है। चरक सफेद दाग स्पेशलिस्ट डॉक्टर इरशाद अहमद द्वारा एडवांस्ड एक्यूपंक्चर मशीन टेक्निक से
7: सिर्फ 1 से 2 सप्ताह में रोग में राहत महसूस करें। आज ही संपर्क करें डॉक्टर इरशाद अहमद, ल्यूको क्लिनिक, हर शनिवार, समय सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक।
8: पता जंगलिया मोहल्ला नूर मेडिकल के पास गोपालगंज। कॉल करें 9452111001।
7: ओम नमः शिवाय।
8: सावन के पावन अवसर पर बाबा भोलेनाथ के दर्शन का सुनहरा अवसर लेकर आया है दीपक राज टूर एंड ट्रेवल्स गोपालगंज।
7: श्रद्धालुओं के लिए विशेष तीर्थ यात्रा एवं कांवर यात्रा की व्यवस्था। पहला रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, राजगीर होते हुए पुनः वापसी।
8: दूसरा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, तारापीठ, जगन्नाथपुरी, गंगा सागर, काली घाट, कोलकाता, रजरप्पा, राजगीर होते हुए वापस गोपालगंज।
7: तीसरा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, गया, बोधगया, वाराणसी, अयोध्या, गोरखनाथ मंदिर होते हुए वापस गोपालगंज।
8: चौथा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, गुवाहाटी, माँ कामाख्या धाम, दार्जिलिंग, सिलीगुड़ी, गंगटोक, जनकपुर, अरेराज होते हुए वापस गोपालगंज।
7: गोपालगंज जिले के श्रद्धालु अब घर बैठे अपनी तीर्थ यात्रा के लिए वाहन बुक करा सकते हैं।
8: बिचौलियों से बचे और सीधे हमारे कार्यालय या बुकिंग नंबर पर संपर्क करें।
7: बुकिंग नंबर 9155548507 या 9162933538।
8: हेल्पलाइन नंबर 9934498845।
7: दीपक राज टूर एंड ट्रेवल्स, मुख्य कार्यालय चिराई घर पेट्रोल पंप के पास गोपालगंज, उपशाखा NH27 काली स्थान बंजारी गोपालगंज।
8: बोलबम हर हर महादेव।
9: Now pick it up, hello. Now pick your phone up, hello. Pick it up, hello. Now pick your phone up, hello.
10: Jab phone ki ghanti bajti hai to kehte hain hello, hello, hello, hello, hello.
11: Break ke baad. बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार बुधवार और शुक्रवार को सुबह सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने के फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029494911। जी हाँ, 8029494911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
12: हेलो
13: हेलो, सलाम अलैकुम।
12: वालेकुम अस्सलाम, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रमजान 92.4 एफएम में।
13: जी मैम, मुझे गाना
12: बता दीजिए। कौन सा गाना सुनना है?
13: मुझे गाना सुनना है घर राजा परदेसी तेरे दीप जलाएंगे, ये वाला गाना।
12: और सॉन्ग किसी को डेडिकेट भी है?
13: जी, सबसे पहले आपको मासूम कौशर जुनेद अमरान भाई अरमान भाई जगदीप भाई आयु भाई लक्की भाई समीर भाई रूबीना जी गिरिजी हीना जी जीना जी सभी को सुनवाना चाहता हूँ।
12: तो अपना नाम बता दीजिए।
13: जी मैं गुलाम हुसैन वेस्ट मुंबई से बोल रहा हूँ। पहले कॉल लगाए थे मैम, कट गया।
12: अच्छा,
13: जी बता रहा था, आधा घंटा हो गया लगाते हुए। लग तो जाता है लेकिन थोड़ा सा आदमी परेशानी में रहता है, तो गाना सुनना पड़ता है तो थोड़ा सा तो प्रॉब्लम होगा ही। एक आदमी नहीं ना लगाने वाला, बहुत सारी दुनिया के लोग है लगाने वाला।
12: जी
13: आप कैसी है मैम?
12: हम अच्छे हैं, आप कैसे हैं?
13: हम भी सही है। और उधर कैसे मौसम?
12: अभी तो फिलहाल मौसम ठीक है, बारिश हुआ है आज ना, इसीलिए।
13: जी हमारे तरफ तो 3 दिन से लगातार बारिश हो रहा है, अभी हल्का धूप हुआ है, रिमझिम बरस रहा है अभी हल्का हल्का।
12: चलिए सब तो और बढ़िया है।
13: और सब बढ़िया है?
12: हम्म,
13: चलिए ठीक।
12: तो फिर गाना प्ले कर रहा है, सुनते रहिए सबके साथ रेडियो रंजन 92.4 FM।

0: हाँ जी, योगेश जांगड़े बेमेतरा छत्तीसगढ़ से।
1: जी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 एफएम में।
0: जी शुक्रिया।
1: कैसे हैं आप?
0: बढ़िया है, अच्छे हैं।
1: और बताइए क्या हो रहा है अभी?
0: अभी घर ही में है।
1: अच्छा, नाश्ता हो गया आपका?
0: हाँ जी, हो गया है।
1: चलिए बढ़िया है
0: जी।
1: और सबको घर में कैसे हैं?
0: जी सभी अच्छे हैं।
1: चलिए तो फिर बता दीजिए कौन सा गाना सुनिएगा आप?
0: फिल्म है द ट्रेन और गीत के बोल है गुलाबी आंखें जो तेरी देखी।
1: और सॉन्ग किसी को डेडिकेट भी है?
0: श्री पाल गोयल जी हैं, लोकेन्द्र वर्मा जी हैं, दिलीप आहूजा जी हैं, रोशन देवांगन जी हैं और तमाम साथी।
1: फिर चलिए गाना प्ले कर रहे हैं, सुनते रहिए सबके साथ रेडियो इंजन 90.4 FM।
0: धन्यवाद।

0: रोज रोज का पेट दर्द।
1: अरे तो उसे डांटती क्यों हो, उसे जल्दी से ले जाओ डॉक्टर सुनील कुमार रंजन के पास।
2: यहाँ पर हर्निया, अपेंडिस, वंध्याकरण, प्रोस्टेट, पीत की थैली, किडनी की पथरी, पेशाब की नली एवं पेशाब की थैली की पथरी तथा गोला का ऑपरेशन दूरबीन विधि से, साथ ही लेजर एवं स्टेपलर विधि के द्वारा बिना चीड़ा और बिना दर्द के बवासीर, भगंदर और नासूर का ऑपरेशन सस्ते दर पर किया जाता है।
3: ध्यान दें, हमारे यहाँ आयुष्मान भारत योजना के तहत ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
2: आज ही आए जेबी हॉस्पिटल एवं स्टोन क्लिनिक, थावे रोड, गोपालगंज।
0: अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 91-626-64-498 पे।
4: अरे सुनते हो जी, शादी में बस कुछ ही दिन बचे हैं, दूल्हे के कपड़े अभी तक नहीं बने
5: और दुल्हन का लहंगा, साड़ी कुछ भी तय नहीं हुआ, इतना बड़ा फंक्शन है, सब लोग क्या कहेंगे?
6: मम्मी पापा, मुझे चाहिए रॉयल कोट पैड का कपड़ा और रिसेप्शन के लिए एक शानदार कुर्ता पजामा,
7: और मुझे चाहिए ट्रेंडिंग लहंगा, सुंदर साड़ी और कुछ बढ़िया सूट पीस भी।
8: अरे बस इतनी सी बात, आप लोग गए नहीं क्या मुरारी लाल विजय कुमार?
6: मेन रोड गोपालगंज में स्थित मुरारी लाल विजय कुमार क्लोथिंग स्टोर, जहां दूल्हे के लिए मिलता है कोट पैंट, पैंट शर्ट और कुर्ता पजामा का बेहतरीन कपड़ा, और दुल्हन के लिए लहंगा, साड़ी, सूट पीस, हर डिजाइन, हर रंग, हर बजट में।
5: तो फिर देर किस बात की, चलो अभी चलते हैं मुरारी लाल विजय कुमार।
6: मुरारी लाल विजय कुमार, मेन रोड गोपालगंज, प्रोप्राइटर विजय कुमार केडिया।
8: कॉल करे 87-894-18744।
9: इतना परेशान क्यों दिख रही हो मेघा?
10: आसपास हर जगह चाचा जी का इलाज करा लिया, अब लगता है उन्हें दिल्ली लेकर ही जाना पड़ेगा।
9: अरे अपने गोपालगंज में गोरखपुर, पटना और दिल्ली जैसे बेहतर मेडिकल सुविधाओं के साथ खुल गया है एम्स के पूर्व चिकित्सक डॉक्टर अभिषेक रंजन जी के देखरेख में जिले का पहला वेंटिलेटर युक्त सक्षम हॉस्पिटल, जहां पर 24 घंटे आईसीयू इमरजेंसी सेवा, एक्सपर्ट मेडिकल टीम द्वारा विभिन्न रोग जैसे हृदय रोग, शुगर, दमा, नस रोग, लकवा और पेट से जुड़ी गंभीर बीमारियों का आधुनिक मशीनों के द्वारा सफलतापूर्वक इलाज किया जा रहा है।
10: आज विजिट करें सक्षम हॉस्पिटल, कमला राय कॉलेज रोड, इंडियन गैस एजेंसी के बगल में, गांधी टेक्निकल कॉलेज के सामने, डॉक्टर कॉलोनी, गोपालगंज। कॉल करें 7050061444 या 7870331444।
11: जिले का गौरव, संतोष मेडिकल हॉल, घोष मोड़, दरगाह रोड, गोपालगंज।
12: गोपालगंज जिले का प्रतिष्ठित अंग्रेजी दवा की दुकान संतोष मेडिकल हॉल।
13: हमारे यहाँ भारत के प्रसिद्ध डॉक्टरों द्वारा लिखी गई सभी प्रकार की अंग्रेजी दवाएं उपलब्ध हैं, जैसे गोरखपुर, पटना, कलकत्ता, लखनऊ, बनारस, चेन्नई और मुंबई के डॉक्टरों द्वारा लिखी गई दवाइयाँ भी मिलती हैं।
2: एक सूचना, संतोष मेडिकल हॉल अब चला गया है कॉलेज रोड चिराई घर के पहले, गोपालगंज। संपर्क सूत्र है 6200-42-34-03, 6200-42-34-03।
14: Now pick your phone up.
15: Hello?
14: Pick it up, pick it up.
15: Hello?
14: Now pick your phone up.
15: Hello?
16: Jab phone ke inde bajte hai to kehte hai hello. Hello. Hello. Hello.
17: Break ke baad aap sabhi ka ek bar fir se swagat hai Hello My Choice ke show mein. आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने के फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029-94-911। जी हाँ, 8029-94-911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।

0: प्रीतिर कुमार सानू की आवाज में मैडम जी भीगी हुई है रात मगर जल रही दीवाला।
1: अच्छा
0: और क्या गा के बताऊंगा?
1: गा दीजिए।
0: भीगी हुई है रात मगर जल रहे हैं हम, होने लगी बरसात मगर जल रही दीवाला।
1: अच्छा जी चलिए।
0: और आज देवगन का
1: और गाना किसी को डेडिकेट भी है?
0: डेडिकेट है ना, हमारे दोस्त हैं, डेडिकेट है उनके लिए। नाम लेता हूँ अभी, मांगीलाल जी हैं और सुनील साहू जी हैं, मकसद इनगढ़ से ज्योति साहू जी हैं, हरिओम जी हैं, इनके लिए डेडिकेट और आपके लिए भी है।
1: फिर गाना प्ले कर रहे हैं, सुनते रहिए सबके साथ रेडियो रिमझिम 90.4।

0: हेलो नमस्ते मैम।
1: नमस्ते, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 FM में।
0: कैसी हैं मैम?
1: मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं?
0: हम भी अच्छे हैं।
1: और बताइए क्या हो रहा है?
0: कुछ नहीं, ऐसे बैठे हैं।
1: अच्छा, तुम्हारा नाश्ता पानी हो गया?
0: हाँ नाश्ता पानी हो गया है, आपका हो गया
1: चलिए,
0: है?
1: मेरा भी हो गया है। चलिए बढ़िया है, नाश्ता करके थोड़ा आराम कर ही लेना चाहिए।
0: हाँ।

0: बता दीजिए कौन सा गाना सुनिएगा।
1: गाना नहीं है, छाया है कोहरा कहाँ जाएंगे, बहने दे पानी डूब जाएंगे, वही सॉन्ग सुनना है।
0: और सॉन्ग किसी को डेडिकेट भी है
1: आपको और शायद लिसनर को।
0: ओके चलिए फिर बढ़िया है, गाना प्ले कर रहे हैं, सुनते रहिए सबके साथ रेडियो रिमझिम 90.4 FM।

0: तब भौजी आज सुबह से गोपालगंज गई रनिया, घूम लेनी नु सारा मार्केट, देख लेनी नु सारा बाजार, कोनो साड़ी पसंद आई ला की ना?
1: अरे ना देवर जी, कपड़ा तो बहुते देखनी है, पर कोनो जचल है ना।
0: ई बात बा, तो ऐसन करी कि अब चली सीधे हमारा साथे कमल श्री में। महिलाओं की सबसे पहली पसंद कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री। सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए और नए नए डिजाइनों के फैंसी लहंगा, दुल्हन के लिए साड़ी, सूट पीस, लक्ष्मीपति साड़ियों के अलावा रेमंड्स के कोट पैंट और शूटिंग शॉटिंग बाजार से कम रेट में ले जाएं।
2: जी हाँ, कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री। सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए, बारी मार्केट, फर्स्ट फ्लोर।
3: शादी की ज्वेलरी लेनी है? हाँ,
4: भरोसे वाले से लेंगे,
3: पर दिया की पसंद भी जरूरी है
4: और कीमत भी।
3: प्योरिटी का सर्टिफिकेशन तो चाहिए ही।
0: एसपी ज्वेलर्स पे हमें पूरा भरोसा है।
5: प्योरिटी यानी मामी सर्टिफाइड, भरोसा और सही प्राइस यानी पापा सर्टिफाइड, और डिजाइन्स तो मेरा सर्टिफिकेशन।
0: गहनों की खरीदारी के लिए आप भी आए एसपी ज्वेलर्स, क्योंकि रिश्ते हर रोज नहीं बनते।
6: 22 कैरेट, 18 कैरेट के जेवर, शादी सेट और साथ ही पुराने जेवर बदलकर नए जेवर के करे खरीदारी।
0: आज यहाँ एसपी ज्वेलर्स, जो है डीएवी गर्ल्स स्कूल के सामने, स्टेशन रोड, गोपालगंज।
7: और अब एसपी ज्वेलर्स का नया ब्रांच, मेन रोड गोपालगंज, इन फ्रंट ऑफ बासु गारमेंट्स। सभी प्रकार के गहनों के मेकिंग चार्ज पर 25% की भारी छूट।
0: कॉल करें 85070-32042 पे।
8: घर बन रहा हो तो सिर्फ ईंट और सीमेंट नहीं, टाइल्स और फिटिंग्स का चुनाव भी होना चाहिए शानदार।
9: इसीलिए गोपालगंज जिले के लोगों की पहली पसंद बन चुका है बीके टाइल्स। बीके टाइल्स, यहाँ मिलेंगे सभी प्रकार के डिजाइनर टाइल्स, मार्बल, ग्रेनाइट, बेसिन, कॉमोड, बाथ फिटिंग्स और घर सजाने के कई आधुनिक प्रोडक्ट,
10: वो भी किफायती दामों पर। और खास बात, गोपालगंज जिले में हमारी 4 सुविधाजनक शाखाएं,
9: अरार मोड़ एसपी कोठी के पास गोपालगंज, दूसरा ब्रांच भटवा मोड़ के पास कुचायकोट,
10: तीसरा ब्रांच इस्लामिया कॉलेज के पास मेन रोड थावे मीरगंज, और चौथा ब्रांच बंतरिया मोड़ भोरे।
9: और अब सिवान जिले में भी हमारी 2 शाखाएं उपलब्ध हैं, सिवान ब्रांच कुशवाहा चौक हकाम बाईपास सिवान,
10: और मैरवा ब्रांच बबनौली चौक मैरवा सिवान।
9: तो आज ही अपने सबसे नजदीकी बीके टाइल्स ब्रांच पर आए और करे बेहतरीन खरीदारी।
10: अधिक जानकारी के लिए संपर्क करे गोपालगंज ब्रांच में 8460571406, मीरगंज ब्रांच 9693101611,
9: कुचायकोट ब्रांच में 9693101602, भोरे ब्रांच में 8207856404,
10: सिवान ब्रांच में 9942071405, मैरवा ब्रांच में 8207856403।
11: अरे मुन्नी, तुम आ गई, चल मेरा कान का झुमका ला।
1: ओ माय गॉड, आज फिर से भूल गई।
11: मैं तुमसे कितनी बार बोली हूँ कि अब महिलाओं के सारे सामान एक ही छत के नीचे नाइस गैलेक्सी में मिल रहा है।
1: सॉरी यार, कल पक्का नाइस गैलेक्सी में जाऊंगी।
0: महिलाओं की स्पेशल दुकान नाइस गैलेक्सी,
1: आर्टिफिशियल फ्लावर, आर्टिफिशियल गहने, सौंदर्य प्रसाधन, गृह कार्य एवं गृह सज्जा के सामान के साथ गिफ्ट, फूलों का गुलदस्ता एवं चांदनी का विशाल भंडार हमारे यहाँ मौजूद है।
0: तो अगर आपको कुछ अच्छा, कुछ अलग चाहिए हो तो आज ही आए नाइस गैलेक्सी, हजियापुर रोड, एक्सिस बैंक के सामने, तड़कुल के पास, गोपालगंज।
1: याद रहे, शादी विवाह, जन्मदिन या किसी भी शुभ अवसर पर गिफ्ट और सजाने का सारा सामान थोक एवं खुदरा मिलता है,
0: साथ ही प्लास्टिक के सारे सामान भी उपलब्ध हैं।
12: Now pick it up, hello. Now pick your phone up, hello. Pick it up, hello. Now pick your phone up, hello.
13: जब फोन की घंटी बजती है तो कहते हैं hello, hello, hello, hello, hello.
14: ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने के फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029994911। जी हाँ, 8029994911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
15: हेलो
16: हेलो हेलो
15: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रेंज 90.4 FM।
16: नमस्कार।
15: नमस्कार,
16: कॉल हो गया, गाना भी नहीं सुने, हमारा मोबाइल का रिचार्ज भी खत्म हो गया।
15: अच्छा,
16: गाना बताए आप, आपको रिचार्ज खत्म हो गया, गाना नहीं सुन पाए, आज गाना हमारा सुनवा दीजिए।
15: नाम बता दीजिए पहले अपना।
16: परमात्मा महतो।
15: अच्छा,
16: मठिया से बोल रहे हैं।
15: बता दीजिए कौन सा गाना सुनिएगा।
16: गाना
15: कौन सा सॉन्ग
16: बढ़िया, अपना पसंद का बजा देना।
15: आप अपनी पसंद नहीं बताइएगा।
16: नहीं, आपका ही पसंद बजेगा। अच्छा आज रिचार्ज करवाए तो अभी लगाएंगे, आज लगाते हैं तो रिचार्ज हो गया है, आज गाना 5 बजे सुनेंगे। आज पहले मेरा गाना बताया क्योंकि मैं सुना नहीं है वो गाना पहले जो बोला था।
15: अच्छा
16: बजवा दीजिए।
15: जी जी पूरा कोशिश करेंगे।
16: कोशिश करके बजाए क्योंकि गाना में सुनने को नहीं मिला है।
15: तो गाना प्ले कर रहे हैं, सुनते रहिए सबके साथ रेडियो रिमझिम 90.4 FM।

0: जी बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4। नमस्ते जी, गाना सुनाएंगे, नाम बता दीजिए अपना।
1: जी बोलिए।
0: पीछे बहुत शोर हो रहा है,
1: टीवी चल रहा है ना,
0: थोड़ा सा बंद कर दीजिए क्योंकि रिकॉर्डिंग होता है ना, उसमें आवाज होता है तो अच्छा नहीं लगता।
1: ठीक है, साइड निकल गया। मैम बोल रहे हैं, मुझे मैं गोपालगंज एजेंसी में काम करता हूँ, गोपाल मोटर्स में।
0: अच्छा,
1: 10:30 वहाँ का प्रचार भी आता है मोबाइल में। हाँ, आता है ना रेडियो में।
0: हाँ हाँ आता है।
1: और बोल रहा हूँ, ये गाना सुना है मैम, अपने माँ बाप का दिन है दुखा, दिन है दुखा, ये गाना सुना
0: है। ओके, और सॉन्ग किसी को डेडिकेट भी है?
1: माँ है, प्रकाश है, शिवानी है, सीमा है, और मेरे पापा श्री कृष्णा शर्मा नाम है उनका। हम अपने परिवारों के साथ सुनना है।
0: जी जी बिल्कुल, चलिए गाना प्ले कर रहे हैं, सुनते रहिए सबके साथ रेडियो रिमझिम 90.4 FM।

0: अब बेटा बहू घर आने वाली है, सोच रही हूँ कुछ सोने की नई ज्वेलरी ले ली जाए, पर भरोसे की दुकान।
1: माँ अब घबराइए नहीं, चलते हैं मास्टर साहब की जेवर की दुकान, गुप्ता ज्वेलर्स, BIS अप्रूव्ड, शानदार डिजाइन और असली ज्वेलरी की गारंटी।
2: अपने सपनों की खूबसूरती के लिए गुप्ता ज्वेलर्स ही चुने, सिल्वर, गोल्ड या डायमंड, हर ज्वेलरी BIS अप्रूव्ड और किफायती दाम के साथ। विश्वास की परंपरा, नई डिजाइन का खजाना, बस गुप्ता ज्वेलर्स में।
3: आज ही आए गुप्ता ज्वेलर्स मास्टर साहब की जेवर की दुकान, चंद्र गोखो लोड गोपालगंज, मोबाइल नंबर 94395461 या 97097506575।

0: आ गया है विकसित भारत जी राम जी, जिसमें हर ग्रामीण को मिलेगी साल में 125 दिन रोजगार की गारंटी और काम वही जो ग्राम पंचायत कहे। विकसित भारत जी राम जी, गांव बढ़ेगा तभी देश बढ़ेगा। ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
1: सोहन, मैं बहुत परेशान हूँ। मुझे तुरंत अपने भाई को कुछ पैसे भेजने हैं, लेकिन बैंक में तो इतनी लंबी लाइन है कि घंटों लग जाएंगे और मेरा जियो सिम भी एक्टिवेट नहीं हो रहा। अब मैं क्या करूँ?
2: अरे टीना, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। चलो मेरे साथ माया क्लासिकल में आधार और बैंक से आसानी से पैसे निकाला जाता है और किसी भी खाते में तुरंत भेजा जा सकता है बिना किसी झंझट के। और सिम की बात कर रही हो ना, BSNL, जियो, एयरटेल, VI, जो भी चाहिए तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा।
1: मुझे कुछ जरूरी PDF प्रिंट करवाने हैं, वहाँ ये सब हो जाएगा ना?
2: बिल्कुल, माया क्लासिकल में PDF, लेमिनेशन, प्रिंट, फोटोकॉपी सब कुछ मिलेगा। तुम्हें एक धमाकेदार ऑफर भी बताता हूँ, फोटो स्टेट सिर्फ ₹1 प्रति प्रिंट आउट, कम से कम 50 पेज। हर ग्राहक को शानदार गिफ्ट भी मिलता है। माया क्लासिकल में सब कुछ है। माया क्लासिकल, सिनेमा रोड, शिव मंदिर के ठीक सामने, गोपालगंज। प्रोपराइटर सोनू जी। संपर्क करें 99399-66999।
3: गोपालगंज, अब आपकी राइड होगी और भी स्टाइलिश और पहले से ज्यादा पावरफुल,
4: क्योंकि आ चुकी है हीरो ग्लैमर एक्स और एक्सट्रीम 125R। अब उपलब्ध है नारायणी हीरो गोपालगंज में।
3: ग्लैमर एक्स, दमदार माइलेज, शानदार लुक और भरोसेमंद परफॉर्मेंस, ताकि हर दिन बने खास और सफर रहे बेफिक्र।
4: और एक्सट्रीम 125R, स्पोर्टी डिजाइन, दमदार पावर और एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ हर राइड बने और एक्साइटिंग।
3: तो फिर देर किस बात की, आज ही विजिट करें नारायणी हीरो, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
4: शानदार ऑफर्स और आसान फाइनेंस सुविधा के साथ
3: नारायणी हीरो, भरोसे का नाम हर राइड के साथ।
4: कॉल नाउ 9656-59536 या 9656-57902।
5: तुम आज भी गुमसुम क्यों बैठी हो?
1: क्या बताऊं, 15 साल शादी के हो गए और संतान सुख मिला नहीं। कई जगह इलाज कराया लेकिन कोई फायदा नहीं। अब समझ नहीं आ रहा क्या करूं?
5: अरे मेरे साथ एक बार चलो डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी के पास, जादवपुर में। कई निसंतान माताओं का इलाज उन्होंने सफलतापूर्वक किया है।
1: ध्यान दे, स्त्री रोग, बांझपन, ल्यूकोरिया, दिमाग की कमजोरी या दाश्त की कमी, पेट रोग, गैस्ट्रिक, लीवर में सूजन, बवासीर, कान रोग, पुराना बुखार, नस रोग, किडनी की पथरी, पीत की थैली में पथरी, पेशाब की थैली में पथरी, गठिया, पुराना जोड़ों का दर्द, साइटिका, चर्म रोग एवं पुराने असाध्य बीमारियों का इलाज आयुर्वेदिक विधि से 30 वर्षों से सफलतापूर्वक किया जा रहा है।
5: आज ही आए डॉक्टर गोरखपुरी निवास, डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी, जादवपुर मेन रोड, गोपालगंज। संपर्क करें 99554-97644।
6: के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने के फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029-94-911। जी हाँ, 8029-94-911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
7: हेलो
8: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रंजन 90.4 FM में।
7: आरती मैम नमस्कार।
8: नमस्कार,
7: मैं सुबीरपुर बोल रहा हूँ, कोरी जिम्बा जिला देवघर, झारखंड से मैम।
8: जी जी, कैसे हैं आप?
7: बिल्कुल ठीक हूँ मैं, आप कैसे हैं मैम? और आपके रेडियो रंजन के पूरे टीम कैसे हैं?
8: कोई अच्छे हैं यहाँ।
7: सोनी मैम कैसी हैं?
8: वो भी ठीक है
7: जी। बहुत उमस है मैम। जी बहुत उमस है, बारिश हुई थी अभी 2-4 दिनों से, बारिश नहीं रही, बहुत गर्मी लग रही है।
8: अच्छा, यहाँ तो थोड़ा हुआ है बारिश, अब उसकी वजह से उमस तो हो ही रहा है
7: जी। आज सुना दीजिए मैम, एक फूल दो माली का गाना, आशा भोसले की आवाज में।
8: कौन सा गाना है बता दीजिए?
7: गीत के बोल हैं, कहिया ले गई जिया मेरी पहली नजर।
8: एक बार और बोल दीजिए।
7: कहिया ले गई जिया मेरी पहली नजर, के बोल हैं आशा भोसले की आवाज में।
8: और गाना किसी को सुनाना भी है
7: जी? सबसे पहले मैं आपको, सोनी मैम को, सोनू सर को और रेडियो रंजन के जितने भी आप लोग, सबों को सुनाना चाहता हूँ और जितने भी लिसनर हैं रेडियो रंजन के, सबों को सुनाना चाहता हूँ।
8: चलिए बढ़िया है, तो फिर गाना प्ले कर रहे हैं, सुनते रहिए सबके साथ रेडियो रंजन 90.4 FM।
7: ओके मैम।

0: हेलो
1: हेलो।
0: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 FM में।
1: नमस्ते मैम।
0: नमस्ते,
1: कैसी हैं मैम?
0: मैं अच्छी हूँ, आप बताइए आप कैसी हैं?
1: हम भी ठीक है।
0: और बताइए क्या हो रहा है?
1: क्या
0: क्या हो रहा है अभी?
1: अभी तो कॉल लगा रही थी आपके पास।
0: अच्छा जी, तो आज कॉल तो लग गया जल्दी।
1: हाँ
0: चलिए बढ़िया।
1: अभी बहुत देर हो जाता है, लगाते लगाते नहीं लगा है।
0: और सब
1: जल्दी
0: बताइए, सब कोई
1: लगे।
0: घर में कैसे है?
1: सब कोई ठीक है घर में।
0: चलिए बढ़िया है। तो बता दीजिए कौन सा गाना सुनिए आज?
1: सुना दीजिए ना सोना ना चांदी सारी दुनिया सुनाएगी गाने।
0: ओके, और सॉन्ग किसी को डेडिकेट भी है?
1: जी मैम, आपको और दिव्या मैम को और अपने घर में सभी को और रेडियो रिमझिम सुनने वाले सभी दोस्तों को और सभी
0: जी जी अपना नाम बताते जाइए।
1: मनीषा कुमारी।
0: जी चलिए बढ़िया है। तो फिर गाना प्ले कर रहे हैं, सुनते रहिए सबके साथ रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
1: जी मैम, बाय मैम।
0: बाय बाय।

0: श्रोताओं, अभी आप हेलो माय चॉइस सुन रहे थे और अब समय हो चुका है शो को समाप्त करने का। तो यदि आप चाहते हैं इस कार्यक्रम से जुड़ना तो आप भी जुड़ सकते हैं 8029994911 पर कॉल करके। तो फिलहाल हमें आज इस शो से दीजिए जाने की इजाज़त। मिलते हैं अगले दिन, सुनते रहें 90.4 FM। नमस्कार।
1: आपका संदेश मिला कार्यक्रम में आप अपना विचार, सुझाव, शिकायत हमारे व्हाट्सएप नंबर 98527-88291 या ईमेल आईडी radiorimjhim@gmail.com या पत्र के माध्यम से हमें जरूर दें। आप हमें कॉल करके भी अपने विचारों को बता सकते हैं। नंबर है 98527-88291 या 95238-74088 पर। आपका सुझाव रेडियो रिमझिम परिवार के लिए मार्गदर्शन का काम करता है। तो आप इस कार्यक्रम को रविवार शाम 7:45 से तथा सोमवार सुबह 7:10 से अवश्य सुने।
2: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
3: जो लोग डायबिटीज से परेशान हैं, वो डरे नहीं, परहेज करे नहीं। वैद्य SP त्यागी जी आयुर्वेदिक दवा द्वारा शुगर यानी डायबिटीज का इलाज कम खर्च में सब कुछ खाते हुए सफलता पूर्वक कर रहे हैं। आप भी दवा खा खा कर इलाज करा कर निराश एवं परेशान हो गए हैं तो एक बार अवश्य मिले वैद्य SP त्यागी जी से। डायबिटीज के अलावा और सब बीमारी का इलाज, जैसे
4: सभी प्रकार के नशा, जैसे शराब, टेबलेट, इंजेक्शन, सिरप, गांजा, स्माइक के इलाज और गठिया, साइटिका, पथरी, कमर दर्द, घुटना दर्द, दमा, मिर्गी, दाद, दिनाए और सभी चर्म रोग एवं लिकोरिया, मासी खराबी, बवासीर, पेट रोग, शुगर, गैस्ट्रिक, शीघ्र पतन, शुक्राणु में कमी, नपुंसकता, धातु चिंता और चर्म रोग में दाग, दिनाए, खुजली, एक्जिमा, सोरायसिस तथा
3: पथरी इत्यादि सभी रोगों का इलाज वैद्य SP त्यागी जी आयुर्वेदिक दवा द्वारा सफलता पूर्वक करते हैं।
5: वैद्य SP त्यागी जी से मिलने का पता
3: प्रत्येक शनिवार गोपालगंज बस स्टैंड थावे रोड भी मार्केट के बगल में कृष्णा जी के मकान में।
5: जानकारी के लिए कॉल करें 99554-94-53
3: और 90-97-61-60-02।
6: राधा, तुमने अपने चाचा जी के अपेंडिक्स का ऑपरेशन कहाँ कराया था?
7: सम्राट हॉस्पिटल में, वो भी कम से कम खर्च में।
8: क्या आप भी ऑपरेशन कराना चाहते हैं? तो घबराए नहीं, आज ही आए सम्राट हॉस्पिटल, जहाँ है डॉक्टर कुंदन सिंह MBBS MS जनरल एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जन, जो सदर हॉस्पिटल गोपालगंज में भी सेवा देते हैं।
9: हमारे यहाँ दूरबीन विधि से भी ऑपरेशन किया जाता है।
8: आज ही हर तरह के सफल ऑपरेशन के लिए आए सम्राट हॉस्पिटल, जो है कमला राय कॉलेज के पश्चिम RR रोड, गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 9470434468 पे।
10: नई बाइक का सपना अब होगा पूरा, वो भी सबसे कम दाम में।
11: इस सीजन अपने घर लाइए हीरो की नई चमचमाती बाइक या स्कूटर श्री गोपाल मोटर्स से, वो भी ऑन रोड रेट पर।
10: श्री गोपाल मोटर्स, गोपालगंज में पाए स्प्लेंडर प्लस सिर्फ 86,168 रुपए में, HF डिलक्स सिर्फ 75,405 रुपए में, ग्लैमर एक्स सिर्फ 97,456 रुपए में, एक्सट्रीम 125R सिर्फ 1,10,881 रुपए में, इंश्योरेंस और रजिस्ट्रेशन के साथ।
11: विजिट कीजिए श्री गोपाल मोटर्स, NH 27 बंजारी, चैन पट्टी, गोपालगंज,
10: या अभी कॉल कीजिए 92899-22567 या 97-714-86-164।
12: ठक ठक।
13: काजी, आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
14: अच्छा मिला ही नहीं।
13: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें, अब चलिए सीधे कमल श्री में।
8: जी हाँ, कमल श्री, याद रखे सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
13: आप भी आए कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, बारी मार्केट, गोपालगंज।
8: याद रहे सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ, सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है। सुनिए सुनिए सुनिए,
15: आपके शहर गोपालगंज में खुल गया है श्री कृष्णा साड़ी,
8: जिसमें आपको मिल रहा है सस्ते दामों में एक से बढ़कर एक डिजाइनों के लहंगा, फैंसी साड़ी, लेडी सूट, क्रॉप टॉप एवं कुर्ती।
15: श्री कृष्णा साड़ी दुकान है केडिया भवन, केडिया लेन, मेन रोड, गोपालगंज।
8: एक बार सेवा का मौका जरूर दें श्री कृष्णा साड़ी को।
16: अरे माँ, ये दांत का दर्द तो जान ले लेगा, क्या करूँ?
10: अब चिंता छोड़िए, गोपालगंज में है महावीर डेंटल एंड मैक्सिलोफेशियल ट्रॉमा केयर, मल्टी स्पेशलिटी डेंटल और फेस क्लिनिक, जहाँ दांत, जबड़े और चेहरे से जुड़ी हर समस्या का आधुनिक इलाज उपलब्ध है।
17: यहाँ सेवा दे रहे हैं गोपालगंज के फर्स्ट MDS डॉक्टर पल्लव राज, वरिष्ठ जबड़ा एवं फेस सर्जन और कैंसर रोग विशेषज्ञ, साथ में डॉक्टर अभिलाषा अग्रवाल, दंत एवं मुख रोग विशेषज्ञ और कॉस्मेटिक डेंटल सर्जन।
10: यहाँ टेढ़े मेढ़े दांत, रूट कैनाल, चेहरे और मुंह से जुड़ी सभी समस्याओं का विशेषज्ञ इलाज किया जाता है।
17: ध्यान दे, आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए टूटे हुए जबड़े और मुंह का कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का मुफ्त इलाज उपलब्ध है।
10: पता, शनिवार और रविवार महावीर मेडिकल हॉल, अम्बेडकर चौक, हॉस्पिटल रोड, गोपालगंज। अन्य दिन केडिया मैक्सिलोफेशियल एंड कॉस्मेटिक केयर, मुंशी प्रेमचंद पार्क के पास, बेतिया हाता, गोरखपुर।
17: हर दिन दोनों क्लिनिक पर डॉक्टर पल्लव राज और उनकी विशेषज्ञ टीम द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है।
10: संपर्क करें 84710-3992 या 9765-65750।
18: अगर आपको हो रहा है घुटने, हड्डी या रीढ़ की हड्डी का दर्द या महिलाओं से जुड़ी समस्या, तो याद रखिए, गोपालगंज जिले में सबसे भरोसेमंद नाम स्टार एडवांस ऑर्थो एंड मेटर्निटी सेंटर, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
10: यहाँ है डॉक्टर इमरान हुसैन खान, कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक एवं जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन, MBBS, MS, एक्स रेसिडेंट, KGMU, लखनऊ।
18: और महिलाओं के लिए डॉक्टर सूफिया शादाब, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, MBBS, MS, ऑब्स एंड गायनेकोलॉजी।
10: साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
18: ध्यान दे, हर शुक्रवार को है फ्री OPD, तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें।
10: पता, कमला राय कॉलेज रोड, नियर रालसन होटल, गोपालगंज।
18: संपर्क करें 9006978856 या 6203139564।
19: सुनिए जी, पेट में दर्द कई दिनों से ठीक ही नहीं हो रहा,
20: तो फिर देर क्यों? चलो अभी चलते हैं साई कृपा क्लिनिक में, जहां मौजूद है अनुभवी डॉक्टर स्वाति के गुप्ता, MBBS, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, पूर्व वरीय चिकित्सक, पारस हॉस्पिटल चंडीगढ़, और डॉक्टर पी के गुप्ता, MBBS, BMC जनरल फिजिशियन एवं सर्जन, SVBPN, न्यू दिल्ली।
19: यहां नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन, हर्निया, अपेंडिक्स, पित्त की थैली, बवासीर, भगंदर आदि ऑपरेशन की सुविधा और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
10: यहाँ सभी प्रकार का ऑपरेशन बिना टाका का आधुनिक विधि द्वारा किया जाता है। साई कृपा क्लिनिक, थावे रोड बस स्टैंड के सामने, गोपालगंज।
18: संपर्क करें 9939365923।
21: कई दिनों से पेट के निचले हिस्से में बहुत दर्द है, रिपोर्ट में पथरी और बच्चेदानी की भी दिक्कत बताई गई है।
22: डॉक्टर ने कहा है ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन जगह ऐसी हो जहां अच्छा सर्जन भी हो और महिला डॉक्टर भी।
10: अब हर चिंता का समाधान है शल्यम हॉस्पिटल,
17: अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूरा भोजपुरवा में, NH 27 पर दक्षिण साइड, गोपालगंज में स्थित शल्यम हॉस्पिटल।
10: यहां आयुष्मान कार्ड से 5,00,000 रुपए तक मुफ्त ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
17: सर्जरी विभाग हो या स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग, इलाज होता है अनुभवी विशेष द्वारा।
10: डॉक्टर मनोज कुमार गुप्ता, MBBS, MS, सर्जरी, लैप्रोस्कोपिक सर्जन, और डॉक्टर डेजी सिन्हा, MBBS, MD, DNB, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
17: शल्यम हॉस्पिटल में उपलब्ध है आधुनिक मशीनें और एक ही छत के नीचे OPD, IPD, ICU, मॉड्यूलर OT, अल्ट्रासाउंड, पैथोलॉजी लैब, फार्मेसी और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा।
10: आज ही विजिट कीजिए शल्यम हॉस्पिटल, मल्टी स्पेशलिटी एंड ट्रॉमा सेंटर, RR मोड़ से करीब 800 मीटर पूरा, भोजपुरवा, NH 27, गोपालगंज।
17: कॉल करें 70705763100 या 70705042100 या हमारी वेबसाइट पर विजिट करें www.shalyamhospital.com।
23: ओम नमः शिवाय।
10: सावन के पावन अवसर पर बाबा भोलेनाथ के दर्शन का सुनहरा अवसर लेकर आया है दीपक राज टूर एंड ट्रेवल्स, गोपालगंज।
17: श्रद्धालुओं के लिए विशेष तीर्थ यात्रा एवं कांवर यात्रा की व्यवस्था। पहला रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, राजगीर होते हुए पुनः वापसी।
10: दूसरा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, तारापीठ, जगन्नाथपुरी, गंगा सागर, काली घाट, कोलकाता, रजरप्पा, राजगीर होते हुए वापस गोपालगंज।
17: तीसरा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, गया, बोधगया, वाराणसी, अयोध्या, गोरखनाथ मंदिर होते हुए वापस गोपालगंज।
10: चौथा रूट
0: थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, गुवाहाटी, माँ कामाख्या धाम, दार्जिलिंग, सिलीगुड़ी, गंतोक, जनकपुर, अरेराज होते हुए वापस गोपालगंज।
23: गोपालगंज जिले के श्रद्धालु अब घर बैठे अपनी तीर्थ यात्रा के लिए वाहन बुक करा सकते हैं।
0: बिचौलियों से बचे और सीधे हमारे कार्यालय या बुकिंग नंबर पर संपर्क करें।
23: बुकिंग नंबर 9155548507 या 9162933538।
0: हेल्पलाइन नंबर 9934498845।
23: दीपक राज टूर एंड ट्रेवल्स, मुख्य कार्यालय चिराई घर पेट्रोल पंप के पास गोपालगंज, उपशाखा NH27 काली स्थान बंजारी गोपालगंज।
0: बोलबम, हर हर महादेव। नई बाइक का सपना अब होगा पूरा, वो भी सबसे कम दाम में।
23: इस सीजन अपने घर लाइए हीरो की नई चमचमाती बाइक या स्कूटर श्री गोपाल मोटर्स से, वो भी ऑन रोड रेट पर।
0: श्री गोपाल मोटर्स, गोपालगंज में पाए स्प्लेंडर प्लस सिर्फ 86,168 रुपए में, HF डिलक्स सिर्फ 75,405 रुपए में, ग्लैमर एक्स सिर्फ 97,456 रुपए में, एक्सट्रीम 125R सिर्फ 110,881 रुपए में, इंश्योरेंस और रजिस्ट्रेशन के साथ।
23: विजिट कीजिए श्री गोपाल मोटर्स, NH27 बंजारी चैन पट्टी गोपालगंज,
0: या अभी कॉल कीजिए 9289922567 या 9779746164।
1: कूल्हा एवं घुटना प्रत्यारोपण, आर्थ्रोस्कोपिक या दूरबीन विधि से घुटने के टूटे लिगामेंट की सर्जरी, एलिजारोव रशियन विधि से हाथ पैर की लंबाई बढ़ाना, स्पाइन सर्जरी और हड्डी जोड़ की सभी समस्याओं का समाधान।
2: मिले वरिष्ठ सर्जन डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से, संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एवं सर्जिकल सेंटर, रुस्तमपुर ढाला गोरखपुर।
1: आज ही संपर्क करें 7388889470 या 9198886973।
4: इतना परेशान क्यों दिख रही हो मेघा?
24: आसपास हर जगह चाचा जी का इलाज करा लिया, अब लगता है उन्हें दिल्ली लेकर ही जाना पड़ेगा।
4: अरे अपने गोपालगंज में गोरखपुर, पटना और दिल्ली जैसे बेहतर मेडिकल सुविधाओं के साथ खुल गया है एम्स के पूर्व चिकित्सक डॉक्टर अभिषेक रंजन जी के देखरेख में जिले का पहला वेंटिलेटर युक्त सक्षम हॉस्पिटल, जहां पर 24 घंटे ICU इमरजेंसी सेवा, एक्सपर्ट मेडिकल टीम द्वारा विभिन्न रोग जैसे हृदय रोग, शुगर, दमा, नस रोग, लकवा और पेट से जुड़ी गंभीर बीमारियों का अत्याधुनिक मशीनों के द्वारा सफलतापूर्वक इलाज किया जा रहा है।
24: आज विजिट करें सक्षम हॉस्पिटल, कमला राय कॉलेज रोड, इंडियन गैस एजेंसी के बगल में, गांधी टेक्निकल कॉलेज के सामने, डॉक्टर कॉलोनी गोपालगंज। कॉल करें 7050061444 या 7870331444।
25: टॉप भौजी, आज सुबह रही से गोपालगंज गई रनिया, घूम लेनी नू सारा मार्केट, देख लेनी नू सारा बाजार, कोनो साड़ी पसंद आई ला की ना?
26: अरे ना देवर जी, कपड़ा तो बहुते देखनी है पर कोनो जचल है ना।
25: ई बात बा, तो ऐसा करी कि अब चली सीधे हमारा साथे कमल श्री में,
27: महिलाओं की सबसे पहली पसंद कमल श्री। कमल श्री, कमल श्री, सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए और नए नए डिजाइनों के फैंसी लहंगा, दुल्हन के लिए साड़ी, सूट पीस, लक्ष्मीपति साड़ियों के अलावा रेमंड्स के कोट पैंट और शूटिंग शॉटिंग बाजार से कम रेट में ले जाएं।
28: जी हाँ, कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए, बारी मार्केट फर्स्ट फ्लोर,

0: बचालो कसमानो खाने नच देने सारे
1: जो लोग डायबिटीज से परेशान हैं, वो डरे नहीं परहेज करे नहीं। वैद्य एसपी त्यागी जी आयुर्वेदिक दवा द्वारा शुगर यानी डायबिटीज का इलाज कम खर्च में सब कुछ खाते हुए सफलतापूर्वक कर रहे हैं। आप भी दवा खा खा कर इलाज करा कर निराश एवं परेशान हो गए हैं तो एक बार अवश्य मिले वैद्य एसपी त्यागी जी से। डायबिटीज के अलावा और सब बीमारी का इलाज जैसे
2: सभी प्रकार के नशा जैसे शराब टेबलेट इंजेक्शन सिरप गांजा स्माइक के इलाज और गठिया टीका पथरी कमर दर्द घुटना दर्द दमा मिर्गी दाद दिनाए और सभी चर्म रोग एवं लिकोरिया मासी खराबी बवासीर पेट रोग शुगर गैस्ट्रिक शीघ्र पतन शुक्राणु में कमी नपुंसकता धातु चिंता और चर्म रोग में दाग दिनाए खुजली एक्जिमा सोराइसिस तथा
1: पथरी इत्यादि सभी रोगों का इलाज वैद्य एसपी त्यागी जी आयुर्वेदिक दवा द्वारा सफलतापूर्वक करते हैं।
0: वैद्य एसपी त्यागी जी से मिलने का पता
1: प्रत्येक शनिवार गोपालगंज बस स्टैंड थावे रोड भी मार्केट के बगल में कृष्णा जी के मकान में।
0: अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 99554943
1: और 90971602।
3: हो जाता हूँ

0: इतना परेशान क्यों दिख रही हो मेघा?
1: आसपास हर जगह चाचा जी का इलाज करा लिया, अब लगता है उन्हें दिल्ली लेकर ही जाना पड़ेगा।
0: अरे अपने गोपालगंज में गोरखपुर, पटना और दिल्ली जैसे बेहतर मेडिकल सुविधाओं के साथ खुल गया है एम्स के पूर्व चिकित्सक डॉक्टर अभिषेक रंजन जी के देखरेख में जिले का पहला वेंटिलेटर युक्त सक्षम हॉस्पिटल, जहाँ पर 24 घंटे आईसीयू इमरजेंसी सेवा, एक्सपर्ट मेडिकल टीम द्वारा विभिन्न रोग जैसे हृदय रोग, शुगर, दमा, नस रोग, लकवा और पेट से जुड़ी गंभीर बीमारियों का अत्याधुनिक मशीनों के द्वारा सफलतापूर्वक इलाज किया जा रहा है।
1: आज विजिट करें सक्षम हॉस्पिटल, कमला राय कॉलेज रोड, इंडियन गैस एजेंसी के बगल में, गांधी टेक्निकल कॉलेज के सामने, डॉक्टर कॉलोनी, गोपालगंज। कॉल करें 7050061444 या 7870331444।
2: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान, पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में। सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।

0: सुनिए,
1: आपके शहर गोपालगंज में खुल गया है श्री कृष्णा साड़ी,
2: जिसमें आपको मिल रहा है सस्ते दामों में एक से बढ़कर एक डिजाइनों के लहंगा, फैंसी साड़ी, लेडी सूट, क्रॉप टॉप एवं कुर्ती।
1: श्री कृष्णा साड़ी दुकान है केडिया भवन, केडिया लेन, मेन रोड, गोपालगंज।
2: एक बार सेवा का मौका जरूर दें श्री कृष्णा साड़ी को।
3: ठक ठक।
4: काजी, आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
5: अच्छा, मिला ही नहीं
4: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें। अब चलिए सीधे कमल श्री में।
2: जी हाँ, कमल श्री। याद रखे, सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
4: आप भी आए कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, बारी मार्केट, गोपालगंज।
2: याद रहे, सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ, सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है।
6: कूल्हा एवं घुटना प्रत्यारोपण, आर्थ्रोस्कोपिक या दूरबीन विधि से घुटने के टूटे लिगामेंट की सर्जरी, एलिजारोव रशियन विधि से हाथ पैर की लंबाई बढ़ाना, स्पाइन सर्जरी और हड्डी जोड़ की सभी समस्याओं का समाधान।
7: मिले वरिष्ठ सर्जन डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से। संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एवं सर्जिकल सेंटर, रुस्तमपुर ढाला, गोरखपुर।
6: आज ही संपर्क करें 7388894700 या 9198886973।
8: गोपालगंज, अब आपकी राइड होगी और भी स्टाइलिश और पहले से ज्यादा पावरफुल,
9: क्योंकि आ चुकी है हीरो ग्लैमर एक्स और एक्सट्रीम 125R। अब उपलब्ध है नारायणी हीरो गोपालगंज में।
8: ग्लैमर एक्स, दमदार माइलेज, शानदार लुक और भरोसेमंद परफॉर्मेंस, ताकि हर दिन बने खास और सफर रहे बेफिक्र।
9: और एक्सट्रीम 125R, स्पोर्टी डिजाइन, दमदार पावर और एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ हर राइड बने और एक्साइटिंग।
8: तो फिर देर किस बात की, आज ही विजिट करें नारायणी हीरो, कमलाराय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
9: शानदार ऑफर्स और आसान फाइनेंस सुविधा के साथ
8: नारायणी हीरो, भरोसे का नाम हर राइड के साथ।
9: कॉल नाउ 9656 59536 या 9656 57902।
10: डॉक्टर अनुज मिश्रा, न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज। ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
11: तुम आज भी गुमसुम क्यों बैठी हो?
4: क्या बताऊं, 15 साल शादी के हो गए और संतान सुख मिला नहीं। कई जगह इलाज कराया लेकिन कोई फायदा नहीं। अब समझ नहीं आ रहा क्या करूं?
11: अरे मेरे साथ एक बार चलो डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी के पास, जादवपुर में। कई निसंतान माताओं का इलाज उन्होंने सफलतापूर्वक किया है।
4: ध्यान दे, स्त्री रोग, बांझपन, ल्यूकोरिया, दिमाग की कमजोरी, याददाश्त की कमी, पेट रोग, गैस्ट्रिक, लीवर में सूजन, बवासीर, कान रोग, पुराना बुखार, नस रोग, किडनी की पथरी, पीत की थैली में पथरी, पेशाब की थैली में पथरी, गठिया, पुराना जोड़ों का दर्द, साइटिका, चर्म रोग एवं पुराने असाध्य बीमारियों का इलाज आयुर्वेदिक विधि से 30 वर्षों से सफलतापूर्वक किया जा रहा है।
11: आज ही आएं डॉक्टर गोरखपुरी निवास, डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी, जादवपुर मेन रोड, गोपालगंज। संपर्क करें 9956 57644।

0: अब बेटा बहू घर आने वाली है, सोच रही हूँ कुछ सोने की नई ज्वेलरी ले ली जाए, पर भरोसे की दुकान।
1: माँ अब घबराइए नहीं, चलते हैं मास्टर साहब की जेवर की दुकान, गुप्ता ज्वेलर्स, BIS अप्रूव्ड, शानदार डिजाइन और असली ज्वेलरी की गारंटी।
2: अपने सपनों की खूबसूरती के लिए गुप्ता ज्वेलर्स ही चुने, सिल्वर, गोल्ड या डायमंड, हर ज्वेलरी BIS अप्रूव्ड और किफायती दाम के साथ। विश्वास की परंपरा, नई डिजाइन का खजाना, बस गुप्ता ज्वेलर्स में।
3: आज ही आए गुप्ता ज्वेलर्स मास्टर साहब की जेवर की दुकान, चंद्रगोखो लोड गोपालगंज, मोबाइल नंबर 94-309-45-651 या 97-097-06-575।
4: ठक ठक।
5: काजी आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
6: अच्छा मिला ही नहीं।
5: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें, अब चलिए सीधे कमल श्री में।
6: जी हाँ कमल श्री, याद रखे सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
5: आप भी आए कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, बारी मार्केट गोपालगंज।
6: याद रहे सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है।
7: कूल्हा एवं घुटना प्रत्यारोपण, आर्थ्रोस्कोपिक या दूरबीन विधि से घुटने के टूटे लिगामेंट की सर्जरी, एलिजारोव रशियन विधि से हाथ पैर की लंबाई बढ़ाना, स्पाइन सर्जरी और हड्डी जोड़ की सभी समस्याओं का समाधान।
8: मिले वरिष्ठ सर्जन डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से, संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एवं सर्जिकल सेंटर, रुस्तमपुर ढाला गोरखपुर।
7: आज ही संपर्क करें 7388-89470 या 9198-88-69730।

0: अगर आपका फर्नीचर डोलता है और बोलता है तो एक्सचेंज तो मांगता है।
1: संतोष फर्नीचर लेकर आ गए हैं ग्रेट एक्सचेंज ऑफर।
2: ग्रेट एक्सचेंज ऑफर, अपने घर के पुराने सोफा और डाइनिंग को ले आएं और नए सोफा तथा डाइनिंग को ले जाएं और बनाएं अपने घर को सुंदर तथा आकर्षक।
1: आज ही विजिट करें संतोष फर्नीचर, चिराईगढ़ पेट्रोल पंप के सामने, कॉलेज रोड, गोपालगंज। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 82 101 87 952। नियम और शर्तें लागू।
3: क्या हुआ? अरे ये तेरा रोज रोज का पेट दर्द।
4: अरे तो उसे डांटते क्यों हो, उसे जल्दी से ले जाओ डॉक्टर सुनील कुमार रंजन के पास।
5: यहाँ पर हर्निया, अपेंडिस, वंध्याकरण, प्रोस्टेट, पीत की थैली, किडनी की पथरी, पेशाब की नली एवं पेशाब की थैली की पथरी तथा गोला का ऑपरेशन दूरबीन विधि से, साथ ही लेजर एवं स्टेपलर विधि के द्वारा बिना चीड़ा और बिना दर्द के बवासीर, भगंदर और नासूर का ऑपरेशन सस्ते दर पर किया जाता है।
6: ध्यान दें, हमारे यहाँ आयुष्मान भारत योजना के तहत ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
5: आज ही आए जेबी हॉस्पिटल एवं स्टोन क्लिनिक, थावे रोड, गोपालगंज।
3: अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 91-626-64-498 पे।
7: सोहन, मैं बहुत परेशान हूँ। मुझे तुरंत अपने भाई को कुछ पैसे भेजने हैं, लेकिन बैंक में तो इतनी लंबी लाइन है कि घंटों लग जाएंगे और मेरा जियो सिम भी एक्टिवेट नहीं हो रहा। अब मैं क्या करूँ?
8: अरे टीना, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। चलो मेरे साथ माया क्लासिकल में आधार और बैंक से आसानी से पैसे निकाला जाता है और किसी भी खाते में तुरंत भेजा जा सकता है बिना किसी झंझट के। और सिम की बात कर रही हो ना, BSNL, जियो, एयरटेल, VI, जो भी चाहिए तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा।
7: मुझे कुछ जरूरी PDF प्रिंट करवाने हैं, वहाँ ये सब हो जाएगा ना?
8: बिल्कुल, माया क्लासिकल में PDF, लेमिनेशन, प्रिंट, फोटो कॉपी सब कुछ मिलेगा। तुम्हें एक धमाकेदार ऑफर भी बताता हूँ, फोटो स्टेट सिर्फ ₹1 प्रति प्रिंट आउट, कम से कम 50 पेज। हर ग्राहक को शानदार गिफ्ट भी मिलता है। माया क्लासिकल में सब कुछ है। माया क्लासिकल, सिनेमा रोड, शिव मंदिर के ठीक सामने, गोपालगंज। प्रोपराइटर सोनू जी। संपर्क करें 99-399-66-999।
9: नई बाइक का सपना अब होगा पूरा, वो भी सबसे कम दाम में।
10: इस सीजन अपने घर लाइए हीरो की नई चमचमाती बाइक या स्कूटर श्री गोपाल मोटर्स से, वो भी ऑन रोड रेट पर।
9: श्री गोपाल मोटर्स, गोपालगंज में पाए, स्प्लेंडर प्लस सिर्फ 86,168 रुपए में, HF डिलक्स सिर्फ 75,405 रुपए में, ग्लैमर एक्स सिर्फ 97,456 रुपए में, एक्सट्रीम 125R सिर्फ 110,881 रुपए में, इंश्योरेंस और रजिस्ट्रेशन के साथ।
10: विजिट कीजिए श्री गोपाल मोटर्स, NH 27, बंजारी, चैन पट्टी, गोपालगंज,
9: या अभी कॉल कीजिए 92-899-22567 या 97-714-86-164।

0: नमः शिवाय।
1: सावन के पावन अवसर पर बाबा भोलेनाथ के दर्शन का सुनहरा अवसर लेकर आया है दीपक राज टूर एंड ट्रेवल्स गोपालगंज।
0: श्रद्धालुओं के लिए विशेष तीर्थ यात्रा एवं कांवर यात्रा की व्यवस्था। पहला रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, राजगीर होते हुए पुनः वापसी।
1: दूसरा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, तारापीठ, जगन्नाथपुरी, गंगा सागर, काली घाट, कोलकाता, रजरप्पा, राजगीर होते हुए वापस गोपालगंज।
0: तीसरा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, गया, बोधगया, वाराणसी, अयोध्या, गोरखनाथ मंदिर होते हुए वापस गोपालगंज।
1: चौथा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, गुवाहाटी, माँ कामाख्या धाम, दार्जिलिंग, सिलीगुड़ी, गंगटोक, जनकपुर, अरेराज होते हुए वापस गोपालगंज।
0: गोपालगंज जिले के श्रद्धालु अब घर बैठे अपनी तीर्थ यात्रा के लिए वाहन बुक करा सकते हैं।
1: बिचौलियों से बचे और सीधे हमारे कार्यालय या बुकिंग नंबर पर संपर्क करें।
0: बुकिंग नंबर 9155548507 या 9162933538।
1: हेल्पलाइन नंबर 9934498845।
0: दीपक राज टूर एंड ट्रेवल्स, मुख्य कार्यालय चिराई घर पेट्रोल पंप के पास गोपालगंज, उपशाखा NH27 काली स्थान बंजारी गोपालगंज।
1: बोलबम हर हर महादेव।
2: अब आपको कॉस्मेटिक के लिए और परेशान होने की जरूरत नहीं, क्योंकि अब गोपालगंज में खुल गया है श्रृंगार वाटिका, जहां मिलते हैं डिजाइनर और ब्रांडेड प्रोडक्ट्स जैसे

0: में शुगर, नायका, कलाबा जैसी ढेर सारी कंपनियां, साथ ही साथ डिजाइनर पर्स, होम डेकोरेशन, टॉयज एंड गिफ्ट्स, ब्राइडल ज्वेलरी और चूड़ियों की नए कलेक्शंस। और तो और वहां इंपोर्टेड परफ्यूम्स भी मिलते हैं। यहां हर शॉपिंग पे गिफ्ट्स और 5-25% तक का डिस्काउंट भी मिल रहा है। एक सामान लेना हो या शादी की शॉपिंग करनी हो, इससे अच्छी जगह कोई नहीं। श्रृंगार वाटिका,
1: आज ही आए चंद्र गोखुल रोड नियर पंजाब नेशनल बैंक गोपालगंज, या कॉल करे 86034 48652 पे।
2: गोपालगंज, अब आपकी राइड होगी और भी स्टाइलिश और पहले से ज्यादा पावरफुल,
3: क्योंकि आ चुकी है हीरो ग्लैमर एक्स और एक्सट्रीम 125R। अब उपलब्ध है नारायणी हीरो गोपालगंज में।
2: ग्लैमर एक्स, दमदार माइलेज, शानदार लुक और भरोसेमंद परफॉर्मेंस, ताकि हर दिन बने खास और सफर रहे बेफिक्र।
3: और एक्सट्रीम 125R, स्पोर्टी डिजाइन, दमदार पावर और एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ हर राइड बने और एक्साइटिंग।
2: तो फिर देर किस बात की, आज ही विजिट करें नारायणी हीरो, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
3: शानदार ऑफर्स और आसान फाइनेंस सुविधा के साथ
2: नारायणी हीरो, भरोसे का नाम हर राइड के साथ।
3: कॉल नाउ 9656 59536 या 9656 57902।
4: ध्वनि के तरंग 90.4 पर आप जिले की आवाज रेडियो रिमझिम को सुन रहे हैं।

0: अरे माँ, ये दांत का दर्द तो जान ले लेगा, क्या करूँ?
1: अब चिंता छोड़िए, गोपालगंज में है महावीर डेंटल एंड मैक्सिलोफेशियल ट्रॉमा केयर, मल्टी स्पेशलिटी डेंटल और फेस क्लिनिक, जहाँ दांत, जबड़े और चेहरे से जुड़ी हर समस्या का आधुनिक इलाज उपलब्ध है।
2: यहाँ सेवा दे रहे हैं गोपालगंज के फर्स्ट MDS डॉक्टर पल्लव राज, वरिष्ठ जबड़ा एवं फेस सर्जन और कैंसर रोग विशेषज्ञ, साथ में डॉक्टर अभिलाषा अग्रवाल, दंत एवं मुख रोग विशेषज्ञ और कॉस्मेटिक डेंटल सर्जन।
1: यहाँ टेढ़े मेढ़े दांत, रूट कैनाल, चेहरे और मुंह से जुड़ी सभी समस्याओं का विशेषज्ञ इलाज किया जाता है।
2: ध्यान दे, आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए टूटे हुए जबड़े और मुंह का कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का मुफ्त इलाज उपलब्ध है।
1: पता, शनिवार और रविवार महावीर मेडिकल हॉल, अम्बेडकर चौक, हॉस्पिटल रोड, गोपालगंज। अन्य दिन केडिया मैक्सिलोफेशियल एंड कॉस्मेटिक केयर, मुंशी प्रेमचंद पार्क के पास, बेतिया हाता, गोरखपुर।
2: हर दिन दोनों क्लिनिक पर डॉक्टर पल्लव राज और उनकी विशेषज्ञ टीम द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है।
1: संपर्क करें 84710-3992 या 9765-65750।
3: नन्ना मुन्ना लाही हूँ, देश का सिपाही हूँ।
4: रुको रुको बेटा, अब तो बड़ा अच्छा गा रहे हो।
3: हाँ कल मेरे टीचर मुझे अच्छे से याद करने के लिए बोले हैं।
4: अच्छा, तो कौन से स्कूल में पढ़ते हैं आप?
3: मैं पढ़ता हूँ श्री भारती एकेडमी में।
5: श्री भारती एकेडमी जो है CBSE नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त स्कूल।
6: हमारे यहाँ बोलचाल के साथ ही बच्चों को खेल खेल में पढ़ाया जाता है। इसके साथ ही छात्रवास के अलावा आने और जाने के लिए परिवहन की भी सुविधा उपलब्ध है।
5: श्री भारती एकेडमी आपके बच्चों को बनाता है होनहार और देता है उनके फ्यूचर को एक नई उड़ान।
6: आज ही एडमिशन के लिए आए चैन पट्टी के उत्तर ग्राम डेरवा तिलंगही मैदान के पूरब गोपालगंज।
5: हमारा जूनियर ब्रांच सरिया वार्ड नंबर 5 हनुमानगढ़ी गोपालगंज में है।
6: जानकारी है तो कॉल करे 6205-62112 पे।
7: क्या हुआ? अरे ये तेरा रोज रोज का पेट दर्द।
8: अरे तो उसे डांटती क्यों हो, उसे जल्दी से ले जाओ डॉक्टर सुनील कुमार रंजन के पास।
5: यहाँ पर हर्निया, अपेंडिस, वंध्याकरण, प्रोस्टेट, पीत की थैली, किडनी की पथरी, पेशाब की नली एवं पेशाब की थैली की पथरी तथा गोला का ऑपरेशन दूरबीन विधि से, साथ ही लेजर एवं स्टेपलर विधि के द्वारा बिना चीड़ा और बिना दर्द के बवासीर, भगंदर और नासूर का ऑपरेशन सस्ते दर पर किया जाता है।
9: ध्यान दें, हमारे यहाँ आयुष्मान भारत योजना के तहत ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
5: आज ही आए JB हॉस्पिटल एवं स्टोन क्लिनिक, थावे रोड, गोपालगंज।
7: अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 91-626-64-498 पे।
10: कूल्हा एवं घुटना प्रत्यारोपण, आर्थ्रोस्कोपिक या दूरबीन विधि से घुटने के टूटे लिगामेंट की सर्जरी, एलिजारोव रशियन विधि से हाथ पैर की लंबाई बढ़ाना, स्पाइन सर्जरी और हड्डी जोड़ की सभी समस्याओं का समाधान।
9: मिले वरिष्ठ सर्जन डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से। संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एवं सर्जिकल सेंटर, रुस्तमपुर ढाला, गोरखपुर।
10: आज ही संपर्क करें 7388-89470 या 9198-88-6973।

हेलो हाय नमस्ते नमस्कार प्रणाम सलाम वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग ठीक होंगे और आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 एफएम और मैं हूँ आपके अपनी रेडियो दोस्त आजय सोनी। आप सभी के बीच हाजिर हो चुकी हूँ आपके अपने कार्यक्रम योर वॉइस योर चॉइस के साथ। 12:04 हो चुके हैं स्टूडियो घड़ी में और अभी से लेकर 4 बजे तक मैं आप सभी के साथ हूँ, आपकी फरमाइशों के साथ हूँ। तो अगर आप भी कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हैं तो कार्यक्रम में जुड़ने के लिए माध्यम है व्हाट्सएप इंस्टा कॉल, आप जिस माध्यम से चाहे जुड़ सकते हैं। व्हाट्सएप से जुड़ने के लिए नंबर है 9857788291 पे व्हाट्सएप मैसेज करिए या फिर अपनी आवाज़ में एक छोटा सा वॉइस रिकॉर्ड करके हमें भेज दीजिए अपने नाम पता और गाने की फरमाइश के साथ। उसके अलावा आप रेडियो रिमझिम के इंस्टाग्राम पे भी डायरेक्ट मैसेज करके अपने गाने की फरमाइश को सुन सकते हैं या फिर कॉल करिए 7277166696 पे और जुड़िए अपने सो योर वॉइस योर चॉइस से। तो चलिए बातों की अपने यहीं रोकेंगे और अपनी बकबक रोक के हम आज की शो की आगाज करेंगे एक खूबसूरत से गाने के साथ। तब तक आप सभी मैसेज करिए और बताइए मेरी आवाज़ आप सभी के पास क्लियर पहुँच रही है कि नहीं, ऐप कैसा चल रहा है, और इन्जॉय करिए इस प्यारे से गाने को।

0: जानकारी है तो कॉल करें बाजार।
1: वेलकम बैक रेडियो रिमझिम 90.4 एफएम पे, आपके अपने कार्यक्रम योर वॉइस योर चॉइस में 12:08 हो चुके हैं स्टूडियो घड़ी में। और यहाँ मैसेज की बात करें तो काफ़ी सारे मैसेज पहुँच चुके हैं। अगर आपको भी कार्यक्रम से जुड़ना है तो कार्यक्रम में जुड़ने के लिए माध्यम है व्हाट्सएप, इंस्टा, कॉल, आप जिस माध्यम से चाहे जुड़ सकते हैं। और व्हाट्सएप के लिए नंबर है 9857788291 पे व्हाट्सएप मैसेज करिए, या फिर अपनी आवाज़ में एक छोटा सा वॉइस रिकॉर्ड करके हमें भेज दीजिए अपने नाम, पता और गाने की फरमाइश के साथ। और उसके अलावा आप रेडियो रिमझिम के इंस्टाग्राम पे भी डायरेक्ट मैसेज करके अपने गाने की फरमाइश को सुन सकते हैं, या फिर कॉल करिए 7277166696 पे। और इसी के साथ बढ़ेंगे आगे यहाँ व्हाट्सएप मैसेज की तरफ। और मैसेज है लिखना है, गुड आफ्टरनून प्यारी युद्ध घोषक महादेव जी, और रेडियो रिमझिम 90.4 एफएम सुनने वाले समस्त सम्मानित श्रोताओं को हमारा प्यार भरा नमस्कार। कैसी हैं आप? और आज हम काफ़ी दिन बाद आपके शो में जुड़े हैं, समय का अभाव है जिसके कारण नहीं जुड़ पा रहे थे, और एक भोजपुरी सॉन्ग सुनने की इच्छा है, उम्मीद है कि प्ले किया जाएगा। जी हाँ बिल्कुल। और मैसेज चाहते हैं, प्रमुख जी लुधियाना पंजाब से बहुत बहुत स्वागत है आपका, और बिल्कुल आपकी फरमाइश है तो प्ले करने की पूरी कोशिश है, बने रहिए हमारे साथ में। और आगे यहाँ और भी कई सारे मैसेज पहुँचे हुए हैं, और मैसेज ये लिख रहे हैं कि सोनी जी नमस्कार, और पवन साहब जुड़े हुए हैं खगड़िया बिहार से, बहुत बहुत स्वागत है, और लिख रहे हैं कि गाना सुनना है फिल्म छम्मा छम्मा। बिल्कुल आपके गाने की फरमाइश है, प्ले करेंगे, बने रहिए हमारे साथ में, सुनते रहिए रेडियो रिमझिम को। और आगे यहाँ मैसेज लिख रहे हैं कि और गाना कल यही सॉन्ग था नीलकमल सिंह के आवाज़ में बेवफाई का गाना, और गाने की फरमाइश करने वाले हैं गणेश कुमार जी पिपरा नारायण से, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और गणेश जी आपके गाने की बात करें तो आपका जो गाना हम प्ले किए हैं वो कल ही किए हैं, तो आज तो बिल्कुल नहीं होगी आपके गाने की फरमाइश। और आगे यहाँ करिश्मा कुमारी भी जुड़ चुके हैं पिपरा नारायण से, बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। एक और मैसेज है, लिख रहे हैं कि नमस्ते नमस्कार सोनी मैडम जी, कल भी मेरा गाना प्ले नहीं हुआ था, हाँ तो थोड़ा ध्यान से मेरा गाना प्ले कर दीजिएगा। रितेश पांडे जी की आवाज़ में है जाए चंदा लिया व खबरिया, तो मैं आपको बता दूँ कि आपके गाने की फरमाइश जो है मंडे को प्ले होगा। और राम कुमार जी हैं बालाघाट MP से, और शो का रूल है कि एक सप्ताह बाद ही आपके गाने की फरमाइश जो है प्ले होता है। और यहाँ राकेश भारती जी हैं बक्सर से, बहुत बहुत स्वागत है आपका। लिख रहे हैं कि पवन सिंह के गाना सुनना है ओल्ड इज गोल्ड है, बिल्कुल आपकी फरमाइश से प्ले करने की पूरी कोशिश है। और साथ में इनके हैं हरिंदर जी, पप्पू जी, और वो लोग गाना सुनना चाहते हैं, तो आप बोलिए कि उनको गाने फरमाइश करने के लिए, क्योंकि आपका जो है एक सप्ताह वो मंडे को पूरा होगा। और आगे हाँ मैसेज लिख रहे हैं कि हेलो हाय नमस्ते श्रुति दी, मैं श्याम सुंदर संग्रामपुर से, और मेरा भी हाजिरी लगा दीजिए। बिल्कुल लग चुकी है आपकी हाजिरी, बहुत बहुत स्वागत है। और यहाँ सरफरोज अली जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका भी। लिख रहे हैं कि मेरा गाना कल नहीं बजा था तो आज बजा दीजिएगा, बिल्कुल आपकी गाने की फरमाइश है, प्ले करेंगे, बने रहिए हमारे साथ में, सुनते रहिए रेडियो रिमझिम को। और यहाँ अली अख्तर जी भी है कश्मीर से, बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका, बने रहिए हमारे साथ में। और आप लोग जब भी मैसेज करिए साथ में नाम पता मेंशन किया करिए। और यहाँ मैसेज लिख रहे हैं, नमस्ते सोनी जी, हम भी ठीक हैं, और आप बताइए कि आप कैसे हैं। ओपनिंग सॉन्ग बहुत ही फनी था, मस्त लगा। और अनिल जी है छोटपुर से, बहुत बहुत स्वागत है आपका, और मैं भी बिल्कुल मस्त हूँ। यहाँ संजय यादव जुड़ चुके हैं दुबई से, बहुत बहुत स्वागत है, बिल्कुल बढ़िया है, आप बताइए आप कैसे हैं। वॉइस मैसेज पहुँचा हुआ है, नाम मेंशन नहीं है। और सतीश कुमार दिखा रहा है प्रोफाइल पे नाम, अपना नाम पता मेंशन करिए, बहुत बहुत स्वागत है आपका। यहाँ सोनल कुमार जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका भी, आपकी हर्जी की बात है तो लग चुकी है। जितेंद्र जी जुड़ चुके हैं सिवान से, और लिख रहे हैं कि सभी श्रोताओं के साथ हम भी आपके प्रोग्राम से जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और फरमाइश है तो बिल्कुल आपकी फरमाइश प्ले करने की पूरी कोशिश है। फिलहाल यहाँ और भी कई सारे मैसेज हैं, और मैसेज का सिलसिला जो है वो रुकने का नाम नहीं ले रहा है, तो शामिल करेंगे फिलहाल आज की पहली फरमाइश प्ले करेंगे। और पहली फरमाइश जो हमारे पास है लुधियाना पंजाब से प्रमुख जी का, तो इंजॉय करिए अपने गाने को रेडियो रिमझिम 90.4 FM पर।

0: 90.4 रेडियो रंजन सुन रहे हैं आप सभी और कार्यक्रम है योर वॉइस योर चॉइस का। और अभी गाना सुन रहे हैं प्रमुख जी की फरमाइश है लुधियाना पंजाब से। और यहाँ मैसेज है लिख रहे हैं कि हरेंद्र जी पप्पू जी मेरे फ़ोन से ही सुनते हैं और गाना बजाना है तो बजा दीजिए, नहीं तो कोई बात नहीं, उन लोगों को फ़ोन में रिचार्ज नहीं है। ओहो कोई बात नहीं, रिचार्ज नहीं है तो उन लोगों को हॉटस्पॉट दे दीजिए। और फिलहाल ठीक है, आपके फ़ोन से सुनते हैं तो प्ले करने की कोशिश है, बने रहिए हमारे साथ में। और राकेश भारती जी अब अक्सर से आगे यहाँ और भी कई सारे मैसेज लिख रहे हैं कि हमारा भी हाजिर लगा दीजिए, हम भी जुड़ गए हैं। जी हाँ बिल्कुल, बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और लुधियाना पंजाब से जुड़े हुए हैं, नाम है इनका अरशाद जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। एक और यहाँ मैसेज लिख रहे हैं कि लाजवाब भोजपुरी सॉन्ग प्रमुख जी की फरमाइश। और प्रीति रदास जी हैं लकड़ी दरगाह डिस्ट्रिक्ट सिवान से, बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका भी। और यहाँ मैसेज है लिख रहे हैं कि मेरा एक हफ्ता कंप्लीट हो गया। जी हाँ कृष्णा जी, आपका एक सप्ताह कंप्लीट हो गया और आपके आने की फरमाइश है, प्ले करेंगे। यहाँ सन्यासी रंजन बाबा जी हैं लिख रहे हैं, नमस्कार प्रणाम रोगा के, और हमू आगल बानी हमरो हाजिर लगा दे। बिल्कुल लग चुकल बा, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और आगे लिखा था नहीं कि अगर आप अपनी बीवी से आँख नहीं दिखा सकते हैं तो हमसे दिखाइए, नेत्र रोग विशेषज्ञ से मिलने का पता है, बस स्टैंड राजेंद्र नगर गली में गोपालगंज। और मैसेज के साथ है सन्यासी रंजन बाबा जी। और आगे यहाँ मैसेज लिख रहे हैं कि मैं शाहजहाँ मुगल बरीचा से, बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और कोई बात नहीं, मेरा दिमाग खा के आपको कुछ नहीं मिलेगा अगर आ गई हैं दिमाग खाने तो, क्योंकि मैं खुद ही बैठ के दिमाग खा रही हूँ। और आगे यहाँ मैसेज है विशाल जी जुड़ चुके हैं देवरिया से, लिख रहे हैं कि आज सॉन्ग चलेगा, अगर चलेगा तो बोलिए। बिल्कुल, अगर आपको मेरी आवाज़ पहुंच रही है तो गाने की फरमाइश है तो भेज दीजिए, गाने का नाम लिख के या फिर वॉइस रिकॉर्ड करके भेज दीजिए। और यहाँ मैसेज लिख रहे हैं सोनी मैम नमस्कार, धनेश कुमार मिश्रा दिल्ली से, और कैसे हैं आप, ठीक है ना? बिल्कुल ठीक है, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और अभी कई सारे मैसेज है लेकिन बिना देरी अगली फरमाइश हम प्ले करेंगे। और अगली फरमाइश पहुँचा है वॉइस के माध्यम से, तो चलिए सुनते हैं।
1: मैम जी आज नमस्कार, आप पंजाब, हम जितेंद्र सिवान जिला से, आपके प्रोग्राम में हमको एक गाना सुनना है। आ गाना है आ क्या तुम्हें पता है आ ए गुलशन आ मेरे दिलवरियाने आवाले हैं कनियाँ ना बिछाना आ राहों में हम दिल को बिछाने वाले हैं। ओह आए गाना सबसे पहले आपको और उसके बाद रेडियो रिमझिम सुनने वाले सभी दोस्तों को, तो हमारा भी फरमाइश चलवा दीजिएगा, धन्यवाद।
0: जी बिल्कुल, आपका फरमाइश चल चुका है जितेंद्र जी। और यहाँ मैसेज लिख रहे हैं कि प्रीति रदास जी को हमारा नमस्कार बोल दीजिएगा, बिल्कुल बोल दिए हैं। और प्रमुख जी हैं राम कुमार पांडे जी जुड़ चुके हैं लंदन से, बहुत बहुत स्वागत आपका भी, एंजॉय करिए अपने गाने को।

0: मैम जी आज नमस्कार, आपका नाम हमारा गाना चलाए एकदम सुन के एकदम मन गदगद हो गया। एकदम ऐसे ही चलाते रहिए। आज रेडियो रिम झिम 90.4 आज जो कहता है सुनो दिल से। ओह
1: अगर आपका फर्नीचर डोलता है और बोलता है तो एक्सचेंज तो मांगता है।
2: संतोष फर्नीचर लेकर आ गए हैं ग्रेट एक्सचेंज ऑफर।
3: ग्रेट एक्सचेंज ऑफर, अपने घर के पुराने सोफा और डाइनिंग को ले आएं और नए सोफा तथा डाइनिंग को ले जाएं और बनाएं अपने घर को सुंदर तथा आकर्षक।
2: आज ही विजिट करें संतोष फर्नीचर, चिराईगढ़ पेट्रोल पंप के सामने, कॉलेज रोड, गोपालगंज। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 82 101 87 952। नियम और शर्तें लागू।
4: नई बाइक का सपना अब होगा पूरा, वो भी सबसे कम दाम में।
5: इस सीजन अपने घर लाइए हीरो की नई चमचमाती बाइक या स्कूटर श्री गोपाल मोटर्स से, वो भी ऑन रोड रेट पर।
4: श्री गोपाल मोटर्स, गोपालगंज में पाए स्प्लेंडर प्लस सिर्फ 86,168 रुपए में, HF डिलक्स सिर्फ 75,405 रुपए में, ग्लैमर एक्स सिर्फ 97,456 रुपए में, एक्सट्रीम 125R सिर्फ 1,10,881 रुपए में, इंश्योरेंस और रजिस्ट्रेशन के साथ।
5: विजिट कीजिए श्री गोपाल मोटर्स, NH 27 बंजारी, चैन पट्टी, गोपालगंज,
4: या अभी कॉल कीजिए 92899-22567 या 97-714-86-164।
6: सोहन, मैं बहुत परेशान हूँ। मुझे तुरंत अपने भाई को कुछ पैसे भेजने हैं, लेकिन बैंक में तो इतनी लंबी लाइन है कि घंटों लग जाएंगे और मेरा जियो सिम भी एक्टिवेट नहीं हो रहा। अब मैं क्या करूँ?
7: अरे टीना, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। चलो मेरे साथ माया क्लासिकल में आधार और बैंक से आसानी से पैसे निकाला जाता है और किसी भी खाते में तुरंत भेजा जा सकता है बिना किसी झंझट के। और सिम की बात कर रही हो ना, BSNL, जियो, एयरटेल, VI, जो भी चाहिए तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा।
6: मुझे कुछ जरूरी PDF प्रिंट करवाने हैं, वहाँ ये सब हो जाएगा ना?
7: बिल्कुल, माया क्लासिकल में PDF, लेमिनेशन, प्रिंट, फोटो कॉपी सब कुछ मिलेगा। तुम्हें एक धमाकेदार ऑफर भी बताता हूँ, फोटो स्टेट सिर्फ 1 रुपए प्रति प्रिंट आउट, कम से कम 50 पेज, हर ग्राहक को शानदार गिफ्ट भी मिलता है। माया क्लासिकल में सब कुछ है। माया क्लासिकल सिनेमा रोड, शिव मंदिर के ठीक सामने, गोपालगंज। प्रोपराइटर सोनू जी, संपर्क करें 99-399-66-999।
8: अब बेटा, बहू घर आने वाली है, सोच रही हूँ कुछ सोने की नई ज्वेलरी ले ली जाए, पर भरोसे की दुकान।
9: माँ, अब घबराइए नहीं, चलते हैं मास्टर साहब की जेवर की दुकान, गुप्ता ज्वेलर्स, BIS अप्रूव्ड, शानदार डिजाइन और असली ज्वेलरी की गारंटी।
10: अपने सपनों की खूबसूरती के लिए गुप्ता ज्वेलर्स ही चुने, सिल्वर, गोल्ड या डायमंड, हर ज्वेलरी BIS अप्रूव्ड और किफायती दाम के साथ। विश्वास की परंपरा, नई डिजाइन का खजाना, बस गुप्ता ज्वेलर्स में।
4: आज ही आएं गुप्ता ज्वेलर्स, मास्टर साहब की जेवर की दुकान, चंद्रगोखो लोड, गोपालगंज। मोबाइल नंबर 94-309-45-651 या 97-097-06-575।

0: वेलकम बैक रेडियो रिमझिम 90.4 एफएम पे आपके अपने कार्यक्रम योर वॉइस योर चॉइस में। और यहाँ 12:27 हो चुके हैं हमारी स्टूडियो घड़ी में। और अगर आप भी कार्यक्रम में जुड़ना चाहते हैं, कार्यक्रम में जुड़ने के लिए माध्यम है व्हाट्सएप, इंस्टा, कॉल, आप जिस माध्यम से चाहे जुड़ सकते हैं। और यहाँ इंस्टाग्राम की तरफ रुख करेंगे। और मैसेज है, जितेंद्र जी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका। लिखेंगे मुझे भी गाना सुनना है राज मूवी का और आपके प्यार में हम संवरने लगे। बिल्कुल आपकी फरमाइश से प्ले करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है आपका, बने रहिए हमारे साथ में। और कॉल करने के लिए हमारा नंबर है 72-77-16-65-96 पे कॉल करिए। और यहाँ आरजे वंशिका जी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका भी। और आगे यहाँ एक और मैसेज है, लिख रहे हैं कि हाय ज्योति जी हैं हम और का हलवा मैम, बिल्कुल बढ़िया रहो, बताएं कैसन बानी, बहुत बहुत स्वागत बटे। और डॉक्टर अमोद कुशवाहा जी हैं, जय छपरा कुशनगर उत्तर प्रदेश से, लिख रहे हैं कि जिस घर के लोग आपके आने से खुश ना हो, उन लोगों की आंखों में आपके लिए प्रेम और स्नेह ना हो, भूलकर भी वहाँ नहीं जाना चाहिए, भले ही वहाँ कितनी भी धन की वर्षा क्यों ना हो। जी हाँ बिल्कुल। और डॉक्टर अमोद कुशवाहा जी हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका। एक और यहाँ मैसेज है, लिख रहे हैं कि मेरी भी फरमाइश है, अर्जेंट में प्ले कर दीजिए। और गाने की फरमाइश के साथ हैं एमडी महमूद अंसारी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और आपकी फरमाइश से तो बिल्कुल प्ले करेंगे, थोड़ा वेट करिए। और यहाँ और भी कई सारे फरमाइश पहुँचे हुए हैं और आपकी फरमाइश से प्ले करने की पूरी कोशिश है। एक और यहाँ मैसेज है, गाने की फरमाइश के साथ हैं। और ठीक है, नमस्ते जी, रंजन कुमार जी हैं पंजाब से, बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका भी। फरमाइश है तो बिल्कुल आपकी फरमाइश भी प्ले करने की पूरी कोशिश है, बने रहिए हमारे साथ में। और यहाँ मैसेज लिख रहे हैं, सुन्नी मैडम जी हम भी जुड़ गए हैं और मेरे तरफ से सभी को राधे राधे बोल दीजिएगा। बिल्कुल बोल दिए, उमा शंकर मिश्रा जी दिल्ली से। और यहाँ मैसेज लिख रहे हैं, क्या तुम्हें पता है गुलशन, नाइस सॉन्ग। और गुलशन नाम का एक लड़का है मेरे पड़ोस में, बड़ा शरारती है। कोई नहीं, शरारती है, आपके साथ कोई शरारत किया है कि नहीं ज़रूर बताइएगा। प्रमुख जी है लुधियाना पंजाब से। और यहाँ मैसेज लिख रहे हैं कि जितेंद्र जी सिवान के और हमारे बीच आ चुके हैं, इसके लिए दिल से धन्यवाद। आशा और पूरा विश्वास किए है कि आज पूरे दिन आनंद मोहन जी की आवाज़ में इंटरटेन लिखना चाहते हैं, इंटरटेन करेंगे। जी हाँ बिल्कुल, और आशा है। और मैसेज के साथ है धनेश मिश्रा जी दिल्ली से। और यहाँ मैसेज लिख रहे हैं, हमारे तरफ से नमस्कार बोल दीजिएगा प्रमुख जी को, बिल्कुल बोल दिए हैं। और यहाँ वॉइस मैसेज पहुँचा हुआ है और बेगूसराय बिहार से सरवन कुमार जुड़े हुए हैं, बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका भी सरवन जी। और आज लगता है आपका फर्स्ट डे है सो में। और यहाँ मैसेज है, लिख रहे हैं गुड आफ्टरनून आपको एंड सभी रेडियो दोस्त को, रेडियो फैन को, और हम भी सुन रहे हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और आप भी सुन रहे हैं तो आप अपना नाम पता भी मेंशन किया करिए कि आप कौन हैं और कहाँ से। और सनी है शायद गोपालगंज से, बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और नाम ज़रूर बताइए कि आप कौन है, कहाँ से। और यहाँ मैसेज लिख रहे हैं, हम भी जुड़ चुके हैं और हमारा भी मैसेज शामिल कर लीजिए। बिल्कुल शामिल कर लिए हैं। और फरमाइश है तो आपकी भी फरमाइश प्ले करने की पूरी कोशिश है। और फुरकान अंसारी जुड़े हुए हैं बेंगलोर भागलपुर बिहार से, बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका भी। और यहाँ लिख रहे हैं कि हम भी बेंगलोर से जुड़ चुके हैं तो आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। आज अमन जी हैं, बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका भी, बने रहिए साथ में। और यहाँ कॉल पहुँचा हुआ है तो बात करते हैं कौन है, कहाँ से और फरमाइश क्या है। जी हेलो
1: जी मैम, नमस्कार
0: जी। नमस्कार
1: जी, सुनील कुशवाहा बात कर रहा हूँ मैं एमपी से।
0: जी बहुत बहुत स्वागत है सुनील जी आपका,
1: धन्यवाद मैम। बस बैठे थे आपका रेडियो रिमझिम सुनते हुए मैम, आज से एक हफ्ता हुआ तो हम ही सोचे चलो हम ही जुड़ जाते हैं रेडियो रिमझिम से, अपना फरमाइश पूरा करेंगे।
0: जी जी बिल्कुल सही सोचे हैं, तो क्या सुनना पसंद करिएगा आज।
1: जी आज सुनवा दीजिएगा फिल्म दिल वाले का, और गाने का बोला है जीता था जिसके लिए, और सुनवाएंगे कितने रेडियो रिमझिम दोस्त लोग सुनते हैं, सभी दोस्तों के साथ सुनना चाहते मैम।
0: चलिए तो प्ले कर दिए गाना आपका।
1: ओके मैम, धन्यवाद
0: जी, बहुत बहुत धन्यवाद सो मैं कॉल किए, एंजॉय करिए गाने को।

0: 90.4 रेडियो रंजन सर आप सभी और कार्यक्रम है योर वॉइस योर चॉइस का। और अभी गाना सुन रहे हैं, गाने की फरमाइश थी कॉल के माध्यम से सुनील कुशवाहा जी की मैहर एमपी सा। और बिना देरी अगली फरमाइश प्ले करेंगे। उससे पहले यहाँ कई सारे मैसेज है और लिख रहे हैं कि उस समय से वेट कर रही हूँ मैम। बिल्कुल आप वेट कर रही हैं और आपके गाने की फरमाइश है। और नीलकमल की आवाज़ में बेवफाई सॉन्ग सुनना है, तो गाना का नाम तो आप बता ही नहीं है, तो चलिए मैं नीलकमल की आवाज़ में कोई भी बेवफाई सॉन्ग जो है आपका प्ले कर रही हूँ और गाने की फरमाइश करने वाली हैं। करिश्मा जी, तो एंजॉय करिए अपने गाने को, होई प्यार ना दोबारा हो।
1: अरे मेरी मोहब्बत में इतनी ताकत है कि तेरे आँख के आंसू अपनी आँख से निकाल सकता।

और यहाँ मनीष जाग जुड़ चुके हैं फाजिलनगर कुशीनगर उत्तर प्रदेश से। बहुत बहुत स्वागत है आपका। लिख रहे हैं दिलवाले मूवी का गाना, वेरी नाइस गुड सॉन्ग। बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और यहाँ और भी कई सारे मैसेज है शामिल करेंगे। और यहाँ मैसेज है, लिख रहे हैं कि राम राम जी आपको और सभी को। बहुत बहुत स्वागत है मनीष पांडे जी आपका भी। और इन्जॉय करिए गाने को।

0: बहुत बहुत स्वागत है आपका। लिख रहे हैं राम राम सोनी जी, कैसे हो? बिल्कुल बढ़िया, आप बताइए आप कैसे हैं। और लिख रहे हैं कि हो ही प्यार ना दोबारा हो, ये में कितना सच्चाई बा ये में। और कहे के हमारा तो 1-2-3 बार हो चुकल बा, ते में तो 100% सच्चाई बटे भाई। और चलिए बढ़िया बा कि 1-2-3 बार हो गल बा, और 4-5-6 बार भी हो को। फिलहाल बढ़े हम छोटा सा ब्रेक के तरफ, मिला तो नहीं छोटा सा ब्रेक के बाद।
1: जो लोग डायबिटीज से परेशान हैं, वो डरे नहीं, परहेज करे नहीं। वैद्य एसपी त्यागी जी आयुर्वेदिक दवा द्वारा शुगर यानी डायबिटीज का इलाज कम खर्च में सब कुछ खाते हुए सफलतापूर्वक कर रहे हैं। आप भी दवा खा कर इलाज कराकर निराश एवं परेशान हो गए हैं तो एक बार अवश्य मिले वैद्य एसपी त्यागी जी से। डायबिटीज के अलावा और सब बीमारी का इलाज, जैसे
2: सभी प्रकार के नशा जैसे शराब, टेबलेट, इंजेक्शन, सिरप, गांजा, स्माइक के इलाज और गठिया, साइट टीका, पथरी, कमर दर्द, घुटना दर्द, दमा, मिर्गी, दाद, दिनाए और सभी चर्म रोग एवं लिकोरिया, मासिक खराबी, बवासीर, पेट रोग, शुगर, गैस्ट्रिक, शीघ्र पतन, शुक्राणु में कमी, नपुंसकता, धातु चिंताएं और चर्म रोग में दाग, दिनाए, खुजली, एक्जिमा, सोराइसिस तथा
1: पथरी इत्यादि सभी रोगों का इलाज वैद्य एसपी त्यागी जी आयुर्वेदिक दवा द्वारा सफलतापूर्वक करते हैं।
3: वैद्य एसपी त्यागी जी से मिलने का पता
1: प्रत्येक शनिवार गोपालगंज बस स्टैंड थावे रोड भी मार्केट के बगल में कृष्णा जी के मकान में।
3: अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 99554-94-53
1: और 90-97-61-60-02।
4: अब आपको कॉस्मेटिक के लिए और परेशान होने की जरूरत नहीं, क्योंकि अब गोपालगंज में खुल गया है श्रृंगार वाटिका, जहां मिलते हैं डिजाइनर और ब्रांडेड प्रोडक्ट्स जैसे लैक्मे, शुगर, नायका, कलाबा जैसी ढेर सारी कंपनियां। साथ ही साथ डिजाइनर पर्स, होम डेकोरेशन, टॉयज एंड गिफ्ट्स, ब्राइडल ज्वेलरी और चूड़ियों की नए कलेक्शंस। और तो और वहां इंपोर्टेड परफ्यूम्स भी मिलते हैं। यहां हर शॉपिंग पे गिफ्ट्स और 5-25% तक का डिस्काउंट भी मिल रहा है। एक सामान लेना हो या शादी की शॉपिंग करनी हो, इससे अच्छी जगह कोई नहीं, श्रृंगार वाटिका।
5: आज ही आए चंद्र गोखुल रोड नियर पंजाब नेशनल बैंक गोपालगंज, या कॉल करें 86034-48652 पे।
6: कूल्हा एवं घुटना प्रत्यारोपण, आर्थ्रोस्कोपिक या दूरबीन विधि से घुटने के टूटे लिगामेंट की सर्जरी, एलिजारोव रशियन विधि से हाथ पैर की लंबाई बढ़ाना, स्पाइन सर्जरी और हड्डी जोड़ की सभी समस्याओं का समाधान।
7: मिले वरिष्ठ सर्जन डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एवं सर्जिकल सेंटर, रुस्तमपुर ढाला, गोरखपुर।
6: आज ही संपर्क करें 7388-89470 या 9198-89673।
8: ठक
9: काजी, आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
10: अच्छा मिला ही नहीं,
9: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें, अब चलिए सीधे कमल श्री में।
11: जी हाँ, कमल श्री, याद रखे सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
9: आप भी आए कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, बारी मार्केट, गोपालगंज।
11: याद रहे सीढ़ी से ऊपर आना है, जी हाँ सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है।

0: ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं रेडियो रमजिम 90.4 एफएम पे और आपके अपने कार्यक्रम योर वॉइस योर चॉइस में। और यहाँ व्हाट्सएप मैसेज की बात करें तो काफ़ी सारे मैसेज पहुँचे हुए हमारे पास, और इंस्टाग्राम पे भी मैसेज है, लिख रहे हैं कि हम भी जुड़ चुके हैं। जी हाँ बिल्कुल, बहुत बहुत स्वागत है आपका भी, लेकिन नाम बता दीजिए। वैसे आगे हाँ व्हाट्सएप मैसेज की तरफ बढ़ेंगे तो मैसेज है, लिख रहे हैं कि हेलो जी राधे राधे, मेरा भी आज ही लगा दीजिए मैम। और मौसम कैसा है आपके यहाँ? तो हमारे यहाँ तो आज काफ़ी गर्मी है और धूप भी है। और मैसेज के साथ है पाजी यूपी चौवन से, बहुत बहुत स्वागत है आपका। रेडियो फैन पंकज जी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका भी। और यहाँ मैसेज है, लिख रहे हैं गुड आफ्टरनून। और आज अमन जी है, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है, बने रहिए हमारे साथ में सुनते रहिए रेडियो रमजिम को। यहाँ जो राला मंसारी जुड़ चुके हैं फरमाइश के साथ, बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका भी। और लिख रहे हैं कि हेलो जी गुड आफ्टरनून, शहाबुद्दीन अंसारी जी हैं फरीदाबाद से, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और यहाँ मैसेज लिख रहे हैं कि थोड़ा टाइम कम मिलता है सुनिधि, कोई बात नहीं, टाइम कम मिले शो से ना जुड़िए, शो को सुनते रहिए। करिश्मा कुमारी जी हैं पिपरा नारायण से, और बिल्कुल ध्यान है एक। और यहाँ मैसेज लिख रहे हैं कि मैडम जी गणेश ब्रदर और करिश्मा सिस्टर एनी टाइम, नीलकमल, और जी हाँ सैड सॉन्ग सुनते ही हैं, बोलो नीलकमल जी के बहुत बड़े वाले फ़ैन हैं। और प्रीति रदास जी हैं यहाँ, एक और मैसेज है, लिख रहे हैं कि वेट कर रहे हैं। जी हाँ बिल्कुल, आपका इंतज़ार ख़त्म हुआ। और गाने की फरमाइश के साथ है, नाम है इनका श्रवण कुमार जी बेगूसराय बिहार से, तो बिल्कुल आपकी फरमाइश से प्ले करेंगे। और यहाँ बेगूसराय बिहार से एक और मैसेज है, लिख रहे हैं गुड आफ्टरनून सोनी जी, नमस्ते सभी दोस्तों को प्यार भरा नमस्कार। केसर आज जुड़े हुए हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। एक और मैसेज है, लिख रहे हैं कि हम भी जुड़ गए हैं सोनी मैम नमस्ते। मुन्ना जी है दिल्ली से, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और फरमाइश है तो बिल्कुल आपकी फरमाइश प्ले करने की पूरी कोशिश है, बने रहिए साथ में। और यहाँ एक और मैसेज लिख रहे हैं कि आई एम बंटी फ्रॉम KGS पटना, बहुत बहुत स्वागत है बंटी जी आपका भी। और फरमाइश है तो बिल्कुल आपकी फरमाइश भी प्ले करने की पूरी कोशिश है, बने रहिए हमारे साथ में। और यहाँ और भी कई सारे मैसेज लिख रहे हैं कि हमारा गाना नहीं बजेगा क्या भाई? आपका भी बजेगा गाना, क्यों नहीं बजेगा? और इसलिए तो हम हैं यहाँ कि आप सभी की गाने की फरमाइश जो है प्ले करें। ज्योति जी हैं, बहुत बहुत स्वागत है। और बिना देरी अगली फरमाइश हम प्ले करने जा रहे हैं, और अगली फरमाइश जो हमारे पास है वॉइस के माध्यम से, तो चलिए सुनते हैं कौन सी गाने की फरमाइश है। और श्रवण कुमार जी जुड़े हुए हैं, तो एंजॉय।
1: मेरा गाना है कच्चे धागे फिल्म का, इसकी जवानी तेरे की जवानी मेरी दोनों दिली तुम्हारी प्रेम का। मेरा गाना है कच्चे धागे फिल्म का, इसकी जवानी तेरे की जवानी मेरी दोनों दिली तुम्हारी प्रेम का।

और आप सभी से मेरा निवेदन है कि आप सभी वॉइस भेजिए तो क्लियर वॉइस भेजिए, ताकि समझ में आए कि आप क्या कर रहे हैं, और हमें ही नहीं बाकी लिसनर को भी समझ में आए कि आप क्या बोले हैं और कौन सी गाने की फरमाइश किए हैं।

90.4 रेडियो रिमझिम सुन रहे आप सभी और कार्यक्रम है योर वॉइस योर चॉइस का। और अभी गाना सुन रहे थे कच्चे धागे से और गाने की फरमाइश करने वाले थे श्रवण कुमार जी और गाना इन्होंने सुन लिया है। और आगे यहाँ मैसेज लिख रहे हैं कि तेरी हर एक बात पे मुझे बहुत प्यार है, तेरी हर एक बात मुझे बहुत प्यारी है, मैं तेरे बिना रह नहीं सकता ये सच है, तेरी याद में जी लेता हूँ हर पल क्योंकि तेरी हर एक मुस्कान मेरी जान है। और इस मैसेज के साथ है धनेश मिश्रा जी दिल्ली से, लेकिन वो है कौन ये भी मेरे को बता दीजिएगा। और आगे यहाँ और भी मैसेज है लिख रहे हैं कि आज से कृष्णा बलराम रथ यात्रा शुरू हो गई है जगन्नाथपुरी में। जी हाँ बिल्कुल, और आज से शुरू हो गई है। उमा शंकर मिश्रा जी हैं दिल्ली से, बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ ईशा जी जुड़ चुके हैं धनाव से, बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका भी। एक और मैसेज है लिख रहे हैं, नमस्ते सोनी जी, निजामुद्दीन जी हैं सऊदी अरब से, क्या हाल है जी? बिल्कुल बढ़िया, और आप बताइए आप कैसे हैं? लिख रहे हैं कि तब हमारा भी हाजिर लगा दीजिए, गाना तो कच्चे धागे का बहुत ही अच्छा, बहुत अच्छा लगा सुनकर, बहुत बहुत धन्यवाद, अच्छा लगा। और बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। एक और यहाँ मैसेज है लिख रहे हैं कि सॉन्ग एक अंधेरा लाख सितारे गाने सुनना है, फिल्म आखिर क्यों से, बिल्कुल आपकी फरमाइश से प्ले करेंगे और डेडिकेट है रेडियो रिमझिम सुनने वाले सभी को और आपको। तो हम आपको बता दें कि आपके गाने की फरमाइश जो है आपकी बारी आते ही प्ले करते हैं। फिलहाल एंजॉय करिए रेडियो रिमझिम 90.4 FM को। और यहाँ और भी कई सारे मैसेजेस, सुबह साहू जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका भी। लिख रहे हैं कि सुनील जी नमस्कार, और रेडियो फैन पंकज जी रेडियो बादल वाले हैं क्या, उनको भी प्रणाम नमस्कार। जी हाँ बिल्कुल वही हैं, और सुबह साहू जी हैं, बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका भी। और आगे यहाँ एक और मैसेज पहुँच गया, रितेश कुमार जुड़ चुके हैं फ्रॉम सिवान से, बहुत बहुत स्वागत है। लिख रहे हैं नमस्कार जी, हम भी जुड़ गए हैं। जी हाँ बिल्कुल, एक और यहाँ मैसेज है लिख रहे हैं कि हाय राधे राधे, बहुत बहुत स्वागत है आपका, और नाम पता मेंशन करिए। इश्क ब्रदर दिखा रहा है प्रोफाइल पे नाम, और बिना देरी अगली फरमाइश प्ले करेंगे। और अगली फरमाइश हमारे पास है इंस्टाग्राम पे, और गाने की फरमाइश है आपके प्यार में हम संवरने लगे, तो इंजॉय करिए इस खूबसूरत से गाने को रेडियो रिमझिम 90.4 FM पर। और फरमाइश करने वाले हैं जितेंद्र जी।

0: नमः शिवाय।
1: सावन के पावन अवसर पर बाबा भोलेनाथ के दर्शन का सुनहरा अवसर लेकर आया है दीपक राज टूर एंड ट्रेवल्स गोपालगंज।
0: श्रद्धालुओं के लिए विशेष तीर्थ यात्रा एवं कांवर यात्रा की व्यवस्था। पहला रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, राजगीर होते हुए पुनः वापसी।
1: दूसरा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, तारापीठ, जगन्नाथपुरी, गंगा सागर, काली घाट, कोलकाता, रजरप्पा, राजगीर होते हुए वापस गोपालगंज।
0: तीसरा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, गया, बोधगया, वाराणसी, अयोध्या, गोरखनाथ मंदिर होते हुए वापस गोपालगंज।
1: चौथा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, गुवाहाटी, माँ कामाख्या धाम, दार्जिलिंग, सिलीगुड़ी, गंगटोक, जनकपुर, अरेराज होते हुए वापस गोपालगंज।
0: गोपालगंज जिले के श्रद्धालु अब घर बैठे अपनी तीर्थ यात्रा के लिए वाहन बुक करा सकते हैं।
1: बिचौलियों से बचे और सीधे हमारे कार्यालय या बुकिंग नंबर पर संपर्क करें।
0: बुकिंग नंबर 9155548507 या 9162933538।
1: हेल्पलाइन नंबर 9934498845।
0: दीपक राज टूर एंड ट्रेवल्स, मुख्य कार्यालय चिराई घर पेट्रोल पंप के पास गोपालगंज, उप शाखा NH 27 काली स्थान बंजारी गोपालगंज।
1: बोलबम हर हर महादेव।
2: अपने जिले के मशहूर डॉक्टर जे शरण एमडी फिजिशियन अब बैठ रहे हैं सुबह 10 बजे से आशा मेडिको जनता सिनेमा रोड गोपालगंज, और डॉक्टर जे शरण जी शाम 5 बजे से 7 बजे तक बैठ रहे हैं अपने निवास स्थान शबनम होटल के पीछे आजाद नगर गोपालगंज।
3: डॉक्टर साहब के यहाँ पर्ची का नंबर मोबाइल से भी लगाया जा सकता है।
4: आशा मेडिको में किसी भी प्रकार की लिखी दवाएं मिलती है, मोबाइल से दवा का ऑर्डर भी किया जा सकता है। मोबाइल नंबर है 7545-67666।
5: तुम आज भी गुमसुम क्यों बैठी हो?
6: क्या बताऊं, 15 साल शादी के हो गए और संतान सुख मिला नहीं। कई जगह इलाज कराया लेकिन कोई फायदा नहीं। अब समझ नहीं आ रहा क्या करूं?
5: अरे मेरे साथ एक बार चलो डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी के पास जादवपुर में। कई निसंतान माताओं का इलाज उन्होंने सफलतापूर्वक किया है।
6: ध्यान दे, स्त्री रोग, बांझपन, ल्यूकोरिया, दिमाग की कमजोरी, याददाश्त की कमी, पेट रोग, गैस्ट्रिक, लीवर में सूजन, बवासीर, कान रोग, पुराना बुखार, नस रोग, किडनी की पथरी, पीत की थैली में पथरी, पेशाब की थैली में पथरी, गठिया, पुराना जोड़ों का दर्द, साइटिका, चर्म रोग एवं पुराने असाध्य बीमारियों का इलाज आयुर्वेदिक विधि से 30 वर्षों से सफलतापूर्वक किया जा रहा है।
5: आज ही आए डॉक्टर गोरखपुरी निवास, डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी, जादवपुर मेन रोड, गोपालगंज। संपर्क करें 99554-97644।
7: प्रसाद क्लिनिक।
8: स्त्री रोग, ल्यूकोरिया, यूट्रस का बाहर निकल जाना, कान का बहना, गठिया, साइटिका, कमर दर्द, अधेड़ी, थनैली, चर्म रोग के सफल इलाज के लिए मिले
7: डॉक्टर श्रीमती कुंती देवी। रोगी देखने का स्थान बुधवार और शनिवार को मिंग स्टेडियम, LIC ऑफिस के पास गोपालगंज।
8: बाकी दिन जादवपुर बाजार।

वेलकम बैक रेडियो रमजम 90.4 एफएम पे आपके अपने कार्यक्रम योर वॉइस योर चॉइस में ये कुछ के 3 मिनट हो चुके हैं। टुडे घड़ी में देखते ही देखते 1 घंटा निकल गया और समय का अंदाजा भी नहीं लगा। और हाँ, मैसेज है, लिख रहे हैं, क्या बात है मैम, आप बिना रेडियो अच्छा नहीं लगता है, आप नहीं रहती है दिन, आप नहीं होते हैं उस दिन मैं रेडियो नहीं सुनता हूँ। कोई बात नहीं, और काम ऐसा आ जाता है कि छुट्टी लेना पड़ता है। उमाशंकर मिश्रा जी है दिल्ली से एक और यहाँ मैसेज लिख रहे हैं, सोनी जी नमस्ते, और सोनू प्रजापति जुड़ चुके हैं नासिक से, बहुत बहुत स्वागत है आपका। लिख रहे हैं कि मेरा भी हाजिरी लगा दीजिए, बिल्कुल लग चुकी है आपकी हाजिरी, और कैसे हैं बताइएगा जरूर, काफ़ी दिनों बाद शो में जुड़े और फरमाइश से प्ले करने की पूरी कोशिश है। यहाँ मैसेज है, लिख रहे हैं कि टाइम मिलेगा तो मेरा भी गाना बजा दीजिए और जितना चाहे बिल्कुल। और मैसेज साथ है पाजी यूपी चौवन से, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। एक और यहाँ मैसेज है, लिख रहे हैं कि बोल दीजिएगा मैम बिल्कुल, और क्या हाल है मैम, बिल्कुल बढ़िया है। लक्ष्मण जी जुड़े हुए हैं शीतल बरदाहा से, बहुत बहुत स्वागत है, और लिखते हैं कि सब कुछ है मेरे पास, मुझे तुमसे कोई तोहफा नहीं चाहिए, सब कुछ है मेरे पास, मुझे तुमसे कोई तोहफा नहीं चाहिए, और अगर दोस्ती ही है तो वक्त देना, जिस पर हक सिर्फ मेरा होना चाहिए। क्या बात है, पर अभी के टाइम में लोगों के पास वक्त ही नहीं है। और लक्ष्मण जी जुड़े हुए हैं शीतल बरदाहा से, बहुत बहुत स्वागत है आपका। एक और यहाँ मैसेज है, लिख रहे हैं कि अब एक दिन ओके, और बिल्कुल इंतज़ार करिए आपके आने की, फरमाइश से प्ले करेंगे। यहाँ मैसेज है, लिख रहे हैं कि नाइस सॉन्ग ऑल टाइम हिट, और नाइस योर सिंगिंग, मैसेज के साथ है पंकज जी। और एक यहाँ मैसेज है, लिख रहे हैं कि आपके प्यार में सवरने लगे, नाइस सॉन्ग। रितेश जी है फ्रॉम सिवान से, बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ मैसेज है, लिख रहे हैं कि सुपर सॉन्ग, आपके प्यार में हम सवरने लगे। जितेंद्र जी हैं सिवान से, एक और मैसेज पहुँचा हुआ, लिख रहे हैं गुड आफ्टरनून जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। विकेश जी जुड़े हुए हैं त्रिलोकपुर से, बहुत बहुत स्वागत है विकेश जी आपका भी। और यहाँ वॉइस मैसेज पहुँचा हुआ है ज्योति जी की तरफ से, तो थोड़ा वेट करिए और आपकी फरमाइश से प्ले करेंगे। फिलहाल यहाँ अगली फरमाइश जो हमारे पास पहुँचा हुआ है, गाने की फरमाइश पहुँचा है जोधपुर राजस्थान से, और गाने की फरमाइश करने वाले हैं सुरेश कड़ेला जी। एंजॉय करिए अपने गाने को, इनको गाना सुनना है लता जी की आवाज़ में, कोई भी खूबसूरत गाना, तो एंजॉय करिए लता जी की आवाज़ में ये खूबसूरत सा गाना।

और यहाँ सुरेश जी की तरफ से मैसेज है, लिख रहे हैं कि नए सॉन्ग और मेरा फेवरेट सॉन्ग है मैम जी। हाँ, ये गाना तो सभी का फेवरेट होगा। और यहाँ उमा शंकर सिंह जी जुड़ चुके हैं, साथ में अवंतिका सिंह है, अर्जित सिंह है, रुद्रपुर देवभूमि उत्तराखंड से, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। और यहाँ एक और मैसेज है, लिख रहे हैं कि बहुत ही बढ़िया गाना, सोनू प्रजापति हैं नासिक से और मैं बहुत ही बढ़िया हूँ। और आगे यहाँ मैसेज है, लिख रहे हैं कि हम भी जुड़ गया मैम, हमारा भी गाना है बजा दीजिए। बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और खगड़िया बिहार से पौन साजी है, इंजॉय करिए गाने को। धर्मेंद्र कुमार जी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका भी।

0: 90.4 रेडियो रंजन सुन रहे हैं आप सभी और कार्यक्रम है योर वॉइस योर चॉइस का और अभी गाना सुन रहे हैं, गाने की फरमाइश करने वाले हैं, नाम है इनका सुरेश जी जो कि जोधपुर राजस्थान से हैं और आगे बढ़ेंगे अगली फरमाइश की तरफ। और अगली फरमाइश जो हमारे पास पहुंचा हुआ है कॉल के माध्यम से, तो चलिए बात करते हैं कौन है कहाँ से जानते हैं। हेलो
1: हेलो अस्सलाम वालेकुम।
0: वालेकुम अस्सलाम, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रंजन में। जी
1: कैसे हो आप?
0: बिल्कुल बढ़िया, आप बताइए आप कैसे हैं?
1: अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक ठाक हूँ, अल्लाह का शुक्र है।
0: जी चलिए अच्छी की बात है कि अच्छे हैं।
1: मेरा नाम मोहम्मद रुकास है,
0: जी
1: कॉन्टिनेंट क्लास को से बोल रहा
0: हूँ। तो आज क्या सुनना पसंद करेंगे आप?
1: गाना फरमाइश है हस्बी रब्बी जलल्ला बहसानी यूसुफ।
0: एक बार और बताइए नाम गाने का।
1: हस्बी रब्बी जलल्ला और ये गाना गाया है सामी यूसुफ ने।
0: सामी यूसुफ ने,
1: हाँ जी।
0: और गाने का नाम क्लियर समझ में नहीं आ रहा आपका?
1: गाने का नाम हस्बी रब्बी और सामी यूसुफ।
0: अच्छा हस्बी,
1: तो मैं वो सुनना चाहता हूँ प्लीज।
0: हस्बी रब्बी जला कोई गाना है क्या?
1: नशीद
0: ये नात है।
1: नात है, हाँ जी।
0: जी तो माफ़ करिएगा, हम इस शो में कोई भी ऐसे गाना नहीं प्ले करते हैं जो भी धार्मिक गाने हो, उसके लिए हेलो माई चॉइस का हमारे यहाँ कार्यक्रम है, आप उसमें कोई भी गाने सुन सकते हैं। इसमें सिर्फ गाने की फरमाइश करिए, कोई भी हिंदी गाना हो, भोजपुरी गाना हो, नॉर्मल गाना।
1: ठीक है, गाना ओ यारा ओ यारा फ्रॉम द मूवी जीत, वो वाला गाना लगा लो।
0: जीत से चलिए गाना प्ले।
1: वो गा सकते हैं गाना यारा ओ यारा फ्रॉम
0: जी जी बिल्कुल गा के सुनाइए।
1: ठीक है थैंक यू, वो लगा लेना। ठीक है ठीक है जी, अस्सलाम वालेकुम।
0: वालेकुम सर, ठीक है एंजॉय करिए गाने को, बहुत बहुत धन्यवाद।
1: नमस्ते,
0: वालेकुम अस्सलाम, एंजॉय।

0: अगर आपको हो रहा है घुटने, हड्डी या रीढ़ की हड्डी का दर्द या महिलाओं से जुड़ी समस्या, तो याद रखिए गोपालगंज जिले में सबसे भरोसेमंद नाम स्टार एडवांस ऑर्थो एंड मेटर्निटी सेंटर, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
1: यहाँ है डॉक्टर इमरान हुसैन खान, कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक एवं जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन, MBBS, MS, एक्स रेसिडेंट, KGMU, लखनऊ।
0: और महिलाओं के लिए डॉक्टर सूफिया शादाब, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, MBBS, MS, ऑब्स एंड गायनेकोलॉजी।
1: साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
0: ध्यान दे, हर शुक्रवार को है फ्री OPD, तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें।
1: पता, कमला राय कॉलेज रोड, नियर रालसन होटल, गोपालगंज।
0: संपर्क करें 9006978856 या 6203139564।
2: ठक ठक।
3: काजी, आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
4: अच्छा मिला ही नहीं।
3: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें, अब चलिए सीधे कमल श्री में।
5: जी हाँ, कमल श्री। याद रखें, सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
3: आप भी आएं कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, बाई मार्केट, गोपालगंज।
5: याद रहे, सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ, सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है।
6: अब बेटा, बहू घर आने वाली है, सोच रही हूँ कुछ सोने की नई ज्वेलरी ले ली जाए, पर भरोसे की दुकान।
7: माँ, अब घबराइए नहीं, चलते हैं मास्टर साहब की जेवर की दुकान, गुप्ता ज्वेलर्स, BIS अप्रूव्ड, शानदार डिजाइन और असली ज्वेलरी की गारंटी।
0: अपने सपनों की खूबसूरती के लिए गुप्ता ज्वेलर्स ही चुने। सिल्वर, गोल्ड या डायमंड, हर ज्वेलरी BIS अप्रूव्ड और किफायती दाम के साथ। विश्वास की परंपरा, नई डिजाइन का खजाना, बस गुप्ता ज्वेलर्स में।
1: आज ही आए गुप्ता ज्वेलर्स, मास्टर साहब की जेवर की दुकान, चंद्रगोखो लोड, गोपालगंज। मोबाइल नंबर 94-309-45-651 या 97-097-06-575।
8: डॉक्टर अनुज मिश्रा, न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज। ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।

90.4 FM रेडियो रिमझिम पे आप सभी के अपने कार्यक्रम योर वॉइस योर चॉइस में। और हाँ, व्हाट्सएप मैसेज की तरफ बढ़ेंगे, काफ़ी सारे मैसेज हमारे पास पहुंचे हुए हैं और इंस्टाग्राम पे भी मैसेज है। बलवंत राज जुड़े हुए हैं, बहुत बहुत स्वागत है। लिख रहे हैं हिंदू मूवी का सॉन्ग सुनना है, सदा ना बुलबुल लंग में, हमारे तरफ से सभी को। और राधे राधे बोल दीजिएगा, बिल्कुल बोल दिए हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मध्य प्रदेश से जुड़े हुए हैं। और यहाँ एक और मैसेज है।

0: कथा लिख रहे कि बड़ा महंगा शौक था वो शख्स मेरा, उस पर दौलत नहीं एहसास खर्च किया था, बाकी वो लेके भाग गई। और सॉन्ग भेज दूँ मैम तो मैं आपको बता दूँ कि आपके गाने की फरमाइश जो है हम कल ही प्ले किए थे, और अगली फरमाइश एक सप्ताह बाद एक होगा। बहुत बहुत स्वागत है आपका। और यहाँ मैसेज है, लिख रहे हैं कि नमस्ते सोनी जी, रेडियो रिमझिम के पूरे टीम को दिल से धन्यवाद, और काफ़ी रोमांचक और आकर्षक प्ले कर रहे हैं। और नंद कुमार शर्मा जी हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और यहाँ और भी कई सारे मैसेज है, और यहाँ मैसेज लिख रहे हैं कि हम तुझे याद करते हैं रात की तन्हाई में, हम तुझे याद करते हैं रात की तन्हाई में, दिल डूबता है दर्द की गहराई में, हमें मत ढूंढना इस जमाने की भीड़ में, क्योंकि हम मिलेंगे तुझे सिर्फ तेरी परछाई में। और क्या बात है, पाजी यूपी चौवन से है इस मैसेज के साथ। और यहाँ मैसेज लिख रहे हैं कि मेरा भी गाना है। जी हाँ बिल्कुल, आपकी फरमाइश से प्ले करेंगे। फिलहाल यहाँ एक और मैसेज पहुँचा, अभी अभी दस्तक दिए हैं सुजीत कुमार जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और लिख रहे हैं कि हेलो सोनी जी नमस्कार, राधे राधे, और आप कैसे हैं, उम्मीद है कि आप ठीक ठाक और अच्छे होंगे, गाने बजा रही हैं आप। जी हाँ बिल्कुल ठीक ठाक, बिल्कुल अच्छे, एकदम मस्त बिंदास झकास से, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और यहाँ फरमाइश पहुँचा हुआ है रेडियो फैन पंकज जी की तरफ से, बिल्कुल आपकी फरमाइश है प्ले करेंगे, थोड़ा वेट करिए। और यहाँ अगली फरमाइश जो हम प्ले करेंगे हमारे पास है ज्योति जी का, और गाना सुनना है इनको, जो बीच बजरिया तूने मेरी पकड़ी भैया। तो चलिए आपके गाने की फरमाइश जो है प्ले कर रहे हैं, और यहाँ वॉइस मैसेज पहुँचा हुआ है इनकी तरफ से, सुनते हैं क्या कहती हैं ये।
1: मैम मेरा गाना कब बजाइएगा?
0: आपका गाना प्ले कर दिए हैं, और इंजॉय करिए अपने गाने को।

और यहाँ रेडियो फैन पंकज जी हैं, लिख रहे हैं कि दिन में बाजार में भीड़ से डर और रात में बुलावत रही कुत्तों से डर। नाइस सॉन्ग और अंश मूवी का।

सुन रहे हैं आप सभी और कार्यक्रम है योर वॉइस योर चॉइस का और अभी गाना सुन रहे हैं हम सभी। गाने की फरमाइश ज्योति जी की तरफ से थी और यहाँ करिश्मा जी हैं लिख रहे हैं कि नाइस सॉन्ग और मेरा फेवरेट गाना है। और आगे यहाँ और भी कई सारे मैसेज है शामिल करेंगे लेकिन बिना देरी अगली फरमाइश प्ले करेंगे। और अगला फरमाइश है हमारे पास कल्पना पोडवाली जी की आवाज़ में और लिख रहे हैं कि मेरा नाम है बोलू और मैं गोपालगंज के फतेहा गांव का रहने वाला हूँ। मुझे सॉन्ग सुनना है भोजपुरी जेकर अचके में दिलवा टूट गए और सिंगर कल्पना पोडवाली जी की आवाज़ में सुनाना चाहता हूँ। सबसे पहले इस कार्यक्रम आगे रेडियो फैन पंकज जी राघव जी जादवपुर से और रानी और रजनी जादव जावेद भाई रेडियो रिमझिम के डायरेक्टर कृपा शंकर जी और अभय जी को बिल्कुल आपके गाने की फरमाइश से प्ले कर रहे हैं और इंजॉय करिए अपने गाने को रेडियो रिमझिम 90.4 FM पर जेकर अचके में दिलवा टूट गए।

94.4 रेडियो रिमझिम सुन रहे आप सभी और कार्यक्रम है योर वॉइस योर चॉइस का। और अभी गाना सुन रहे हैं हम सभी कल्पना जी की आवाज़ में, काफ़ी खूबसूरत गाना फरमाइश करने वाले हैं भोलू जी। और यहाँ कई सारे मैसेज है, रेडियो फैन पंकज जी है लिख रहे हैं कि वाह भोलू जी सही है सब बुझाता नहीं और वैसे बहुत ही नीक गीत बा। जी हाँ, आगे यहाँ मैसेज है लिख रहे हैं कि हरिंदर साला जी नाराज हो गए हैं। सोनी जी कोई बात नहीं, थोड़ा देर और उनको मना लीजिए और आपकी फरमाइश से जो प्ले करेंगे। और यहाँ एक और मैसेज है लिख रहे हैं कि नमस्ते सोनी मैम, बहुत खुशी हो रही है कि ये बताते हुए कि अब मैं भी रिमझिम फैमिली का हिस्सा बन चुका हूँ। दोहा कतर से मैं श्री भगवान सिंह जी और अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहा हूँ। आप सभी के साथ प्रसन्न हुई और रिमझिम फैमिली के सभी सदस्यों को नमस्कार। और अभी जो कार्यक्रम चल रहा है उसमें कल्पना जी की आवाज़ में बहुत ही खूबसूरत दिल को छू लेने वाली सुनकर मन प्रसन्न हो गया, अद्भुत प्रस्तुति। और इसके साथ हैं श्री भगवान सिंह जी दोहा कतर से, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और आगे यहाँ मैसेज है लिख रहे हैं कि मैडम जी नमस्कार, और पेश करने का अंदाज़ हमें बेहद पसंद आया, इसलिए वठीटा पंजाब से किशोर साबलनिया जी परिवार की तरफ से प्यार भरा नमस्कार। और साथ में है इनके सवित्री साबलनिया। अंदाज हमें बेहद पसंद आया, इसलिए वठीटा पंजाब से किशोर साबलनिया जी परिवार की तरफ से प्यार भरा नमस्कार। और साथ में है इनके सवित्री साबलनिया, सुमन साबलनिया बेटी अंशु के साथ जुड़े हुए हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और यहाँ एक और मैसेज है लिखकर लिख रहे हैं जेकर अचके में दिलवा टूट गई हमारे फेवरेट सॉन्ग बा और दिल जीत लिए सॉन्ग में सॉन्ग सुन के मज़ा आ गया। और धनेश मिश्रा जी हैं दिल्ली से। यहाँ सोनू जी जुड़ चुके हैं सऊदी अरब से, लिख रहे हैं गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू, आई होप एवरी वन रियली गुड एंड ऑल्सो फाइन मैम। और आगे लिखते हैं कि मुझे भी एक गाना सुनना है और ये गाना जिसने भी बनाया है उन्हें बहुत ही खूबसूरती के साथ लाइफ को एक चैप्टर के हिस्सा ही लिख दिया है। इस गाने का वॉइस के साथ सुनना चाहता हूँ और ये लिख रहे हैं कि ये साथ में दोनों ही एक जैसा लगता है। मैं कोटि कोटि धन्यवाद करता हूँ और इस गाने के बनाने के लिए और आपकी बहुत बहुत धन्यवाद। मैं इसे थोड़ा सा समय लेकर पढ़ने के लिए आपका धन्यवाद। और सोनू जी हैं सऊदी अरब से, फरमाइश है बिल्कुल आपकी फरमाइश जो है प्ले करने की कोशिश है, थोड़ा इंतज़ार करिए। और या तो मैसेज पूरा हिंदी में लिख लीजिए या तो फिर इंग्लिश में मिला मिला

के नहीं लिखी है, और यहाँ मैसेज है लिख रहे हैं कि इंसान के कंधों पर इंसान जा रहे हैं, इंसान के कंधों पर इंसान जा रहे हैं, कफनों में लिपटे हुए कुछ अरमान जा रहे हैं, ना मिल सका जिनको सुकून इस ज़िंदगी में, वो सुकून की तलाश में शमशान जा रहे हैं। और काफ़ी गहरा बात लिख दिया, पाजी यूपी चौहान से है, और यहाँ मैसेज है लिख रहे हैं कि बिल्कुल रोक दिए हैं गाना। और यहाँ मैसेज और भी कई सारे हैं, मुस्तफ़ा जुड़ चुके हैं सऊदी से, बहुत बहुत स्वागत है। और यहाँ एक और मैसेज है लिख रहे हैं कि तू करती किसी और से मोहब्बत इसलिए तेरे गांव में आना छोड़ दिया, तू करती किसी और से मोहब्बत इसलिए तेरे गांव में आना छोड़ दिया, दिया याद तो तेरी आज भी आती है मेरी जान, बस तुझे बताना छोड़ दिया। नमस्कार सोनी जी, और कैसे हैं आप? मैं भी सो से जुड़ गया हूँ रोहित देहरादून से, बहुत बहुत स्वागत है आपका, और मैं बिल्कुल बढ़िया हूँ। और यहाँ और भी कई सारे मैसेजे शामिल करेंगे, लेकिन अगली फरमाइश हम प्ले करेंगे, और अगली फरमाइश जो हमारे पास पहुँचा हुआ है वो है गाने की फरमाइश है, मैंने घुंघरू बांध लिया, और संजीत कुमार जी जुड़े हुए हैं। इंजॉय करिए अपने गाने को, और बिशुनपुर बाजार से रेडियो रिमझिम 90.4 FM पर प्ले कर दिया आपका गाना।

और यहाँ केशव राज जी है लिख रहे हैं कि सुपर हिट मुजरा, और मेरा भी फरमाइश है। जी हाँ बिल्कुल, आपकी फरमाइश है और आपका भी फरमाइश प्ले करने की पूरा कोशिश है।

0: रहा हो तो सिर्फ ईट और सीमेंट नहीं, टाइल्स और फिटिंग्स का चुनाव भी होना चाहिए शानदार।
1: इसीलिए गोपालगंज जिले के लोगों की पहली पसंद बन चुका है बीके टाइल्स। बीके टाइल्स, यहाँ मिलेंगे सभी प्रकार के डिजाइनर टाइल्स, मार्बल, ग्रेनाइट, बेसिन, कॉमोड, बाथ फिटिंग्स और घर सजाने के कई आधुनिक प्रोडक्ट,
2: वो भी किफायती दामों पर। और खास बात, गोपालगंज जिले में हमारी 4 सुविधाजनक शाखाएं,
1: अरार मोड़ SP कोठी के पास गोपालगंज, दूसरा ब्रांच भटवा मोड़ के पास कुचायकोट,
2: तीसरा ब्रांच इस्लामिया कॉलेज के पास मेन रोड ठावे मीरगंज, और चौथा ब्रांच बंतरिया मोड़ भोरे।
1: और अब सिवान जिले में भी हमारी 2 शाखाएं उपलब्ध हैं, सिवान ब्रांच कुशवाहा चौक हकाम बाईपास सिवान,
2: और मैरवा ब्रांच बबनौली चौक मैरवा सिवान।
1: तो आज ही अपने सबसे नजदीकी बीके टाइल्स ब्रांच पर आए और करें बेहतरीन खरीदारी।
2: अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें गोपालगंज ब्रांच में 8460571406, मीरगंज ब्रांच में 9693101611,
1: कुचायकोट ब्रांच में 9693101602, भोरे ब्रांच में 8207856404,
2: सिवान ब्रांच में 9942071405, मैरवा ब्रांच में 8207856403।
3: शादी की ज्वेलरी लेनी है? हाँ,
4: भरोसे वाले से लेंगे,
3: पर दिया की पसंद भी जरूरी है
4: और कीमत भी।
3: प्योरिटी का सर्टिफिकेशन तो चाहिए ही।
5: SP ज्वेलर्स पे हमें पूरा भरोसा है।
6: प्योरिटी यानी मम्मी सर्टिफाइड, भरोसा और सही प्राइस यानी पापा सर्टिफाइड, और डिजाइन्स तो मेरा सर्टिफिकेशन।
7: गहनों की खरीदारी के लिए आप भी आए SP ज्वेलर्स, क्योंकि रिश्ते हर रोज नहीं बनते।
8: 22 कैरेट 18 कैरेट के जेवर, शादी सेट और साथ ही पुराने जेवर बदलकर नए जेवर के करे खरीदारी।
7: आज यहाँ SP ज्वेलर्स जो है DAV गर्ल्स स्कूल के सामने स्टेशन रोड गोपालगंज,
9: और अब SP ज्वेलर्स का नया ब्रांच मेन रोड गोपालगंज इन फ्रंट ऑफ बासु गारमेंट्स। सभी प्रकार के गहनों के मेकिंग चार्ज पर 25% की भारी छूट।
7: कॉल करें 8570-32042 पे।
10: सुनिए जी, पेट में दर्द कई दिनों से ठीक ही नहीं हो रहा।
11: तो फिर देर क्यों? चलो अभी चलते हैं साई कृपा क्लिनिक में, जहां मौजूद है अनुभवी डॉक्टर स्वाति के गुप्ता MBBS, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, पूर्व वरीय चिकित्सक पारस हॉस्पिटल चंडीगढ़, और डॉक्टर PK गुप्ता MBBS, BMC जनरल फिजिशियन एवं सर्जन SVBPN न्यू दिल्ली।
10: यहां नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन, हर्निया, अपेंडिक्स, पित्त की थैली, बवासीर, भगंदर आदि ऑपरेशन की सुविधा और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
1: यहाँ सभी प्रकार का ऑपरेशन बिना टाका का आधुनिक विधि द्वारा किया जाता है। साई कृपा क्लिनिक, थावे रोड बस स्टैंड के सामने गोपालगंज।
2: संपर्क करें 9939365923।
12: तब भौजी, आज सुबह रही से गोपालगंज गई रनिया, घूम लेनी नू सारा मार्केट, देख लेनी नू सारा बाजार, कोनो साड़ी पसंद आई ला की ना?
13: अरे ना देवर जी, कपड़ा तो बहुते देखनी है, पर कोनो जचल है ना?
12: ई बात बा, तो ऐसन करी कि अब चली सीधे हमारा साथे कमल श्री में।
7: महिलाओं की सबसे पहली पसंद कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री। सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए और नए नए डिजाइनों के फैंसी लहंगा, दुल्हन के लिए साड़ी, सूट पीस, लक्ष्मीपति साड़ियों के अलावा रेमंड्स के कोट पैंट और शूटिंग शाटिंग बाजार से कम रेट में ले जाएं।
14: जी हाँ, कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री। सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए, बारी मार्केट, फर्स्ट फ्लोर।
15: ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM में, आपके अपने कार्यक्रम योर वॉइस योर चॉइस में। और यहाँ व्हाट्सएप मैसेज की बात करेंगे तो काफ़ी सारे मैसेज पहुँचे हुए हमारे पास, और यहाँ मैसेज है, लिख रहे हैं कि आज हम पहली बार जुड़े हैं शो से, बहुत बहुत स्वागत है आपका, और नाम पता मेंशन कर दीजिए कि आप कौन हैं और कहाँ से पहली बार जुड़े हैं। तो और एक और यहाँ मैसेज है, लिख रहे हैं गुड आफ्टरनून सोनी मैम, मैं अनिश यादव दुमरा यदवंशी टोला डिस्ट्रिक्ट सिवान से बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका भी। लिख रहे हैं रिमसिम से आपकी बातें और प्यारी से मुस्कान है रेडियो रिमसिम की पहचान और हर दिल की जान है सोनी मैम, और आपकी मीठी आवाज़ से जादू कुछ ऐसा चल जाता है, हर उदास चेहरे पर हर पल मुस्कान आ जाता है, और जैसे ठीक हुए मुसाफिर को अपना घर मिल जाए वैसे ही आपकी आवाज़ सुनकर दिलों को सुकून मिल जाए। हर सुबह और हर शाम आपकी बातें दिलों को बताती है और हर श्रोता के दिल में आपकी अपनी एक खास जगह बन जाती है, और मैसेज साथ है अनीश यादव जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और आगे लिखते हैं, खुदा करे आप हमेशा यूं ही मुस्कुराती रहें और अपनी प्यारी आवाज़ रेडियो रिमझिम की महफिल से आवाज़ से रेडियो रिमझिम की महफिल सजाते रहें। और सनी मैम, आपकी आवाज़ जो सच में हर दिन को और भी खूबसूरत बना देती है, रेडियो रिमझिम के माध्यम से आपको ढेर सारी शुभकामनाएँ और दिल से धन्यवाद। अनीश यादव शिवान बिहार से बहुत बहुत धन्यवाद आपका। एक और यहाँ मैसेज है, लिख रहे हैं कि हस्ती मिट जाती है आसिया बनाने में, हस्ती मिट जाती है आसिया बनाने में, बहुत मुश्किल होती है अपनों को समझाने में, एक पल में किसी को भुला न देना, जिंदगी लग जाती है किसी को अपना बनाने में। लिख रहे हैं कि मुझे रूप ने कहीं का नहीं छोड़ा, वेरी नाइस सॉन्ग। और मैसेज के साथ हैं मनीष जी, और लिख रहे हैं कि प्यार करने वाले मरते नहीं मार दिए जाते हैं, प्यार करने वाले मरते नहीं मार दिए जाते हैं, हिंदू कहते हैं मर्द इन्हें, मुस्लिम कहते हैं, हिंदू कहते हैं मार दो इन्हें, मुस्लिम कहते हैं दफना दो इन्हें, पर कोई ये क्यों नहीं कहता कि मिला दो इन्हें। और ऐसा कोई कहे अभी तक तो ऐसा हुआ नहीं है। और आगे हम मैसेज है, लिख रहे हैं कि आपकी इस तरह अपनी खूबसूरत आवाज़ से हम सभी श्रोताओं का मनोरंजन कराती रही है और हमारे चेहरों पर मुस्कान लाती रही है, आपको इस शानदार शो के लिए आपका बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं, आपका प्यारा श्रोता श्री भगवान सिंह जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और आपकी फरमाइश है, थोड़ा इंतज़ार करिए, हम प्ले करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। एक और यहाँ मैसेज है, लिख रहे हैं कि मैं भी जुड़ी हो। और आगे यहाँ एक और मैसेज, और लिख रहे हैं कि सच्ची है मेरी दोस्ती अजमा के देख लो, सच्ची है मेरी दोस्ती अजमा के देख लो, करके यकीन मुझ पर अपने दिल से पूछ लो, बदलेगा नहीं मेरी दोस्ती का रंग कभी भी, जितनी बार चाहो दिल दुखा कर देख लो। और मैसेज कराते हैं पाजी यूपी चौवन से, एक और यहाँ मैसेज लिख रहे हैं, मेरी आंखों से तेरी याद का साया नहीं जाता, मैं क्या करूँ तुझे भुलाया नहीं जाता, एक मुद्दत से लिखा है तेरा नाम मैंने अपने दिल पर, मैं क्या करूँ मुझसे मिटाया नहीं जाता। और इस मैसेज के साथ है केशव राज जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और यहाँ मैसेज है, लिख रहे हैं कि बिल्कुल जी मैम, आपका आवाज़ बहुत ही अच्छा है। और उत्तम सोनी जी हैं हरपुर से, और आगे यहाँ मैसेज है, लिख रहे हैं सोनी जी हमारा गनवा नहीं बजेगा क्या? बिल्कुल आपका भी गनवा बजेगा, थोड़ा और इंतज़ार। और अगली फरमाइश हम प्ले करने जा रहे हैं, हमारे पास पहुँचा हुआ है रेडियो फन पंकज जी का, एंजॉय करिए अपने गाने को रेडियो रिमझिम 90.4 FM पर।

और यहाँ मैसेज है, लिख रहे हैं कि सोनी मैं, मेरा चेहरे पर भी मुस्कान आ जाती है आपको सुनकर, और घर वाले पूछते रहते हैं कि ये लड़की कौन है। तो आप क्या बताते हैं ये भी जरूर बताइए, आखिर कुछ तो बहाना देते होंगे। और मैसेज है, लिख रहे हैं शुक्रिया गाना सुनाने के लिए। और आगे यहाँ और भी कई सारे मैसेज है, फिलहाल इंजॉय।

0: 90.4 रेडियो रिमझिम सुन रहे आप सभी और कार्यक्रम है योर वॉइस योर चॉइस का। और अभी गाना सुन रहे हैं हम सभी, गाने की फरमाइश करने वाले हैं रेडियो फैन पंकज जी। और आगे यहाँ मैसेज है, लिख रहे हैं कि रेडियो फैन पंकज भाई सुपर सॉन्ग। और मैसेज के साथ है सोनू प्रजापति जी नासिक से। और आगे यहाँ मैसेज है, लिख रहे हैं कि किसी न किसी बहाने आपको याद करते हैं, अपनी रूह में आपको हम महसूस करते हैं, इतनी बार तो आप सांस भी नहीं लेती होंगी जितनी बार हम आपको याद करते हैं। और जवाब देना सोनी जी भाई, अब इसका हम क्या ही जवाब दे आपको। अब जितनी बार हम सांस नहीं लेते उससे ज़्यादा आप याद करते हैं, करते होंगे, समझ सकते हैं हम और मानते हैं इस बात को। मैसेज के साथ दिनेश मिश्रा जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको और मुझे इतना याद करने के लिए। खैर इतना याद करने की ज़रूरत नहीं है। और यहाँ मैसेज लिख रहे हैं कि बहुत ही अच्छा गाना बा पंकज जी के। और मैसेज के साथ है अफसर जी। और आगे यहाँ मैसेज है, लिख रहे हैं कि हमारे गनवा कब बाजी, तो आपका गाना जो है प्ले होगा मंडे को, क्योंकि आपके गाने की फरमाइश जो है हम मंडे को प्ले किए थे। और यहाँ एक और मैसेज है, लिख रहे हैं कि वेरी नाइस सॉन्ग खिड़कियाँ बंद कर लो। और मनीष जी हैं फाजिल नगर कुशनगर उत्तर प्रदेश से। और अगली फरमाइश हम प्ले करेंगे, कॉल पहुँचा हुआ है, बात करते हैं कौन है कहाँ से। और कॉल रिसीव करते ही कट चुका, इसलिए दूसरा कॉल पहुँच गया। हेलो
1: हेलो
0: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम में।
1: बड़ी कठिन है प्यार निभाना, ऐसा क्यों कहते हैं लोग, यूं तो प्यार सभी करते हैं मगर निभाते हैं कुछ लोग। हम जावेद आलम ग्राम धनखड़ से कॉल किए हैं, हम यही गाना सुनने और सुनाना चाहते हैं आप सभी के साथ। मैं काफी समय के बाद इस कार्यक्रम में जुड़ा हूँ, काफी देरों से मैं कॉल लगा रहा हूँ, लेकिन काफी देर के बाद एक कॉल आपने रिसीव किया है। मैं बहुत बहुत शुक्रिया, आपने रिसीव किया मेरे कॉल को। जी जी, मैं गाना डेडिकेट करना चाहूँगा ऑल रेडियो रिमझिम को और हमारे कुछ रेडियो रिमझिम में स्टाफ हैं, जैसे अफसर भाई हैं, सोनू भाई हैं, आप हैं मैम, और डायरेक्टर सर हैं, और हमारे कुछ दोस्त हैं, हमारे कुछ मित्र हैं जिनका मैं नाम लेना चाहूँगा। उपेंद्र जी हैं सियोरवा गांव से, साहिब हुसैन है धनखड़ से
0: जी,
1: साउथ अफ्रीका से हैं नूर आलम, मलेशिया से हैं जौहर आलम। इन सभी के साथ डेडिकेट करना चाहूँगा और सुनना और सुनाना चाहूँगा
0: जी।
1: फिर कभी समय मिलेगा तो इस कार्यक्रम में जुड़ेंगे, कभी समय मिलता है कभी नहीं मिलता है, लेकिन मैं आपको अपने दिल से शुक्रिया और धन्यवाद देना चाहूँगा। इस कार्यक्रम को बहुत अच्छे से आपने चला रही हैं, बहुत बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में आपको, मैं दिल से शुभकामना देना चाहूँगा।
0: चलिए तो इन्जॉय करिए, गाना प्ले कर दिया आपका, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इतना प्यार और अपना स्नेह देने के लिए। इन्जॉय करिए गाने को।
1: ओके
0: ओके, बहुत बहुत धन्यवाद सर, मैं कॉल किया।

0: कई दिनों से पेट के निचले हिस्से में बहुत दर्द है। रिपोर्ट में पथरी और बच्चेदानी की भी दिक्कत बताई गई है।
1: डॉक्टर ने कहा है ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन जगह ऐसी हो जहां अच्छा सर्जन भी हो और महिला डॉक्टर भी। अब हर चिंता का समाधान है शल्यम हॉस्पिटल।
0: अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूरा भोजपुरवा में NH 27 पर दक्षिण साइड गोपालगंज में स्थित शल्यम हॉस्पिटल।
1: यहां आयुष्मान कार्ड से 5 लाख रुपए तक मुफ्त ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
0: सर्जरी विभाग हो या स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग, इलाज होता है अनुभवी विशेषज्ञों द्वारा।
1: डॉक्टर मनोज कुमार गुप्ता MBBS MS सर्जरी लैप्रोस्कोपिक सर्जन और डॉक्टर डेजी सिन्हा MBBS MD DNB स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
0: शल्यम हॉस्पिटल में उपलब्ध है आधुनिक मशीनें और एक ही छत के नीचे OPD IPD ICU मॉड्यूलर OT अल्ट्रासाउंड पैथोलॉजी लैब फार्मेसी और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा।
1: आज ही विजिट कीजिए शल्यम हॉस्पिटल मल्टी स्पेशलिटी एंड ट्रॉमा सेंटर अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूरा भोजपुरवा NH 27 गोपालगंज।
0: कॉल करें 70 70 75 63 100 या 70 70 75 42 100 या हमारी वेबसाइट पर विजिट करें www.shalyamhospital.com।
2: जिले का गौरव संतोष मेडिकल हॉल घोसमोड़ दरगाह रोड गोपालगंज।
3: गोपालगंज जिले का प्रतिष्ठित अंग्रेजी दवा की दुकान संतोष मेडिकल हॉल।
4: हमारे यहाँ भारत के प्रसिद्ध डॉक्टरों द्वारा लिखी गई सभी प्रकार की अंग्रेजी दवाएं उपलब्ध हैं, जैसे गोरखपुर पटना कलकत्ता लखनऊ बनारस चेन्नई और मुंबई के डॉक्टरों द्वारा लिखी गई दवाइयाँ भी मिलती हैं।
5: एक सूचना, संतोष मेडिकल हॉल अब चला गया है कॉलेज रोड चिराई घर के पहले गोपालगंज। संपर्क सूत्र है 62042434003 62042434003।
1: नई बाइक का सपना अब होगा पूरा, वो भी सबसे कम दाम में।
0: इस सीजन अपने घर लाइए हीरो की नई चमचमाती बाइक या स्कूटर श्री गोपाल मोटर्स से, वो भी ऑन रोड रेट पर।
1: श्री गोपाल मोटर्स गोपालगंज में पाए स्प्लेंडर प्लस सिर्फ 86,168 रुपए में, HF डिलक्स सिर्फ 75,405 रुपए में, ग्लैमर एक्स सिर्फ 97,456 रुपए में, एक्सट्रीम 125R सिर्फ 110,881 रुपए में, इंश्योरेंस और रजिस्ट्रेशन के साथ।
0: विजिट कीजिए श्री गोपाल मोटर्स NH 27 बंजारी चैन पट्टी गोपालगंज,
1: या अभी कॉल कीजिए 92899225567 या 97714861.
6: कूल्हा एवं घुटना प्रत्यारोपण आर्थ्रोस्कोपिक या दूरबीन विधि से घुटने के टूटे लिगामेंट की सर्जरी, एलिजारोव रशियन विधि से हाथ पैर की लंबाई बढ़ाना, स्पाइन सर्जरी और हड्डी जोड़ की सभी समस्याओं का समाधान।
7: मिले वरिष्ठ सर्जन डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एवं सर्जिकल सेंटर रुस्तमपुर ढाला गोरखपुर।
6: आज ही संपर्क करें 7388889470 या 9198886973।

वेलकम बैक रेडियो रिमझिम 90.4 एफएम पे आपके अपने कार्यक्रम योर वॉइस योर चॉइस में। और यहाँ मैसेज है, लिख रहे हैं कि गाना भेज रहा हूँ मैम, हमको भी गाना सुनना है। और संध्या गुप्ता जुड़ी हुई है, बहुत बहुत स्वागत है आपका और गाने की फरमाइश है, तो बिल्कुल भेजिए। और आपकी फरमाइश जो है दोपहर समाचार के बाद प्ले करने की पूरी कोशिश है। और यहाँ मैसेज है कि मेरा भी गाना है। जी हाँ बिल्कुल, चलिए अगली फरमाइश प्ले कर रहे हैं। और अगली फरमाइश हमारे पास पहुँचा हुआ है, गाने की फरमाइश करने वाले हैं मनीष पांडे जी। तो इन्जॉय करिए अपने गाने को रेडियो रिमझिम 90.4 एफएम पर। मनवा लागत नहीं खे बाबू जी।

0: 90.4 रेडियो रंजन सुन रहे हैं आप सभी और कार्यक्रम है योर वॉइस योर चॉइस का। और अभी गाना काफ़ी सैड सॉन्ग की फरमाइश और फरमाइश करने वाले हैं मनीष पांडे जी। और यहाँ जहूर आलम सारी हैं, लिख रहे हैं कि गाना ना बाजी का बिल्कुल बाजी। और यहाँ मैसेज है श्री भगवान सिंह जी है, लिख रहे हैं कि बहुत ही खूबसूरत प्रोग्राम चल रहा है और आपकी फरमाइश है बिल्कुल प्ले करेंगे लेकिन दोपहर समाचार के बाद। और यहाँ मैसेज है, लिख रहे हैं कि मैडम जी मेरा भी एक गाना है और एक वीक हो गया है, क्या मेरा गाना सुना दीजिए। बिल्कुल आपका एक वीक हो चुका है, एक वीक, और आप अपने गाने की फरमाइश जो है भेज सकते हैं। मिस्टर कुमार जी हैं मोतिहारी ज़िला से, बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका। और आगे यहाँ अगली फरमाइश हम प्ले करेंगे, वॉइस मैसेज पहुँचा हुआ है तो चलिए सुनते हैं कौन सी गाने की फरमाइश है।
1: नमस्कार सोनी मैम, हम कुवैत से जहूर आलम वॉइस भेज रहा हूँ। गाना सुनवा दीजिए, तू दीवाना पागल, हवा बहुत तेज है, गाने का मैसेज कर देंगे हम।
0: लेटेस्ट अपडेट्स और गाना आपका प्ले कर दिए हैं जहूर जी, एंजॉय करिए अपने गाने को रेडियो रिमझिम 90.4 FM पर।

90.4 रेडियो रंजन सर आप सभी और कार्यक्रम है योर वॉइस योर चॉइस का। और यहाँ मैसेज है लिख रहे हैं कि बहुत ही खूबसूरत सिलेक्शन, और श्री भगवान सिंह जी है यहाँ मैसेज है लिख रहे हैं बहुत ही प्यारा सॉन्ग। केशव राज जी हैं बेगूसराय से और यहाँ मैसेज है लिख रहे हैं थैंक यू गाना सुनाने के लिए। और यहाँ मैसेज है मैम इंतजार कर रहा हूँ, बहुत ही मुश्किल होता है ना जी। हाँ बिल्कुल, और सबकी फरमाइश है कि करके प्ले करना है। और इस गाने के बाद हम बढ़ेंगे दोपहर समाचार की तरफ, और बाकी की फरमाइश है दोपहर समाचार के बाद। फिलहाल एंजॉय करिए जौहर जी की इस फरमाइश को रेडियो रंजन 90.4 FM पर।

0: भारत ने भू राजनीतिक संघर्षों के बीच सुरक्षा और आर्थिक चुनौतियों से निपटने के लिए बिम्स्टेक सदस्य देशों में घनिष्ठ सहयोग का आह्वान किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, सरकार ये सुनिश्चित कर रही है कि विकास और राष्ट्रीय सुरक्षा में प्रगति एक दिशा में आगे बढ़े। सर्वोच्च न्यायालय ने CBSE को तीसरी भाषा पांचवी या छठी कक्षा से शुरू करने का सुझाव दिया। पर्यावरण अनुकूल और सतत रेल आवाजाही को बढ़ावा देने के लिए हाइड्रोजन संचालित देश की पहली रेलगाड़ी कल से शुरू। बैडमिंटन में पीवी सिंधु ने विश्व की पांचवी नंबर की खिलाड़ी चीन की हान्यू को हराकर जापान ओपन टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया। और क्रिकेट में भारत तथा इंग्लैंड के बीच दूसरा एक दिवसीय मैच आज शाम कार्डिफ में खेला जाएगा। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल ने वैश्विक भू राजनीतिक संघर्षों के बीच उभरती सुरक्षा और आर्थिक चुनौतियों से निपटने के लिए बिम्स्टेक सदस्य देशों में घनिष्ठ सहयोग की आवश्यकता पर बल दिया है। आज नई दिल्ली में बिम्स्टेक राष्ट्रीय सुरक्षा प्रमुखों की पांचवी बैठक में श्री डोभाल ने कहा कि वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं में व्यवधान के कारण सभी देशों को आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि बिम्स्टेक सदस्य देशों के लिए सहयोग करना, पारस्परिक लाभ के लिए निर्णायक कदम उठाना और आपसी चर्चाओं के माध्यम से समाधान खोजना अत्यंत आवश्यक है।
1: बिम्स्टेक्स लॉन्ग स्टैंडिंग गोल्स,
2: क्षेत्रीय सुरक्षा, संपर्क, निर्माण क्षेत्र और आर्थिक सुरक्षा को बढ़ाने में बिम्स्टेक के सामूहिक प्रयासों को आगे बढ़ाते रहना चाहिए। भारत के लिए बिम्स्टेक पड़ोस प्रथम के हमारे दृष्टिकोण और महासागर के प्रति हमारी प्रतिबद्धता को दर्शाता है, जो पूरे क्षेत्र में सुरक्षा और विकास के लिए प्रगति का प्रतीक है।
1: होलिस्टिक एडवांसमेंट फॉर सिक्योरिटी एंड ग्रोथ अक्रॉस रीजन।
0: श्री डोभाल ने कहा कि बिम्स्टेक हिंद महासागर के सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों को एक साथ लाता है, जिनकी संयुक्त GDP लगभग 50 खरब अमरीकी डॉलर है।
1: There is an urgent need for us.
2: हमारे लिए जरूरी है कि हम मिलकर काम करें, आपसी फायदे के लिए एक ठोस कदम उठाएं और उन बड़ी समस्याओं का समाधान आपसी बातचीत और विचार विमर्श से निकालें जिनका हम सभी सामना कर रहे हैं। बिम्स्टेक हिंद महासागर के सबसे महत्वपूर्ण और जीवंत क्षेत्रों को एक मंच पर लाता है। यहाँ 1.7 अरब लोग रहते हैं, जो दुनिया की आबादी का लगभग 22% है।
0: श्री डोभाल ने कहा कि सदस्य देशों ने आतंकवाद, अंतर्राष्ट्रीय संगठित अपराध, साइबर खतरों और समुद्री सुरक्षा चुनौतियों से निपटने में सहयोग को आगे बढ़ाया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि सरकार का प्रयास एक ऐसे भारत का निर्माण करना है जहां सीमाएं न केवल सुरक्षित हों बल्कि अच्छी तरह से जुड़ी हुई भी हों। उन्होंने कहा कि सरकार ये सुनिश्चित कर रही है कि विकास और राष्ट्रीय सुरक्षा एक ही दिशा में आगे बढ़ें। नई दिल्ली में सीमा सड़क संगठन तकनीकी संगोष्ठी में श्री सिंह ने कहा कि उन्नत अवसंरचना हमेशा से विकसित सभ्यता की पहचान रही है।
3: हम यह समझते हैं कि जिस देश का इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत होगा उसी देश का फ्यूचर भी सबसे अधिक मजबूत होगा। पिछले 10-12 वर्षों में हमने गांव-गांव, शहर-शहर, पहाड़, पर्वत, नदी सबको आपस में जोड़ने का एक मिशन चलाया और यह जुड़ाव केवल रोड ट्रांसपोर्ट तक सीमित नहीं रहा। हमने सड़क से, रेल से, हवाई मार्ग से और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के माध्यम से सबको जोड़ने यानी हर प्रकार की कनेक्टिविटी प्रदान करने पर विशेष बल दिया है। हमने इंश्योर किया दूर दराज के किसी भी क्षेत्र में रहने वाला कोई भी नागरिक मेन स्ट्रीम से कटा हुआ महसूस न करे। हमने ऐसा इसलिए किया क्योंकि हमने कनेक्टिविटी को सिविलाइजेशन के डेवलपमेंट का एक अनिवार्य अंग माना।
0: श्री राजनाथ सिंह ने कहा कि रोहतांग में अटल सुरंग, उमलिंगला में विश्व की सबसे ऊंची वाहनों की सुरक्षित आवाजाही योग्य सड़क और लगभग 13,000 फीट की ऊंचाई पर निर्मित सेला सुरंग जैसी ऐतिहासिक परियोजनाएं बीआरओ की क्षमताओं का जीवंत प्रमाण हैं।
3: शक्ति चाहे कितनी भी हो, चाहे कितनी भी एडवांस क्यों न हो, उसे खड़े होने के लिए एक ठोस जमीन चाहिए ही। और बीआरओ हमारे सीमावर्ती और कठिन क्षेत्रों में एयरफील्ड्स भी बनाता है, यानी टेक्नोलॉजी चाहे कितनी भी बदल जाए, हम चाहे जमीन से आकाश तक और आकाश से समुद्र तक कितनी भी प्रोग्रेस कर लें, पोर्ट्स, एयरफील्ड्स, रोड्स और टनल्स, इनकी भूमिका कतई कम नहीं होने वाली है। वारफेयर का स्वरूप जितना भी बदल जाए, इस बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर का महत्व यह हमेशा बना ही रहेगा। और इसका सीधा अर्थ यह है कि बीआरओ के कामों का रिलेवेंस भी आने वाले युग में लंबे समय तक बना रहने वाला है।
0: प्रवर्तन निदेशालय ने आतंकी गतिविधियों के लिए कथित रूप से धन उपलब्ध कराने और अवैध घुसपैठ नेटवर्क के सिलसिले में आज 13 परिसरों पर छापेमारी की। ये मामला उत्तर प्रदेश आतंकरोधी दस्ते द्वारा दर्ज की गई FIR से संबंधित है। इसमें एक संगठित गिरोह पर रोहिंग्या और बांग्लादेशी नागरिकों की भारत में अवैध घुसपैठ कराने, जाली भारतीय पहचान पत्र बनवाने और देश के विभिन्न हिस्सों में उनके पुनर्वास में सहायता करने का आरोप है। जांच में एक व्यापक वित्तीय नेटवर्क का पता चला है जिसमें कुछ धर्मार्थ ट्रस्ट और संस्थाएं शामिल हैं। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध है। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। सर्वोच्च न्यायालय ने सीबीएसई पाठ्यक्रम के तहत नवीं कक्षा में तीसरी भाषा शुरू करने पर चिंता जताई और कहा कि इससे विद्यार्थियों में तनाव बढ़ेगा। न्यायालय ने सुझाव दिया है कि इसे पांचवीं या छठी कक्षा में शुरू किया जाना चाहिए ताकि विद्यार्थी इसे आसानी से अपना सकें। न्यायमूर्ति बीवी नागरत्ना और न्यायमूर्ति आर महादेवन की पीठ ने केंद्र सरकार से कहा कि वे नवीं कक्षा से तीसरी भाषा शुरू न करें। ये टिप्पणी मद्रास उच्च न्यायालय के विरुद्ध दायर तमिलनाडु सरकार की याचिका पर सुनवाई के दौरान की गई। मद्रास उच्च न्यायालय ने राज्य के हर जिले में जवाहर नवोदय विद्यालय खोलने की बात कही थी। सर्वोच्च न्यायालय ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को वृद्ध या असाध्य रोग से ग्रसित कैदियों की शीघ्र या समय से पहले रिहाई के लिए व्यापक नीति बनाने और लागू करने का निर्देश दिया है। न्यायालय ने देश भर में ऐसे मामलों पर विचार के लिए एक समान तंत्र सुनिश्चित करने के संबंध में नीति को 3 महीने के भीतर अधिसूचित करने का आदेश दिया। दिल्ली उच्च न्यायालय ने आज अधिकारियों को कार्यकर्ता सोनम वांगचुक के स्वास्थ्य की दैनिक निगरानी करने का निर्देश दिया। न्यायालय ने इस बात पर जोर दिया कि जीवन अनमोल है। श्री वांगचुक नई दिल्ली के जंतर मंतर पर अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर हैं। केंद्र और दिल्ली सरकार दोनों की ओर से पेश

0: किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी। ग्रीन हाइड्रोजन के इस्तेमाल से कोयले जैसे जीवाश्म ईंधन से बनने वाली बिजली पर निर्भरता कम होगी। इसके अलावा पर्यावरण की रक्षा होगी और देश को स्वच्छ परिवहन की दिशा में आगे बढ़ने में मदद मिलेगी। इस ट्रेन के शुरू होने के साथ ही भारत उन चुनिंदा देशों जर्मनी, जापान, चीन और अमेरिका की सूची में शामिल हो जाएगा जो रेलवे में साफ और हरित तकनीक के लिए हाइड्रोजन का उपयोग कर रहा है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: प्रधानमंत्री जींद के एकलव्य स्टेडियम में लगभग 14,700 करोड़ रुपए की लागत वाली कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और शुभारंभ भी करेंगे। प्रधानमंत्री कल हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब के दौरे पर रहेंगे। वे चंडीगढ़ में दोपहर में स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा और सड़क के बुनियादी ढांचे से जुड़ी 6,600 करोड़ रुपए से अधिक के विभिन्न विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे और उनका उद्घाटन करेंगे। कांग्रेस संसदीय दल सीपीपी की बैठक आज नई दिल्ली में हुई। बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी और पार्टी के अन्य सदस्य उपस्थित थे। बैठक के बाद कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने बताया कि बैठक में आगामी मानसून सत्र में उठाए जाने वाले प्रमुख मुद्दों पर पार्टी के रुख पर चर्चा हुई। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सतत कृषि विकास सुनिश्चित करने के लिए किसानों के बीच एकीकृत कृषि पद्धतियों को बढ़ावा देने की आवश्यकता पर बल दिया है। नई दिल्ली में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR के स्थापना दिवस पर उन्होंने कहा कि किसानों और वैज्ञानिकों के सामूहिक परिश्रम से असाधारण परिणाम प्राप्त हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि अनुसंधान से किसानों को वास्तविक समय में लाभ मिलना चाहिए। श्री चौहान ने कहा कि देश ने 376 करोड़ टन खाद्यान्न उत्पादन का रिकॉर्ड बनाया है।
2: एक साल में 44 फसलों की 386 नई किस्में, जिनमें से 94 क्लाइमेट रिजिलिएंट है, 29 बायोफोर्टिफाइड है, ये विकसित की है। बागवानी की 117 किस्में हमने अलग अलग अलनीनो के प्रभाव के कारण और वैसे भी जो संवेदनशील जिले हैं उनके लिए आकस्मिक योजनाएं बनाई है। आज मैं गर्व से कहता हूं ICAR कृषि परिवर्तन का अग्रदूत बन चुका है।
1: विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा है कि एक समृद्ध जैव अर्थव्यवस्था देश की स्वास्थ्य और खाद्य सुरक्षा को मजबूत करेगी, वैक्सीन विकास को बढ़ावा देगी, उच्च कुशल रोजगार पैदा करेगी और वोकल फॉर लोकल पहल को आगे बढ़ाएगी। नई दिल्ली में 2035 तक भारत को एक अग्रणी जैव अर्थव्यवस्था महाशक्ति के रूप में बनाना शीर्षक वाली कार्ययोजना को संबोधित करते हुए डॉ. सिंह ने कहा कि 21वीं सदी जैव प्रौद्योगिकी की है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIR न्यूज हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। ओडिशा में पुरी में भगवान जगन्नाथ की विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा के लिए आज विस्तृत अनुष्ठान और अभूतपूर्व सुरक्षा व्यवस्था की गई है। सुबह से ही पुरी में हो रही मूसलाधार बारिश के बावजूद लाखों श्रद्धालु बड़ा डांडा पर पवित्र अनुष्ठानों के साक्षी बन रहे हैं। भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा की मौसी के घर श्री गुंडिचा मंदिर की ओर तीनों रथों को खींचे जाने से पहले गजपति महाराजा दिव्य सिंह देव द्वारा औपचारिक छेरा पहरा रथों की सफाई की रस्म की जाएगी। उत्सव के सुचारू संचालन के लिए व्यापक सुरक्षा और भीड़ प्रबंधन के इंतजाम किए गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अंग्रेजी दैनिक में लिखे गए लेख को सोशल मीडिया पर साझा किया। एक पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि यह लेख भगवान जगन्नाथ के प्रति राष्ट्रपति की आजीवन भक्ति को दर्शाता है, जिसमें उनके बचपन की प्यारी यादों से लेकर उनके जीवन को आकार देने वाले गहन आध्यात्मिक अनुभवों की यात्रा का वर्णन किया गया है। सरकार ने ईंधन निर्यात की पाक्षिक समीक्षा में पेट्रोल, डीजल और विमानन ईंधन HF के निर्यात पर लगने वाले विशेष अतिरिक्त सीमा शुल्क में बदलाव किया है। डीजल के निर्यात पर कर बढ़ाकर अब 15.50 रुपए प्रति लीटर और विमानन ईंधन पर निर्यात पर कर बढ़ाकर 14.50 रुपए प्रति लीटर कर दिया गया है। वहीं पेट्रोल के निर्यात पर कर घटाकर 2.50 रुपए प्रति लीटर किया गया है। ये बदलाव आज से लागू हो गए हैं। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक आज के सत्र में 0.4% की बढ़त के साथ कारोबार कर रहे थे। ताजा समाचार मिलने तक सेंसेक्स 29 अंक बढ़कर 77,214 पर और निफ्टी 18 अंक बढ़कर 24,060 पर पहुंच गया।

0: और अब खेल जगत की खबरों के साथ हैं जागृति शर्मा।
1: पीवी सिंधु जापान ओपन सुपर बैडमिंटन टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई हैं। उन्होंने विश्व की पांचवें नंबर की खिलाड़ी चीन की हान यू को मात्र 35 मिनट में लगातार सेटों में हराकर सीजन का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया। हालांकि प्री क्वार्टर फाइनल में तनिषा क्रास्टो और ध्रुव कपिला की मिक्स्ड डबल्स जोड़ी को हार का सामना करना पड़ा। क्रिकेट में भारत और इंग्लैंड के बीच तीन एक दिवसीय मैचों की श्रृंखला का दूसरा मुकाबला आज शाम भारतीय समय के अनुसार 5:30 बजे कार्डिफ में खेला जाएगा। इससे पहले भारत ने बर्मिंघम में पहले एक दिवसीय मैच में मेजबान इंग्लैंड को 6 विकेट से हराया था। श्रृंखला का तीसरा और अंतिम मुकाबला रविवार को लंदन के लॉर्ड्स मैदान पर खेला जाएगा। वहीं फुटबॉल में फीफा विश्व कप में अर्जेंटीना ने फाइनल में जगह बना ली है। सेमीफाइनल में अर्जेंटीना ने रोमांचक मुकाबले में इंग्लैंड को 2-1 से हराया। अब फाइनल मुकाबले में रविवार को अर्जेंटीना का सामना स्पेन से होगा।
0: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत ने भू राजनीतिक संघर्षों के बीच सुरक्षा और आर्थिक चुनौतियों से निपटने के लिए बिम्स्टेक सदस्य देशों में घनिष्ठ सहयोग का आह्वान किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, सरकार ये सुनिश्चित कर रही है कि विकास और राष्ट्रीय सुरक्षा में प्रगति एक दिशा में आगे बढ़े। सर्वोच्च न्यायालय ने CBSE को तीसरी भाषा 5वीं या 6ठी कक्षा से शुरू करने का सुझाव दिया। पर्यावरण अनुकूल और सतत रेल आवाजाही को बढ़ावा देने के लिए हाइड्रोजन संचालित देश की पहली रेलगाड़ी कल से शुरू। बैडमिंटन में पीवी सिंधु ने विश्व की 5वीं नंबर की खिलाड़ी चीन की हान यू को हराकर जापान ओपन टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया। और क्रिकेट में भारत तथा इंग्लैंड के बीच दूसरा एक दिवसीय मैच आज शाम कार्डिफ में खेला जाएगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: दोपहर न्यूज के बाद स्वागत है आप सभी का रेडियो रिमझिम 90.4 FM पर। आइए सुनते हैं आगे का प्रसारण।
3: इतना परेशान क्यों दिख रही हो मेघा?
4: आसपास हर जगह चाचा जी का इलाज करा लिया, अब लगता है उन्हें दिल्ली लेकर ही जाना पड़ेगा।
3: अरे अपने गोपालगंज में गोरखपुर, पटना और दिल्ली जैसे बेहतर मेडिकल सुविधाओं के साथ खुल गया है एम्स के पूर्व चिकित्सक डॉक्टर अभिषेक रंजन जी के देखरेख में जिले का पहला वेंटिलेटर युक्त सक्षम हॉस्पिटल, जहाँ पर 24 घंटे ICU इमरजेंसी सेवा, एक्सपर्ट मेडिकल टीम द्वारा विभिन्न रोग जैसे हृदय रोग, शुगर, दमा, नस रोग, लकवा और पेट से जुड़ी गंभीर बीमारियों का अत्याधुनिक मशीनों के द्वारा सफलतापूर्वक इलाज किया जा रहा है।
4: आज विजिट करें सक्षम हॉस्पिटल, कमला राय कॉलेज रोड, इंडियन गैस एजेंसी के बगल में, गांधी टेक्निकल कॉलेज के सामने, डॉक्टर कॉलोनी, गोपालगंज। कॉल करें 7050061444 या 7870331444।
5: नई बाइक का सपना अब होगा पूरा, वो भी सबसे कम दाम में।
6: इस सीजन अपने घर लाइए हीरो की नई चमचमाती बाइक या स्कूटर श्री गोपाल मोटर्स से, वो भी ऑन रोड रेट पर।
5: श्री गोपाल मोटर्स, गोपालगंज में पाए स्प्लेंडर प्लस सिर्फ 86,168 रुपए में, HF डिलक्स सिर्फ 75,405 रुपए में, ग्लैमर एक्स सिर्फ 97,456 रुपए में, एक्सट्रीम 125R सिर्फ 110,881 रुपए में, इंश्योरेंस और रजिस्ट्रेशन के साथ।
6: विजिट कीजिए श्री गोपाल मोटर्स, NH 27 बंजारी, चैन पट्टी, गोपालगंज,
5: या अभी कॉल कीजिए 9289922567 या 9779746164।
7: राधा, तुमने अपने चाचा जी के अपेंडिक्स का ऑपरेशन कहाँ कराया था?
8: सम्राट हॉस्पिटल में, वो भी कम से कम खर्च में।
9: क्या आप भी ऑपरेशन कराना चाहते हैं? तो घबराए नहीं, आज ही आए सम्राट हॉस्पिटल, जहाँ है डॉक्टर कुंदन सिंह MBBS MS जनरल एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जन, जो सदर हॉस्पिटल गोपालगंज में भी सेवा देते हैं।
10: हमारे यहाँ दूरबीन विधि से भी ऑपरेशन किया जाता है।
9: आज ही हर तरह के सफल ऑपरेशन के लिए आए सम्राट हॉस्पिटल, जो है कमला राय कॉलेज के पश्चिम RR रोड गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 9847434468 पे।
6: अगर आपको हो रहा है घुटने, हड्डी या रीढ़ की हड्डी का दर्द या महिलाओं से जुड़ी समस्या, तो याद रखिए गोपालगंज जिले में सबसे भरोसेमंद नाम स्टार एडवांस ऑर्थो एंड मेटर्निटी सेंटर, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
5: यहाँ है डॉक्टर इमरान हुसैन खान, कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक एवं जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन, MBBS MS, एक्स रेसिडेंट KGMU लखनऊ।
6: और महिलाओं के लिए डॉक्टर सूफिया शादाब, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, MBBS MS। एस ऑब्स एंड गायनेकोलॉजी।
5: साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
6: ध्यान दे, हर शुक्रवार को है फ्री ओपीडी, तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें।
5: पता: कमला राय कॉलेज रोड नियर रालसन होटल गोपालगंज।
6: संपर्क करें 9006978856 या 6203139564। ओम नमः शिवाय।
5: सावन के पावन अवसर पर बाबा भोलेनाथ के दर्शन का सुनहरा अवसर लेकर आया है दीपक राज टूर एंड ट्रेवल्स गोपालगंज।
6: श्रद्धालुओं के लिए विशेष तीर्थ यात्रा एवं कांवर यात्रा की व्यवस्था। पहला रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, राजगीर होते हुए पुनः वापसी।
5: दूसरा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, तारापीठ, जगन्नाथपुरी, गंगा सागर, काली घाट, कोलकाता, रजरप्पा, राजगीर होते हुए वापस गोपालगंज।
6: तीसरा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, गया, बोधगया, वाराणसी, अयोध्या, गोरखनाथ मंदिर होते हुए वापस गोपालगंज।
5: चौथा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, गुवाहाटी, माँ कामाख्या धाम, दार्जिलिंग, सिलीगुड़ी, गंगटोक, जनकपुर, अरेराज होते हुए वापस गोपालगंज।
6: गोपालगंज जिले के श्रद्धालु अब घर बैठे अपनी तीर्थ यात्रा के लिए वाहन बुक करा सकते हैं।
5: बिचौलियों से बचे और सीधे हमारे कार्यालय या बुकिंग नंबर पर संपर्क करें।
6: बुकिंग नंबर 9155548507 या 9162933538।
5: हेल्पलाइन नंबर 9934498845।
6: दीपक राज टूर एंड ट्रेवल्स, मुख्य कार्यालय चिराई घर पेट्रोल पंप के पास गोपालगंज, उपशाखा NH27 काली स्थान बंजारी गोपालगंज।
5: बोलबम, हर हर महादेव।
9: आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM। सुनो दिल से।
11: All right.

मैं कुछ भी कर लूं, तुम कभी मुझसे मोहब्बत नहीं करना चाहती, और तुम कुछ भी कर लो, मैं कभी तुमसे नफरत नहीं कर सकता।

0: गोपालगंज अब आपकी राइड होगी और भी स्टाइलिश और पहले से ज्यादा पावरफुल,
1: क्योंकि आ चुकी है हीरो ग्लैमर एक्स और एक्सट्रीम 125R। अब उपलब्ध है नारायणी हीरो गोपालगंज में।
0: ग्लैमर एक्स, दमदार माइलेज, शानदार लुक और भरोसेमंद परफॉर्मेंस, ताकि हर दिन बने खास और सफर रहे बेफिक्र।
1: और एक्सट्रीम 125R स्पोर्टी डिजाइन, दमदार पावर और एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ हर राइड बने और एक्साइटिंग।
0: तो फिर देर किस बात की, आज ही विजिट करें नारायणी हीरो, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
1: शानदार ऑफर्स और आसान फाइनेंस सुविधा के साथ
0: नारायणी हीरो, भरोसे का नाम हर राइड के साथ।
1: कॉल नाउ 9656 59536 या 9656 57902।
2: सोहन, मैं बहुत परेशान हूँ। मुझे तुरंत अपने भाई को कुछ पैसे भेजने हैं, लेकिन बैंक में तो इतनी लंबी लाइन है कि घंटों लग जाएंगे, और मेरा जियो सिम भी एक्टिवेट नहीं हो रहा। अब मैं क्या करूँ?
3: अरे टीना, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। चलो मेरे साथ माया क्लासिकल में आधार और बैंक से आसानी से पैसे निकाला जाता है और किसी भी खाते में तुरंत भेजा जा सकता है बिना किसी झंझट के। और सिम की बात कर रही हो ना, BSNL, जियो, एयरटेल, VI, जो भी चाहिए तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा।
2: मुझे कुछ जरूरी PDF प्रिंट करवाने हैं, वहाँ ये सब हो जाएगा ना?
3: बिल्कुल, माया क्लासिकल में PDF, लेमिनेशन, प्रिंट, फोटो कॉपी सब कुछ मिलेगा। तुम्हें एक धमाकेदार ऑफर भी बताता हूँ, फोटो स्टेट सिर्फ ₹1 प्रति प्रिंट आउट, कम से कम 50 पेज। हर ग्राहक को शानदार गिफ्ट भी मिलता है। माया क्लासिकल में सब कुछ है। माया क्लासिकल, सिनेमा रोड, शिव मंदिर के ठीक सामने, गोपालगंज। प्रोपराइटर सोनू जी। संपर्क करें 99399-66999।
4: ठक ठक।
5: काजी, आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
6: अच्छा मिला ही नहीं।
5: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें, अब चलिए सीधे कमल श्री में।
7: जी हाँ, कमल श्री। याद रखें, सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
5: आप भी आए कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, बारी मार्केट, गोपालगंज।
7: याद रहे, सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ, सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है।
8: अरे सुनते हो जी, शादी में बस कुछ ही दिन बचे हैं, दूल्हे के कपड़े अभी तक नहीं बने।
9: और दुल्हन का लहंगा, साड़ी कुछ भी तय नहीं हुआ। इतना बड़ा फंक्शन है, सब लोग क्या कहेंगे?
0: मम्मी पापा, मुझे चाहिए रॉयल कोट पैड का कपड़ा और रिसेप्शन के लिए एक शानदार कुर्ता पजामा।
1: और मुझे चाहिए ट्रेंडिंग लहंगा, सुंदर साड़ी और कुछ बढ़िया सूट पीस भी।
10: अरे बस इतनी सी बात, आप लोग गए नहीं क्या मुरारी लाल विजय कुमार?
0: मेन रोड गोपालगंज में स्थित मुरारी लाल विजय कुमार क्लोथिंग स्टोर, जहां दूल्हे के लिए मिलता है कोट पैंट, पैंट शर्ट और कुर्ता पजामा का बेहतरीन कपड़ा, और दुल्हन के लिए लहंगा, साड़ी, सूट पीस, हर डिजाइन, हर रंग, हर बजट में।
9: तो फिर देर किस बात की, चलो अभी चलते हैं मुरारी लाल विजय कुमार।
0: मुरारी लाल विजय कुमार, मेन रोड गोपालगंज। प्रोप्राइटर विजय कुमार केडिया।
1: कॉल करें 87-894-18744।
11: डॉक्टर अनुज मिश्रा, न्यूरो सर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज। ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।

0: दोपहर समाचार के बाद एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं रेडियो रंगीन 90.4 एफएम में आपके अपने कार्यक्रम योर वॉइस योर चॉइस में। 2:44 हो चुके हैं स्टूडियो घड़ी में। और यहाँ व्हाट्सएप मैसेज की बात करें तो काफ़ी सारे मैसेज है। अगर आप भी कार्यक्रम में जुड़ना चाहते हैं, कार्यक्रम में जुड़ने के लिए माध्यम है व्हाट्सएप इंस्टा कॉल। आप जिसमें काफ़ी सारे मैसेज है, अगर आप भी कार्यक्रम में जुड़ना चाहते हैं, कार्यक्रम में जुड़ने के लिए माध्यम है व्हाट्सएप इंस्टा कॉल। आप जिस माध्यम से चाहे जुड़ सकते हैं। और व्हाट्सएप से जुड़ने के लिए नंबर है 98-527-88-291 पर व्हाट्सएप मैसेज करिए, या फिर अपनी आवाज़ में एक छोटा सा वॉइस रिकॉर्ड करके हमें भेज दीजिए अपने नाम, पता और गाने की फरमाइश के साथ, या फिर कॉल करिए 72-77-16-65-96 पर। और बिना देरी अगली फरमाइश की तरफ रुख करेंगे। और कॉल पहुँचा हुआ है तो चलिए बात करते हैं कौन है कहाँ से। हेलो,
1: भारतीय वाला प्रोग्राम कब लगने? हेलो योर चॉइस।
0: अच्छा, हेलो माय चॉइस।
1: हाँ जी,
0: वो शाम को अपना इंडिया टाइम के हिसाब से शाम को 5-7 के बीच में चलता है।
1: इंडिया टाइम 5 होने लगता है उसका प्रोग्राम शाम के टाइम?
0: जी, शाम को 5-7 के बीच में।
1: कौन सा दिन में? व्हाट डे?
0: पर डे चलता है, डेली, सिर्फ संडे छोड़ के।
1: थर्सडे?
0: सिर्फ संडे छोड़ के हर रोज चलता है।
1: तो और एवरी डे उसका प्रोग्राम लगता है 5-7 बजे तक?
0: हाँ, 5-7 के बीच में 2 घंटे का कार्यक्रम चलता है डेली शाम को
1: इंडिया टाइम। तो 5-7 बजे मैं फोन कर सकता हूँ, गाना की फरमाइश कर सकता
0: हूँ? एक मिनट होल्ड कर। जी जी, आप ऑफिस के नंबर पे कॉल करिए, ठीक है, वहाँ आप जानकारी लीजिए। ओके,
1: तो 5-7 बजे मैंने कौन सा नंबर फोन करना है पार्टी को? तो मैंने कहा ना कि
0: उसकी रिकॉर्डिंग होती है 11 बजे से, जो कि कल होगा।
1: तो रिकॉर्डिंग 11 बजे होती है?
0: जी, सुबह दिन में 11 बजे होता है। और रेडियो रंगीन के फेसबुक पे जाइए, आपको वहाँ सारा जानकारी मिल जाएगा, ठीक है।
1: तो 5-7 बजे मैंने समाइश करने की, 11 बजे मेरा रिकॉर्डिंग होगा।
0: एक मिनट होल्ड करिए आप।
1: क्या?

94.4 रेडियो रिमझिम सुन रहे हैं आप सभी और कार्यक्रम है योर वॉइस योर चॉइस का। और यहाँ मैसेज है, लिख रहे हैं कि सोनी मैम कुछ जानकारी हो तो जल्दी बताइए, हम चावल उबाल रहे हैं और उसका पानी अपने हाथ पर डाल लिए। ओहो, तो फिर तो हाथ जल गया होगा, और हाथ जल गया है तो तुरंत उस पर नमक और तेल लगा दीजिए और जलन जो है कम हो जाएगा आपका। और मुस्तफ़ा जी है सऊदी से, और उस वहाँ पे जो छाले होते हैं वो भी नहीं होगा अगर नमक तेल लगा लेते हैं तुरंत तो। और यहाँ मैसेज है, लिख रहे हैं कि गुड आफ्टरनून मैम, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल बढ़िया हूँ। आशाजदा अंसारी हैं मीरगंज से, बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और यहाँ मिस्टर कुमार जी हैं, लिख रहे हैं गाना बजा दीजिए, बिल्कुल आपकी फरमाइश है, प्ले करेंगे। और भी कई सारे मैसेज है शामिल करेंगे लेकिन अगली फरमाइश प्ले करेंगे। और अगली फरमाइश जो हमारे पास पहुँचा हुआ है छम्मा छम्मा गाने की, और फरमाइश करने वाले हैं पौन सा जी। तो एंजॉय करिए अपने गाने को रेडियो रिमझिम 90.4 FM पर।

90.4 रेडियो रंजन सुन रहे आप सभी और कार्यक्रम है योर वॉइस योर चॉइस का। और अभी हम सभी गाना सुन रहे थे, गाने की फरमाइश करने वाले थे पवन शाह जी। और यहाँ मैसेज है लिख रहे हैं कि हम तो सुने थे कि जले पर नमक लगाओ और आप तो खुद बता रहे हो कि नमक लगाने के लिए। जी हाँ, जले अगर तुरंत जला हो तो उस पर तुरंत नमक और तेल लगाने से वो जो छाले होते हैं वो नहीं होता है और जलन भी कम होता है। और आगे यहाँ मैसेज है, ये मैं खुद ट्राई की हूँ इसलिए मैं बता रही हूँ। या फिर कोलगेट होता है वो लगा लिया जाता है जिससे कि कम जलन होता है। और लिख रहे हैं कि नाइस सॉन्ग छम्मा छम्मा ऑल टाइम हिट। और रेडियो फैन पंकज जी जुड़ चुके हैं एक बार फिर से, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और यहाँ मैसेज है लिख रहे हैं कि हौसले बुलंद हो तो हर मुश्किल आसान होती है, हौसले बुलंद हो तो हर मुश्किल आसान होती है, आपकी मेहनत ही आपकी सबसे बड़ी पहचान होती है। सोनी जी आपकी लगन और काम का ये कमाल है कि आपकी हर अदा दूसरों के लिए मिसाल है। और मैसेज साथ है सुजीत जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और आगे यहाँ एक और मैसेज है लिख रहे हैं कि फरमाइश भेज सकती हूँ, बिल्कुल भेज सकती हूँ शाहजहाँ अंसारी जी हैं मुगल और मीरगंज से। और आगे यहाँ मैसेज है लिख रहे हैं कि सोनी जी मैं फिर से जुड़ गया हूँ, बहुत बहुत स्वागत है आपका एक बार फिर से। और आपकी फरमाइश है, प्ले कर रहे हैं, इंजॉय करिए अपने गाने को रेडियो रिमझिम 90.4 FM पर। और सोनू प्रजापति जी हैं नासिक से, तो प्ले कर दिया है गाना आपका।

यहाँ मैसेज है, लिख रहे कि इस गाने को बिना गुनगुनाए कोई रह नहीं सकता, लेकिन आप गुनगुनाई नहीं मैम, अफसोस की बात है। और छम्मा छम्मा सुपर सॉन्ग हो, लास्ट में गुनगुना दिए। जी हाँ, और गाना वैसा ही है। और मैसेज साथ है विनोद जी दोहा कतर से, बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका भी।

0: आ गया है विकसित भारत जी राम जी, जिसमें हर ग्रामीण को मिलेगी साल में 125 दिन रोजगार की गारंटी और काम वही जो ग्राम पंचायत कहे। विकसित भारत जी राम जी, गांव बढ़ेगा तभी देश बढ़ेगा। ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। हाँ।
1: नई बाइक का सपना अब होगा पूरा, वो भी सबसे कम दाम में।
2: इस सीजन अपने घर लाइए हीरो की नई चमचमाती बाइक या स्कूटर श्री गोपाल मोटर्स से, वो भी ऑन रोड रेट पर।
1: श्री गोपाल मोटर्स गोपालगंज में पाए स्प्लेंडर प्लस सिर्फ 86,168 रुपए में, HF डिलक्स सिर्फ 75,405 रुपए में, ग्लैमर एक्स सिर्फ 97,456 रुपए में, एक्सट्रीम 125R सिर्फ 110,881 रुपए में, इंश्योरेंस और रजिस्ट्रेशन के साथ।
2: विजिट कीजिए श्री गोपाल मोटर्स, NH 27 बंजारी, चैन पट्टी, गोपालगंज,
1: या अभी कॉल कीजिए 92899225567 या 97,714,86,164।
3: वेलकम बैक 90.4 FM रेडियो रिमझिम पे, आप सभी के अपने कार्यक्रम योर वॉइस योर चॉइस में। और हाँ, 3 बज चुका है श्री घड़ी में और 1 घंटा समय है और यहाँ हाजरा जी जुड़ चुके हैं देवहाता से। बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका भी, और गाने की फरमाइश है, बिल्कुल आपकी फरमाइश प्ले करने की पूरी कोशिश है। और यहाँ मैसेज है कि मेरा गाना नहीं बजेगा, कब तक वेट करना पड़ेगा, तो बिल्कुल आपका इंतज़ार ख़त्म होता है। और यहाँ एक और मैसेज है, लिख रहे हैं कि सोनी मैम, रेडियो रिमझिम का परिवार बहुत बड़ा है, आज हमारे एक साथी का हाथ जल गया है जिससे हम सब उदास है। मैम, आप अपनी तरफ से रेडियो पर उनके लिए कोई अच्छा सा गाना बजा दीजिए ताकि दर्द भूलकर उनके चेहरे पर मुस्कान आ जाए। और मैसेज के साथ हैं श्री भगवान सिंह जी दोहा कतर से, तो मैं आपके गाने की फरमाइश जो है प्ले कर देंगे, लेकिन इतना बताइए कि आपको भोजपुरी में गाना सुनना है या हिंदी में, और नया या पुराना, फिर हम आपके हिसाब से गाना प्ले कर देंगे, कोई अच्छा सा जो कि सुन के मज़ा आ जाए, लेकिन कंफर्म करिए कि आपको गाना सुनना कैसा है। और यहाँ और भी कई सारे मैसेज है, वॉइस मैसेज अभी पहुँचा हुआ है। और अनुरोध जी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका भी। और यहाँ मैसेज है, लिख रहे हैं कि हमरो गाना बा, तो बिल्कुल गाना बा, तो कौन गाना बा, पिया जी के मुस्की, बिल्कुल राउर गाना बा प्ले हुई। और रमेश्वर कुमार जी हैं मोतिहारी जिला से, एक और यहाँ मैसेज है, लिख रहे हैं कि गाना सुनना है मेरे तोता मूवी से आज के गुंडारा। संतोष कुमार पटेल जी हैं सूरत से, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और बिना देरी अगली फरमाइश हम प्ले करेंगे। एक और यहाँ मैसेज है, लिख रहे हैं मुझे भी गाना सुनना है। और नाम साजिदा अंसारी जी हैं मीरगंज से, बिल्कुल आपकी फरमाइश है प्ले करेंगे, थोड़ा इंतज़ार करिए और सुनते रहिए रेडियो रिमझिम को। और यहाँ जो अगली गाने की फरमाइश जो हमारे पास पहुँचा हुआ है, काफ़ी देर से ये भी इंतज़ार कर रहे हैं अपने गाने के लिए, तो चलिए आपकी गाने की फरमाइश जो है प्ले कर दिया। और गाना सुनना है जेकर बलमा बसेला परदेश, सकी मुन्ना जी हैं दिल्ली से, इंजॉय करिए अपने गाने को।

94.4 रेडियो रिमझिम सुन रहे आप सभी और कार्यक्रम है योर वॉइस योर चॉइस का। और अभी गाना सुन रहे थे, गाने की फरमाइश करने वाले थे मुन्ना जी, और इनके तरफ से मैसेज भी पहुंच गया लिखने कि आज पता चल गया कि सोनी जी के यहाँ देर है अंधेर नहीं। जी हाँ, बिल्कुल देर है लेकिन अंधेर नहीं है। और कई सारे हमारे काफ़ी सारे लिसनर जुड़ते हैं और काफ़ी सारी फरमाइशें रहती है, तो किसी ना किसी का तो छूटेगा। और ऐसा नहीं है कि एक ही आदमी का फरमाइश डेली डेली छूटेगा। मुझे ध्यान रहता है कि अगर कल इनका नहीं प्ले हुआ तो आज करना है। और बहुत बहुत धन्यवाद इस बात को समझने के लिए। और यहाँ मैसेज लिख रहे हैं कि आज मेरा दूसरा फेवरेट गाना बजा मुन्ना भाई के तरफ से, इसलिए दिल से धन्यवाद है। और लिखते हैं कि अमराज बोला, प्राणी तुम कहाँ जाना चाहते हो, स्वर्ग में या नर्क में? आदमी बोला, मेरा मोबाइल और चार्जर मंगवा दो, मैं कहीं भी रह लूँगा। और बिल्कुल सही है, अभी के टाइम में मोबाइल और चार्जर चाहिए लोगों को, बस चार्ज रहना चाहिए फ़ोन में, वो कहीं भी रह लेंगे। और यहाँ मैसेज लिख रहे हैं मुन्ना भाई के, मुन्ना भाई के घरे बुलाओ तरी, बड़ा बिरह में बाड़न और हमरा लागल फ़ोन आ रहा। और उमा शंकर जी हैं दिल्ली से, और मुझे समझ में नहीं आया आपका मैसेज, आप क्या कहना चाहते हैं। और आगे यहाँ मिथिलेश जी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। संग्रामपुर से पवन सिंह का गाना सुनना है, तो बिल्कुल प्ले करने की आपकी फरमाइश जो है पूरी कोशिश है। और यह अगली फरमाइश हम प्ले करेंगे और इसके बाद श्री भगवान सिंह जी आपकी जो फरमाइश है प्ले करेंगे नीलकमल की आवाज़ में। फिलहाल ये अगली फरमाइश जो पहुँचा हुआ है हमारे पास, केशव राज जी जुड़े हुए हैं बेगूसराय बिहार से, और गाना सुनना है एक अंधियारा लाख सितारा। इंजॉय करिए अपने गाने को रेडियो रिमझिम 90.4 FM पर।

0: 94 रेडियो रंजन सुन रहे आप सभी और कार्यक्रम है योर वॉइस योर चॉइस का। और अभी गाना सुन रहे हैं, गाने की फरमाइश करने वाले हैं केशव राज जी बेगूसराय से। और लिखा थैंक यू सो मच गाना सुनाने के लिए। और मिलते हैं आप सभी से एक छोटे से ब्रेक के बाद।
1: अरे माँ, ये दांत का दर्द तो जान ले लेगा, क्या करूँ?
2: अब चिंता छोड़िए, गोपालगंज में है महावीर डेंटल एंड मैक्सिलोफेशियल ट्रॉमा केयर, मल्टी स्पेशलिटी डेंटल और फेस क्लिनिक, जहाँ दांत, जबड़े और चेहरे से जुड़ी हर समस्या का आधुनिक इलाज उपलब्ध है।
3: यहाँ सेवा दे रहे हैं गोपालगंज के फर्स्ट MDS डॉक्टर पल्लव राज, वरिष्ठ जबड़ा एवं फेस सर्जन और कैंसर रोग विशेषज्ञ, साथ में डॉक्टर अभिलाषा अग्रवाल, दंत एवं मुख रोग विशेषज्ञ और कॉस्मेटिक डेंटल सर्जन।
2: यहाँ टेढ़े मेढ़े दांत, रूट कैनाल, चेहरे और मुंह से जुड़ी सभी समस्याओं का विशेषज्ञ इलाज किया जाता है।
3: ध्यान दे, आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए टूटे हुए जबड़े और मुंह का कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का मुफ्त इलाज उपलब्ध है।
2: पता, शनिवार और रविवार महावीर मेडिकल हॉल, अम्बेडकर चौक, हॉस्पिटल रोड, गोपालगंज। अन्य दिन केडिया मैक्सिलोफेशियल एंड कॉस्मेटिक केयर, मुंशी प्रेमचंद पार्क के पास, बेतिया हाता, गोरखपुर।
3: हर दिन दोनों क्लिनिक पर डॉक्टर पल्लव राज और उनके विशेषज्ञ टीम द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है।
2: संपर्क करें 84710309 या 9765665750।
4: इतना परेशान क्यों दिख रही हो मेघा?
5: आसपास हर जगह चाचा जी का इलाज करा लिया, अब लगता है उन्हें दिल्ली लेकर ही जाना पड़ेगा।
4: अरे, अपने गोपालगंज में गोरखपुर, पटना और दिल्ली जैसे बेहतर मेडिकल सुविधाओं के साथ खुल गया है एम्स के पूर्व चिकित्सक डॉक्टर अभिषेक रंजन जी के देखरेख में जिले का पहला वेंटिलेटर युक्त सक्षम हॉस्पिटल, जहां पर 24 घंटे ICU इमरजेंसी सेवा, एक्सपर्ट मेडिकल टीम द्वारा विभिन्न रोग जैसे हृदय रोग, शुगर, दमा, नस रोग, लकवा और पेट से जुड़ी गंभीर बीमारियों का अत्याधुनिक मशीनों के द्वारा सफलतापूर्वक इलाज किया जा रहा है।
5: आज विजिट करें सक्षम हॉस्पिटल, कमला राय कॉलेज रोड, इंडियन गैस एजेंसी के बगल में, गांधी टेक्निकल कॉलेज के सामने, डॉक्टर कॉलोनी, गोपालगंज। कॉल करें 7050061444 या 7870331444।
6: डॉक्टर अनुज मिश्रा, न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान, पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में। सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
7: टॉप रामू काका, हई इलेक्ट्रिक के इतना सारा सामान कहाँ से खरीद के ले आओ तनी?
8: ये सब सामान संतोष इलेक्ट्रॉनिक्स से लेके आओ तनी बाबू।
7: अरे, ये सामान तो एक नंबर बुझाता और काफी डिजाइनदार भी बा।
8: अरे हाँ बाबू, अपना गोपालगंज में इतना अच्छा दुकान कहाँ बा? संतोष इलेक्ट्रॉनिक्स में सस्ता में एक नंबर के सामान मिलेला।
7: हम तो अपना नौका घरवा खातिर इलेक्ट्रॉनिक के सारा सामान दिल्ली से लेके आवे के सोचत रहनी, लेकिन हम काले संतोष इलेक्ट्रॉनिक्स से जाके अपन पूरा सामान ले आए।
8: अरे हाँ बबुआ, संतोष इलेक्ट्रॉनिक्स से लिए, दिल्ली जाके पैसा बर्बाद कर ले से का फायदा?
9: संतोष इलेक्ट्रॉनिक हाउस, जहाँ सस्ते दामों में बेस्ट क्वालिटी के इलेक्ट्रिक के सारे सामान मिलते हैं।
7: हमारा पता है चिराई घर पेट्रोल पंप के सामने, संतोष फर्नीचर के नीचे, कॉलेज रोड, गोपालगंज।

वेलकम बैक रेडियो रिमझिम 90.4 एफएम पे आपके अपने कार्यक्रम योर वॉइस योर चॉइस में 3:16 हो चुके हैं स्टूडियो घड़ी में। और हाँ, व्हाट्सएप मैसेज की बात करें तो काफ़ी सारे मैसेज हमारे पास पहुंचे हुए हैं। लिख रहे हैं, मैडम जी नमस्कार, मैं भी जुड़ गया हूँ संग्रामपुर से और पवन सिंह का गाना सुनना है, सुनवा दीजिए। बिल्कुल आपके गाने की फरमाइश है, प्ले करेंगे। मिथिलेश जी थोड़ा इंतजार करिए। और यहाँ एक और मैसेज है, लिख रहे हैं कि मुझे भी गाना सुनना है, छमक छलो और मूवी का सॉन्ग है। बिल्कुल आपके गाने की फरमाइश है, प्ले करेंगे। अपना नाम पता मेंशन करिए, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और यहाँ शमशेर जी जुड़ चुके हैं मुंबई से, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। एक और यहाँ मैसेज है, लिख रहे हैं कि ना चांद की चाहत ना सितारों की फरमाइश है, ना चांद की चाहत ना सितारों की फरमाइश है, बस जब भी रेडियो रिमझिम शुरू हो सोनी मैम की आवाज़ की ख्वाहिश है और रब हमेशा उन्हें खुशियों से नवाजता रहे, क्योंकि लाखों सितारों के दिल में उनके लिए बेशुमार मोहब्बत और इज्जत है। और मैसेज के साथ है अनीश यादव जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इतना प्यारा मैसेज भेजने के लिए। और इतना यहाँ मैसेज है, लिख रहे हैं कि नेक्स्ट सॉन्ग मेरा, बिल्कुल नेक्स्ट सॉन्ग जो है आप ही का रहेगा। फिलहाल यहाँ अगली फरमाइश हम प्ले करेंगे और काफ़ी देर से इंतजार कर रहे हैं श्री भगवान सिंह जी हैं तो कतर से। तो चलिए, आपका इंतजार खत्म हुआ और एंजॉय करिए नीलकमल की आवाज़ में ये खूबसूरत गाना मरून कलर सड़िया।

0: 94.4 रेडियो रंजन सुन रहे आप सभी और कार्यक्रम है योर वॉइस योर चॉइस का और यहाँ मैसेज है लिख रहे हैं थैंक यू सो मच सोनी मैम आपकी आवाज़ और फिर नीलकमल सिंह जी का ये लाजवाब गाना। आज का दिन पूरी तरह से बन गया रेडियो रंजन और आपकी मुस्कान यूं ही बनी रहे और श्री भगवान सिंह जी की तरफ से मैसेज है बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ एक और मैसेज है लिख रहे हैं कि श्री भगवान जी को वेट मत करवाइए सोनी मैम सवाल आने वाला बाटे और निक गाना बा मरून कलर सड़िया और मैसेज साथ है रेडियो फैन पंकज जी आगे यहाँ मैसेज है लिख रहे हैं कि हाय मैम हम भी है और नई मंसारी जुड़ चुके हैं जामतारा से बहुत बहुत स्वागत है आपका। एक और यहाँ अभी अभी वॉइस मैसेज पहुँचा हुआ है लिख रहे हैं कि 3 बजे के बाद मैं चलाइएगा और 3:30 हो चुका है बिल्कुल आपकी फरमाइश है और अर्जेंट में गाने की फरमाइश है मोहम्मद अंसारी जी है बिल्कुल आपकी फरमाइश है प्ले करेंगे। फिलहाल यहाँ वॉइस मैसेज है सुनते हैं कौन सी गाने की फरमाइश है और फरमाइश पहुँचा है हाजरा जी की तरफ से एंजॉय करिए गाने को।
1: हेलो हाय अस्सलाम वालेकुम मैम मैं हाजरा सदौवा से और मुझे भी एक सॉन्ग सुनना है आएगी बरसात कहाँ जाएंगे हम और सुनाना चाहती हूँ सबसे पहले आपको और अपने हस्बैंड जी को और हीना जी है सफाक जी है सलेहा जी है रुबीना राज है ब्यूटी करवीन है सबीना जी है सविता जी है रुखसार है अख्तर जी है और इरफान जी कमरान जी गुलाम हुसैन वीरेंद्र गुप्ता साहिल राजा और समीर भाई और जितने लोग मुझे जानने पहचानने वाले उन सभी को और गुलाम हुसैन भैया जी को।
0: इंजॉय करिए गाना अपना हजरा जी प्ले कर दिया आपका गाना रेडियो रंजन 90.4 FM पर आएगी बरसात

0: थैंक यू मैम गाना बजाने के लिए, दिल से शुक्रिया। और मैं अपना गाना सुन रही हूँ, मैं हजरा सदौवा से।
1: अपने जिले के मशहूर डॉक्टर जे शरण एमडी फिजिशियन अब बैठ रहे हैं सुबह 10 बजे से आशा मेडिको जनता सिनेमा रोड गोपालगंज, और डॉक्टर जे शरण जी शाम 5 बजे से 7 बजे तक बैठ रहे हैं अपने निवास स्थान शबनम होटल के पीछे आजाद नगर गोपालगंज।
2: डॉक्टर साहब के यहाँ पर्ची का नंबर मोबाइल से भी लगाया जा सकता है।
3: आशा मेडिको में किसी भी प्रकार की लिखी दवाएं मिलती है, मोबाइल से दवा का ऑर्डर भी किया जा सकता है। मोबाइल नंबर है 76545 67 666।
4: ओम नमः शिवाय।
5: सावन के पावन अवसर पर बाबा भोलेनाथ के दर्शन का सुनहरा अवसर लेकर आया है दीपक राज टूर एंड ट्रेवल्स गोपालगंज।
4: श्रद्धालुओं के लिए विशेष तीर्थ यात्रा एवं कांवर यात्रा की व्यवस्था। पहला रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, राजगीर होते हुए पुनः वापसी।
5: दूसरा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, तारापीठ, जगन्नाथपुरी, गंगा सागर, काली घाट, कोलकाता, रजरप्पा, राजगीर होते हुए वापस गोपालगंज।
4: तीसरा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, गया, बोधगया, वाराणसी, अयोध्या, गोरखनाथ मंदिर होते हुए वापस गोपालगंज।
5: चौथा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, गुवाहाटी, माँ कामाख्या धाम, दार्जिलिंग, सिलीगुड़ी, गंतोक, जनकपुर, अरेराज होते हुए वापस गोपालगंज।
4: गोपालगंज जिले के श्रद्धालु अब घर बैठे अपनी तीर्थ यात्रा के लिए वाहन बुक करा सकते हैं।
5: बिचौलियों से बचे और सीधे हमारे कार्यालय या बुकिंग नंबर पर संपर्क करें।
4: बुकिंग नंबर 9155548507 या 9162933538।
5: हेल्पलाइन नंबर 9934498845।
4: दीपक राज टूर एंड ट्रेवल्स, मुख्य कार्यालय चिराई घर पेट्रोल पंप के पास गोपालगंज, उपशाखा NH27 काली स्थान बंजारी गोपालगंज।
5: बोलबम हर हर महादेव।
6: क्या हुआ? अरे ये तेरा रोज रोज का पेट दर्द।
7: अरे तो उसे डांटती क्यों हो, उसे जल्दी से ले जाओ डॉक्टर सुनील कुमार रंजन के पास।
8: यहाँ पर हर्निया, अपेंडिस, वंध्याकरण, प्रोस्टेट, पीत की थैली, किडनी की पथरी, पेशाब की नली एवं पेशाब की थैली की पथरी तथा गोला का ऑपरेशन दूरबीन विधि से, साथ ही लेजर एवं स्टेपलर विधि के द्वारा बिना चीड़ा और बिना दर्द के बवासीर, भगंदर और नासूर का ऑपरेशन सस्ते दर पर किया जाता है।
9: ध्यान दें, हमारे यहाँ आयुष्मान भारत योजना के तहत ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
8: आज ही आए जेबी हॉस्पिटल एवं स्टोन क्लिनिक थावे रोड गोपालगंज।
6: अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 91-626-64-498 पे।
10: कूल्हा एवं घुटना प्रत्यारोपण, आर्थ्रोस्कोपिक या दूरबीन विधि से घुटने के टूटे लिगामेंट की सर्जरी, एलिजारोव रशियन विधि से हाथ पैर की लंबाई बढ़ाना, स्पाइन सर्जरी और हड्डी जोड़ की सभी समस्याओं का समाधान।
11: मिले वरिष्ठ सर्जन डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से, संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एवं सर्जिकल सेंटर, रुस्तमपुर ढाला गोरखपुर।
10: आज ही संपर्क करें 7388889470 या 9198886973।

90.4 रेडियो रिमझिम सुन रहा आप सभी और कार्यक्रम है योर वॉइस योर चॉइस का। और यहाँ कई सारे मैसेज पहुँचे हुए और सबका कहना है कि मेरा गाना मेरा गाना। और यहाँ मैसेज है लिख रहे हैं कि आपकी डर सही है, इसलिए मेरी सलाह रखिए कि जब भी घर से निकलिए छाता साथ रखिए, बारिश हो तो ठीक नहीं तो धूप से बचने में काम आएगा। और हाँ बिजली गिरे तो गिरने की संभावना लगे तो घर के अंदर छिप जाइए। नाइस सॉन्ग। और आप मुझे ये बताइए कि अगर हम बाहर जा रहे हैं बाइक से हो या फिर तो फिर हम कैसे छाता लें, इसका भी सलाह दीजिए। और उस टाइम बारिश है तो क्या करें। और रेडियो फैन पंकज जी हैं आगे, यहाँ मैसेज है लिख रहे हैं कि बरसात आएगी तो जहाँ है वहीं छुप जाना है। वैसे सदाना से हाजरा जी की काफ़ी खूबसूरत फरमाइश, बहुत ही मस्त सॉन्ग था। और उनके गाँव में हम एक बार गए हैं बारात में और बहुत ही अच्छा गांव है उनका। गाने का गन्ने का खेती ज़्यादा हुआ था वहाँ, लोकेशन भी मस्त है। तो किसी के खेत से गन्ना तोड़े थे कि नहीं ज़रूर बताइएगा अनिल जी। और आगे यहाँ मैसेज है कि हाय मैम हम भी जुड़ गए हैं और बहुत बहुत धन्यवाद आपका शो में जुड़ी एक बार फिर से। और ज्योति जी हैं, यहाँ एक और मैसेज पहुँचा हुआ है और लिख रहे हैं कि क्या बात है भाई, मैसेज शामिल करने से पहले ही डिलीट हो गया और दिखते देखते ही। और यहाँ मैसेज है लिख रहे हैं कि दिल से जो निकले वो आवाज़ है आप, हर दिन लिसनर के चेहरे की मुस्कान है आप। यूँ तो चलते हैं रेडियो पर फरमाइश शो, यहाँ पर जो सबका ख्याल रखते हैं सोनी मैम वो है आप। और बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आज के लिए काफ़ी तारीफ हो गई है। और यहाँ मैसेज है लिख रहे हैं कि हेलो जी, और गाने की फरमाइश है तो बिल्कुल चलिए अगली फरमाइश आपका प्ले करेंगे, इन्जॉय करिए। फिलहाल यहाँ एक और गाने की फरमाइश पहुँची हुई है पवन सिंह की आवाज़ में संग्रामपुर से, तो थोड़ा वेट करिए और अगली फरमाइश हम प्ले करने जा रहे हैं। यहाँ हमारे पास पहुँचा हुआ है पिया जी की मुस्की और गाने की फरमाइश करने वाले हैं मिस्टर कुमार जी मोतिहारी जिला से। इन्जॉय करिए अपने गाने को, रेडियो रिमझिम 90.4 FM पर प्ले कर दिया आपके गाने को।

94.4 रेडियो रंजन सुन रहे हैं आप सभी और कार्यक्रम है योर वॉइस योर चॉइस का और अभी गाना सुन रहे हैं पिया जी का मुस्की लागेला अभी जो रे सखी और मिशर कुमार जी है मोतिहारी जिला से और लिख रहे हैं कि सुन रहे हैं मैम और आगे यहाँ मैसेज है लिख रहे हैं कि 10 दिन से रेडियो रंजन का ट्रेंडिंग सॉन्ग बना हुआ है पिया जी के मुस्की एक बार फिर से सुनकर बहुत ही अच्छा लगा जी हाँ बिल्कुल और हर रोज किसी ना किसी की फरमाइश आ जा रही है और अनिल जी है छोटपुर से एक और यहाँ मैसेज है लिख रहे हैं कि गजब पिया जी के मुस्की धमाल मचा दिए गाने को और धनीश मिश्रा जी है दिल्ली से और यहाँ एक और मैसेज लिख रहे हैं कि मेरा गाना कब बजेगा जी आपका भी बजेगा और राजू जी हैं लकड़ी दरगाह से बहुत बहुत स्वागत है आपका और नेक्स्ट गाना आपका रहेगा फिलहाल सुनते रहिए रेडियो रंजन को और यहाँ मैसेज है कि मेरा भी गाना सुनवा दीजिए और हम आपका गाना जो है प्ले किए थे शुक्रवार को अभी आपका एक सप्ताह नहीं हुआ है और शाहबुद्दीन अंसारी जी है फरीदाबाद से जैसे ही होता है हम आपके गाने की फरमाइश जो है प्ले करेंगे और यहाँ अगला फरमाइश हमारे पास है पवन सिंह की आवाज़ में तो एंजॉय करिए अपने गाने को हरिंदर जी रेडियो रिमझिम 90.4 FM पे आपके गाने की फरमाइश जो है प्ले कर दिए हैं

और हम आपको बता दें कि आपका गाना जो है बोलबम का गाना है, और मैं इस शो में ये सारे गाने की फरमाइश जो है प्ले करना बंद कर दिया है। इसमें सिर्फ आप नॉर्मल गाने की फरमाइश कर सकते हैं, हिंदी भोजपुरी कोई भी। तो चलिए बिना देरी अगली फरमाइश प्ले कर रहे हैं, और पवन सिंह की आवाज़ में अगली गाने की फरमाइश पहुँचा हुआ है और संग्रामपुर से मिथिलेश जी हैं। तो इंजॉय करिए अपने गाने को पवन सिंह की आवाज़ में, गोरिया चाल तो हर मतवाली।

मैसेज है, लिख रहे हैं कि नाइस वॉइस है, प्रिया जी की मुस्की अच्छा लगा गाना सुनकर, और मैसेज के साथ है कपिल विश्वकर्मा जी कोटा राजस्थान से, बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और यहाँ मैसेज है गणेश कुमार जी हैं, लिख रहे हैं सुपर सॉन्ग, बहुत बहुत स्वागत है, एक बार फिर से आपका, एंजॉय करिए।

और यहाँ रेडियो फैन पंकज जी है लिखे कि हो गर्दा जी हाँ बिल्कुल, और बैक टू बैक भोजपुरी गाना और काफी खूबसूरत गाना की फरमाइश, और तो गर्दा होगा ही, फिलहाल इंजॉय करिए।

बहुत ही अच्छा लगा गाना, और इसके लिए नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद गाना प्ले करने के लिए। और बिना देरी अगली फरमाइश की तरफ रुख करेंगे, और अगली फरमाइश यहाँ पहुँचा हुआ है, और छमक छलो गाने की फरमाइश है, तो चलिए प्ले कर दिया, आपके गाने को एंजॉय करिए। और राजू जी हैं जुड़े हुए हैं, लकड़ी दरगाह से, तो बिल्कुल आपका गाना जो है प्ले कर दिए हैं, एंजॉय करिए रेडियो रूम से 90.4 FM पर।

रेहान मैसेज है, लिख रहे हैं कि सोनी मैम हमरा तब अपन भोजपुरी से मिठाई ना भोजपुरी से अपन मिठाई ना कोनो मीठ लगेला, रसगुल्ला से भी मीठ अपन भोजपुरी बजी है। बिल्कुल सही बात बटे, भोजपुरी ऐसा तो कोनो चीजें नहीं के, और हर मिठाई से मीठा बाटे भोजपुरी भाषा। और यह मैसेज बटे लिखा था नहीं, पंकज जी के नंबर पर कॉल नहीं लग रहा है तो उनका कोई दूसरा नंबर पूछिए ना। और पंकज जी आपका अगर कोई दूसरा नंबर है, अगर किसी को आपसे बात करनी हो तो उसके लिए कोई कॉन्टेक्ट नंबर है तो आप बता सकते हैं, यहाँ पूछा जा रहा है आपसे।

0: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरो सर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
1: अब आपको कॉस्मेटिक के लिए और परेशान होने की जरूरत नहीं, क्योंकि अब गोपालगंज में खुल गया है श्रृंगार वाटिका, जहां मिलते हैं डिजाइनर और ब्रांडेड प्रोडक्ट्स जैसे लैक्मे, शुगर, नायका, कलाबा जैसी ढेर सारी कंपनियां। साथ ही साथ डिजाइनर पर्स, होम डेकोरेशन, टॉयज एंड गिफ्ट्स, ब्राइडल ज्वेलरी और चूड़ियों की नए कलेक्शंस। और तो और वहां इम्पोर्टेड परफ्यूम्स भी मिलते हैं। यहां हर शॉपिंग पे गिफ्ट्स और 5-25% तक का डिस्काउंट भी मिल रहा है। एक सामान लेना हो या शादी की शॉपिंग करनी हो, इससे अच्छी जगह कोई नहीं, श्रृंगार वाटिका।
2: आज ही आए चंद्रगोखुल रोड नियर पंजाब नेशनल बैंक गोपालगंज, या कॉल करें 8604348652 पे।
3: अगर आपको हो रहा है घुटने, हड्डी या रीढ़ की हड्डी का दर्द या महिलाओं से जुड़ी समस्या, तो याद रखिए गोपालगंज जिले में सबसे भरोसेमंद नाम स्टार एडवांस ऑर्थो एंड मेटर्निटी सेंटर, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
4: यहाँ है डॉक्टर इमरान हुसैन खान, कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक एवं जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन, MBBS, MS, एक्स रेसिडेंट, KGMU, लखनऊ।
3: और महिलाओं के लिए डॉक्टर सूफिया शादाब, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, MBBS, MS, ऑब्स एंड गायनेकोलॉजी।
4: साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
3: ध्यान दे, हर शुक्रवार को है फ्री OPD, तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें।
4: पता, कमला राय कॉलेज रोड नियर रालसन होटल, गोपालगंज।
3: संपर्क करें 9006978856 या 6203139564।

90.4 रेडियो रिमझिम सुन रहे आप सभी और कार्यक्रम है योर वॉइस योर चॉइस का और काफ़ी सारे मैसेज है और यहाँ मैसेज है लिख रहे हैं कि धमाल मच गया आज तो और दिल गदगद हो गए। गुड इवनिंग मैम, बाय बाय, फिर कल मिलेंगे आपसे और योर वॉइस योर चॉइस में उमा शंकर मिश्रा जी है दिल्ली से। जी हाँ बिल्कुल कल मिलेंगे। और आगे यहाँ मैसेज है लिख रहे हैं कि सोनी मैम आपको पता है कि आपकी आवाज़ के सारे बिल्कुल एचएमसी में आएंगे, ऐसा कोई बात नहीं है। और अभी भारती जी कर रही हैं, फिर एचएमसी में आएंगे तो शो के लिए देर हो जाता है, इसके लिए एचएमसी में नहीं आ रहे हैं। यहाँ मैसेज है लिख रहे हैं थैंक यू गाना बजाने के लिए और बहुत बहुत धन्यवाद मैसेज के साथ है, नाम है इनका राजू जी। और आगे यहाँ और भी मैसेज है लिख रहे हैं कि जाई मत बजाई हमारा गाना, तो महाराज राहुल गाना हम प्ले कर देती है लेकिन अभी एक सप्ताह नहीं के भाई। और यहाँ मंजीत कुमार जुड़े हुए हैं सुपौली से और बना के क्यों बिगाड़ा गाने की फरमाइश के साथ है, बहुत बहुत स्वागत है आपका और गाने की फरमाइश है तो आपकी गाने की फरमाइश प्ले कर रहे हैं। एंजॉय करिए अपने गाने को रेडियो रिमझिम 90.4 FM पर।

0: 90.4 रेडियो रंजन सर आप सभी और कार्यक्रम है योर वॉइस योर चॉइस का। और अभी गाना सुन रहे थे, मंजीत जी की फरमाइश थी और इनकी तरफ से मैसेज पहुंच गया। लिख रहे हैं कि गाना बजाने के लिए थैंक यू सो मच। और आगे हम मैसेज है, लिख रहे हैं कि मस्त जकास गाना बा और बना कर क्यों बिगाड़ा ऊपर वाले। और मैसेज के साथ है नाम है इनका। मनीष पांडे जी एंजॉय करिए। और आगे हाँ और भी मैसेज पहुंचे हुए हैं और मैसेज है, लिख रहे हैं कि मैसेज ये इमोजी लगाए थे अलर्ट के लिए और मुझे एक बात समझ नहीं आई कि आज मैंने जो इमोजी लगाया वो अलर्ट के लिए लगाया था कि आप देखेंगे और तुरंत रिप्लाई आ जाएगा। मैम इससे नाराज नहीं वाली कोई बात नहीं है, तो मैं आपको बता दूं कि मुझे इमोजी के बारे में उतना नॉलेज नहीं है और बस एक इमोजी जानते हैं कि जो हंसने वाला है, एक मुस्कुराने वाला है और एक ठेंगा दिखा दो, बस यही जो मेन है वही पता है, बाकी और इमोजी की जानकारी नहीं है मुझे। और यहाँ मैसेज करने वाले हैं सोनू जी सऊदी अरब से, लिख रहे हैं कि हर रोज़ उनसे पाने की दुआ करेंगे, हर रोज़ उसे पाने की दुआ करेंगे और एक दिन उसे भूलने के भी फ़र्क सिर्फ इतना होगा कि पहली दुआ कबूल नहीं होगी और दूसरी कभी पूरी नहीं होगी। और अभी सूरज नहीं डूबा, जरा सी शाम तो होने दो, मैं खुद ही लौट आऊँगा, मुझे नाकाम तो होने दो, मुझे बदनाम करने का बहाना ढूंढते हो क्यों, मैं खुद हो जाऊँगा बदनाम, पहले नाम तो होने दो। और क्या बात है, मैसेज के साथ सऊदी अरब से सोनू जी बहुत बहुत धन्यवाद। और यहाँ मैसेज है और किस बात पे ही हो रही है बताइएगा मुझे ज़रूर। और इस मैसेज के साथ है नाम है इनका कपिल विश्वकर्मा जी कोटा राजस्थान से, तो अपने ही का जवाब दीजिएगा। और यहाँ अभी अभी मैसेज पहुँचा हुआ है, उपेंद्र शर्मा जी जुड़े हुए हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और यहाँ अगली फरमाइश जो हमारे पास पहुँचा हुआ है, गाने की फरमाइश करने वाले हैं संतोष कुमार पटेल जी, लेकिन यहाँ कॉल पहुंचा हुआ है तो चलिए पहले बात करते हैं कौन है कहाँ से। हेलो
1: हेलो,
0: बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमजी में। वालेकुम अस्सलाम, नाम बता दीजिए।
1: रेशमा पठान पटेल
0: जी, कैसी हैं रेशमा जी?
1: ठीक हूँ, आपने बताइए।
0: मैं भी बढ़िया हूँ, क्या हो रहा था अभी?
1: उसी टाइम से कॉल लगा रहे था, उठा ही नहीं रही थी कॉल।
0: मैं क्या करूं, गाने के टाइम में कॉल आ रहा था, मैं भी सोच रही थी कि गाने खत्म होने के टाइम में कॉल आया तो मैं रिसीव करूं।
1: मैं देखिएगा कॉल लगाते हैं, जब आप मैसेज पढ़ती है तब हम लगाते हैं।
0: हाँ तो लगाती तो है लेकिन कट जाता है ना कॉल रिसीव करते टाइम, क्या करें। मैं भी
1: हम तो कहें खाली मैंने मैसेज वाले का फेल है, कॉल अलग नहीं है।
0: नहीं नहीं ऐसा बिल्कुल नहीं सोचिए, ये गलत बात है, कॉल वालों का भी वैल्यू है। मुझे समझ में आता है कि आप लोग कितने परेशान होते हैं, ठीक है, मुझे ये पता है क्योंकि एक समय पे हम भी आपके जगह पे थे।
1: अभी आप ठीक है ना?
0: जी हाँ बिल्कुल बढ़िया है। तो गाना कौन सा सुनिएगा बता दीजिए।
1: गाना सुनवा दीजिए, नीम कलमा से गाना नहीं है, ये दुनिया में प्यार के जैसा हम ही कहले गुनाह बने, यही वाला सुनवा दीजिए।
0: तो सच में ही गुनाह अकेले बने का
1: जान समझ ली।
0: अच्छा चलिए ठीक बा, तो गाना प्ले कर दे लेवानी।
1: ठीक बा, थोड़ा गुनगुना दे रो।
0: जी बिल्कुल।

कई सारे मैसेज हैं, लिखते हैं बाय बाय, और कुछ लोगों का मैसेज है कि मेरा गाना तो नहीं प्ले हुआ। और यहाँ मुझे इमोजी के बारे में नॉलेज भी दी जा रही है कई सारे लिसनर की तरफ से। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। और आज ही मत सिखाइए, डेली एक एक इमोजी के बारे में बताइएगा तो याद रहेगा। और यहाँ मैसेज पहुँच गया, लिख रहे हैं बाय बाय अनिश जी है। एक और यहाँ मैसेज अभी अभी दस्तक दिए हैं, और शो की समाप्ति का समय है। बहुत बहुत स्वागत है आपका और बाय बाय, फिर मिलेंगे कल इसी शो में। और यहाँ मैसेज है, लिख रहे हैं कि दुआओं पे हमारे एतबार रखना, दिल में अपना ना कोई सवाल रखना, देना चाहते हो अगर खुशियाँ हमें, बस आप खुश रहना और अपना ख्याल रखना। जी हाँ बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आपका अनिल जी, और फिर मिलेंगे आप सभी से। और यहाँ मैसेज है, लिख रहे हैं मैम आपको इतनी इमोजी पता है, ऐसा ही कई लोगों के साथ होता है, यही रियलिटी है। जी हाँ बिल्कुल।

और यहाँ मैसेज लिख रहे हैं कि चाह से मत खुदा खुदा गुनाह बड़ा नहीं खेला तो अच्छा। और बाय बाय, फिर मिलते हैं आप सभी से। और यहाँ मैसेज कई सारे हैं और माफ करिएगा जिनकी भी फरमाइश प्ले नहीं हुई। और इसी गाने के साथ आप सभी दीजिए आज की सोच से मुझे जाने की इजाजत। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए और सुनते रहिए रेडियो रिमझिम 90.4 FM को, जो कि कहता है सुनो दिल से। नमस्कार।

0: अरे माँ, ये दांत का दर्द तो जान ले लेगा, क्या करूँ?
1: अब चिंता छोड़िए, गोपालगंज में है महावीर डेंटल एंड मैक्सिलोफेशियल ट्रॉमा केयर, मल्टी स्पेशलिटी डेंटल और फेस क्लिनिक, जहाँ दांत, जबड़े और चेहरे से जुड़ी हर समस्या का आधुनिक इलाज उपलब्ध है।
2: यहाँ सेवा दे रहे हैं गोपालगंज के फर्स्ट MDS डॉक्टर पल्लव राज, वरिष्ठ जबड़ा एवं फेस सर्जन और कैंसर रोग विशेषज्ञ, साथ में डॉक्टर अभिलाषा अग्रवाल, दंत एवं मुख रोग विशेषज्ञ और कॉस्मेटिक डेंटल सर्जन।
1: यहाँ टेढ़े मेढ़े दांत, रूट कैनाल, चेहरे और मुंह से जुड़ी सभी समस्याओं का विशेषज्ञ इलाज किया जाता है।
2: ध्यान दे, आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए टूटे हुए जबड़े और मुंह का कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का मुफ्त इलाज उपलब्ध है।
1: पता, शनिवार और रविवार महावीर मेडिकल हॉल, अम्बेडकर चौक, हॉस्पिटल रोड, गोपालगंज। अन्य दिन केडिया मैक्सिलोफेशियल एंड कॉस्मेटिक केयर, मुंशी प्रेमचंद पार्क के पास, बेतिया हाता, गोरखपुर।
2: हर दिन दोनों क्लिनिक पर डॉक्टर पल्लव राज और उनकी विशेषज्ञ टीम द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है।
1: संपर्क करें 84710309 या 9765655750।
3: ये सफेद दाग बढ़ता ही जा रहा है, लोगों की नजरें, बातें, सब कुछ बदल गया है। अरे क्यों घबराती हो, गोपालगंज में एक जगह है जहां लोग सिर्फ हिम्मत ही नहीं, उम्मीद भी लेकर लौटते हैं।
1: हाँ, अब सफेद दाग का समाधान है। चरक सफेद दाग स्पेशलिस्ट डॉक्टर इरशाद अहमद द्वारा एडवांस्ड एक्यूपंक्चर मशीन टेक्निक से
3: सिर्फ 1 से 2 सप्ताह में रोग में राहत महसूस करें।
4: अब बेटा, बहू घर आने वाली है, सोच रही हूँ कुछ सोने की नई ज्वेलरी ले ली जाए, पर भरोसे की दुकान।
5: माँ अब घबराइए नहीं, चलते हैं मास्टर साहब की जेवर की दुकान, गुप्ता ज्वेलर्स, BIS अप्रूव्ड, शानदार डिजाइन और असली ज्वेलरी की गारंटी।
3: अपने सपनों की खूबसूरती के लिए गुप्ता ज्वेलर्स ही चुने, सिल्वर, गोल्ड या डायमंड, हर ज्वेलरी BIS अप्रूव्ड और किफायती दाम के साथ। विश्वास की परंपरा, नई डिजाइन का खजाना, बस गुप्ता ज्वेलर्स में।
1: आज ही आए गुप्ता ज्वेलर्स, मास्टर साहब की जेवर की दुकान, चंद्र गोखो लोड, गोपालगंज। मोबाइल नंबर 94-309-45-651 या 97-0-97-06-575।
6: आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, सुनो दिल से।

0: अवस्था होला।
1: वह अवस्था में दो चार कदम ठीक से चलल भी मुश्किल हो जाला। आंख से कुछ दिखाई ना देला, कान से ठीक से ना सुनाला, मुंह के दांत टूट जाला। ई अवस्था से हर आदमी के गुजरे के पड़ेला।

0: नमः शिवाय।
1: सावन के पावन अवसर पर बाबा भोलेनाथ के दर्शन का सुनहरा अवसर लेकर आया है दीपक राज टूर एंड ट्रेवल्स गोपालगंज।
0: श्रद्धालुओं के लिए विशेष तीर्थ यात्रा एवं कांवर यात्रा की व्यवस्था। पहला रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, राजगीर होते हुए पुनः वापसी।
1: दूसरा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, तारापीठ, जगन्नाथपुरी, गंगा सागर, काली घाट, कोलकाता, रजरप्पा, राजगीर होते हुए वापस गोपालगंज।
0: तीसरा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, गया, बोधगया, वाराणसी, अयोध्या, गोरखनाथ मंदिर होते हुए वापस गोपालगंज।
1: चौथा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, गुवाहाटी, माँ कामाख्या धाम, दार्जिलिंग, सिलीगुड़ी, गंगटोक, जनकपुर, अरेराज होते हुए वापस गोपालगंज।
0: गोपालगंज जिले के श्रद्धालु अब घर बैठे अपनी तीर्थ यात्रा के लिए वाहन बुक करा सकते हैं।
1: बिचौलियों से बचे और सीधे हमारे कार्यालय या बुकिंग नंबर पर संपर्क करें।
0: बुकिंग नंबर 9155548507 या 9162933538।
1: हेल्पलाइन नंबर 9934498845।
0: दीपक राज टूर एंड ट्रेवल्स, मुख्य कार्यालय चिराई घर पेट्रोल पंप के पास गोपालगंज, उप शाखा NH 27 काली स्थान बंजारी गोपालगंज।
1: बोलबम हर हर महादेव। नई बाइक का सपना अब होगा पूरा, वो भी सबसे कम दाम में।
0: इस सीजन अपने घर लाइए हीरो की नई चमचमाती बाइक या स्कूटर श्री गोपाल मोटर्स से, वो भी ऑन रोड रेट पर।
1: श्री गोपाल मोटर्स गोपालगंज में पाए स्प्लेंडर प्लस सिर्फ 86,168 रुपए में, HF डिलक्स सिर्फ 75,405 रुपए में, ग्लैमर एक्स सिर्फ 97,456 रुपए में, एक्सट्रीम 125R सिर्फ 110,881 रुपए में, इंश्योरेंस और रजिस्ट्रेशन के साथ।
0: विजिट कीजिए श्री गोपाल मोटर्स, NH 27 बंजारी, चैन पट्टी, गोपालगंज,
1: या अभी कॉल कीजिए 9289-22567 या 9779-14-86164।
2: आपका संदेश मिला कार्यक्रम में आप अपना विचार, सुझाव, शिकायत हमारे व्हाट्सएप नंबर 9857788291 या ईमेल आईडी radiorimjhim@gmail.com या पत्र के माध्यम से हमें जरूर दें। आप हमें कॉल करके भी अपने विचारों को बता सकते हैं। नंबर है 9857788291 या 9522874088 पर। आपका सुझाव रेडियो रिमझिम परिवार के लिए मार्गदर्शन का काम करता है, तो आप इस कार्यक्रम को रविवार शाम 7:45 से तथा सोमवार सुबह 7:10 से अवश्य सुने।
3: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
4: कूल्हा एवं घुटना प्रत्यारोपण, आर्थ्रोस्कोपिक या दूरबीन विधि से घुटने के टूटे लिगामेंट की सर्जरी, एलिजारोव रशियन विधि से हाथ पैर की लंबाई बढ़ाना, स्पाइन सर्जरी और हड्डी जोड़ की सभी समस्याओं का समाधान।
5: मिले वरिष्ठ सर्जन डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से, संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एवं सर्जिकल सेंटर, रुस्तमपुर ढाला, गोरखपुर।
4: आज ही संपर्क करें 7388894703 या 9198886973।
6: आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM। सुनो दिल से। All right.

0: अगर आपको हो रहा है घुटने, हड्डी या रीढ़ की हड्डी का दर्द या महिलाओं से जुड़ी समस्या, तो याद रखिए गोपालगंज जिले में सबसे भरोसेमंद नाम स्टार एडवांस ऑर्थो एंड मेटर्निटी सेंटर, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
1: यहाँ है डॉक्टर इमरान हुसैन खान, कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक एवं जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन, MBBS, MS, एक्स रेसिडेंट KGMU, लखनऊ।
0: और महिलाओं के लिए डॉक्टर सूफिया शादाब, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, MBBS, MS, ऑब्स एंड गायनेकोलॉजी।
1: साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
0: ध्यान दे, हर शुक्रवार को है फ्री OPD, तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें।
1: पता: कमला राय कॉलेज रोड, नियर रालसन होटल, गोपालगंज।

0: दोपहर 2 बजे तक।
1: पता जंगलिया मोहल्ला नूर मेडिकल के पास गोपालगंज। कॉल करे 94512-11001। गोपालगंज अब आपकी राइड होगी और भी स्टाइलिश और पहले से ज्यादा पावरफुल,
0: क्योंकि आ चुकी है हीरो ग्लैमर एक्स और एक्सट्रीम 125R। अब उपलब्ध है नारायणी हीरो गोपालगंज में।
1: ग्लैमर एक्स, दमदार माइलेज, शानदार लुक और भरोसेमंद परफॉर्मेंस, ताकि हर दिन बने खास और सफर रहे बेफिक्र।
0: और एक्सट्रीम 125R स्पोर्टी डिजाइन, दमदार पावर और एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ हर राइड बने और एक्साइटिंग।
1: तो फिर देर किस बात की, आज ही विजिट करें नारायणी हीरो, कमलाराय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
0: शानदार ऑफर्स और आसान फाइनेंस सुविधा के साथ
1: नारायणी हीरो, भरोसे का नाम हर राइड के साथ।
0: कॉल नाउ 9656-59536 या 9656-57902।
2: आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM। सुनो दिल से।
3: All right.

0: अब बेटा बहू घर आने वाली है, सोच रही हूँ कुछ सोने की नई ज्वेलरी ले ली जाए, पर भरोसे की दुकान।
1: माँ अब घबराइए नहीं, चलते हैं मास्टर साहब की जेवर की दुकान, गुप्ता ज्वेलर्स, BIS अप्रूव्ड, शानदार डिजाइन और असली ज्वेलरी की गारंटी।
2: अपने सपनों की

0: खूबसूरती के लिए गुप्ता ज्वेलर्स ही चुने। सिल्वर, गोल्ड या डायमंड, हर ज्वेलरी BIS अप्रूव्ड और किफायती दाम के साथ। विश्वास की परंपरा, नई डिजाइन का खजाना, बस गुप्ता ज्वेलर्स में।
1: आज ही आए गुप्ता ज्वेलर्स, मास्टर साहब की जेवर की दुकान, चंद्रगोखो लोड गोपालगंज। मोबाइल नंबर 94-309-45-651 या 97-097-06-575।
2: ठक ठक।
3: काजी, आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
4: अच्छा, मिला ही नहीं
3: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें। अब चलिए सीधे कमल श्री में।
4: जी हाँ, कमल श्री। याद रखिए, सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
3: आप भी आए कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, बारी मार्केट, गोपालगंज।
4: याद रहे, सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ, सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है।
5: सोहन, मैं बहुत परेशान हूँ। मुझे तुरंत अपने भाई को कुछ पैसे भेजने हैं, लेकिन बैंक में तो इतनी लंबी लाइन है कि घंटों लग जाएंगे, और मेरा जियो सिम भी एक्टिवेट नहीं हो रहा। अब मैं क्या करूँ?
6: अरे टीना, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। चलो मेरे साथ माया क्लासिकल में आधार और बैंक से आसानी से पैसे निकाला जाता है और किसी भी खाते में तुरंत भेजा जा सकता है बिना किसी झंझट के। और सिम की बात कर रही हो ना, BSNL, जियो, एयरटेल, VI, जो भी चाहिए तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा।
5: मुझे कुछ जरूरी PDF प्रिंट करवाने हैं, वहाँ ये सब हो जाएगा ना?
6: बिल्कुल, माया क्लासिकल में PDF, लेमिनेशन, प्रिंट, फोटो कॉपी सब कुछ मिलेगा। तुम्हें एक धमाकेदार ऑफर भी बताता हूँ, फोटो स्टेट सिर्फ ₹1 प्रति प्रिंट आउट, कम से कम 50 पेज। हर ग्राहक को शानदार गिफ्ट भी मिलता है। माया क्लासिकल में सब कुछ है। माया क्लासिकल, सिनेमा रोड, शिव मंदिर के ठीक सामने, गोपालगंज। प्रोपराइटर सोनू जी। संपर्क करें 99-399-66-999।
7: के तरंग 90.4 पर आप जिले की आवाज रेडियो रिमझिम को सुन रहे हैं।

0: सुनिए जी, पेट में दर्द कई दिनों से ठीक ही नहीं हो रहा।
1: तो फिर देर क्यों? चलो अभी चलते हैं साई कृपा क्लिनिक में, जहां मौजूद हैं अनुभवी डॉक्टर डॉक्टर स्वाति के गुप्ता MBBS, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, पूर्व वरीय चिकित्सक पारस हॉस्पिटल चंडीगढ़, और डॉक्टर PK गुप्ता MBBS, BMC जनरल फिजिशियन एवं सर्जन SVBPN न्यू दिल्ली।
0: यहां नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन, हर्निया, अपेंडिक्स, पित्त की थैली, बवासीर, भगंदर आदि ऑपरेशन की सुविधा और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
2: यहां सभी प्रकार का ऑपरेशन बिना टाका का आधुनिक विधि द्वारा किया जाता है। साई कृपा क्लिनिक, थावे रोड बस स्टैंड के सामने, गोपालगंज।
0: संपर्क करें 9939365923।
3: इतना परेशान क्यों दिख रही हो मेघा?
4: आसपास हर जगह चाचा जी का इलाज करा लिया, अब लगता है उन्हें दिल्ली लेकर ही जाना पड़ेगा।
3: अरे अपने गोपालगंज में गोरखपुर, पटना और दिल्ली जैसे बेहतर मेडिकल सुविधाओं के साथ खुल गया है एम्स के पूर्व चिकित्सक डॉक्टर अभिषेक रंजन जी के देखरेख में जिले का पहला वेंटिलेटर युक्त सक्षम हॉस्पिटल, जहां पर 24 घंटे ICU इमरजेंसी सेवा, एक्सपर्ट मेडिकल टीम द्वारा विभिन्न रोग जैसे हृदय रोग, शुगर, दमा, नस रोग, लकवा और पेट से जुड़ी गंभीर बीमारियों का अत्याधुनिक मशीनों के द्वारा सफलतापूर्वक इलाज किया जा रहा है।
4: आज विजिट करें सक्षम हॉस्पिटल, कमला राय कॉलेज रोड, इंडियन गैस एजेंसी के बगल में, गांधी टेक्निकल कॉलेज के सामने, डॉक्टर कॉलोनी, गोपालगंज। कॉल करें 7050061444 या 7870331444।
5: कूल्हा एवं घुटना प्रत्यारोपण, आर्थ्रोस्कोपिक या दूरबीन विधि से घुटने के टूटे लिगामेंट की सर्जरी, एलिजारोव रशियन विधि से हाथ पैर की लंबाई बढ़ाना, स्पाइन सर्जरी और हड्डी जोड़ की सभी समस्याओं का समाधान।
6: वरिष्ठ सर्जन डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से, संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एवं सर्जिकल सेंटर, रुस्तमपुर ढाला, गोरखपुर।
5: आज ही संपर्क करें 7388894703 या 9198886973।
7: ध्वनि के तरंग 90.4 पर आप जिले की आवाज रेडियो रिमझिम को सुन रहे हैं।

0: अगर आपका फर्नीचर डोलता है और बोलता है तो एक्सचेंज तो मांगता है।
1: संतोष फर्नीचर लेकर आ गए हैं ग्रेट एक्सचेंज ऑफर।
2: ग्रेट एक्सचेंज ऑफर, अपने घर के पुराने सोफा और डाइनिंग को ले आएं और नए सोफा तथा डाइनिंग को ले जाएं और बनाएं अपने घर को सुंदर तथा आकर्षक।
1: आज ही विजिट करें संतोष फर्नीचर, चिराईगर पेट्रोल पंप के सामने, कॉलेज रोड, गोपालगंज। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 82 101 87 952। नियम और शर्तें लागू।
3: जिले का गौरव संतोष मेडिकल हॉल, घोसमोड़, दरगाह रोड, गोपालगंज।
4: गोपालगंज जिले का प्रतिष्ठित अंग्रेजी दवा की दुकान संतोष मेडिकल हॉल।
5: हमारे यहाँ भारत के प्रसिद्ध डॉक्टरों द्वारा लिखी गई सभी प्रकार की अंग्रेजी दवाएं उपलब्ध हैं, जैसे गोरखपुर, पटना, कलकत्ता, लखनऊ, बनारस, चेन्नई और मुंबई के डॉक्टरों द्वारा लिखी गई दवाइयाँ भी मिलती हैं।
6: एक सूचना, संतोष मेडिकल हॉल अब चला गया है कॉलेज रोड चिराई घर के पहले, गोपालगंज। संपर्क सूत्र है 62042434003 62042434003।
7: नई बाइक का सपना अब होगा पूरा, वो भी सबसे कम दाम में।
8: इस सीजन अपने घर लाइए हीरो की नई चमचमाती बाइक या स्कूटर श्री गोपाल मोटर्स से, वो भी ऑन रोड रेट पर।
7: श्री गोपाल मोटर्स, गोपालगंज में पाए स्प्लेंडर प्लस सिर्फ 86,168 रुपए में, HF डिलक्स सिर्फ 75,405 रुपए में, ग्लैमर एक्स सिर्फ 97,456 रुपए में, एक्सट्रीम 125R सिर्फ 110,881 रुपए में, इंश्योरेंस और रजिस्ट्रेशन के साथ।
8: विजिट कीजिए श्री गोपाल मोटर्स, NH 27 बंजारी, चैन पट्टी, गोपालगंज,
7: या अभी कॉल कीजिए 92899225 67 या 97714861 64।
6: आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, सुनो दिल से।

0: अपने जिले के मशहूर डॉक्टर जे शरण एमडी फिजिशियन अब बैठ रहे हैं सुबह 10 बजे से आशा मेडिको जनता सिनेमा रोड गोपालगंज, और डॉक्टर जे शरण जी शाम 5 बजे से 7 बजे तक बैठ रहे हैं अपने निवास स्थान शबनम होटल के पीछे आजाद नगर गोपालगंज।
1: डॉक्टर साहब के यहाँ पर्ची का नंबर मोबाइल से भी लगाया जा सकता है।
2: आशा मेडिको में किसी भी प्रकार की लिखी दवाएं मिलती है, मोबाइल से दवा का ऑर्डर भी किया जा सकता है। मोबाइल नंबर है 7545 67666।
3: आपका संदेश मिला कार्यक्रम में आप अपना विचार, सुझाव, शिकायत हमारे व्हाट्सएप नंबर 98527 88291 या ईमेल आईडी radiorimjhim@gmail.com या पत्र के माध्यम से हमें जरूर दें। आप हमें कॉल करके भी अपने विचारों को बता सकते हैं। नंबर है 98527 88291 या 95238 74088 पर। आपका सुझाव रेडियो रिमझिम परिवार के लिए मार्गदर्शन का काम करता है, तो आप इस कार्यक्रम को रविवार शाम 7:45 से तथा सोमवार सुबह 7:10 से अवश्य सुने।
4: घर बन रहा हो तो सिर्फ ईंट और सीमेंट नहीं, टाइल्स और फिटिंग्स का चुनाव भी होना चाहिए शानदार।
5: इसीलिए गोपालगंज जिले के लोगों की पहली पसंद बन चुका है बीके टाइल्स। बीके टाइल्स, यहाँ मिलेंगे सभी प्रकार के डिजाइनर टाइल्स, मार्बल, ग्रेनाइट, बेसिन, कॉमोड, बाथ फिटिंग्स और घर सजाने के कई आधुनिक प्रोडक्ट,
6: वो भी किफायती दामों पर। और खास बात, गोपालगंज जिले में हमारी 4 सुविधाजनक शाखाएं,
5: अरार मोड़ एसपी कोठी के पास गोपालगंज, दूसरा ब्रांच भटवा मोड़ के पास कुचायको,
6: तीसरा ब्रांच इस्लामिया कॉलेज के पास मेन रोड थावे मीरगंज, और चौथा ब्रांच बंतरिया मोड़ भोरे।
5: और अब सिवान जिले में भी हमारी 2 शाखाएं उपलब्ध हैं, सिवान ब्रांच कुशवाहा चौक हकाम बाईपास सिवान,
6: और मैरवा ब्रांच बबनौली चौक मैरवा सिवान।
5: तो आज ही अपने सबसे नजदीकी बीके टाइल्स ब्रांच पर आए और करे बेहतरीन खरीदारी।
6: अधिक जानकारी के लिए संपर्क करे गोपालगंज ब्रांच में 8460571406, मीरगंज ब्रांच में 9693101611,
5: कुचाई कोट ब्रांच में 9693101602, भोरे ब्रांच में 8207856404,
6: सिवान ब्रांच में 9942071405, मेरवा ब्रांच में 8207856403।
7: आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM। सुनो दिल से। All right.

0: जो लोग डायबिटीज से परेशान हैं, वो डरे नहीं, परहेज करे नहीं। वैद्य एसपी त्यागी जी आयुर्वेदिक दवा द्वारा शुगर यानी डायबिटीज का इलाज कम खर्च में सब कुछ खाते हुए सफलता पूर्वक कर रहे हैं। आप भी दवा खा खा कर इलाज करा कर निराश एवं परेशान हो गए हैं तो एक बार अवश्य मिले वैद्य एसपी त्यागी जी से। डायबिटीज के अलावा और सब बीमारी का इलाज जैसे
1: सभी प्रकार के नशा जैसे शराब, टैबलेट, इंजेक्शन, सिरप, गांजा, स्माइक के इलाज और गठिया, साइटिका, पथरी, कमर दर्द, घुटना दर्द, दमा, मिर्गी, दाद, दिनाए और सभी चर्म रोग एवं लिकोरिया, मासिक खराबी, बवासीर, पेट रोग, शुगर, गैस्ट्रिक, शीघ्र पतन, शुक्राणु में कमी, नपुंसकता, धातु चिंता और चर्म रोग में दाग, दिनाए, खुजली, एक्जिमा, सोरायसिस तथा
0: पथरी इत्यादि सभी रोगों का इलाज वैद्य एसपी त्यागी जी आयुर्वेदिक दवा द्वारा सफलता पूर्वक करते हैं।
2: वैद्य एसपी त्यागी जी से मिलने का पता
0: प्रत्येक शनिवार गोपालगंज बस स्टैंड थावे रोड भी मार्केट के बगल में कृष्णा जी के मकान में।
2: अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 99554493
0: और 9097160602।
3: ओम नमः शिवाय।
4: सावन के पावन अवसर पर बाबा भोलेनाथ के दर्शन का सुनहरा अवसर लेकर आया है दीपक राज टूर एंड ट्रेवल्स गोपालगंज।
3: श्रद्धालुओं के लिए विशेष तीर्थ यात्रा एवं कांवर यात्रा की व्यवस्था। पहला रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, राजगीर होते हुए पुनः वापसी।
4: दूसरा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, तारापीठ, जगन्नाथपुरी, गंगा सागर, काली घाट, कोलकाता, रजरप्पा, राजगीर होते हुए वापस गोपालगंज।
3: तीसरा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, गया, बोधगया, वाराणसी, अयोध्या, गोरखनाथ मंदिर होते हुए वापस गोपालगंज।
4: चौथा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, गुवाहाटी, माँ कामाख्या धाम, दार्जिलिंग, सिलीगुड़ी, गंगटोक, जनकपुर, अरेराज होते हुए वापस गोपालगंज।
3: गोपालगंज जिले के श्रद्धालु अब घर बैठे अपनी तीर्थ यात्रा के लिए वाहन बुक करा सकते हैं।
4: बिचौलियों से बचे और सीधे हमारे कार्यालय या बुकिंग नंबर पर संपर्क करें।
3: बुकिंग नंबर 9155548507 या 9162933538।
4: हेल्पलाइन नंबर 9934498845।
3: दीपक राज टूर एंड ट्रेवल्स, मुख्य कार्यालय चिराई घर पेट्रोल पंप के पास गोपालगंज, उपशाखा NH27 काली स्थान बंजारी गोपालगंज।
4: बोलबम हर हर महादेव।
5: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
6: आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM। सुनो दिल से।

0: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरो सर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
1: तुम आज भी गुमसुम क्यों बैठी हो?
2: क्या बताऊं, 15 साल शादी के हो गए और संतान सुख मिला नहीं। कई जगह इलाज कराया लेकिन कोई फायदा नहीं। अब समझ नहीं आ रहा क्या करूं?
1: अरे मेरे साथ एक बार चलो डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी के पास, जादवपुर में। कई निसंतान माताओं का इलाज उन्होंने सफलता पूर्वक किया है।
2: ध्यान दे, स्त्री रोग, बांझपन, ल्यूकोरिया, दिमाग की कमजोरी, याददाश्त की कमी, पेट रोग, गैस्ट्रिक, लीवर में सूजन, बवासीर, कान रोग, पुराना बुखार, नस रोग, किडनी की पथरी, पीत की थैली में पथरी, पेशाब की थैली में पथरी, गठिया, पुराना जोड़ों का दर्द, साइटिका, चर्म रोग एवं पुराने असाध्य बीमारियों का इलाज आयुर्वेदिक विधि से 30 वर्षों से सफलतापूर्वक किया जा रहा है।
1: आज ही आएं डॉक्टर गोरखपुरी निवास, डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी, जादवपुर मेन रोड, गोपालगंज। संपर्क करें 99 554 97 644।
3: ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। यदि इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने की फरमाइश का रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029494911। जी हाँ, 8029494911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
4: हेलो।
5: हाँ
4: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 FM में।
5: अस्सलाम वालेकुम।
4: वालेकुम अस्सलाम। जी रघुआ, कैसे रघुआ? ठीक बानी नो?
5: हाँ बोले।
4: तो नाम बता दी और कहाँ से है?
5: नाम मोहिउद्दीन अहमद, डुमरिया से बोलते, उसका गाँव डुमरिया।
4: अच्छा।
5: हाँ, और सब सुना?
4: और सब बढ़िया बा। खाना वाना हो गया?
5: हाँ, खाना पीना हो गया। रेडियो बजाओ तेने
4: बैठ के। चलिए बढ़िया बा।
5: हमारी है कार सरकार।
4: तो बता दी कौन गाना सुने के बारे में?
5: गाना सुना दे, मैं कभी कभी न बन जाऊँ तेरे प्यार में कविता, तेरे प्यार ही प्यार।
4: और ये गाना क्योंकि सुनवाए के भी चाहते नहीं?
5: हाँ, गाना तो सबसे पहले
4: जी
5: जिम के जितना होता लोग सब सुने।
4: तो चलिए ठीक बार, और गाना प्ले करते नहीं?
5: हाँ ठीक बा।

0: हेलो
1: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 FM में।
0: जी नमस्ते मैम।
1: नमस्ते
0: विकास कुमार हिंतापुर।
1: ओके, क्या हाल चाल है विकास जी?
0: बढ़िया है जी। भारती?
1: नहीं, भारती नहीं बोल रही हूँ जी, मैं मनोरमा बोल रही हूँ।
0: तो भारती मैम और सोनी मैम कहाँ चली गई?
1: वो लोग भी हेलो, उन लोग का रिकॉर्डिंग नहीं है ना।
0: अच्छा, उन लोग का रिकॉर्डिंग नहीं हो रहा है?
1: मतलब हो रहा है, आज नहीं है ये बोल रहा है।
0: अच्छा, और सब बताइए मैम, क्या हाल चाल है?
1: और सब बढ़िया, आप अपना बताइए, आप कैसे हैं?
0: गोपालगंज में मौसम कैसा हो रहा है?
1: मौसम तो हवा चल रहा है,
0: बारिश वरिश नहीं हो रहा है?
1: नहीं, बारिश नहीं हो रहा है। और उधर
0: दिल्ली में तो इधर तो कल बारिश हो रहा है, कल संडे को। जहाँ धान का फसल लगाना है वहाँ नहीं हो रहा है बारिश। भगवान
1: बता दीजिए कौन सा गाना सुनना आपको?
0: हम तो गाना सुनना है यार, ये वाला गाना नहीं है, तुझे रब ने बनाया इसलिए, ये वाला गाना।
1: अच्छा, और ये गाना किसी को डेडिकेट भी है?
0: सबसे पहले आपको डेडिकेट करना चाहते हैं।
1: अच्छा जी,
0: जितना रेडियो रंजन सुनने वाले हैं श्रोताओं सबको।
1: ओके, तो चलिए आपका गाना प्ले करते हैं, सुनते रहिए सबके साथ रेडियो रंजन 90.4 FM।
0: ठीक है, ओके मैडम, नमस्ते।
1: नमस्ते।

0: अगर आपको हो रहा है घुटने, हड्डी या रीढ़ की हड्डी का दर्द या महिलाओं से जुड़ी समस्या, तो याद रखिए गोपालगंज जिले में सबसे भरोसेमंद नाम स्टार एडवांस ऑर्थो एंड मेटर्निटी सेंटर, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
1: यहाँ है डॉक्टर इमरान हुसैन खान, कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक एवं जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन, MBBS, MS, एक्स रेसिडेंट KGMU, लखनऊ।
0: और महिलाओं के लिए डॉक्टर सूफिया शादाब, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, MBBS, MS, ऑब्स एंड गायनेकोलॉजी।
1: साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
0: ध्यान दे, हर शुक्रवार को है फ्री OPD, तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें।
1: पता, कमला राय कॉलेज रोड, नियर रालसन होटल, गोपालगंज।
0: संपर्क करें 9006978856 या 6203139564।
2: राधा, तुमने अपने चाचा जी के अपेंडिक्स का ऑपरेशन कहाँ कराया था?
3: सम्राट हॉस्पिटल में, वो भी कम से कम खर्च में।
4: क्या आप भी ऑपरेशन कराना चाहते हैं? तो घबराए नहीं, आज ही आए सम्राट हॉस्पिटल, जहाँ है डॉक्टर कुंदन सिंह, MBBS, MS, जनरल एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जन, जो सदर हॉस्पिटल गोपालगंज में भी सेवा देते हैं।
5: हमारे यहाँ दूरबीन विधि से भी ऑपरेशन किया जाता है।
4: आज ही हर तरह के सफल ऑपरेशन के लिए आए सम्राट हॉस्पिटल, जो है कमला राय कॉलेज के पश्चिम RR रोड, गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 9478434068 पे।
2: कान में दर्द के मारे जान ही निकल रही है, कहाँ जाऊँ, किससे इलाज कराऊँ, कुछ समझ नहीं आ रहा।
6: इसमें इतना समझना क्या, आज ही चलो डॉक्टर MD शादाब के पास, जो है ENT स्पेशलिस्ट।
7: जी हाँ, उत्तर भारत के सबसे विश्वसनीय कान नाक एवं गले के विशेषज्ञ डॉक्टर MD शादाब पिछले 10 वर्षों से सिवान में सेवा दे रहे हैं, जो कि 10,000 से भी ज्यादा कान नाक गले के सर्जरी का अनुभव रखते हैं। साथ ही आयुष्मान भारत योजना के तहत स्वास्थ्य कार्ड धारक मरीजों का निःशुल्क में इलाज किया जाता है। तो आज ही पहुंचिए इस्मत ENT केयर सेंटर, सिसवन ढाला के उत्तर RK मॉडल स्कूल के बगल, सिवान में।
8: अरे माँ, ये दांत का दर्द तो जान ले लेगा, क्या करूँ?
1: अब चिंता छोड़िए, गोपालगंज में है महावीर डेंटल एंड मैक्सिलोफेशियल ट्रॉमा केयर, मल्टी स्पेशलिटी डेंटल और फेस क्लिनिक, जहाँ दांत, जबड़े और चेहरे से जुड़ी हर समस्या का आधुनिक इलाज उपलब्ध है।
0: यहाँ सेवा दे रहे हैं गोपालगंज के फर्स्ट MDS डॉक्टर पल्लव राज, वरिष्ठ जबड़ा एवं फेस सर्जन और कैंसर रोग विशेषज्ञ, साथ में डॉक्टर अभिलाषा अग्रवाल, दंत एवं मुख रोग विशेषज्ञ और कॉस्मेटिक डेंटल सर्जन।
1: यहाँ टेढ़े मेढ़े दांत, रूट कैनाल, चेहरे और मुंह से जुड़ी सभी समस्याओं का विशेषज्ञ इलाज किया जाता है।
0: ध्यान दे, आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए टूटे हुए जबड़े और मुंह का कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का मुफ्त इलाज उपलब्ध है।
1: पता, शनिवार और रविवार महावीर मेडिकल हॉल, अम्बेडकर चौक, हॉस्पिटल रोड, गोपालगंज। अन्य दिन केडिया मैक्सिलोफेशियल एंड कॉस्मेटिक केयर, मुंशी प्रेमचंद पार्क के पास, बेतिया हाता, गोरखपुर।
0: हर दिन दोनों क्लिनिक पर डॉक्टर पल्लव राज और उनके विशेषज्ञ टीम द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है।
1: संपर्क करें 8470103992 या 9765665750।
8: ये सफेद दाग बढ़ता ही जा रहा है, लोगों की नजरें, बातें, सब कुछ बदल गया है। अरे क्यों घबराती हो, गोपालगंज में एक जगह है जहां लोग सिर्फ हिम्मत ही नहीं, उम्मीद भी लेकर लौटते हैं।
1: हाँ, अब सफेद दाग का समाधान है, चरक सफेद दाग स्पेशलिस्ट डॉक्टर इरशाद अहमद द्वारा एडवांस्ड एक्यूपंक्चर मशीन टेक्निक से।
0: सिर्फ 1 से 2 सप्ताह में रोग में राहत महसूस करें, आज ही संपर्क करें डॉक्टर इरशाद अहमद, ल्यूको क्लिनिक, हर शनिवार, समय सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक।
1: पता, जंगलिया मोहल्ला, नूर मेडिकल के पास, गोपालगंज। कॉल करें 9452111001।
9: ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। यदि इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने की फरमाइश का रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8009294911। जी हाँ, 8009294911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
10: हेलो
11: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिंजिम 90.4 FM में।
10: मैम नमस्कार।
11: नमस्कार,
10: कैसे हैं मैम?
11: बढ़िया है, आप अपना बताइए, आप कैसे हैं?
10: मैं भी ठीक हूँ मैम। बारिश हो रही है ना मैम गोपालगंज में?
11: नहीं, बारिश तो नहीं हो रही है।
10: इधर तो दो दिनों से लगातार बारिश हो रही है, रोया वारी मौसम यहाँ का बहुत अच्छी कर दिया है।
11: अभी भी हो रही है बारिश?
10: जी जी जी, कल रात से लगातार बारिश हो रही है।
11: बारिश का मौसम है, एंजॉय करिए।
10: हाँ जी, बारिश तो होनी चाहिए, नहीं तो खेती बाड़ी कैसी होगी मैम?
11: जी बिल्कुल जी। वैसे अपना नाम नहीं बताया, नाम बता दीजिए।
10: बुला गया मैम, मैं सुधीर को बोल रहा हूँ, कोरिजम्बा जिला देवघर झारखंड से।
11: अच्छा,
10: आज सुना दीजिए मैम, पुरानी फिल्म है भीगी पलकें फिल्म का गाना, मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर की आवाज में, जिसके बोल हैं जन्म जन्म का साथ है हमारा तुम्हारा। उससे पहले मैं आपको, आपके रेडियो रेंज की टीम को, सोनी जी को और हमारे स्टूडेंट हैं कृष्ण प्रसाद यादव, मदन कौल, पूरन कौल, कमली कौल, जुगल कौल, राजकुमारी, प्रभु कौल, कृष्ण कौल, इन सब सारे साथियों को डेडिकेट करना चाह रहा हूँ।
11: तो चलिए आपका गाना प्ले करते हैं, सुनते रहिए सबके साथ रेडियो रेंज 90.4 FM।
10: थैंक यू मैम,
11: वेलकम।

0: हेलो
1: जी मैम, नमस्कार।
0: नमस्कार जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिंगिंग 90.4 FM में।
1: जी सुनील कुशवाहा बात कर रहा हूँ, मैं मायर MP से।
0: क्या हाल चाल है सुनील जी?
1: बस ठीक है मैम, बस बैठे थे, अभी बारिश निकल गया तो हम सोचे अभी चलो काम करते हैं और काम सोचे थोड़ी देर बाद कर लेंगे, अभी टाइम है तो अभी फोन लगाते, फोन भी लग गया मैम।
0: चलिए बढ़िया, अभी बारिश हो ही रही
1: है मैम। जी जी अभी बारिश तो चालू है मैम। और वहाँ का मौसम का क्या हाल चाल है मैम?
0: यहाँ पे जी हवा चल रहा है।
1: जी मैम, तो आज फरमाइश है फिल्म कायामत है और गाने के बोल है वो लड़की याद आती है, ऐसा गाने का कुछ बोल है मैम और सुनवाएंगे कि मैं रेडियो जिन जिन दो लोग होते सभी दोस्तों के साथ सुनना चाहते हैं मैम।
0: तो चलिए आपका गाना प्ले करते हैं, सुनते रहिए सबके साथ रेडियो रिमझिम 90.4 FM।

0: अरे ये तेरा रोज रोज का पेट दर्द।
1: अरे तो उसे डांटती क्यों हो, उसे जल्दी से ले जाओ डॉक्टर सुनील कुमार रंजन के पास।
2: यहाँ पर हर्निया, अपेंडिस, वंध्याकरण, प्रोस्टेट, पीत की थैली, किडनी की पथरी, पेशाब की नली एवं पेशाब की थैली की पथरी तथा गोला का ऑपरेशन दूरबीन विधि से, साथ ही लेजर एवं स्टेपलर विधि के द्वारा बिना चीड़ा और बिना दर्द के बवासीर, भगंदर और नासूर का ऑपरेशन सस्ते दर पर किया जाता है।
3: ध्यान दें, हमारे यहाँ आयुष्मान भारत योजना के तहत ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
2: आज ही आए जेबी हॉस्पिटल एवं स्टोन क्लिनिक, थावे रोड, गोपालगंज।
0: अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 91-626-64-498 पे।
4: गोपालगंज, अब आपकी राइड होगी और भी स्टाइलिश और पहले से ज्यादा पावरफुल,
5: क्योंकि आ चुकी है हीरो ग्लैमर एक्स और एक्सट्रीम 125R। अब उपलब्ध है नारायणी हीरो गोपालगंज में।
4: ग्लैमर एक्स, दमदार माइलेज, शानदार लुक और भरोसेमंद परफॉर्मेंस, ताकि हर दिन बने खास और सफर रहे बेफिक्र।
5: और एक्सट्रीम 125R, स्पोर्टी डिजाइन, दमदार पावर और एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ हर राइड बने और एक्साइटिंग।
4: तो फिर देर किस बात की, आज ही विजिट करें नारायणी हीरो, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
5: शानदार ऑफर्स और आसान फाइनेंस सुविधा के साथ
4: नारायणी हीरो, भरोसे का नाम हर राइड के साथ।
5: कॉल नाउ 9056-59536 या 9056-57902।
6: अब बेटा, बहू घर आने वाली है, सोच रही हूँ कुछ सोने की नई ज्वेलरी ले ली जाए, पर भरोसे की दुकान।
7: माँ अब घबराइए नहीं, चलते हैं मास्टर साहब की जेवर की दुकान, गुप्ता ज्वेलर्स, BIS अप्रूव्ड, शानदार डिजाइन और असली ज्वेलरी की गारंटी।
5: अपने सपनों की खूबसूरती के लिए गुप्ता ज्वेलर्स ही चुने, सिल्वर, गोल्ड या डायमंड, हर ज्वेलरी BIS अप्रूव्ड और किफायती दाम के साथ। विश्वास की परंपरा, नई डिजाइन का खजाना, बस गुप्ता ज्वेलर्स में।
4: आज ही आए गुप्ता ज्वेलर्स, मास्टर साहब की जेवर की दुकान, चंद्र गोखो लोड, गोपालगंज। मोबाइल नंबर 94-309-45-651 या 97-097-06-575।
8: घर बन रहा हो तो सिर्फ ईंट और सीमेंट नहीं, टाइल्स और फिटिंग्स का चुनाव भी होना चाहिए शानदार।
9: इसीलिए गोपालगंज जिले के लोगों की पहली पसंद बन चुका है BK टाइल्स।
4: BK टाइल्स, यहाँ मिलेंगे सभी प्रकार के डिजाइनर टाइल्स, मार्बल, ग्रेनाइट, बेसिन, कॉमोड, बाथ फिटिंग्स और घर सजाने के कई आधुनिक प्रोडक्ट,
5: वो भी किफायती दामों पर। और खास बात, गोपालगंज जिले में हमारी 4 सुविधाजनक शाखाएं,
4: अरार मोड SP कोठी के पास गोपालगंज, दूसरा ब्रांच भटवा मोड़ के पास कुचायकोट,
5: तीसरा ब्रांच इस्लामिया कॉलेज के पास मेन रोड थावे मीरगंज, और चौथा ब्रांच बंतरिया मोड़ भोरे।
4: और अब सिवान जिले में भी हमारी 2 शाखाएं उपलब्ध हैं, सिवान ब्रांच कुशवाहा चौक हकाम बाईपास सिवान,
5: और मेरवा ब्रांच बबनौली चौक मेरवा सिवान।
4: तो आज ही अपने सबसे नजदीकी BK टाइल्स ब्रांच पर आए और करे बेहतरीन खरीदारी।
5: अधिक जानकारी के लिए संपर्क करे गोपालगंज ब्रांच में 8460571406, मीरगंज ब्रांच 9693101611,
4: कुचायकोट ब्रांच में 9693101602, भोरे ब्रांच में 8207856404,
5: सिवान ब्रांच में 9942071405, मेरवा ब्रांच में 8207856403।

0: आ गया है विकसित भारत जी राम जी, जिसमें हर ग्रामीण को मिलेगी साल में 125 दिन रोजगार की गारंटी और काम वही जो ग्राम पंचायत कहे। विकसित भारत जी राम जी, गांव बढ़ेगा तभी देश बढ़ेगा। ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
1: Pick it up, pick it up.
2: Hello.
1: Now pick your phone up.
2: Hello.
1: Pick it up, pick it up.
2: Hello.
1: Now pick your phone up.
2: Hello.
3: Jab phone ring de bajti hai to kehte hain hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello.
4: Break ke baad aap sabhi ka fir se swagat hai Hello My Choice ke show mein. यदि इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने की फरमाइश का रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8009294911। जी हाँ, 8009294911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
5: हेलो
6: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 एफएम में।
5: नमस्ते।
6: नमस्ते,
5: क्या हाल है?
6: बढ़िया, आप अपना बताइए।
5: मेरे भी बढ़िया। भारती ही बोल रहे हैं क्या?
6: नहीं, भारती नहीं, मैं मनोरमा बोल रही हूँ।
5: मनोरमा
6: जी, आपका नाम?
5: मेरा नाम गणेश कुमार चित्र नारायण सिवान जिला में पढ़ता है। भारती जी नहीं है यार, छुट्टी पे है?
6: नहीं, छुट्टी पे नहीं है, उनका आज रिकॉर्डिंग नहीं है ना, इसलिए।
5: अच्छा, दूसरा काम कर रहे हैं क्या? अच्छा, अभी आ गए हैं इसमें क्या?
6: जी,
5: बढ़िया। और सब बताइए?
6: और सब बढ़िया। तो बता दीजिए, मौसम तो सही है, हवा चल रहा
5: है? इधर भी वही हाल है, सुबह सुबह लाइट नहीं आया है, हवा तेज है ना।
6: जी जी, वैसे तो इसमें थोड़ा धूप भी निकला हुआ है और हवा भी चल रहा है।
5: गाना बजा दीजिए, थमके बरस मेरे को मातू को घर जाना है।
6: ओके, और ये गाना किसी को सुनवाना भी है?
5: सबसे पहले आपको, रिद्धिया मैम को, सोनी मैम को, भारती मैम को, और अफसर सर को, डायरेक्टर सर जी को, सोनू सर जी को, और मेरे पूरा भाई लोग सुनने या उन लोगों को भी, और मेरा बहन है छोटे वाली करिश्मा, वो भी सुनेगी। आजकल शो में नहीं जुड़ रही है ना करिश्मा, बोल देती है कि फोन लगा दे तो फोन नहीं लगता। हम बोलते हैं कि आप लगाएंगे तभी तो, मान लीजिए इतना सारा कस्टमर है, सब लोग तो फोन करेंगे। ठीक है, फिर और सब बढ़िया?
6: जी बढ़िया। तो चलिए आपका गाना प्ले करते हैं, सुनते रहिए सबके साथ रेडियो रिमझिम 90.4 एफएम।

0: हेलो
1: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो 90.4 FM में।
0: नमस्कार मैम।
1: नमस्कार जी, नाम बता दीजिए और कहाँ से?
0: कुलदीप कुमार जंगलिया से।
1: क्या हाल चाल है कुलदीप जी?
0: ठीक है, अपना बताइए मैम।
1: मेरा भी बढ़िया है, क्या हो रहा है?
0: मैम
1: सब खाना वाना हो गया
0: है? अभी खाना नहीं हुआ है, सुबह कल उठेंगे तो खाना खाएंगे। अभी आए थे स्कूल से।
1: अच्छा जी, किस क्लास में पढ़ते हैं?
0: 11th में।
1: तो कैसे चल रही है पढ़ाई आपकी?
0: अच्छी चल रही है।
1: ओके, चलिए बढ़िया। तो बता दीजिए कौन सा गाना सुनना
0: है? सुना दीजिए कोको को लाला, छोड़ी खेसारी लाल का।
1: अच्छा जी, और ये गाना आप किसी को सुनवाना भी चाहते हैं?
0: जी, मम्मी पापा को, सबसे पहले आपको
1: जी,
0: और आपको पूरा जितने रेडियो रिंगजिम के उतने आदमी को।
1: अच्छा जी, तो चलिए गाना प्ले करते हैं, सुनते रहिए रेडियो रिंगजिम 90.4 FM।

0: अपने जिले के मशहूर डॉक्टर जेजी शरण एमडी फिजिशियन अब बैठ रहे हैं सुबह 10 बजे से आशा मेडिको जनता सिनेमा रोड गोपालगंज, और डॉक्टर जेजी शरण जी शाम 5 बजे से 7 बजे तक बैठ रहे हैं अपने निवास स्थान शबनम होटल के पीछे आजाद नगर गोपालगंज।
1: डॉक्टर साहब के यहाँ पर्ची का नंबर मोबाइल से भी लगाया जा सकता है।
2: आशा मेडिको में किसी भी प्रकार की लिखी दवाएं मिलती है, मोबाइल से दवा का ऑर्डर भी किया जा सकता है। मोबाइल नंबर है 7545 67 666।
3: आपका संदेश मिला कार्यक्रम में आप अपना विचार, सुझाव, शिकायत हमारे व्हाट्सएप नंबर 98527 88 291 या ईमेल आईडी radiorimjhim@gmail.com या पत्र के माध्यम से हमें जरूर दें। आप हमें कॉल करके भी अपने विचारों को बता सकते हैं। नंबर है 98527 88 291 या 95238 74088 पर। आपका सुझाव रेडियो रिमझिम परिवार के लिए मार्गदर्शन का काम करता है, तो आप इस कार्यक्रम को रविवार शाम 7:45 से तथा सोमवार सुबह 7:10 से अवश्य सुने।
4: जो लोग डायबिटीज से परेशान हैं, वो डरे नहीं, परहेज करे नहीं। वैद्य एसपी त्यागी जी आयुर्वेदिक दवा द्वारा शुगर यानी डायबिटीज का इलाज कम खर्च में सब कुछ खाते हुए सफलता पूर्वक कर रहे हैं। आप भी दवा खा खा कर इलाज करा कर निराश एवं परेशान हो गए हैं तो एक बार अवश्य मिले वैद्य एसपी त्यागी जी से। डायबिटीज के अलावा और सब बीमारी का इलाज, जैसे
5: सभी प्रकार के नशा जैसे शराब, टेबलेट, इंजेक्शन, सिरप, गांजा, स्माइक के इलाज और गठिया, टीका, पथरी, कमर दर्द, घुटना दर्द, दमा, मिर्गी, दाद, दिनाए और सभी चर्म रोग एवं लिकोरिया, मासी खराबी, बवासीर, पेट रोग, शुगर, गैस्ट्रिक, शीघ्र पतन, शुक्राणु में कमी, नपुंसकता, धातु चिंता और चर्म रोग में दाग, दिनाए, खुजली, एक्जिमा, सोरायसिस तथा
4: पथरी इत्यादि सभी रोगों का इलाज वैद्य एसपी त्यागी जी आयुर्वेदिक दवा द्वारा सफलता पूर्वक करते हैं।
6: वैद्य एसपी त्यागी जी से मिलने का पता
4: प्रत्येक शनिवार गोपालगंज बस स्टैंड थावे रोड भी मार्केट के बगल में कृष्णा जी के मकान में।
6: अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 99554943
4: और 9097160602।
7: नमः शिवाय।
8: सावन के पावन अवसर पर बाबा भोलेनाथ के दर्शन का सुनहरा अवसर लेकर आया है दीपक राज टूर एंड ट्रेवल्स गोपालगंज।
7: श्रद्धालुओं के लिए विशेष तीर्थ यात्रा एवं कांवर यात्रा की व्यवस्था। पहला रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, राजगीर होते हुए पुनः वापसी।
8: दूसरा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, तारापीठ, जगन्नाथपुरी, गंगा सागर, काली घाट, कोलकाता, रजरप्पा, राजगीर होते हुए वापस गोपालगंज।
7: तीसरा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, गया, बोधगया, वाराणसी, अयोध्या, गोरखनाथ मंदिर होते हुए वापस गोपालगंज।
8: चौथा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, गुवाहाटी, माँ कामाख्या धाम, दार्जिलिंग, सिलीगुड़ी, गंगटोक, जनकपुर, अरेराज होते हुए वापस गोपालगंज।
7: गोपालगंज जिले के श्रद्धालु अब घर बैठे अपनी तीर्थ यात्रा के लिए वाहन बुक करा सकते हैं।
8: बिचौलियों से बचे और सीधे हमारे कार्यालय या बुकिंग नंबर पर संपर्क करें।
7: बुकिंग नंबर 9155548507 या 9162933538।
8: हेल्पलाइन नंबर 9934498845।
7: दीपक राज टूर एंड ट्रेवल्स, मुख्य कार्यालय चिराई घर पेट्रोल पंप के पास गोपालगंज, उपशाखा NH 27, काली स्थान बंजारी, गोपालगंज।
8: बोलबम हर हर महादेव।
9: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज। ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
10: Now pick your phone up.
11: Hello. जब फोन बिंदे बजती है तो कहते हैं हेलो हेलो हेलो हेलो हेलो हेलो।
12: ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में।
11: हेलो
12: यदि इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार बुधवार और शुक्रवार को सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने की फरमाइश का रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8009294911। जी हाँ, 8009294911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
13: हेलो
14: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 FM में।
13: सलाम अलैकुम।
14: वालेकुम अस्सलाम।
13: मुझे गाना सुनना है।
14: जी बता दीजिए।
13: गाना सुनना है अब आएगा मजा बरसारा, यही गाना सुनना है, बारिश हो रहा है इसी के लिए।
14: अरे वैसे आपका नाम और कहाँ से?
13: मैं गुलाम हुसैन मुंबई से बोल रहा हूँ, गोपालगंज के रहने वाले हैं।
14: अच्छा जी, तो बारिश हो रही है अभी वहाँ?
13: जी जी बारिश हो रही है।
14: अच्छा,
13: यही गाना सुनना है।
14: फिर से बता दीजिए कौन सा गाना सुनना है आपको।
13: मुझे गाना है अब आएगा मजा बरसारा, यही गाना सुनना है। अंदाज मोदी का है, यही गाना सुनना है। सुनाना चाहता हूँ सबसे पहले आपको मासूम कौशल जी ने, कमरन भाई, अरमान भाई, आयुष भाई, जगदीप भाई, रिंस भाई, लकी भाई, रोबीना जी, बिट्टी जी, हिना जी, का जी, सज्जा जी, सभी को सुनाना चाहता हूँ।
14: ओके, तो चलिए आपका गाना प्ले करते हैं। सुनते रहिए रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
13: थैंक यू मैम।
14: वेलकम।

0: हेलो
1: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो प्रिमजिम 90.4 FM में।
0: मैडम चंद्रकिशोर जोपाल बोल रहा हूँ, गुजरात से, सूरत गुजरात से रहने वाला मैं, बिहार का हूँ, दरभंगा जिला का। मैडम गाना सुना दीजिए।
1: जी बता दीजिए।
0: फिल्म का नाम है ढाई अक्षर प्रेम के और गाने की बोल है दो लफ्जों में लिख दी मैंने अपनी प्रेम कहानी।
1: ओके, और ये गाना डेडिकेट भी है?
0: डेडिकेट है आपको और जो रेडियो टीवी में सुनते हैं सभी श्रोताओं को। ठीक है, मैं नाइट ड्यूटी करके आया हूँ, सोने जा रहा था। मैम एक बात पूछना था, ये इसकी रिकॉर्डिंग जो है रात को वो कब प्ले होती है? क्योंकि मेरा नाइट शिफ्ट है तो मैं रात को सुनता हूँ।
1: प्ले होता है शाम 5 बजे,
0: लेकिन रात को भी चलता है 12 बजे, 11 या 12 बजे के बीच कुछ चालू होता है। तो टाइम क्या है इसका रात को?
1: रात को तो मुझे नहीं पता, क्योंकि मैं भी अभी न्यू आई हूँ तो उतना नहीं पता है मुझे,
0: क्योंकि मैं नाइट शिफ्ट करता हूँ ना, तो मैं रात को आज चालू किया था तो रात को चल रहा था आपका ये शो, तो मैं सोचा क्या कि दिन में कॉल लगाऊंगा तो फिर टाइम आपसे पूछ लूंगा कि टाइम कब है इसका रात का।
1: टाइमिंग तो इसका हमको पता है कि 5 से 7 बजे तक बसता है। अब जब आप बोल रहे हैं कि रात को भी बसता है तो शायद उस टाइम भी।
0: हाँ रात को भी बसता है, 1-2 घंटे चलता है रात को भी 12-1 बजे के आसपास।
1: अच्छा,
0: तो अभी तो मैं सोने जा रहा था तो मैं सो जाऊंगा तो इसलिए सुन नहीं पाऊंगा, तो मैं सोचा रात में ही सुनूंगा।
1: जी जी बिल्कुल, तो चलिए आपका गाना प्ले करते हैं, सुनते रहिए रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
0: थैंक यू सो मच।

0: अरे सुनते हो जी, शादी में बस कुछ ही दिन बचे हैं। दूल्हे के कपड़े अभी तक नहीं बने
1: और दुल्हन का लहंगा साड़ी कुछ भी तय नहीं हुआ। इतना बड़ा फंक्शन है, सब लोग क्या कहेंगे?
2: मम्मी पापा, मुझे चाहिए रॉयल कोट पैड का कपड़ा और रिसेप्शन के लिए एक शानदार कुर्ता पजामा।
3: और मुझे चाहिए ट्रेंडिंग लहंगा, सुंदर साड़ी और कुछ बढ़िया सूट पीस भी।
4: अरे बस इतनी सी बात, आप लोग गए नहीं क्या मुरारी लाल विजय कुमार?
2: मेन रोड गोपालगंज में स्थित मुरारी लाल विजय कुमार क्लोथिंग स्टोर, जहां दूल्हे के लिए मिलता है कोट पैंट, पैंट शर्ट और कुर्ता पजामा का बेहतरीन कपड़ा, और दुल्हन के लिए लहंगा साड़ी सूट पीस, हर डिजाइन, हर रंग, हर बजट में।
1: तो फिर देर किस बात की, चलो अभी चलते हैं मुरारी लाल विजय कुमार।
2: मुरारी लाल विजय कुमार, मेन रोड गोपालगंज, प्रोप्राइटर विजय कुमार केडिया।
4: कॉल करे 87894-18744।
5: तुम आज भी गुमसुम क्यों बैठी हो?
6: क्या बताऊं, 15 साल शादी के हो गए और संतान सुख मिला नहीं। कई जगह इलाज कराया लेकिन कोई फायदा नहीं। अब समझ नहीं आ रहा क्या करूं?
5: अरे मेरे साथ एक बार चलो डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी के पास, जादवपुर में। कई निसंतान माताओं का इलाज उन्होंने सफलतापूर्वक किया है।
6: ध्यान दे, स्त्री रोग, बांझपन, ल्यूकोरिया, दिमाग की कमजोरी, याददाश्त की कमी, पेट रोग, गैस्ट्रिक, लीवर में सूजन, बवासीर, कान रोग, पुराना बुखार, नस रोग, किडनी की पथरी, पीत की थैली में पथरी, पेशाब की थैली में पथरी, गठिया, पुराना जोड़ों का दर्द, साइटिका, चर्म रोग एवं पुराने असाध्य बीमारियों का इलाज आयुर्वेदिक विधि से 30 वर्षों से सफलतापूर्वक किया जा रहा है।
5: आज ही आएं डॉक्टर गोरखपुरी निवास, डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी, जादवपुर मेन रोड गोपालगंज। संपर्क करें 99554-97644।
7: राधा, तुमने अपने चाचा जी के अपेंडिक्स का ऑपरेशन कहाँ कराया था?
8: सम्राट हॉस्पिटल में, वो भी कम से कम खर्च में।
9: क्या आप भी ऑपरेशन कराना चाहते हैं? तो घबराए नहीं, आज ही आए सम्राट हॉस्पिटल, जहां है डॉक्टर कुंदन सिंह MBBS MS जनरल एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जन, जो सदर हॉस्पिटल गोपालगंज में भी सेवा देते हैं।
10: हमारे यहां दूरबीन विधि से भी ऑपरेशन किया जाता है।
9: आज ही हर तरह के सफल ऑपरेशन के लिए आए सम्राट हॉस्पिटल, जो है कमला राय कॉलेज के पश्चिम आरआर रोड गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 94704-34468 पे।
11: कान में दर्द के मारे जान ही निकल रही है, कहाँ जाऊँ, किससे इलाज कराऊँ, कुछ समझ नहीं आ रहा।
5: इसमें इतना समझना क्या, आज ही चलो डॉक्टर MD सादाब के पास, जो है ENT स्पेशलिस्ट।
12: जी हाँ, उत्तर भारत के सबसे विश्वसनीय कान नाक एवं गले के विशेषज्ञ डॉक्टर MD सादाब पिछले 10 वर्षों से सिवान में सेवा दे रहे हैं, जो कि 10,000 से भी ज्यादा कान नाक गले के सर्जरी का अनुभव रखते हैं। साथ ही आयुष्मान भारत योजना के तहत स्वास्थ्य कार्ड धारक मरीजों का निःशुल्क में इलाज किया जाता है। तो आज ही पहुँचिए इस्मत ENT केयर सेंटर, सिसवन ढाला के उत्तर RK मॉडल स्कूल के बगल, सिवान में।
2: गोपालगंज, अब आपकी राइड होगी और भी स्टाइलिश और पहले से ज्यादा पावरफुल,
4: क्योंकि आ चुकी है हीरो ग्लैमर X और एक्सट्रीम 125R। अब उपलब्ध है नारायणी हीरो गोपालगंज में।
2: ग्लैमर X, दमदार माइलेज, शानदार लुक और भरोसेमंद परफॉर्मेंस, ताकि हर दिन बने खास और सफर रहे बेफिक्र।
4: और एक्सट्रीम 125R, स्पोर्टी डिजाइन, दमदार पावर और एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ हर राइड बने और एक्साइटिंग।
2: तो फिर देर किस बात की, आज ही विजिट करें नारायणी हीरो, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
4: शानदार ऑफर्स और आसान फाइनेंस सुविधा के साथ
2: नारायणी हीरो, भरोसे का नाम हर राइड के साथ।
4: कॉल नाउ 9656-59536 या 9656-57902।
13: ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। यदि इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने की फरमाइश का रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8009294-911। जी हाँ, 8009294-911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
14: हेलो,
13: बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिंगी 90.4 FM में।
14: जी नमस्कार मैडम जी।
13: नमस्कार
14: जी मैडम जी, मैं सुनील साहू मधुसूदनगढ़ जिला गुना मध्य प्रदेश।
13: जी क्या हालचाल है आपका?
14: बढ़िया है बहन जी, बरसात हो रही है हमारे इधर, आपके उधर हो रही है क्या बरसात?
13: नहीं इधर तो बारिश नहीं हो रही, बस मौसम बना हुआ है
14: जी। हमारे यहाँ तो रात भर का पानी गिर रहा है और अभी भी गिर रहा है बहुत जोर शोर से।
13: अच्छा बारिश का एंजॉय करिए, तो बता दीजिए कौन सा गाना सुनना आपको?
14: जी मैडम जी, सबके काम है मजबूर।
13: ओके।
14: और गाने के बोले बाहर भरा था पानी और अंदर आग लगी है, जिम जिम भरा था बाहर ये पानी अंदर आग लगी है।
13: ओके। और ये गाना डेडिकेट भी है?
14: जी ये आपको है, सबसे पहले डेडिकेट। और अपने गोपाल ओझा जी है ककवासा से, और मांगीलाल जी कंधेल है, मांगीलाल धाकड़ है गोपाल, और गजराज जी लोधी है। तो दीदी प्रोग्राम कब आएगा
13: ये आपका? प्रोग्राम कल आएगा?
14: आज नहीं आएगा, ये
13: शाम को ही आएगा।
14: ठीक है,
13: तो चलिए आपका गाना प्ले करते हैं, सुनते रहिए सबके साथ रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
14: धन्यवाद।

0: हेलो
1: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिंग 90.4 FM।
0: हाँ मैम, गुड मॉर्निंग।
1: गुड मॉर्निंग
0: मैम, बोल रहे हो थे दीवाना।
1: जी बता दीजिए।
0: मेरा नाम
1: जी
0: मेरा नाम हो गया विजय दीवाना, करवा पटना से।
1: अच्छा जी, क्या हाल चाल है आपका?
0: ठीक है मैम।
1: अब क्या हो रहा है?
0: काम हो रहा है मैम, हम लोग जी अप्रैल ग्रुप में काम कर रहे हैं मैम।
1: जी कैसे चल रहा है काम आपका?
0: ठीक है।
1: अच्छा, तो मौसम कैसा है उधर का?
0: मौसम तो आज बहुत अच्छा है, कल और आज दोनों दिन अच्छा।
1: बारिश हो रही है?
0: नहीं बारिश तो नहीं हो रही, लेकिन हवा चल रही है ठंडा ठंडा।
1: यहाँ पे भी
0: जी।
1: गाना बता दीजिए, कौन सा सुनना है आपको?
0: गाना मैम सुनना था पवन सिंह का, सबसे सुपर हिट गाना है लल्ली पॉप लागे लू।
1: ओके, और ये गाना डेडिकेट भी है?
0: जी मैम, पवन जी है, वीरेंद्र जी है, मनोज जी है, जितेंद्र जी है, राजू जी है, देवेंद्र जी है, लालदेव जी है, और हमारे पूजा जी है, नेहा जी है, अंकिता जी है।
1: ओके,
0: कितने बजे मिलेगा मैम सुन लो?
1: आपको कल मिलेगा सुनने के लिए।
0: कल कितने बजे?
1: 5 बजे, 5 से 7 बजे तक।
0: थैंक यू
1: जी। तो चलिए आपका गाना प्ले करते हैं, सुनते रहिए सबके साथ रेडियो रिंजिम 90.4 FM।
0: थैंक यू।

0: अब बेटा बहू घर आने वाली है, सोच रही हूँ कुछ सोने की नई ज्वेलरी ले ली जाए, पर भरोसे की दुकान।
1: माँ अब घबराइए नहीं, चलते हैं मास्टर साहब की जेवर की दुकान, गुप्ता ज्वेलर्स, BIS अप्रूव्ड, शानदार डिजाइन और असली ज्वेलरी की गारंटी।
2: अपने सपनों की खूबसूरती के लिए गुप्ता ज्वेलर्स ही चुने, सिल्वर, गोल्ड या डायमंड, हर ज्वेलरी BIS अप्रूव्ड और किफायती दाम के साथ। विश्वास की परंपरा, नई डिजाइन का खजाना, बस गुप्ता ज्वेलर्स में।
3: आज ही आए गुप्ता ज्वेलर्स मास्टर साहब की जेवर की दुकान, चंद्रगोखो लोड गोपालगंज, मोबाइल नंबर 94-309-45-651 या 97-097-06-575।
4: ठक ठक।
5: काजी आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
6: अच्छा मिला ही नहीं
5: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें, अब चलिए सीधे कमल श्री में।
6: जी हाँ कमल श्री, याद रखे सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
5: आप भी आए कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, बारी मार्केट गोपालगंज।
6: याद रहे सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है।
7: सोहन मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे तुरंत अपने भाई को कुछ पैसे भेजने हैं, लेकिन बैंक में तो इतनी लंबी लाइन है कि घंटों लग जाएंगे और मेरा जियो सिम भी एक्टिवेट नहीं हो रहा, अब मैं क्या करूँ?
8: अरे टीना टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं, चलो मेरे साथ माया क्लासिकल में। आधार और बैंक से आसानी से पैसे निकाला जाता है और किसी भी खाते में तुरंत भेजा जा सकता है बिना किसी झंझट के। और सिम की बात कर रही हो ना, BSNL, जियो, एयरटेल, VI, जो भी चाहिए तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा।
7: मुझे कुछ जरूरी PDF प्रिंट करवाने हैं, वहाँ ये सब हो जाएगा ना?
8: बिल्कुल, माया क्लासिकल में PDF, लेमिनेशन, प्रिंट, फोटोकॉपी सब कुछ मिलेगा। तुम्हें एक धमाकेदार ऑफर भी बताता हूँ, फोटो स्टेट सिर्फ ₹1 प्रति प्रिंट आउट, कम से कम 50 पेज, हर ग्राहक को शानदार गिफ्ट भी मिलता है। माया क्लासिकल में सब कुछ है। माया क्लासिकल सिनेमा रोड, शिव मंदिर के ठीक सामने, गोपालगंज। प्रोपराइटर सोनू जी, संपर्क करें 99-399-66-999।
9: अरे सुनते हो जी, शादी में बस कुछ ही दिन बचे हैं, दूल्हे के कपड़े अभी तक नहीं बने
10: और दुल्हन का लहंगा साड़ी कुछ भी तय नहीं हुआ, इतना बड़ा फंक्शन है, सब लोग क्या कहेंगे?
11: मम्मी पापा मुझे चाहिए रॉयल कोट पैड का कपड़ा और रिसेप्शन के लिए एक शानदार कुर्ता पजामा,
12: और मुझे चाहिए ट्रेंडिंग लहंगा, सुंदर साड़ी और कुछ बढ़िया सूट पीस भी।
13: अरे बस इतनी सी बात, आप लोग गए नहीं क्या मुरारी लाल विजय कुमार?
11: मेन रोड गोपालगंज में स्थित मुरारी लाल विजय कुमार क्लोथिंग स्टोर, जहां दूल्हे के लिए मिलता है कोट पैंट, पैंट शर्ट और कुर्ता पजामा का बेहतरीन कपड़ा, और दुल्हन के लिए लहंगा, साड़ी, सूट पीस, हर डिजाइन, हर रंग, हर बजट में।
10: तो फिर देर किस बात की, चलो अभी चलते हैं मुरारी लाल विजय कुमार।
11: मुरारी लाल विजय कुमार, मेन रोड गोपालगंज, प्रोपराइटर विजय कुमार केडिया।
13: कॉल करें 87-894-18-744।
14: प्रसाद क्लिनिक।
15: स्त्री रोग, ल्यूकेरिया, यूट्रस का बाहर निकल जाना, कान का बहना, गठिया, साइटिका, कमर दर्द, अधेड़ी, थनैली, चर्म रोग के सफल इलाज के लिए मिले
14: डॉक्टर श्रीमती कुंती देवी। रोगी देखने का स्थान बुधवार और शनिवार को मिंज स्टेडियम, LIC ऑफिस के पास, गोपालगंज,
15: बाकी दिन जादवपुर बाजार।
16: ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है हेलो माई चॉइस के शो में। यदि इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने की फरमाइश का रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8009-294-911। जी हाँ 8009-294-911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
17: हेलो
18: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिंगिंग 90.4 FM में।
17: अस्सलाम वालेकुम मैम।
18: वालेकुम अस्सलाम,
17: मैं रेशमा बोल रही हूँ पठानपट से।
18: जी क्या हालचाल है रेशमा जी?
17: ठीक है, आपने बताइए।
18: मेरा भी बढ़िया।
17: आपका तो हो गया मैम?
18: जी, और आपका?
17: हमारा भी हो गया।
18: चलिए बढ़िया है। क्या हो रहा है?
17: खाना बन रहा है।
18: अच्छा तो बताइए कौन गाना सुनना है आपको?
17: गाना सुनना है दिल में रहने वाला, कभी दिल से नहीं निकलता।
18: अच्छा, और ये गाना किसी को सुनवाना भी है?
17: जी मैम, आपको सुनवाना है और जितना लोग रेडियो सुन रहे सभी किसी का।
18: तो बताइए उधर का मौसम कैसा है?
17: ठीक है मैम, कभी धूप आ रहा है, तेज हो रहा है, धूप ऐसा ही हो रहा है, हवा चल रहा है। कल परसों दो दिन बहुत काफी गर्मी था। आप
18: जी जी अभी तो कुछ राहत है?
17: हाँ अभी कुछ राहत, हम लोग और ज्यादा गर्मी लगता है, कर भी सारा है ना, बहुत होता है। तबियत ठीक है मैम?
18: जी जी। तो चलिए आपका गाना प्ले करते हैं।

0: हेलो
1: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिंगू 90.4 एफएम में।
0: नमस्कार मैडम।
1: नमस्कार,
0: मैं प्रभु ठाकुर बलिंग बजा करके थाना गोपाल गंज से बोल रहा हूँ।
1: ओके, क्या हाल चाल है आपका?
0: ठीक है जी, अपना बताइए।
1: जी मेरा भी बढ़िया।
0: क्या हो रहा है?
1: कुछ नहीं, बस आपसे बातें हो रही है।
0: बारिश हो रही है कि नहीं? अभी
1: नहीं, बारिश तो नहीं हो रही उधर।
0: इधर भी बारिश रही है, तो चार दिन हो गया, तीन दिन हो गया, चार दिन लगभग बारिश होते हैं।
1: अच्छा जी, अभी बारिश नहीं ना हो रही है उधर?
0: नहीं नहीं, इधर भी बारिश नहीं है, बहुत हवा तेज है और धूप भी है बहुत।
1: तो है,
0: तो बिजी जा रहा था, उसी समय से आधा घंटा से लगा रहे हैं।
1: जी,
0: अभी जाके लगा है।
1: चलिए, अब लग गया ना?
0: हाँ अभी लग गया, लास्ट में जाके लगा है, 15 मिनट और बचा था तो लग गया। और एक सॉन्ग सुनवा दीजिए।
1: जी बता दीजिए।
0: फिल्म का नाम तो याद नहीं आ रहा मेरे को, लेकिन गाने का बोल है, मोहब्बत इनायत करम देखते हैं तुम्हें कितनी चाहते हम देखते हैं।
1: ओके, और ये गाना किसी को सुनवाना भी है?
0: हाँ हाँ, तो हमारे दोस्त है उनके लिए, एक छतर कुमार गुप्ता है, टीके राम है, और एक हमारी भाभी है उनके लिए जो अभी बम्बई में रह रही है, सुनीता जी के लिए मेरी कहते हैं गाने जरूर सुनवाइएगा। ठीक है ना, भारती में बोल रही है ना?
1: नहीं मैं भारती नहीं बोल रही हूँ।
0: नहीं
1: भारती नहीं बोल रही हूँ जी, मैं मनोरमा बोल रही हूँ।
0: मनोरमा
1: जी?
0: नहीं बोल रही है मनोरमा जी, भारती ही बोल रही है।
1: आवाज से पता नहीं चल रहा
0: है? आवाज से तो पता चल रहा है, सेम सेम आवाज है आपका, हिंदी नहीं सही है। नहीं झूठ बोल रही है, वही बोल रही है।
1: नहीं नहीं मैं भारती नहीं बोल रही।
0: तो आपकी मेरे पहली बात मिला।

0: सुनिए जी, पेट में दर्द कई दिनों से ठीक ही नहीं हो रहा।
1: तो फिर देर क्यों? चलो अभी चलते हैं साई कृपा क्लिनिक में, जहां मौजूद है अनुभवी डॉक्टर डॉक्टर स्वाति के गुप्ता, MBBS, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, पूर्व वरीय चिकित्सक, पारस हॉस्पिटल चंडीगढ़, और डॉक्टर PK गुप्ता, MBBS, BMC जनरल फिजिशियन एवं सर्जन, SVBPN, न्यू दिल्ली।
0: यहां नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन, हर्निया, अपेंडिक्स, पित्त की थैली, बवासीर, भगंदर आदि ऑपरेशन की सुविधा और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
2: यहाँ सभी प्रकार का ऑपरेशन बिना टाका का आधुनिक विधि द्वारा किया जाता है। साई कृपा क्लिनिक, थावे रोड बस स्टैंड के सामने, गोपालगंज।
0: संपर्क करें 9939365923।
3: इतना परेशान क्यों दिख रही हो मेघा?
4: आसपास हर जगह चाचा जी का इलाज करा लिया, अब लगता है उन्हें दिल्ली लेकर ही जाना पड़ेगा।
3: अरे अपने गोपालगंज में गोरखपुर, पटना और दिल्ली जैसे बेहतर मेडिकल सुविधाओं के साथ खुल गया है एम्स के पूर्व चिकित्सक डॉक्टर अभिषेक रंजन जी के देखरेख में जिले का पहला वेंटिलेटर युक्त सक्षम हॉस्पिटल, जहां पर 24 घंटे ICU इमरजेंसी सेवा, एक्सपर्ट मेडिकल टीम द्वारा विभिन्न रोग जैसे हृदय रोग, शुगर, दमा, नस रोग, लकवा और पेट से जुड़ी गंभीर बीमारियों का अत्याधुनिक मशीनों के द्वारा सफलतापूर्वक इलाज किया जा रहा है।
4: आज विजिट करें सक्षम हॉस्पिटल, कमला राय कॉलेज रोड, इंडियन गैस एजेंसी के बगल में, गांधी टेक्निकल कॉलेज के सामने, डॉक्टर कॉलोनी, गोपालगंज। कॉल करें 7050061444 या 7870331444।
5: कूल्हा एवं घुटना प्रत्यारोपण, आर्थ्रोस्कोपिक या दूरबीन विधि से घुटने के टूटे लिगामेंट की सर्जरी, एलिजारोव रशियन विधि से हाथ पैर की लंबाई बढ़ाना, स्पाइन सर्जरी और हड्डी जोड़ की सभी समस्याओं का समाधान।
6: मिले वरिष्ठ सर्जन डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से, संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एवं सर्जिकल सेंटर, रुस्तमपुर ढाला, गोरखपुर।
5: आज ही संपर्क करें 7388894700 या 9198886973।
0: कई दिनों से पेट के निचले हिस्से में बहुत दर्द है, रिपोर्ट में पथरी और बच्चेदानी की भी दिक्कत बताई गई है।
1: डॉक्टर ने कहा है ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन

0: जगह ऐसी हो जहां अच्छा सर्जन भी हो और महिला डॉक्टर भी। अब हर चिंता का समाधान है शल्यम हॉस्पिटल।
1: अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूरब भोजपुरवा में NH 27 पर दक्षिण साइड गोपालगंज में स्थित शल्यम हॉस्पिटल।
0: यहां आयुष्मान कार्ड से 5 लाख रुपए तक मुफ्त ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
1: सर्जरी विभाग हो या स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग, इलाज होता है अनुभवी विशेषज्ञों द्वारा।
0: डॉक्टर मनोज कुमार गुप्ता MBBS MS सर्जरी लैप्रोस्कोपिक सर्जन और डॉक्टर डेजी सिन्हा MBBS MD DNB स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
1: शल्यम हॉस्पिटल में उपलब्ध है आधुनिक मशीनें और एक ही छत के नीचे OPD IPD ICU मॉड्यूलर OT अल्ट्रासाउंड पैथोलॉजी लैब फार्मेसी और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा।
0: आज ही विजिट कीजिए शल्यम हॉस्पिटल मल्टी स्पेशलिटी एंड ट्रॉमा सेंटर अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूरब भोजपुरवा NH 27 गोपालगंज।
1: कॉल करें 70 70 75 63 100 या 70 70 75 42 100 या हमारी वेबसाइट पर विजिट करें www.shalyamhospital.com।
2: नन्ना मुन्ना लाही हूँ देश का सिपाही हूँ।
3: रुको रुको बेटा, अब तो बड़ा अच्छा गा रहे हो।
2: हाँ कल मेरे टीचर मुझे अच्छे से याद करने के लिए बोले हैं।
3: अच्छा, तो कौन से स्कूल में पढ़ते हैं आप?
2: मैं पढ़ता हूँ श्री भारती एकेडमी में।
4: श्री भारती एकेडमी जो है CBSE नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त स्कूल।
5: हमारे यहाँ बोलचाल के साथ ही बच्चों को खेल खेल में पढ़ाया जाता है। इसके साथ ही छात्रवास के अलावा आने और जाने के लिए परिवहन की भी सुविधा उपलब्ध है।
4: श्री भारती एकेडमी आपके बच्चों को बनाता है होनहार और देता है उनके फ्यूचर को एक नई उड़ान।
5: आज ही एडमिशन के लिए आए चैनपट्टी के उत्तर ग्राम एक डेरवा तिलंगही मैदान के पूरब गोपालगंज।
4: हमारा जूनियर ब्रांच सरिया वार्ड नंबर 5 हनुमानगढ़ी गोपालगंज में है।
5: जानकारी है तो कॉल करे 6205-62112 पे।
6: ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। यदि इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार बुधवार और शुक्रवार को सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने की फरमाइश का रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029-94-911। जी हाँ, 8029-94-911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
7: हेलो
8: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4।
7: नमस्कार मैम।
8: नमस्कार,
7: आप भारती बोल रही हैं?
8: नहीं, भारती नहीं बोल रही, मैं मनोरमा बोल रही हूँ।
7: अच्छा जी मैम, गाना जो ऐसी करते हैं बोलते हैं कौन दिन को सुनाया जाता है?
8: पहले जो रिकॉर्डिंग होता है उसके बाद ये बजता है अगले दिन।
7: रिकॉर्डिंग तो उसी दिन होता है, सोमवार को होता है, बुधवार शुक्रवार।
8: जी
7: मैम, बस आप कैसी हैं?
8: मैं बढ़िया हूँ, आप अपना बताइए, आप कैसी हैं?
7: हम भी ठीक है मैम।
8: तब क्या हो रहा है?
7: अभी पूजा उजा करके खाना बैठे हैं, खाना खाने तो याद हुआ, तो टाइम देखे तो 12:20 हुआ, तो सोचे का कि आप कॉल करें।
8: जी
7: 2 मिनट बात करें।
8: बढ़िया, तो वैसे अपना नाम बता दीजिए।
7: मैम मेरा सुनीता कुमारी, सुनीता कुमारी नाम है सुनीता।
8: और कहाँ से?
7: हाजियापुर से है मैम।
8: ओके, तो फरमाइश बता दीजिए
7: मैम। जो हम साथ साथ में के हैं मैया जसोदाई डेरा रनहैया।
8: अच्छा हाँ,
7: गाना बजा दीजिए मैम।
8: ओके, और ये गाना आप किसी को सुनवाना भी चाहती हैं?
7: सबसे पहले आपको आज इतना रेडियो म्यूजिक पर सुनते हैं, सभी भाइयों और बहनों को सभी को सुनाएंगे, हम भी सुनेंगे।
8: जी तो चलिए गाना प्ले करते हैं, सुनते रहिए सबके साथ रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
7: थैंक यू मैम।
8: वेलकम।

0: जी बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 FM में।
1: मैं शाहबुद्दीन बोल रहा हूँ फरीदाबाद से, हरियाणा से।
0: अच्छा जी, तो क्या हो रहा है फिर?
1: काम हो रहा है।
0: अच्छा,
1: कॉल तो लगता नहीं, पता नहीं कैसे कॉल लग गया आज।
0: चलिए अब लग गया ना।
1: हाँ लग गया है।
0: तो बता दीजिए कौन सा गाना सुनना है आपको।
1: अपना नाम बता दीजिए।
0: जी मेरा नाम,
1: हाँ
0: जी मेरा नाम मनोरमा है।
1: अच्छा
0: जी,
1: पहली जगह बात हो रही है ना। मैं रेडियो तो बहुत ही सुनता हूँ, मैं रेडियो सुनता हूँ 2014 से, लेकिन वो काफी कम सुनता था, टाइम नहीं मिलता ना।
0: अच्छा, तो फिर गाना बता।
1: सॉन्ग का नाम है छोड़ के न जाओ या तुझको मैंने दिल दे दिया, और एक लाइन है सुना दूं?
0: जी बिल्कुल।
1: मैं लाइन सुनाता हूँ, ठीक है?
0: जी सुनाइए।
1: दिन में मिल लेते रात जरूरी थी क्या, दिन में मिल लेते रात जरूरी थी क्या, दे नतीजा ये मुलाकात जरूरी थी क्या, और तुम कहते तो आंखों में बुला लेते, भीगने के लिए बरसात जरूरी थी क्या।
0: अच्छा जी,
1: ठीक है सुना दीजिएगा ये।
0: तो चलिए आपका गाना प्ले करते हैं, सुनते रहिए रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
1: जी शुक्रिया।

0: नई बाइक का सपना अब होगा पूरा, वो भी सबसे कम दाम में।
1: इस सीजन अपने घर लाइए हीरो की नई चमचमाती बाइक या स्कूटर श्री गोपाल मोटर्स से, वो भी ऑन रोड रेट पर।
0: श्री गोपाल मोटर्स गोपालगंज में पाए स्प्लेंडर प्लस सिर्फ 86,168 रुपए में, HF डिलक्स सिर्फ 75,405 रुपए में, ग्लैमर एक्स सिर्फ 97,456 रुपए में, एक्सट्रीम 125R सिर्फ 110,881 रुपए में, इंश्योरेंस और रजिस्ट्रेशन के साथ।
1: विजिट कीजिए श्री गोपाल मोटर्स, NH 27 बंजारी, चैन पट्टी, गोपालगंज,
0: या अभी कॉल कीजिए 92899-22567 या 97-714-86-164।
2: अपने जिले के मशहूर डॉक्टर जे शरण MD फिजिशियन अब बैठ रहे हैं सुबह 10 बजे से आशा मेडिको जनता सिनेमा रोड गोपालगंज, और डॉक्टर जे शरण जी शाम 5 बजे से 7 बजे तक बैठ रहे हैं अपने निवास स्थान शबनम होटल के पीछे आजाद नगर गोपालगंज।
3: डॉक्टर साहब के यहाँ पर्ची का नंबर मोबाइल से भी लगाया जा सकता है।
4: आशा मेडिको में किसी भी प्रकार की लिखी दवाएं मिलती है, मोबाइल से दवा का ऑर्डर भी किया जा सकता है। मोबाइल नंबर है 7545-67666।
5: आपका संदेश मिला कार्यक्रम में आप अपना विचार, सुझाव, शिकायत हमारे व्हाट्सएप नंबर 98527-88291 या ईमेल आईडी radiorimjhim@gmail.com या पत्र के माध्यम से हमें जरूर दें। आप हमें कॉल करके भी अपने विचारों को बता सकते हैं, नंबर है 98527-88291 या 95238-74088 पर। आपका सुझाव रेडियो रिमझिम परिवार के लिए मार्गदर्शन का काम करता है, तो आप इस कार्यक्रम को रविवार शाम 7:45 से तथा सोमवार सुबह 7:10 से अवश्य सुने।
6: ओम नमः शिवाय।
0: सावन के पावन अवसर पर बाबा भोलेनाथ के दर्शन का सुनहरा अवसर लेकर आया है दीपक राज टूर एंड ट्रेवल्स गोपालगंज।
6: श्रद्धालुओं के लिए विशेष तीर्थ यात्रा एवं कांवर यात्रा की व्यवस्था। पहला रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, राजगीर होते हुए पुनः वापसी।
0: दूसरा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, तारापीठ, जगन्नाथपुरी, गंगा सागर, काली घाट, कोलकाता, रजरप्पा, राजगीर होते हुए वापस गोपालगंज।
6: तीसरा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, गया, बोधगया, वाराणसी, अयोध्या, गोरखनाथ मंदिर होते हुए वापस गोपालगंज।
0: चौथा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, गुवाहाटी, माँ कामाख्या धाम, दार्जिलिंग, सिलीगुड़ी, गंगटोक, जनकपुर, अरेराज होते हुए वापस गोपालगंज।
6: गोपालगंज जिले के श्रद्धालु अब घर बैठे अपनी तीर्थ यात्रा के लिए वाहन बुक करा सकते हैं।
0: बिचौलियों से बचे और सीधे हमारे कार्यालय या बुकिंग नंबर पर संपर्क करें।
6: बुकिंग नंबर 91555-485-07 या 916293-3538।
0: हेल्पलाइन नंबर 9934498845।
6: दीपक राज टूर एंड ट्रेवल्स, मुख्य कार्यालय चिराई घर पेट्रोल पंप के पास गोपालगंज, उप शाखा NH 27 काली स्थान बंजारी गोपालगंज।
0: बोलबम हर हर महादेव।
7: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
8: हेलो
9: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिंगिंग 90.4 FM में।
8: धन्यवाद, और आपको नमस्कार।
9: नमस्कार,
8: क्या हाल है?
9: बढ़िया है, अपना बताइए, आप कैसे हैं?
8: हम भी ठीक हैं। आज तो करीब करीब 320 बार से ज्यादा ही डायल किए हैं नंबर।
9: अच्छा जी।
8: हाँ, लगातार मेहनत करते करते आखिर में लग ही गया।
9: अब लग गया ना?
8: हाँ
9: जी। तो अपना नाम बता दीजिए, कहाँ पे?
8: अनिल बात कर रहे हैं छोटपुर से।
9: नाम एक बार फिर से बता दीजिए, आवाज क्लियर नहीं आया।
8: अनिल बात कर रहे हैं छोटपुर से।
9: अच्छा जी, क्या हाल चाल है अनिल जी?
8: बस बढ़िया है।
9: क्या हो रहा है?
8: बस काम पे ही हूँ।
9: अच्छा, तो मौसम कैसा है उधर का?
8: मौसम आज थोड़ा सा नॉर्मल हुआ है, बस बादल इधर से उधर जा रहे हैं, बारिश नहीं हो रहा है, हवा चल रही है थोड़ा रिलैक्स है।
9: तो बता दीजिए कौन सा गाना सुनना आपको?
8: गाना सुना दीजिए, मैंने मूवी आई थी उसी का, लगा लगा लगा रे लगा रे रो।
9: ये नहीं
8: नहीं पुरानी ही फिल्म है, लगभग 2004 की फिल्म है।
9: अच्छा अच्छा, और ये गाना डेडिकेट भी है किसी को?
8: सारे लिस्नर को और साथ ही साथ आप अभी लोगों को, आपकी टीम में जो भी लोग हैं। जी
9: तो चलिए आपका गाना प्ले करते हैं, सुनते रहिए रेडियो रिंगिंग 90.4 FM।
8: थैंक यू।

0: हेलो
1: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 FM में।
0: जी नमस्ते मैम।
1: नमस्ते
0: विकास कुमार हिंसा को।
1: ओके, क्या हाल चाल है विकास जी?
0: बढ़िया है जी। भारती?
1: नहीं, भारती नहीं बोल रही हूँ जी, मैं मनोरमा बोल रही हूँ।
0: तो भारती मैम और सोनी मैम कहाँ चली गई?
1: वो लोग भी हैं, लो उन लोग का रिकॉर्डिंग नहीं है ना।
0: अच्छा, उन लोग का रिकॉर्डिंग नहीं हो रहा है?
1: मतलब हो रहा है, आज नहीं है ये बोल रहा है।
0: अच्छा, और सब बताइए मैम, क्या हाल चाल है?
1: और सब बढ़िया, आप अपना बताइए, आप कैसे हैं?
0: गोपालगंज में मौसम कैसा हो रहा है?
1: मौसम तो हवा चल रहा है,
0: बारिश वरिश नहीं हो रहा है?
1: नहीं, बारिश नहीं हो रहा है। और उधर
0: दिल्ली में तो इधर तो कल बारिश हुआ, कल संडे को। जहाँ धान का फसल लगाना है वहाँ नहीं हो रहा है बारिश। भगवान
1: बता दीजिए कौन सा गाना सुनना आपको?
0: हम तो गाना सुनना है यार, ये वाला गाना नहीं है, तुझे रब ने बनाया इसलिए, ये वाला गाना।
1: अच्छा, और ये गाना किसी को डेडिकेट भी है?
0: सबसे पहले आपको डेडिकेट करना चाहते हैं।
1: अच्छा जी,
0: जितना रेडियो सुनने वाले हैं श्रोताओं सबको।
1: ओके, तो चलिए आपका गाना प्ले करते हैं, सुनते रहिए सबके साथ रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
0: ठीक है, ओके मैडम, नमस्ते।
1: नमस्ते।

0: Pick it up, pick it up.
1: Hello.
0: Now pick your phone up.
1: Hello.
0: Pick it up, pick it up.
1: Hello.
0: Now pick your phone up.
1: Hello.
2: तो श्रोताओं, अभी आप हेलो माई चॉइस सुन रहे थे और अब समय हो चुका है शो को समाप्त करने का। तो यदि आप चाहते हैं इस कार्यक्रम से जुड़ना तो 8009294911 पे कॉल करके जुड़ सकते हैं। तो अब हमें दीजिए जाने की इजाजत और सुनते रहिए रेडियो रिमझिम 90.4 FM। नमस्कार।
3: तुम आज भी गुमसुम क्यों बैठी हो?
4: क्या बताऊं, 15 साल शादी के हो गए और संतान सुख मिला नहीं। कई जगह इलाज कराया लेकिन कोई फायदा नहीं। अब समझ नहीं आ रहा क्या करूं?
3: अरे मेरे साथ एक बार चलो डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी के पास, जादवपुर में। कई निसंतान माताओं का इलाज उन्होंने सफलतापूर्वक किया है।
4: ध्यान दे, स्त्री रोग, बांझपन, ल्यूकोरिया, दिमाग की कमजोरी या दाश्त की कमी, पेट रोग, गैस्ट्रिक, लीवर में सूजन, बवासीर, कान रोग, पुराना बुखार, नस रोग, किडनी की पथरी, पीत की थैली में पथरी, पेशाब की थैली में पथरी, गठिया, पुराना जोड़ों का दर्द, साइटिका, चर्म रोग एवं पुराने असाध्य बीमारियों का इलाज आयुर्वेदिक विधि से 30 वर्षों से सफलतापूर्वक किया जा रहा है।
3: आज ही आएं डॉक्टर गोरखपुरी निवास, डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी, जादवपुर मेन रोड, गोपालगंज। संपर्क करें 99 554 97 644।
5: अगर आपको हो रहा है घुटने, हड्डी या रीढ़ की हड्डी का दर्द या महिलाओं से जुड़ी समस्या, तो याद रखिए गोपालगंज जिले में सबसे भरोसेमंद नाम से जुड़ी समस्या तो याद रखिए गोपालगंज जिले में सबसे भरोसेमंद नाम स्टार एडवांस ऑर्थो एंड मेटर्निटी सेंटर, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
6: यहाँ है डॉक्टर इमरान हुसैन खान, कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक एवं जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन, MBBS, MS, एक्स रेसिडेंट, KGMU, लखनऊ।
5: और महिलाओं के लिए डॉक्टर सूफिया शादाब, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, MBBS, MS, ऑब्स एंड गायनेकोलॉजी।
6: साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
5: ध्यान दे, हर शुक्रवार को है फ्री OPD, तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें।
6: पता, कमला राय कॉलेज रोड, नियर रालसन होटल, गोपालगंज।
5: संपर्क करें 9006978856 या 6203139564।
7: राधा, तुमने अपने चाचा जी के अपेंडिक्स का ऑपरेशन कहाँ कराया था?
8: सम्राट हॉस्पिटल में, वो भी कम से कम खर्च में।
9: क्या आप भी ऑपरेशन कराना चाहते हैं? तो घबराए नहीं, आज ही आए सम्राट हॉस्पिटल, जहाँ है डॉक्टर कुंदन सिंह, MBBS, MS, जनरल एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जन, जो सदर हॉस्पिटल गोपालगंज में भी सेवा देते हैं।
10: हमारे यहाँ दूरबीन विधि से भी ऑपरेशन किया जाता है।
9: आज ही हर तरह के सफल ऑपरेशन के लिए आए सम्राट हॉस्पिटल, जो है कमला राय कॉलेज के पश्चिम RR रोड, गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 94704-34468 पे।
11: श्रोता लोगिन नमस्कार, रवा सभे सुनत बानी आपन बोली के पहचान यानी कि रेडियो रिमझिम 90.4 FM। और हम राउर दोस्त आज फिर से रेडियो रिमझिम पर हाजिर हो गल बानी लेके अपना माटी के सुगंध से सरोबोर कार्यक्रम भोजपुरी बिरहा। तो चलिए आज के कार्यक्रम के हम

जितना भी भोजपुरिया भाई बणन, भोजपुरी समझे वाला, जितना भी हमार फैंस बणन, हमार विरहा सुनने वाला, लोकगीत सुनने वाला, हम सब भाई के बहुत बहुत प्रणाम करत बनी। और हमेशा आप लोगन के बीच में जौन पेपर पत्रिका से कहानी निकलेला, उकरा में कुछ एहर ओहर कही के आप लोगन के जरूर हम भेजे के काम करीला। आप लोगन बड़ा प्यार दुलार अपन दिहिला। एक और कहानी प्रकाश में आई है बाबू, और आप लोगों के बीच में भेज रहा हूँ। हमें आशा नहीं, ये पूर्ण विश्वास है कि पहले जैसे आप लोग प्यार दुलार हमें देते आए हैं, इसी तरह से प्यार दुलार इस गाना में भी आप लोग दे देंगे। तो सुनी एक और कान कैसन।

कहे अंश अपना कहीं रविंदरोपी कहे अंश।

ये काल्पनिक कहानी नहीं बाबू, बल्कि पत्रिका से ये कहानी प्रकाशित हुई थी और मजबूर होकर के कहानी को गाना के रूप में हमें गाना पड़ा। एक लाइन तर्ज बामा सर का तर्ज का लाइन बा। बड़ा पुरान गजल का लाइन कवि जी लगा दे हलन का, कि ए मुसाफिर भटक

इहवें से बात के शुरुआत बा, कहानी के करबा, कैसन बात, कहाँ का कहानी बा। आप लोगन अगर ध्यान दे के सुनियन तब बाबूजी केतनो पत्थर का कलेजा हो पानी बन जाए, मोम बन जाएगा। कहानी बिरहा एकदम हमार शीशा जैसन झलके लगी, शीशा में जैसे साफ साफ सूरत लुकेला वही तरह साफ साफ कहानी सबके समझ में चली आई। नजम के लाइन में लिखल गई मास्टर का,

0: तनी बात समझ ल बाबू, कहानी बा यूपी राज्य का, यूपी में कहाँ का, लखनऊ का। लखनऊ में जे गई हुई कॉलोनी चार बाग जरूर देखले होगा लोग। वही कॉलोनी चार बाग में लखनऊ में नीरज और नीलम दो व्यक्ति ऐसा भी रहते रह। पति का नाम नीरज, पत्नी का नाम नीलम। जब उनकी ऊ लोग के शरीर से एक थे बेटी रहे, बेटी का नाम संजना बा। संजना बड़ा माई बाबू के लाड़ प्यार में पलत बे। माई बाबू बड़ा दुलार करें, अपन मेहनत मजदूरी की के धीरे धीरे बिटिया सयान होके लागल, पढ़ावे लिखावे लगलन लोग। जब 16 पार कैले बे ऊ लड़की संजना, ता देखें एक लड़का जेकर नाम बा राजू।
1: कान में दर्द के मारे जान ही निकल रही है, कहाँ जाऊँ, किससे इलाज कराऊँ, कुछ समझ नहीं आ रहा।
2: इसमें इतना समझना क्या, आज ही चलो डॉक्टर एमडी सादाब के पास, जो है ईएनटी स्पेशलिस्ट।
3: जी हाँ, उत्तर भारत के सबसे विश्वसनीय कान नाक एवं गले के विशेषज्ञ डॉक्टर एमडी सादाब पिछले 10 वर्षों से सिवान में सेवा दे रहे हैं, जो कि 10,000 से भी ज्यादा कान नाक गले के सर्जरी का अनुभव रखते हैं। साथ ही आयुष्मान भारत योजना के तहत स्वास्थ्य कार्ड धारक मरीजों का निःशुल्क में इलाज किया जाता है। तो आज ही पहुंचिए इस्मत ईएनटी केयर सेंटर, सिसवन ढाला के उत्तर आरके मॉडल स्कूल के बगल सिवान में।
4: अरे माँ, ये दांत का दर्द तो जान ले लेगा, क्या करूँ?
5: अब चिंता छोड़िए, गोपालगंज में है महावीर डेंटल एंड मैक्सिलोफेशियल ट्रॉमा केयर, मल्टी स्पेशलिटी डेंटल और फेस क्लिनिक, जहाँ दांत, जबड़े और चेहरे से जुड़ी हर समस्या का आधुनिक इलाज उपलब्ध है।
6: यहाँ सेवा दे रहे हैं गोपालगंज के फर्स्ट MDS डॉक्टर पल्लव राज, वरिष्ठ जबड़ा एवं फेस सर्जन और कैंसर रोग विशेषज्ञ, साथ में डॉक्टर अभिलाषा अग्रवाल, दंत एवं मुख रोग विशेषज्ञ और कॉस्मेटिक डेंटल।
5: यहाँ टेढ़े मेढ़े दांत, रूट कैनाल, चेहरे और मुंह से जुड़ी सभी समस्याओं का विशेषज्ञ इलाज किया जाता है।
6: ध्यान दे, आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए टूटे हुए जबड़े और मुंह का कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का मुफ्त इलाज उपलब्ध है।
5: पता, शनिवार और रविवार महावीर मेडिकल हॉल, अम्बेडकर चौक, हॉस्पिटल रोड, गोपालगंज। अन्य दिन केडिया मैक्सिलोफेशियल एंड कॉस्मेटिक केयर, मुंशी प्रेमचंद पार्क के पास, बेतिया हाता, गोरखपुर।
6: हर दिन दोनों क्लिनिक पर डॉक्टर पल्लव राज और उनके विशेष टीम द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है।
5: संपर्क करें 84710-3992 या 9765-65750।
4: ये सफेद दाग बढ़ता ही जा रहा है, लोगों की नजरें, बातें, सब कुछ बदल गया है। अरे क्यों घबराती हो, गोपालगंज में एक जगह है जहां लोग सिर्फ हिम्मत ही नहीं उम्मीद भी लेकर लौटते हैं।
5: हाँ, अब सफेद दाग का समाधान है, चरक सफेद दाग स्पेशलिस्ट डॉक्टर इरशाद अहमद द्वारा एडवांस्ड एक्यूपंक्चर मशीन टेक्निक से।
4: सिर्फ 1 से 2 सप्ताह में रोग में राहत महसूस करें, आज ही संपर्क करें डॉक्टर इरशाद अहमद, ल्यूको क्लिनिक, हर शनिवार, समय सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक।
5: पता, जंगलिया मोहल्ला, नूर मेडिकल के पास, गोपालगंज। कॉल करें 94512-11001।
0: राजू उर्फ राज, राज से प्यार करे लगल। राजू नाम के लड़का से प्यार करत भी संजना। आज जब संजना प्यार करे लगल तो एक दिन राजू कहले बा संजना से, तरज बा का तर्ज कलाइन बा मास्टर। ई है तरज बा।

कहलस राजू की संजना ए तरह हमनी के प्यार कितना दिन छुप छुपा के चली। एक काम करा कि इस सारा भेज जाके अपने मम्मी पापा से बता दे। आखिरकार संजना वो दिन घरे गई अजा के सारी बात अपना मम्मी पापा से बतौलस। मम्मी पापा इतराज कैलन कि ना बेटी ऐसन काम करबू तो कुल का इज्जत का पगरी माटी में मिल जाये, ऐसन ना कल जला। लेकिन संजना प्यार में दीवाना बे राजू के, अब एकदम ओके समझ में ना आवे कि का करी। आखिरकार माई बाबू समझावत रही गेलन लेकिन वो लड़की संजना ना मानल, जाके शादी कह ली हलस अपने माई बाबू के विरोध से, विरोध कह के। और मंदिर में जाके कोर्ट में जाके दोनों राजू और संजना शादी कह ली हलन। आ जब शादी कह ली हलन तो दोनों राजू और संजना के देह से एक ठे लड़का भइल। आ जब एक ठे लड़का भइल तब तक दोनों और खुश भइलन, और खुश भइलन। दोनों प्राणी अपन मजे में खुशी में रहत हवन। कुछ दिन बीतल बा समय, लेकिन देखें छुपी छुपाई बात, ये संजना को पता नहीं था कि उसका पति राजू जो है कुछ गिरोह के साथ रहता है। राजू कुछ अतताइयों के साथ रहता था, गिरोह के साथ रहता था, जो लोग उपद्रवी थे, उपद्रवियों के गिरोह में रहता था, शामिल था। आखिरकार बाबू एक दिन नतीजा ये निकला कि पुलिस से मुठभेड़ हो गई। उस गिरोह से और पुलिस से मुठभेड़ हुई, और उस मुठभेड़ में ये जो राजू नाम का लड़का था, संजना का पति, ये काउंटर किया जाता है, मुठभेड़ में मारा जाता है। और जब मारा जाता है तब तो बेचारी ये लाचार हो गई, विधवा हो गई, अपने छोटा सा मासूम बेटा को लेकर रो रही है, लेकर रोती है। ई खबर जब संजना के माई बाबू के पता चलल बा, कहे कि माई बाबू तो शादी के उना विरोध में रहलन। जब शादी संजना कह लियलस तो माई बाबू कह दियलन कि से जाओ, तुम अपने मर्जी से शादी की हो तो आज से ये समझ जाना कि तेरे इस दुनिया में माँ बाप नहीं है। माँ बाप से नाता टूट गया। लेकिन जब ये घटना घटल बा तो माई माई होले बाबू बाबू होले। माई बाबू खाती औलाद बाबू कितना प्रिय होला, अब हमरे बतावला से ज्यादा आप लोगन समझत हो बा। आखिर माई बाबू के ना रह गई। एकर दुख देख के नतीजा निकलल का भैया,

माई बाबू समझाओ तो उनकी बेटी हमन का तो माना कर ली जाती, लेकिन तू ना मन लू, लेकिन चला जौन भइल तौन भइल, चला घरे चला। काहे कि लमहर जिंदगी आके ए

ठीक भइल शादी जाके हे भैया दिल्ली सहरिया में आ भइल न शेखर सं

0: माई बाबू समझाओ तन की बेटी बहुत लमहर जिंदगी बा, आखिर तेरे जिंदगी कैसे तुकट बन। संजना रोत बेकहत देखी हमें छोट लड़का के छोड़ के कहा जाए। तब तक संजना के सास मतलब राजू के मतारी, उकरे पति का मतारी रोए लगल और रो के कहली कि बिटिया तू माई बाबू ठीक कहता ना तहार लमहर जिंदगी बा, तू चल जा माई बाबू के संगे, ए लड़का के चिंता मत कर, ए लड़का के हम संभाल ले। समझावला बुझावला से संजना तैयार तो भइल बाबू, आइल अपने मम्मी पापा के घरे। जब तक दो चार पांच छह महीना बीतल मम्मी पापा के साथ रहत रहे तो दो दिन चार दिन दस दिन पर जाके अपने बेटा के देख ले। लेकिन मम्मी पापा ओकर एक दिन शेखर नाम के लड़का से दिल्ली में शादी तय कर दिया। शादी हो गई, दोबारा शेखर की दुल्हन बनी और शेखर के दुल्हन बन के जिंदगी अपन जिंदगी का निर्वाह करे लगल। शेखर दिल्ली में मोबाइल वगैरह का उनका दुकान रहे, बिजनेसमैन रहलन, अच्छा रहलन। अपन दोनों प्राणी वही मोबाइल के दुकान पर जाए सुबह शाम के लौटे और ए तरह जिंदगी अपन कटे लगल संजना के। तो कवि जी का भाव देवे के पड़ल, बड़ के दा मास्टर
1: चान मिल गया, ए भैया चकोरी को अब चान मिल गया, पुलकित हुआ परिंदा पाके सुबह का भान।
0: तरज बा मास्टर का तरज कलाइन बा बढ़ के दा।
1: वह तरज बा कि गोरी तोरी मुसुकी, गोरी तोरी मुसुकी चवनिया रे, गोरी तोरी मुसुकी

0: दोनों संजना और शेखर मरद मेरारू गाड़ी से अपना जासन दुकान पर, दिन भर दुकान पर रहसन, शाम के लौटसन। जब रिंग रोड बीच पर जासन त वहाँ ट्रैफिक पर जब गाड़ी रुके तब बाबू भिकमंगा केहू भीख मांगे, केहू कौन आके शीशा उसा साफ करे लागे, दो चार रुपया मिल जाए, केहू वही में कुछ बेचे लागे, केहू कौनो लड़का फुलौना बेचता, ले लो मैडम ले लो मैडम, केहू लड़का कलम बेचता, कुछ भी अपन ए तरह के रोजगार रोज का रोजाना का काम रहे। एहर कतनी बात ही हमें छोड़ दे, अब ओहर जवनु राजू का लड़का रहे, संजना का जोन लड़का बा जोन छोड़ के आई बे, धीरे धीरे बड़ा हो गई आ ओहर ओके तकलीफ होके लागल, काहे कि मतारी भी संजना का सास मतलब वो लड़का का दादी भी पुरान हो चुका रहे, कहीं से कमाए का स्रोत ना रहे, तो वो लड़का का बुआ मतलब राजू का बहिन दिल्ली में रहत रहे। तो जब सुनलस तो कलस की मम्मी तू बबुआ के लेके चली आवे।
1: कई दिनों से पेट के निचले हिस्से में बहुत दर्द है, रिपोर्ट में पथरी और बच्चेदानी की भी दिक्कत बताई गई है।
2: डॉक्टर ने कहा है ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन जगह ऐसी हो जहां अच्छा सर्जन भी हो और महिला डॉक्टर भी। अब हर चिंता का समाधान है शल्यम हॉस्पिटल,
1: अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूरा भोजपुरवा में NH 27 पर दक्षिण साइड गोपालगंज में स्थित शल्यम हॉस्पिटल।
2: यहां आयुष्मान कार्ड से 5 लाख रुपए तक मुफ्त ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
1: सर्जरी विभाग हो या स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग, इलाज होता है अनुभवी विशेष द्वारा।
2: डॉक्टर मनोज कुमार गुप्ता MBBS MS सर्जरी लैप्रोस्कोपिक सर्जन और डॉक्टर डेजी सिन्हा MBBS MD DNB स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
1: शल्यम हॉस्पिटल में उपलब्ध है आधुनिक मशीनें और एक ही छत के नीचे OPD IPD ICU मॉड्यूलर OT अल्ट्रासाउंड पैथोलॉजी लैब फार्मेसी और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा।
2: आज ही विजिट कीजिए शल्यम हॉस्पिटल मल्टी स्पेशलिटी एंड ट्रॉमा सेंटर RR मोड़ से करीब 800 मीटर पूरा भोजपुरवा NH 27 गोपालगंज।
1: कॉल करें 70 70 75 63 100 या 70 70 75 42 100 या हमारी वेबसाइट पर विजिट करें www.shalyamhospital.com।
3: नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप खालिद रशीद से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल हाइड्रोजन से चलने वाली देश की पहली रेलगाड़ी को हरी झंडी दिखाएंगे। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने पटना के 150 सरकारी विद्यालयों में लाइव क्लासेस की शुरुआत की। 10 मॉडल विद्यालयों में JEE और NEET के लिए निशुल्क कोचिंग व्यवस्था भी शुरू। बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव के लिए नामांकन वापसी के अंतिम दिन एक प्रत्याशी ने नाम वापस लिया। अब 25 उम्मीदवार चुनाव मैदान में। और मानसून की सक्रियता से प्रदेश के विभिन्न भागों में बारिश का सिलसिला जारी। नदियों का जलस्तर बढ़ा, दरभंगा जिले के कई प्रखंड हुए बाढ़ से प्रभावित। अब समाचार विस्तार से। देश में कल से हाइड्रोजन चालित रेलगाड़ी की शुरुआत हो रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हरियाणा के जींद रेलवे स्टेशन पर हाइड्रोजन से चलने वाली देश की पहली रेलगाड़ी को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। ये रेलगाड़ी हाइड्रोजन फ्यूल सेल तकनीक से संचालित है, जो ट्रेन को चलाने के लिए हाइड्रोजन को बिजली में परिवर्तित करती है। एक रिपोर्ट।
4: देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन शुरू होने से रेलवे अब स्वच्छ और पर्यावरण के अनुकूल सफर की ओर एक नई शुरुआत कर रहा है। इसमें 3200 हॉर्स पावर का इंजन लगाया गया है, जो इसे दुनिया की सबसे ताकतवर हाइड्रोजन ट्रेनों में से एक बनाता है। इस ट्रेन में 10 डिब्बे हैं, जिससे यह दुनिया की सबसे लंबी हाइड्रोजन से चलने वाली यात्री ट्रेनों में शामिल हो जाएगी। यह ट्रेन जींद सोनीपत रेल खंड पर 75 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी। ग्रीन हाइड्रोजन के इस्तेमाल से कोयले जैसे जीवाश्म ईंधन से बनने वाली बिजली पर निर्भरता कम होगी। इसके अलावा पर्यावरण की रक्षा होगी और देश को स्वच्छ परिवहन की दिशा में आगे बढ़ने में मदद मिलेगी। इस ट्रेन के शुरू होने के साथ ही भारत उन चुनिंदा देशों जर्मनी जापान चीन और अमेरिका की सूची में शामिल हो जाएगा, जो रेलवे में साफ

0: और हरित तकनीक के लिए हाइड्रोजन का उपयोग कर रहा है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने आज पटना के 150 सरकारी विद्यालयों में लाइव क्लासेस की शुरुआत की। श्री चौधरी ने शास्त्री नगर स्थित राजकीय कन्या उच्च माध्यमिक विद्यालय में आयोजित कार्यक्रम के दौरान इस पहल का विधिवत शुभारंभ किया। इस योजना के तहत 9वीं से 12वीं कक्षा तक के विद्यार्थियों के लिए लाइव ऑनलाइन कक्षाएं, एआई आधारित अध्ययन सहायता, स्मार्ट डिजिटल कंटेंट, नोट्स तथा मॉक टेस्ट की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। इसके साथ ही जेईई, नीट और सीयूईटी जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी की सुविधा भी उपलब्ध कराई जा रही है। मुख्यमंत्री ने पटना के 10 मॉडल विद्यालयों में जेईई और नीट की निःशुल्क कोचिंग व्यवस्था की भी शुरुआत की। इस महीने के अंत तक पटना के सभी हाई स्कूलों में लाइव क्लासेस की शुरुआत कर दी जाएगी। बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव के लिए आज नाम वापसी के अंतिम दिन एक निर्दलीय उम्मीदवार मिथिलेश कुमार ने अपना नाम वापस ले लिया। अब 25 उम्मीदवार चुनावी मैदान में रह गए हैं। इनमें एनडीए की ओर से भाजपा के नीरज कुमार, राजद से रेखा कुमारी और जन स्वराज पार्टी से प्रशांत किशोर प्रमुख हैं। कल उम्मीदवारों को चुनाव चिन्ह आवंटित किए जाएंगे। उपचुनाव के लिए मतदान 30 जुलाई को होगा। मतों की गिनती 3 अगस्त को की जाएगी। हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के संरक्षक और केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने कहा है कि बांकीपुर उपचुनाव में भाजपा प्रत्याशी नीरज कुमार की जीत तय है। श्री मांझी ने पटना में पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि भाजपा ने एक जमीनी कार्यकर्ता को टिकट देकर उदाहरण प्रस्तुत किया है।
2: प्रशांत किशोर को तो हम जानते ही नहीं हैं। वो राजनीति में भले आए बाए बोलते हों, लेकिन राजनीति का अस्तित्व तो कुछ है ही नहीं। और जहां तक भाजपा का सवाल है, भाजपा तो एक से एक मिराकल करती है कि नितिन नवीन को उन्होंने चेयरमैन बना दिया समूचे भारत के बीजेपी का। उसी प्रकार से यहां एक नया युवक जो सचमुच में कार्यकर्ता है, उसको उन्होंने टिकट दिया। हम समझते हैं कि सभी कार्यकर्ता, सभी एनडीए के लोग उनके साथ है, उनकी जीत निश्चित है।
1: विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर प्रेम कुमार ने कहा कि बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव में भाजपा प्रत्याशी की जीत पक्की है। पटना में संवाददाताओं से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि क्षेत्र के लोगों से मिल रही फीडबैक के अनुसार भाजपा प्रत्याशी भारी मतों से जीतेंगे।
3: चुनाव मतलब समझिए कि प्रारंभ हो गया है और जैसा जानकारी के मतदान 30 तारीख को जाकर के है। लोकतंत्र में तो जनता मालिक होती है, जनता का निर्णय अंतिम निर्णय होता जाकर के है। मुझे भी फीडबैक मिल रहा है एनडीए के प्रत्याशी जो हमारे हैं, भारी मतों से भाजपा के प्रत्याशी एनडीए प्रत्याशी जो है सिन्हा जी विजयी हो रहे हैं।
1: शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने कहा है कि राज्य में शिक्षकों के स्थानांतरण की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। उन्होंने कहा कि आवेदन की सूचना आते ही इच्छुक शिक्षक पोर्टल पर आवेदन कर प्रक्रिया में शामिल हो सकते हैं। श्री तिवारी ने TRE-4 परीक्षा को लेकर भी स्पष्ट किया है कि BPSC को इस संबंध में अधियाचना जल्द भेज दी जाएगी।
4: इसी महीने TRE-4 की अधियाचना हम भेजने वाले हैं और शिक्षकों के स्थानांतरण 10 तारीख से शुरू हो गए हैं, क्योंकि कई प्रक्रिया को पार करके उन्हें ट्रांसफर लेना है और उसी के लिए रेशनलाइजेशन का काम चल रहा है और एक सप्ताह का उनके उन्हें टाइम मिलेगा, वो भी तिथि आज से कल तक घोषित होगी। और जब टाइम रहेगा इस शिक्षा पोर्टल पर वो अपना आवेदन दर्ज कराएंगे और उसके बाद वो स्थानांतरण पाएंगे।
1: देश भर में आज भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा निकाली जा रही है। आषाढ़ शुक्ल पक्ष की द्वितीया के अवसर पर आयोजित इस धार्मिक यात्रा में भगवान जगन्नाथ, बड़े भाई बलराम और बहन सुभद्रा रथ पर विराजमान होकर भक्तों को दर्शन देते हैं। इस अवसर पर राजधानी पटना में भी इस्कॉन मंदिर की ओर से भव्य रथ यात्रा निकाली गई। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी बुद्ध मार्ग स्थित इस्कॉन मंदिर से निकाली गई रथ यात्रा में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने भगवान जगन्नाथ का रथ भी खींचा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को रथ यात्रा की बधाई दी है। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल सेवानिवृत्त अता हसनैन और मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने भी प्रदेशवासियों को रथ यात्रा की शुभकामनाएं दी हैं। शेष समाचार एक अंतराल के बाद।

0: समाचारों में आपका फिर स्वागत है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल AIR News_Patna को फॉलो कर सकते हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को वृद्ध या असाध्य रोग से ग्रसित कैदियों की शीघ्र या समय से पहले रिहाई के लिए व्यापक नीति बनाने और लागू करने का निर्देश दिया है। न्यायालय ने देश भर में ऐसे मामलों पर विचार के लिए एक समान तंत्र सुनिश्चित करने के संबंध में नीति को 3 महीने के भीतर अधिसूचित करने का आदेश दिया है। नेपाल में भारी बारिश के कारण गंडक, बागमती, कोसी और कमला बलान समेत उत्तर बिहार की कई नदियों के जलस्तर में भारी बढ़ोतरी हो रही है। कमला बलान नदी में आई बाढ़ के कारण घनश्यामपुर और कुशेश्वर स्थान प्रखंड के दर्जनों गांव में पानी प्रवेश कर गया है। एक रिपोर्ट।
1: कमला बलान नदी के दोनों तटबंधों के बीच बसे घनश्यामपुर प्रखंड के बाउर, गिदराही, नपटोलिया, कनकी मुसहरी, बैजनाथपुर, गिद्धा, भरसाहा, कैथाही समेत कई गांवों में बाढ़ का पानी प्रवेश कर गया है। इससे इन पंचायतों का सड़क संपर्क प्रखंड मुख्यालय से टूट गया है। वहीं कई विद्यालयों में बाढ़ का पानी घुस जाने से पठन पाठन प्रभावित हुआ है। लोग सरकारी और निजी नावों के सहारे अपनी दैनिक जरूरतों के लिए आवाजाही कर रहे हैं। इधर प्रशासन तटबंधों की लगातार निगरानी कर रहा है। आकाशवाणी समाचार के लिए दरभंगा से मैं मणिकांत झा।
0: पश्चिम चंपारण जिले में भी गंडक, मसान समेत कई नदियों का जलस्तर तेजी से बढ़ने से तटबंधों पर भारी दबाव बन गया है। इसे देखते हुए निगरानी बढ़ा दी गई है। एक रिपोर्ट।
2: सीमावर्ती नेपाल के तराई क्षेत्र में भारी बारिश के कारण पश्चिम चंपारण जिले में गंडक समेत विभिन्न नदियों में भारी उफान है। मसान समेत कई पहाड़ी नदियों का जलस्तर बढ़ रहा है। रामनगर प्रखंड के कई गांवों में बाढ़ का पानी फैलने लगा है। इधर वाल्मीकि नगर गंडक बराज पर बढ़ते दबाव को देखते हुए 1,34,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया है। भारी मात्रा में पानी छोड़े जाने के मद्देनजर प्रशासन ने लोगों से सतर्क रहने की अपील की है। पश्चिम चंपारण से आशीष कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से राहुल कुमार।
0: हमारे सुपौल संवाददाता ने बताया है कि कोसी बराज से आज 1,60,000 क्यूसेक से अधिक पानी छोड़ा गया। फिलहाल बराज पर जलस्तर स्थिर बना हुआ है, जबकि नेपाल के जल अधिग्रहण क्षेत्र बराह में शाम 6 बजे से 1,12,600 क्यूसेक पानी घटते क्रम में छोड़ा गया। कोसी नदी के जलस्तर में पिछले कुछ दिनों से उतार चढ़ाव जारी है। इसे देखते हुए जल संसाधन विभाग की टीम लगातार स्थिति पर नजर बनाए हुए है। तटबंधों और स्परों की निगरानी जारी है। वहीं अररिया जिले के सिकटी प्रखंड के पडरिया घाट पर बकरा नदी और नूना नदी पर बना चचरी पुल ध्वस्त हो गया, जिससे सिंघिया, ओलाबाड़ी, बांसवाड़ी, टीरा खारदा, ठेंगापुर सहित आधा दर्जन गांवों में सड़क संपर्क टूट गया है। प्रदेश में मानसून पूरी तरह सक्रिय बना हुआ है। मौसम विभाग ने अपने पूर्वानुमान में कहा है कि अगले एक सप्ताह तक राज्य के अधिकतर भागों में बारिश की परिस्थितियां बनी रहेंगी। विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान अरवल, औरंगाबाद, भभुआ, भोजपुर, बक्सर, गोपालगंज, सारण और सीवान जिले में तेज हवा के साथ बारिश का पूर्वानुमान व्यक्त किया है। वहीं भागलपुर, जमुई, खगड़िया, मुंगेर समेत राज्य के दक्षिण पश्चिम और दक्षिण मध्य भागों में कई स्थानों पर वज्रपात और बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है।
3: दिनांक 17 जुलाई राज्य के बांका एवं पश्चिमी चंपारण जिलों में मेघ गर्जन, वज्रपात तथा भारी वर्षा के साथ तेज हवा 30 से 40 किमी प्रति घंटे तक चलने की संभावना है। राज्य के दक्षिण पश्चिम एवं दक्षिण मध्य भाग के जिलों भागलपुर, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, जमुई, खगड़िया, मुंगेर, सारण एवं सिवान जिलों में मेघ गर्जन वज्रपात के साथ तेज हवा 30 से 40 किमी प्रति घंटे तक चलने की संभावना है।
0: विभाग ने अगले 2 दिनों के दौरान जहानाबाद, नालंदा और पटना जिले में भी विभिन्न स्थानों पर अत्यधिक भारी वर्षा की आशंका को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार पिछले 24 घंटों के दौरान पश्चिम चंपारण के मैनाटांड में सबसे अधिक 154 मिलीमीटर से अधिक वर्षा रिकॉर्ड की गई है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के 98वें स्थापना दिवस के अवसर पर आज पटना स्थित ICAR के पूर्वी अनुसंधान परिसर में कृषि में सुखाड़ प्रबंधन विषय पर संवाद का आयोजन किया गया। कृषक और वैज्ञानिकों के बीच संवाद के दौरान अलनीनो के मौसम तथा कृषि पर प्रभाव, वर्षा जल संचयन और सुखाड़ के प्रभावी प्रबंधन को लेकर विभिन्न उपायों पर चर्चा की गई। पटना जिले के बुद्धा कॉलोनी थाना क्षेत्र अंतर्गत बांस घाट के करीब आज सुबह पुलिस के साथ मुठभेड़ में चर्चित बंटी यादव हत्याकांड का मुख्य आरोपी रवीश उर्फ बसिया घायल हो गया। पटना के वरीय पुलिस अधीक्षक कार्तिकी के शर्मा ने बताया है कि उसके पैर में गोली लगी है। घायल अपराधी को पीएमसीएच में भर्ती कराया गया है। फीफा फुटबॉल विश्व कप के फाइनल में अर्जेंटीना का मुकाबला स्पेन से होगा। देर रात खेले गए दूसरे सेमीफाइनल मुकाबले में अर्जेंटीना ने इंग्लैंड को 2-1 से पराजित कर दिया। इसके पूर्व पहले सेमीफाइनल में स्पेन ने फ्रांस को पराजित कर फाइनल में स्थान पक्का किया है। विश्व कप का फाइनल मुकाबला 19 जुलाई को खेला जाएगा। अररिया जिले के जोगबनी में भारत नेपाल सीमा पर जांच के दौरान एसएसबी जवानों ने एक महिला को 38 ग्राम ब्राउन शुगर के साथ गिरफ्तार कर लिया। रोहतास जिले के मुफस्सिल थाना क्षेत्र अंतर्गत नहोना गांव में जमीन विवाद को लेकर हुई गोलीबारी मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। सीवान में जेपी चौक स्थित दरबार रोड के समीप एक साड़ी दुकान में भीषण आगलगी की घटना में बड़ा आर्थिक नुकसान हुआ है। अग्निशमन अधिकारियों ने आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट बताया है। पश्चिम चंपारण जिले के वाल्मीकि नगर थाना क्षेत्र अंतर्गत बिसहा गांव में एक घर में घुसे जहरीले किंग कोबरा सांप का एक महिला सर्प मित्र ने सुरक्षित रेस्क्यू कर लिया। पकड़े गए सांप को वाल्मीकि नगर वन क्षेत्र में छोड़ दिया गया है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल हाइड्रोजन से चलने वाली देश की पहली रेलगाड़ी को हरी झंडी दिखाएंगे। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने पटना के 150 सरकारी विद्यालयों में लाइव क्लासेस की शुरुआत की। 10 मॉडल विद्यालयों में जेईई और नीट के लिए निःशुल्क कोचिंग व्यवस्था भी शुरू। बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव के लिए नामांकन वापसी के अंतिम दिन एक प्रत्याशी ने नाम वापस लिया। अब 25 उम्मीदवार चुनाव मैदान में। और मानसून की सक्रियता से प्रदेश के विभिन्न भागों में बारिश का सिलसिला जारी। नदियों का जलस्तर बढ़ा। दरभंगा जिले के कई प्रखंड हुए बाढ़ से प्रभावित। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन प्रातः 8:48 से प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

0: समाचार के बाद आप सभी का स्वागत है रेडियो रमजी 90.4 FM पर। आइए सुनते हैं अब आगे का प्रसारण।
1: नन्ना मुन्ना लाही हूँ, देश का सिपाही हूँ।
2: रुको रुको बेटा, आप तो बड़ा अच्छा गा रहे हो।
1: हाँ कल मेरे टीचर मुझे अच्छे से याद करने के लिए बोले हैं।
2: अच्छा, तो कौन से स्कूल में पढ़ते हैं आप?
1: मैं पढ़ता हूँ श्री भारती एकेडमी में।
3: श्री भारती एकेडमी जो है CBSE नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त स्कूल।
4: हमारे यहाँ बोलचाल के साथ ही बच्चों को खेल खेल में पढ़ाया जाता है। इसके साथ ही छात्रवास के अलावा आने और जाने के लिए परिवहन की भी सुविधा उपलब्ध है।
3: श्री भारती एकेडमी आपके बच्चों को बनाता है होनहार और देता है उनके फ्यूचर को एक नई उड़ान।
4: आज ही एडमिशन के लिए आए चैन पट्टी के उत्तर ग्राम डेरवा तिलंगही मैदान के पूरब गोपालगंज।
3: हमारा जूनियर ब्रांच सरिया वार्ड नंबर 5 हनुमानगढ़ी गोपालगंज में है।
4: जानकारी है तो कॉल करे 6052 62112 पे।
5: घर बन रहा हो तो सिर्फ ईंट और सीमेंट नहीं, टाइल्स और फिटिंग्स का चुनाव भी होना चाहिए शानदार।
6: इसीलिए गोपालगंज जिले के लोगों की पहली पसंद बन चुका है BK टाइल्स। BK टाइल्स, यहाँ मिलेंगे सभी प्रकार के डिजाइनर टाइल्स, मार्बल, ग्रेनाइट, बेसिन, कॉमोड, बाथ फिटिंग्स और घर सजाने के कई आधुनिक प्रोडक्ट,
7: वो भी किफायती दामों पर। और खास बात, गोपालगंज जिले में हमारी 4 सुविधाजनक शाखाएं।
6: अरार मोड़ SP कोठी के पास गोपालगंज, दूसरा ब्रांच भटवा मोड़ के पास कुचायको,
7: तीसरा ब्रांच इस्लामिया कॉलेज के पास मेन रोड थावे मीरगंज और चौथा ब्रांच बंतरिया मोड़ भोरे।
6: और अब सिवान जिले में भी हमारी 2 शाखाएं उपलब्ध हैं। सिवान ब्रांच कुशवाहा चौक हकाम बाईपास सिवान
7: और मैरवा ब्रांच बबनौली चौक मैरवा सिवान।
6: तो आज ही अपने सबसे नजदीकी BK टाइल्स ब्रांच पर आए और करे बेहतरीन खरीदारी।
7: अधिक जानकारी के लिए संपर्क करे गोपालगंज ब्रांच में 8460571406, मीरगंज ब्रांच में 9693101611,
6: कुचाई कोट ब्रांच में 9693101602, भोरे ब्रांच में 8207856404,
7: सिवान ब्रांच में 9942071405, मैरवा ब्रांच में 8207856403।
8: अभी हो काकाला की बूढ़ी राजू के मतारी संजना के सास अपन लड़का के लेके अपने लड़की के पास दिल्ली चली गई। अभी लड़का धीरे धीरे बड़ होके लगल लड़कन के संगे रहे, देखे कि कुल लड़का हमारा संग के जाता सा कोनो भीख मांगता कोनो कुछ बेचता। अपना दादी से कलश की दादी हमहू लैकन के संगे जाई भीख मांगे, मरलस दू थपरा दादी कलश की तू भीख मांगबा हां तो कलश की तब हम के कुछ दे दा पैसा किन के हम कुछ बेचब। 50 दादी के मुंह माया लैकन के लैका के नाती के अपन 50 दे दियलस। अभी गुब्बारा बेचे लागल वही रिंग रोड पर, जब ट्रैफिक पर गाड़ी रुके तो गाड़ी के सामने जाके मैडम साहब ले लीजिए गुब्बारा ले लीजिए लाल पियर गुब्बारा। इसी तरह से बाबू संजना की गाड़ी के सामने रोज आता था और संजना धीरे धीरे उस बच्चा से प्यार करने लगे। वो का जानते कि हमारे लड़का है, अब तो बड़ा हो चल बा गुब्बारा रोज जाके कहे कि मैडम गुब्बारा ले लीजिए बहुत सुंदर गुब्बारा है आपके बच्चे खेलेंगे। संजना कहती है कि नहीं बाबू मेरा तो कोई बच्चा नहीं है। इस तरह से 10-20 रुपया इसी तरह से वो दे देती थी। आखिर अंजाम निकला क्या बाबू? तर्ज बा का तर्ज का लाइन बा

संजना के गाड़ी रुकल बे ट्रैफिक पर, दौड़ के गइल बाटे। दौड़ के गइल बाटे संजना बतौली पहलवे की धीरे धीरे मने मने वो लड़का से बड़ा प्यार करे लगल। ओकर रहन स्वभाव देख के वो लड़का पर ओकरा बड़ा दया आवे। संजना के पास गइल बा कलश की मैडम आंटी बड़ी सुंदर गुब्बारा लिए हैं, गुब्बारा ले लो। संजना कहल की बेटा मैं गुब्बारा लेकर क्या करूंगी, जबकि संजना उस समय गर्भवती थी। ये आप लोगों के बतावल जरूरी बा कि संजना उस समय गर्भवती थे, गर्भवती रहे। संजना कहल की बेटा गुब्बारा लेकर क्या करूंगी, मेरे घर में तो गुब्बारा कोई खिलने वाला नहीं है। कहल की मैडम ले लो ना, ले लो। जब जीत लड़का कैलस त 20 रुपया निकाल के संजना दिहलस आ गुब्बारा ले लिहलस। आखिर बाबू गुब्बारा लेके संजना चल गई, लेकिन लड़का के वो सूरत हमेशा ओकरा दिमाग पर नाचत रहे। देखें एक दिन घटना घटल बा। सुबह सुबह के बेला में उहे राजू लड़का संजना के, राजू लड़का वो अपन दुकान छन ले बा, अपन गुब्बारा उबारा फुलौले बा आ लेके रिंग रोड पर बेचे खाते निकलल बा। नतीजा निकलल का बाबूजी,

0: वही लड़का अपनी बैलून वगैरह फुला करके पीठ पर झोरा है, हाथ में बैलून फुला हुआ है और दिल्ली का रिंग रोड पार करना चाहता था। बारे भगवान तेरी भी लीला गजब है। तब तक एक बस रफ्तार में आती है और उसे धक्का मार कर निकल जाती। छोटा सा 8-9 वर्ष का वो लड़का बीच रूट पर गिर जाता है, सर फट गया, इतना खून निकल चुका बाबा, वहीं पर छटपटा रहा है, बेहोश हो गया। कुछ लोग जो उसके साथ लड़के रहते थे जाकर उसके घर पर खबर दिए और उसको हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। उसकी दादी जो थी बेटा को हॉस्पिटल में ले जाकर के भर्ती कराती है, उसकी बुआ भर्ती कराती है। आखिरकार बेहोश लड़का पड़ा हुआ है हॉस्पिटल के अंदर। और इधर रोजाना की भांति शेखर और संजना अपनी गाड़ी से आते हैं, लोग अपनी दुकान पर जा रहे हैं। वही रिंग रोड ट्रैफिक पर जब गाड़ी रुकी है, संजना चारों तरफ, संजना की निगाहें दौड़ने लगी। भाई रोज तो लड़का आ जाता था दौड़ करके गाड़ी के नजदीक, आज नहीं आ रहा है, क्या बात है? कुछ लड़कों से पूछती है उसके साथ में जो बेचते थे कि अरे आज वो राजू नहीं दिखाई पड़ा रहा है। लड़के से बताए कि मैडम राजू आज नहीं आएगा, राजू का एक्सीडेंट हो गया है। अभाक हो जाती है संजना, कहती है क्या एक्सीडेंट हो गया, कैसे? सब लड़के खिस्सा बताते हैं, बोली कि है कहाँ वो? लड़के सब बताए हैं कि सहद्रा हॉस्पिटल में है, दिल्ली के साथ सहद्रा हॉस्पिटल। अपने पति से संजना कहती है कि देखिए आज आप जाइए, जाइए दुकान पर, आज मैं नहीं जाऊंगी, मैं जाती हूँ उस बच्चा से भेंट करूंगी। उसका पति शेखर कहता है कि ठीक है जाओ और उस बच्चे को कुछ 10-20 हजार रुपया दे देना, मदद कर देना और फिर तुम आ जाना। पति चला गया दुकान पर, संजना गाड़ी लेकर के इधर चली आई सहद्रा हॉस्पिटल। और जब सहद्रा हॉस्पिटल आती है तो क्या देखती है बाबू?
1: सुनी क्या खबर है?

बाबू तब तक देखती है कि एक कोने में उसकी पहली सास राज उर्फ राजू की माँ बैठी है कोने में रो रही है। संजना अवाक हो जाती है, दौड़ कर जाती है उस सास माँ के पास, कहती है कि माँ ये क्या, यहाँ क्यों तुम बैठी हो, क्या बात है, कैसे तुम यहाँ दिल्ली में आई। तब रोई

0: बुढ़िया सास बताती है शुरू से लेकर के अंत तक कहानी की, बेटी ऐसी ऐसी घटना घटी, हम दिल्ली आ गई राजू को लेकर के तुम्हारे बेटे को, और आज वो बेटा बैलून बेच रहा था, वो बेटा एक्सीडेंट हो गया है, जीवन और मौत के बीच जूझ रहा है। भगवान क्या मेरे नसीब में लिखे हैं बेटी, तुम्हारा भी साथ छूट गया, बेटा का भी साथ छूट गया, अब लग रहा है कि नाती भी नहीं बचेगा। इससे पहले तो मैं मर जाती तो ठीक था। ओ बुढ़िया रो रो जब पूरी कहानी बताई है, रो रही है एक तरफ बुढ़िया सास और एक तरफ इस बात को सुन करके वो संजना रो रही है।
1: ठक ठक
2: काजी, आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
3: अच्छा मिला ही नहीं
2: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें, अब चलिए सीधे कमल श्री में।
4: जी हाँ कमल श्री, याद रखें सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
2: आप भी आए कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, बारी मार्केट गोपालगंज।
4: याद रहे सीढ़ी से ऊपर आना है, जी हाँ सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है। सुनिए सुनिए सुनिए,
5: आपके शहर गोपालगंज में खुल गया है श्री कृष्णा साड़ी,
4: जिसमें आपको मिल रहा है सस्ते दामों में एक से बढ़कर एक डिजाइनों के लहंगा, फैंसी साड़ी, लेडी सूट, क्रॉप टॉप एवं कुर्ती।
5: श्री कृष्णा साड़ी दुकान है केडिया भवन, केडिया लेन, मेन रोड, गोपालगंज।
4: एक बार सेवा का मौका जरूर दें श्री कृष्णा साड़ी को।
3: तब भौजी आज सुबह रही से गोपालगंज गई रनिया, घूम लेनी नु सारा मार्केट, देख लेनी नु सारा बाजार, कोनो साड़ी पसंद आई लकी ना?
2: अरे ना देवर जी, कपड़ा तो बहुते देखनी है पर कोनो जचल है ना।
3: ई बात बा तो ऐसन करी कि अब चली सीधे हमरा साथे कमल श्री में,
4: महिलाओं की सबसे पहली पसंद कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री। सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए और नए नए डिजाइनों के फैंसी लहंगा, दुल्हन के लिए साड़ी, सूट पीस, लक्ष्मीपति साड़ियों के अलावा रेमंड्स के कोट पैंट और शूटिंग शाटिंग बाजार से कम रेट में ले जाएं।
6: जी हाँ कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए, बारी मार्केट फर्स्ट फ्लोर।
3: टॉप रामू काका, हई इलेक्ट्रिक के इतना सारा सामान कहाँ से खरीद के ले आओ तनी?
7: ई सब सामान संतोष इलेक्ट्रॉनिक से लेके आओ तनी बाबू।
3: अरे ई सामान तो एक नंबर बुझाता और काफी डिजाइनदार भी बा।
7: अरे हाँ बाबू, अपना गोपालगंज में इतना अच्छा दुकान कहाँ बा? संतोष इलेक्ट्रॉनिक्स में सस्ता में एक नंबर के सामान मिलेला।
3: हम तो अपना नौका घरवा खातिर इलेक्ट्रॉनिक के सारा सामान दिल्ली से लेके आवे के सोचत रहनी, लेकिन हम काले संतोष इलेक्ट्रॉनिक से जाके अपन पूरा सामान ले आए।
7: अरे हाँ बबुआ, संतोष इलेक्ट्रॉनिक से लिए या दिल्ली जाके पैसा बर्बाद कैले से का फायदा?
2: संतोष इलेक्ट्रॉनिक हाउस, जहाँ सस्ते दामों में बेस्ट क्वालिटी के इलेक्ट्रिक के सारे सामान मिलते हैं।
4: हमारा पता है चिराई घर पेट्रोल पंप के सामने, संतोष फर्नीचर के नीचे, कॉलेज रोड, गोपालगंज,
0: उस हॉस्पिटल में। लेकिन जब जान गई कि मेरा ही बेटा है, राजू मेरा ही बेटा है, डॉक्टर के सामने जा करके संजना एक बात कहती है। क्या कहती है बाबू?

तीन दिन तीन रात बेहोश वो राजू लड़का हॉस्पिटल में पड़ा रहा। तीन दिन के बाद वो बच्चा होश में आया है। डॉक्टर साहब आकर के उस संजना से और बुढ़िया से कहते हैं कि बूढ़ी माता बधाई हो, आपका नाती जो है सकुशल अब खतरा से बाहर निकल चुका है, होश में आ गया है, आप लोग चाहे तो जाकर के आईसीयू में मिल सकती हैं। अरे संजना दौड़ल न बे हो, सास पतोई दौड़लिन है, देखलिन है राजू के संजना। सबसे पहले वो प्रणाम किया राजू उस मैडम को देख करके, वो क्या जानता है कि यही मेरी माँ है। प्रणाम किया, कहा कि मैडम आंटी मैं जानता था कि और कोई आए चाहे नहीं आए लेकिन आप जरूर आओगी। संजना उसकी बात को सुन करके रो रही है कि आज मेरा ही बेटा मुझे पहचानता नहीं है, न मैं उसे पहचानती हूँ, लेकिन आज अब तो बताना जरूरी है, बताना ही होगा। आखिर वो मैडम कहती हैं कि बाबू मैं तेरी आंटी नहीं हूँ, मैं तेरी आंटी नहीं हूँ, तो मुझे माँ कह करके बुलाओ, मम्मी कह करके बुलाओ, मैं ही वो अभागन तेरी जन्म देने वाली मम्मी हूँ, माँ हूँ। राजू सुनता है, बहुत खुश होता है। दादी बताती है कि हाँ मुन्ना, हाँ राजू यही तेरी मम्मी है, इन्होंने ही तुझे जन्म दिया था। लेकिन बाबू होखल का अल्लाह के लाइन में कभी जी भाव दिहलन हूँ,

0: उधर फोन पर फोन करते जा रहा है शेखर, अरे संजना क्या कर रही हो, अभी तक तू आई नहीं, दो दिन बीत गया, तीन दिन बीत गया। संजना कहती है कि अब मैं नहीं आऊंगी। अब आके इधर शेखर सोचता है कि अरे, शेखर सोचता है कि क्या ऐसा भी होता है, अरे तुम गई थी उस बच्चा को कुछ पैसा कौड़ी देकर मदद कर दो, ऐसा थोड़ी होता है, तुम घर चली आओ। संजना कहती है कि अब मैं नहीं आऊंगी। शेखर सोचता है कि बात क्या है। तीन दिन के बाद, चार दिन के बाद कार लेकर के स्वयं हॉस्पिटल में आ गया। कहा कि संजना क्या बात है, जब सारी हकीकत, ओ शेखर जाना है, बुढ़िया उसकी पहली सास राज उर्फ राजू की माँ बताई है उस शेखर से पूरी बात। तब ये कहता है कि ठीक है, जो हुआ सो हुआ, चलो घर। लेकिन ये घर जाने से, शेखर के साथ जाने से इनकार करती है संजना। तब शेखर क्रोध में आ गया, कैला ना का
1: कि कहेला ना घर चला संजना तू लही।

0: गाली दे करके वो लौट जाता है। शेखर अपने घर चला गया। दो चार माह बीतने के बाद शेखर की अब जो माँ है वो कहती है कि सुनो शेखर, बहू घर से चली गई है और अच्छा नहीं लग रहा है, चलो हम भी चलते हैं और बहू को हम लाएंगे। माँ के कहने से शेखर अपनी माँ को लेकर के और जाता है, आता है यहाँ संजना के पास। संजना उस बुढ़िया के घर रह रही थी अपने बेटा के साथ। आ करके और उसकी सास, दूसरी सास मतलब शेखर की माँ कहती है कि बहू चलो कोई बात नहीं है, जो हुआ हुआ, लेकिन चलो घर, तेरे बिना घर अच्छा नहीं लग रहा है। जाने से इनकार करती है कि मैं नहीं जाऊंगी, मैं अब घर में नहीं जाऊंगी, मैं अपने बच्चा के साथ रहना चाहती हूँ। कहती है शेखर की माँ की अरे पागल, हम केवल तुम्हें नहीं कहते हैं चलने के लिए, तुम अपने बच्चे को भी ले लो, ओ हम लोगों का बेटा है, और अपनी माँ को भी ले लो। देखें एक मानवता, इसी को कहते हैं मानवता। कहती है कि अपने बेटे को भी लो, अपनी माँ को भी लो, और सभी लोगों को हम लोग अपने घर ले चलने के लिए आए हैं। दूसरी सास के कहने से वो संजना अपनी पहली सास को भी लेती है, अपने बेटा को भी लेती है, और फिर पुनः शेखर के घर में आकर पति पत्नी दो दो सास के साथ रह करके, अपने बेटा के साथ रह करके आज आराम से जिंदगी बिता रहे हैं। लेकिन कबीर जी भाव दिए हैं क्या,
1: अब सुन के निहोरा साजन के संजना मान।

चहाल हो। 18 वर्ष का राज हुआ, 21 साल हो।

आज बाबू वही लड़का राज 18 साल का हो गया। राज उर्फ राजू, उसका बेटा, उसके शरीर से जो संजना का बेटा है बड़ा वाला, वो राजू 18 साल का हो गया। और जो शेखर के शरीर से संजना का लड़का था, गर्भ के रूप में पल रहा था, वो आज 8 साल का हो गया। ये कहानी 2017 में दिल्ली में माँ बेटा का मिलान हुआ है। कहानी का अंतिम लाइन है, आज सभी लोग, सभी परिवार एक घर में एक छत के नीचे हंसी खुशी से जिंदगी लोग बिता रहे हैं। गाना का अंतिम प्रमाण था। जय जयकार श्री स्वामी जी के, ओम प्रकाश फुलवारी। कथन करे कबीर रविंदर नसारी अनुज की तैयारी। अरे चक

0: श्रोता लोगिन ई रहल रेडियो रिमझिम पर आज के बिरहा। हमरा पूरा उम्मीद बा कि आज के बिरहा रवा सभी के बहुते अच्छा लागल होई। तो अगर रवा सभी चाहत बानी ए पर अपन सुझाव या शिकायत हमनी तक पहुंचावे के तो हमनी के व्हाट्सएप नंबर बा 98527888291 और ईमेल आईडी बा radiorimjhim@gmail.com और हमनी के खत के पता बा रेडियो रिमझिम बंजारी मोर गोपालगंज पिन कोड 84 14 28। रउआ सभी कौनो भी माध्यम से अपन सुझाव या शिकायत हमनी के लगे भेज सकत बानी। तो चलिए अब हमके जाए के दी इजाजत। नमस्कार और इस सुनत रहे अपना बोली के पहचान रेडियो रिमझिम 90.4।
1: अगर आपका फर्नीचर डोलता है और बोलता है तो एक्सचेंज तो मांगता है।
2: संतोष फर्नीचर लेकर आ गए हैं ग्रेट एक्सचेंज ऑफर।
3: ग्रेट एक्सचेंज ऑफर, अपने घर के पुराने सोफा और डाइनिंग को ले आएं और नए सोफा तथा डाइनिंग को ले जाएं और बनाएं अपने घर को सुंदर तथा आकर्षक।
2: आज ही विजिट करें संतोष फर्नीचर, चिराईगर पेट्रोल पंप के सामने, कॉलेज रोड, गोपालगंज। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 82101 87952। नियम और शर्तें लागू।
4: जिले का गौरव संतोष मेडिकल हॉल, घोसमोड़, दरगाह रोड, गोपालगंज।
5: गोपालगंज जिले का प्रतिष्ठित अंग्रेजी दवा की दुकान संतोष मेडिकल हॉल।
6: हमारे यहाँ भारत के प्रसिद्ध डॉक्टरों द्वारा लिखी गई सभी प्रकार की अंग्रेजी दवाएं उपलब्ध हैं, जैसे गोरखपुर, पटना, कलकत्ता, लखनऊ, बनारस, चेन्नई और मुंबई के डॉक्टरों द्वारा लिखी गई दवाइयाँ भी मिलती हैं।
7: एक सूचना, संतोष मेडिकल हॉल अब चला गया है कॉलेज रोड चिराई घर के पहले, गोपालगंज। संपर्क सूत्र है 62042434003 62042434003।
8: कई दिनों से पेट के निचले हिस्से में बहुत दर्द है। रिपोर्ट में पथरी और बच्चेदानी की भी दिक्कत बताई गई है।
9: डॉक्टर ने कहा है ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन जगह ऐसी हो जहां अच्छा सर्जन भी हो और महिला डॉक्टर भी।
10: अब हर चिंता का समाधान है शल्यम हॉस्पिटल,
11: अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूरा भोजपुरवा में, NH 27 पर दक्षिण साइड, गोपालगंज में स्थित शल्यम हॉस्पिटल।
10: यहां आयुष्मान कार्ड से 5 लाख रुपए तक मुफ्त ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
11: सर्जरी विभाग हो या स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग, इलाज होता है अनुभवी विशेष शग्यो द्वारा।
10: डॉक्टर मनोज कुमार गुप्ता MBBS MS सर्जरी, लैप्रोस्कोपिक सर्जन, और डॉक्टर डेजी सिन्हा MBBS MD DNB स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
11: शल्यम हॉस्पिटल में उपलब्ध है आधुनिक मशीनें और एक ही छत के नीचे OPD IPD ICU मॉड्यूलर OT अल्ट्रासाउंड, पैथोलॉजी लैब, फार्मेसी और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा।
10: आज ही विजिट कीजिए शल्यम हॉस्पिटल, मल्टी स्पेशलिटी एंड ट्रॉमा सेंटर, अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूरा, भोजपुरवा, NH 27, गोपालगंज।
11: कॉल करें 70705763100 या 70705042100 या हमारी वेबसाइट पर विजिट करें www.shalyamhospital.com।
12: नन्ना मुन्ना लाही हूँ, देश का सिपाही हूँ।
13: रुको रुको बेटा, अब तो बड़ा अच्छा गा रहे हो।
12: हाँ कल मेरे टीचर मुझे अच्छे से याद करने के लिए बोले हैं।
13: अच्छा, तो कौन से स्कूल में पढ़ते हैं आप?
12: मैं पढ़ता हूँ श्री भारती एकेडमी में।
14: श्री भारती एकेडमी जो है CBSE नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त स्कूल।
15: हमारे यहाँ बोलचाल के साथ ही बच्चों को खेल खेल में पढ़ाया जाता है। इसके साथ ही छात्रवास के अलावा आने और जाने के लिए परिवहन की भी सुविधा उपलब्ध है।
14: श्री भारती एकेडमी आपके बच्चों को बनाता है होनहार और देता है उनके फ्यूचर को एक नई उड़ान।
15: आज ही एडमिशन के लिए आए चैनपट्टी के उत्तर, ग्राम डेरवा तिलंगही मैदान के पूरब, गोपालगंज।
14: हमारा जूनियर ब्रांच सरिया वार्ड नंबर 5 हनुमानगढ़ी, गोपालगंज में है।
15: जानकारी है तो कॉल करे 62052612 पे।
14: आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM। सुनो दिल से।
16: ऑलराइट।

अपने जिले के मशहूर डॉक्टर जे शरण एमडी फिजिशियन अब बैठ रहे हैं सुबह 10 बजे से आशा मेडिको जनता सिनेमा रोड गोपालगंज, और डॉक्टर जे शरण जी शाम 5 बजे से 7 बजे तक बैठ रहे हैं।

0: 27 88 291 या 95 238 74 088 पर। आपका सुझाव रेडियो रिमझिम परिवार के लिए मार्गदर्शन का काम करता है, तो आप इस कार्यक्रम को रविवार शाम 7:45 से तथा सोमवार सुबह 7:10 से अवश्य सुने।
1: जो लोग डायबिटीज से परेशान हैं, वो डरे नहीं, परहेज करे नहीं। वैद्य एसपी त्यागी जी आयुर्वेदिक दवा द्वारा शुगर यानी डायबिटीज का इलाज कम खर्च में सब कुछ खाते हुए सफलता पूर्वक कर रहे हैं। आप भी दवा खा खा कर इलाज करा कर निराश एवं परेशान हो गए हैं तो एक बार अवश्य मिले वैद्य एसपी त्यागी जी से। डायबिटीज के अलावा और सब बीमारी का इलाज, जैसे
2: सभी प्रकार के नशा जैसे शराब, टेबलेट, इंजेक्शन, सिरप, गांजा, स्माइक के इलाज और गठिया, टीका, पथरी, कमर दर्द, घुटना दर्द, दमा, मिर्गी, दाद, दिनाए और सभी चर्म रोग एवं लिकोरिया, मासिक खराबी, बवासीर, पेट रोग, शुगर, गैस्ट्रिक, शीघ्र पतन, शुक्राणु में कमी, नपुंसकता, धातु चिंता और चर्म रोग में दाग, दिनाए, खुजली, एक्जिमा, सोराइसिस तथा
1: पथरी इत्यादि सभी रोगों का इलाज वैद्य एसपी त्यागी जी आयुर्वेदिक दवा द्वारा सफलता पूर्वक करते हैं।
3: वैद्य एसपी त्यागी जी से मिलने का पता
1: प्रत्येक शनिवार गोपालगंज बस स्टैंड थावे रोड भी मार्केट के बगल में कृष्णा जी के मकान में।
3: अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 99554493
1: और 9097160602।
4: ओम नमः शिवाय।
5: सावन के पावन अवसर पर बाबा भोलेनाथ के दर्शन का सुनहरा अवसर लेकर आया है दीपक राज टूर एंड ट्रेवल्स गोपालगंज।
4: श्रद्धालुओं के लिए विशेष तीर्थ यात्रा एवं कांवर यात्रा की व्यवस्था। पहला रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, राजगीर होते हुए पुनः वापसी।
5: दूसरा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, तारापीठ, जगन्नाथपुरी, गंगा सागर, काली घाट, कोलकाता, रजरप्पा, राजगीर होते हुए वापस गोपालगंज।
4: तीसरा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, गया, बोधगया, वाराणसी, अयोध्या, गोरखनाथ मंदिर होते हुए वापस गोपालगंज।
5: चौथा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, गुवाहाटी, माँ कामाख्या धाम, दार्जिलिंग, सिलीगुड़ी, गंगटोक, जनकपुर, अरेराज होते हुए वापस गोपालगंज।
4: गोपालगंज जिले के श्रद्धालु अब घर बैठे अपनी तीर्थ यात्रा के लिए वाहन बुक करा सकते हैं।
5: बिचौलियों से बचे और सीधे हमारे कार्यालय या बुकिंग नंबर पर संपर्क करें।
4: बुकिंग नंबर 9155548507 या 9162933538।
5: हेल्पलाइन नंबर 9934498845।
4: दीपक राज टूर एंड ट्रेवल्स, मुख्य कार्यालय चिराई घर पेट्रोल पंप के पास गोपालगंज, उपशाखा NH 27, काली स्थान बंजारी, गोपालगंज।
5: बोलबम हर हर महादेव।
6: ध्वनि के तरंग 90.4 पर आप जिले की आवाज रेडियो रिमझिम को सुन रहे हैं।
7: हम दिल के बुरे नहीं, बस एक खराबी है, आदत से नहीं।

0: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरो सर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
1: तुम आज भी गुमसुम क्यों बैठी हो?
2: क्या बताऊं, 15 साल शादी के हो गए और संतान सुख मिला नहीं। कई जगह इलाज कराया लेकिन कोई फायदा नहीं। अब समझ नहीं आ रहा क्या करूं?
1: अरे मेरे साथ एक बार चलो डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी के पास, जादवपुर में। कई निसंतान माताओं का इलाज उन्होंने सफलतापूर्वक किया है।
2: ध्यान दे, स्त्री रोग, बांझपन, ल्यूकोरिया, दिमाग की कमजोरी, याददाश्त की कमी, पेट रोग, गैस्ट्रिक, लीवर में सूजन, बवासीर, कान रोग, पुराना बुखार, नस रोग, किडनी की पथरी, पीत की थैली में पथरी, पेशाब की थैली में पथरी, गठिया, पुराना जोड़ों का दर्द, साइटिका, चर्म रोग एवं पुराने असाध्य बीमारियों का इलाज आयुर्वेदिक विधि से 30 वर्षों से सफलतापूर्वक किया जा रहा है।
1: आज ही आएं डॉक्टर गोरखपुरी निवास, डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी, जादवपुर मेन रोड, गोपालगंज। संपर्क करें 99554-97644।
3: अगर आपको हो रहा है घुटने, हड्डी या रीढ़ की हड्डी का दर्द या महिलाओं से जुड़ी समस्या, तो याद रखिए गोपालगंज जिले में सबसे भरोसेमंद नाम स्टार एडवांस ऑर्थो एंड मेटर्निटी सेंटर, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
4: यहाँ है डॉक्टर इमरान हुसैन खान, कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक एवं जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन, MBBS, MS, एक्स रेसिडेंट KGMU, लखनऊ।
3: और महिलाओं के लिए डॉक्टर सूफिया शादाब, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, MBBS, MS, ऑब्स एंड गायनेकोलॉजी।
4: साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
3: ध्यान दे, हर शुक्रवार को है फ्री OPD, तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें।
4: पता, कमला राय कॉलेज रोड, नियर रालसन होटल, गोपालगंज।
3: संपर्क करें 9006978856 या 6203139564।
5: राधा, तुमने अपने चाचा जी के अपेंडिक्स का ऑपरेशन कहाँ कराया था?
6: सम्राट हॉस्पिटल में, वो भी कम से कम खर्च में।
7: क्या आप भी ऑपरेशन कराना चाहते हैं? तो घबराए नहीं, आज ही आए सम्राट हॉस्पिटल, जहाँ है डॉक्टर कुंदन सिंह, MBBS, MS, जनरल एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जन, जो सदर हॉस्पिटल गोपालगंज में भी सेवा देते हैं।
8: हमारे यहाँ दूरबीन विधि से भी ऑपरेशन किया जाता है।
7: आज ही हर तरह के सफल ऑपरेशन के लिए आए सम्राट हॉस्पिटल, जो है कमला राय कॉलेज के पश्चिम RR रोड, गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 94704-34468 पे।
9: कान में दर्द के मारे जान ही निकल रही है, कहाँ जाऊँ, किससे इलाज कराऊँ, कुछ समझ नहीं आ रहा।
10: इसमें इतना समझना क्या, आज ही चलो डॉक्टर MD शादाब के पास, जो है ENT स्पेशलिस्ट।
11: जी हाँ, उत्तर भारत के सबसे विश्वसनीय कान, नाक एवं गले के विशेषज्ञ डॉक्टर MD शादाब पिछले 10 वर्षों से सिवान में सेवा दे रहे हैं, जो कि 10,000 से भी ज्यादा कान, नाक, गले के सर्जरी का अनुभव रखते हैं। साथ ही आयुष्मान भारत योजना के तहत स्वास्थ्य कार्ड धारक मरीजों का निःशुल्क में इलाज किया जाता है। तो आज ही पहुंचिए इस्मत ENT केयर सेंटर, सिसवन ढाला के उत्तर RK मॉडल स्कूल के बगल, सिवान में।
12: ध्वनि के तरंग 90.4 पर आप जिले की आवाज रेडियो रिक्शा को सुन रहे हैं।

0: तेरा रोज रोज का पेट दर्द।
1: अरे तो उसे डांटती क्यों हो, उसे जल्दी से ले जाओ डॉक्टर सुनील कुमार रंजन के पास।
2: यहाँ पर हर्निया, अपेंडिस, वंध्याकरण, प्रोस्टेट, पीत की थैली, किडनी की पथरी, पेशाब की नली एवं पेशाब की थैली की पथरी तथा गोला का ऑपरेशन दूरबीन विधि से, साथ ही लेजर एवं स्टेपलर विधि के द्वारा बिना चीड़ा और बिना दर्द के बवासीर, भगंदर और नासूर का ऑपरेशन सस्ते दर पर किया जाता है।
3: ध्यान दें, हमारे यहाँ आयुष्मान भारत योजना के तहत ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
2: आज ही आए जेबी हॉस्पिटल एवं स्टोन क्लिनिक, थावे रोड, गोपालगंज।
0: अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 91-626-64-498 पे।
4: घर बन रहा हो तो सिर्फ ईंट और सीमेंट नहीं, टाइल्स और फिटिंग्स का चुनाव भी होना चाहिए शानदार।
5: इसीलिए गोपालगंज जिले के लोगों की पहली पसंद बन चुका है बीके टाइल्स। बीके टाइल्स, यहाँ मिलेंगे सभी प्रकार के डिजाइनर टाइल्स, मार्बल, ग्रेनाइट, बेसिन, कॉमोड, बाथ फिटिंग्स और घर सजाने के कई आधुनिक प्रोडक्ट,
6: वो भी किफायती दामों पर। और खास बात, गोपालगंज जिले में हमारी 4 सुविधाजनक शाखाएं,
5: अरार मोड़ SP कोठी के पास गोपालगंज, दूसरा ब्रांच भटवा मोड़ के पास कुचायको,
6: तीसरा ब्रांच इस्लामिया कॉलेज के पास मेन रोड थावे मीरगंज, और चौथा ब्रांच बंतरिया मोड़ भोरे।
5: और अब सिवान जिले में भी हमारी 2 शाखाएं उपलब्ध हैं, सिवान ब्रांच कुशवाहा चौक हकाम बाईपास सिवान,
6: और मैरवा ब्रांच बबनौली चौक मैरवा सिवान।
5: तो आज ही अपने सबसे नजदीकी बीके टाइल्स ब्रांच पर आए और करे बेहतरीन खरीदारी।
6: अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें गोपालगंज ब्रांच में 8460571406, मीरगंज ब्रांच में 9693101611,
5: कुचाय कोट ब्रांच में 9693101602, भोरे ब्रांच में 8207856404,
6: सिवान ब्रांच में 9942071405, मैरवा ब्रांच में 8207856403।
2: सुनिए सुनिए सुनिए,
7: आपके शहर गोपालगंज में खुल गया है श्री कृष्णा साड़ी,
2: जिसमें आपको मिल रहा है सस्ते दामों में एक से बढ़कर एक डिजाइनों के लहंगा, फैंसी साड़ी, लेडी सूट, क्रॉप टॉप एवं कुर्ती।
7: श्री कृष्णा साड़ी दुकान है केडिया भवन, केडिया लेन, मेन रोड, गोपालगंज।
2: एक बार सेवा का मौका जरूर दें श्री कृष्णा साड़ी को।
8: सोहन, मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे तुरंत अपने भाई को कुछ पैसे भेजने हैं, लेकिन बैंक में तो इतनी लंबी लाइन है कि घंटों लग जाएंगे, और मेरा जियो सिम भी एक्टिवेट नहीं हो रहा, अब मैं क्या करूँ?
9: अरे टीना, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं, चलो मेरे साथ माया क्लासिकल में आधार और बैंक से आसानी से पैसे निकाला जाता है और किसी भी खाते में तुरंत भेजा जा सकता है बिना किसी झंझट के। और सिम की बात कर रही हो ना, BSNL, जियो, एयरटेल, VI, जो भी चाहिए तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा।
8: मुझे कुछ जरूरी PDF प्रिंट करवाने हैं, वहाँ ये सब हो जाएगा ना?
9: बिल्कुल, माया क्लासिकल में PDF, लेमिनेशन, प्रिंट, फोटोकॉपी सब कुछ मिलेगा। तुम्हें एक धमाकेदार ऑफर भी बताता हूँ, फोटो स्टेट सिर्फ ₹1 प्रति प्रिंट आउट, कम से कम 50 पेज, हर ग्राहक को शानदार गिफ्ट भी मिलता है। माया क्लासिकल में सब कुछ है, माया क्लासिकल सिनेमा रोड, शिव मंदिर के ठीक सामने, गोपालगंज। प्रोपराइटर सोनू जी, संपर्क करें 99399-66999।
10: प्रसाद क्लिनिक,
11: स्त्री रोग, ल्यूकेरिया, यूट्रस का बाहर निकल जाना, कान का बहना, गठिया, साइटिका, कमर दर्द, अधेड़ी, थनैली, चर्म रोग के सफल इलाज के लिए मिले
10: डॉक्टर श्रीमती कुंती देवी। रोगी देखने का स्थान बुधवार और शनिवार को मिंज स्टेडियम, LIC ऑफिस के पास, गोपालगंज।
11: बाकी दिन जादवपुर बाजार।
12: अरे मुन्नी, तुम आ गई, चल मेरे कान का झुमका ला।
13: ओ माई गॉड, आज फिर से भूल गई।
12: मैं तुमसे कितनी बार बोली हूँ कि अब महिलाओं के सारे सामान एक ही छत के नीचे नाइस गैलेक्सी में मिल रहा है।
13: सॉरी यार, कल पक्का नाइस गैलेक्सी में जाऊंगी।
2: महिलाओं की स्पेशल दुकान नाइस गैलेक्सी,
13: आर्टिफिशियल फ्लावर, आर्टिफिशियल गहने, सौंदर्य प्रसाधन, गृह कार एवं गृह सज्जा के सामान के साथ गिफ्ट, फूलों का गुलदस्ता एवं चांदनी का विशाल भंडार हमारे यहाँ मौजूद है।
2: तो अगर आपको कुछ अच्छा, कुछ अलग चाहिए हो तो आज ही आए नाइस गैलेक्सी, हजियापुर रोड, एक्सिस बैंक के सामने, तड़कुल के पास, गोपालगंज।
13: याद रहे, शादी विवाह, जन्मदिन या किसी भी शुभ अवसर पर गिफ्ट और सजाने का सारा सामान थोक एवं खुदरा मिलता है,
2: साथ ही प्लास्टिक के सारे सामान भी उपलब्ध हैं।
14: शादी की ज्वेलरी लेनी है? हाँ,
15: भरोसे वाले चलेंगे,
14: पर दिया की पसंद भी जरूरी है
15: और कीमत भी।
14: प्योरिटी का सर्टिफिकेशन तो चाहिए ही।
2: SP ज्वेलर्स पे हमें पूरा भरोसा है।
16: प्योरिटी यानी मामी सर्टिफाइड, भरोसा और सही प्राइस यानी पापा सर्टिफाइड, और डिजाइन तो मेरा सर्टिफिकेशन।
2: गहनों की खरीदारी के लिए आप भी आए SP ज्वेलर्स, क्योंकि रिश्ते हर रोज नहीं बनते।
17: 22 कैरेट सेट 18 कैरेट के जेवर, शादी सेट और साथ ही पुराने जेवर बदलकर नए जेवर के करे खरीदारी।
2: आज यहाँ SP ज्वेलर्स जो है DAV गर्ल्स स्कूल के सामने स्टेशन रोड गोपालगंज।
18: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं मुनीश शर्मा। मुख्य समाचार। भारत ने 1 अरब से ज्यादा लोगों को सामाजिक सुरक्षा के दायरे में लाकर एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल हरियाणा के जींद रेलवे स्टेशन से देश की पहली हाइड्रोजन से चलने वाली रेलगाड़ी को रवाना करेंगे। दमन और नई दिल्ली के बीच सीधी व्यावसायिक विमान सेवा शुरू, हवाई संपर्क एक नए दौर की शुरुआत। ओडिशा के पुरी में भगवान जगन्नाथ की विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा में लाखों श्रद्धालु शामिल हुए। अमरीका ने उत्तरी ईरान तक हमले किए और नौसैनिक घेराबंदी तोड़ने की कोशिश कर रहे एक जहाज पर गोलीबारी की, ईरान ने जवाबी कार्रवाई की। जकार्ता में एशियाई अंडर 19 और अंडर 23 मुक्केबाजी चैंपियनशिप में भारत ने 2 स्वर्ण और 3 रजत पदक हासिल कर लिए हैं। और कार्डिफ में भारत और मेजबान इंग्लैंड के बीच दूसरा एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच जारी। और अब समाचार विस्तार से। भारत ने सामाजिक सुरक्षा कवरेज में 1 अरब का आंकड़ा पार कर लिया है। श्रम और रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत का सामाजिक सुरक्षा कवरेज 2026 में बढ़कर 68% से अधिक हो गया है। इससे 100 करोड़ से अधिक लोग सामाजिक सुरक्षा ढांचे के दायरे में आ गए हैं। 2015 में यह मात्र 19% था। उन्होंने कहा कि यह सबका साथ सबका विकास के प्रति मोदी सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि जलवायु परिवर्तन जैसी चुनौतियों के बावजूद भारत ने इस साल 3,76,00,000 टन अनाज और 3,77,00,000 टन बागवानी उत्पादों की पैदावार की है। नई दिल्ली में श्री चौहान ने कहा कि वैज्ञानिक अब किसानों के साथ मिलकर काम करने के लिए सीधे खेतों में जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि खेत बचाओ अभियान के अंतर्गत 1,600 से ज्यादा वैज्ञानिक दल 728 जिलों में पहुंचे और लगभग 1 करोड़ किसानों से उन्होंने संपर्क किया। वैज्ञानिक विशेष रूप से उन जिलों में पहुंचे जिनके अलनीनो से प्रभावित होने की आशंका है। उन्होंने बताया कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने पिछले वर्ष के दौरान कई उन्नत किस्म की फसलें विकसित की हैं।
19: एक साल में 44 फसलों की 386 नई किस्में, जिनमें से 94 क्लाइमेट रिजिलेंट है, 29 बायो फोर्टिफाइड है, ये विकसित की है। बागवानी की 117 किस्में हमने अलग अलग अलनीनो के प्रभाव के कारण और वैसे भी जो संवेदनशील जिले हैं उनके लिए आकस्मिक योजनाएं बनाई है। आज मैं गर्व से कहता हूँ ICR कृषि परिवर्तन का अग्रदूत बन चुका है।
18: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल हरियाणा में जींद रेलवे स्टेशन पर जींद और सोनीपत के बीच चलने वाली भारत की पहली हाइड्रोजन रेलगाड़ी को रवाना करेंगे। पूरी तरह स्वदेशी तकनीक से विकसित ये रेलगाड़ी उन्नत रेलवे इंजीनियरिंग में देश की बढ़ती क्षमताओं को दर्शाती है। इसी के साथ भारत हाइड्रोजन रेलगाड़ियां चलाने वाले जर्मनी, जापान, चीन और अमरीका के समूह में शामिल हो जाएगा। इस रेलगाड़ी को 110 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलने के लिए डिजाइन किया गया है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
20: इस ट्रेन में कुल 10 डिब्बे हैं और इसकी शुरुआत होने से यह दुनिया की सबसे लंबी हाइड्रोजन से चलने वाली यात्री ट्रेनों में शामिल हो जाएगी। इसमें 3200 हॉर्स पावर का इंजन लगाया गया है जो इसे दुनिया की सबसे ताकतवर हाइड्रोजन ट्रेनों में से एक बनाता है। यह रेलगाड़ी हाइड्रोजन फ्यूल सेल तकनीक से चलती है जो ट्रेन को चलाने के लिए हाइड्रोजन को विद्युत में परिवर्तित करती है। ग्रीन हाइड्रोजन के उपयोग से कोयला आधारित ताप विद्युत संयंत्रों से बनने वाली बिजली पर निर्भरता भी कम होगी। इससे भारत को स्वच्छ और टिकाऊ परिवहन व्यवस्था विकसित करने में मदद मिलेगी। यात्रियों की सुरक्षा के लिए ट्रेन में आधुनिक बहुस्तरीय सुरक्षा प्रणाली लगाई गई है जो हाइड्रोजन रिसाव, अधिक तापमान, आग की लपटों और धुएं का तुरंत पता लगा सकती है। आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
18: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: मुक्त भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। केंद्र शासित प्रदेश दमन और नई दिल्ली के बीच सीधी व्यावसायिक विमान सेवा आज से शुरू हो गई। ये हवाई संपर्क के एक नए दौर की शुरुआत है। नागर विमानन मंत्री किंजरापू राममोहन नायडू ने पहली उड़ान को दमन के नमो हवाई अड्डे से रवाना किया। यह ऐतिहासिक शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा हाल ही में नमो हवाई अड्डे के उद्घाटन के बाद हुई है। एक रिपोर्ट।
4: केंद्र शासित प्रदेश दमन और राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के बीच सीधी हवाई कनेक्टिविटी से इस क्षेत्र में पर्यटन, व्यापार और निवेश को काफी बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। यात्रियों को अब लंबी सड़क या रेल यात्राओं पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा, जिससे यात्रा का समय काफी कम हो जाएगा। स्थानीय प्रशासन के अनुसार जल्द ही नमो एयरपोर्ट से देश भर के अन्य प्रमुख शहरों में हवाई सेवाओं को बढ़ाने की योजना पहले से ही चल रही है। प्रवेश अड़ियचा, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
3: नागर विमानन मंत्री किंजरापू राममोहन नायडू ने आज कहा कि उड़े देश का आम नागरिक योजना के अगले चरण का उद्देश्य अगले 10 वर्षों में 120 नए गंतव्यों तक कनेक्टिविटी को बढ़ाना और 4 करोड़ लोगों को विमान यात्रा में सक्षम बनाना है। नई दिल्ली में कार्यशाला में श्री नायडू ने कहा कि सरकार हवाई टिकटों की बढ़ती कीमतों पर लगाम लगाने के लिए कई उपाय कर रही है।
5: एविएशन एक ऐसा इंडस्ट्री है जिसको हमें डायनेमिक फेयर प्राइसिंग के तहत हम आगे बढ़ा रहे हैं, क्योंकि ये इंटरनेशनल प्रैक्टिस है। कनेक्टिविटी को आगे बढ़ाना है तो एयरलाइंस को वो डायनेमिक प्राइसिंग की सुविधा हमें देनी चाहिए, जो भारत में भी हम एक्सटेंड कर रहे हैं। कई जगहों पे अगर ऐसा लगता है कि फेयर्स हद से ज्यादा हो रहे हैं तो हमने पाबंदी लगाया कि ये प्राइसिंग को रेगुलेट करेंगे।
3: विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने आज स्वदेशी प्रौद्योगिकियों को देश भर में व्यापक स्तर पर लागू करने के लिए वैज्ञानिक संस्थानों, उद्योग और राज्य सरकारों के बीच मजबूत सहयोग का आह्वान किया। डॉक्टर सिंह ने नई दिल्ली में CSIR केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान के एक वर्षीय प्लेटिनम जयंती समारोह में ये बात कही। सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री एल मुरुगन ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार के शासन में तेजी से सकारात्मक बदलाव के कारण भारत वैश्विक स्तर पर एक महत्वपूर्ण स्थान पर पहुंचा है। चेन्नई में उन्होंने कहा कि वर्ष 2014 से सरकारी योजनाएं देश के सुदूरतम क्षेत्रों में रहने वाले प्रत्येक नागरिक तक पहुंच रही हैं। तृणमूल कांग्रेस की एक और राज्यसभा सांसद कोयल मल्लिक ने राज्यसभा से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने उपराष्ट्रपति और राज्यसभा अध्यक्ष सीपी राधाकृष्णन से मुलाकात कर अपना इस्तीफा उन्हें सौंपा। वो इस साल अप्रैल में राज्यसभा के लिए चुनी गई थीं। कोयल तृणमूल कांग्रेस की चौथी राज्यसभा सांसद हैं जिन्होंने इस्तीफा दिया है। इससे पहले सुखेंदु शेखर रॉय, सुष्मिता देव और प्रकाश चिकबराइक ने इस्तीफा दिया था और बाद में वे भाजपा में शामिल हो गए। प्रवर्तन निदेशालय ने कथित आतंकी वित्त पोषण और अवैध घुसपैठ नेटवर्क से जुड़े एक मामले में आज पश्चिम बंगाल सहित देशभर में 13 स्थानों पर तलाशी अभियान चलाया। एक रिपोर्ट।
6: ये मामला उत्तर प्रदेश ATS द्वारा रोहिंग्या और बांग्लादेशी नागरिकों की भारत में अवैध घुसपैठ कराने और उनके पुनर्वास में कथित रूप से शामिल संगठित गिरोह के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी से जुड़ा है। पश्चिम बंगाल के कलिकपुर में हरौरा अल जमीयतुल इस्लामिया दारुल उलूम में तलाशी के दौरान 40 लाख रुपए नकद और सोने के सिक्के बरामद हुए। जांच के दौरान एक मजबूत वित्तीय नेटवर्क का खुलासा हुआ है जिसमें कुछ धर्मार्थ ट्रस्ट और संस्थाएं शामिल हैं। दीपेंद्र की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से प्रशांत कुमार।
3: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। ओडिशा के पवित्र शहर पुरी में आज भगवान जगन्नाथ की विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा निकाली गई। सुबह से लगातार बारिश के बावजूद लाखों श्रद्धालु बड़ा डंडा पर इस पवित्र दृश्य को देखने के लिए जुटे हुए थे।
7: पुरी का पवित्र शहर भक्ति के सागर में आज डूबा रहा, क्योंकि पहंडी विजय और छेरा पहरा की पवित्र रस में पूरी होने के बाद लाखों भक्तों ने भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र और देवी सुभद्रा के भव्य रथों के ग्रैंड रोड पर खिसने की रस्म में हिस्सा लिया। रात होने पर रथ खिसने का काम आज के लिए रोक दिया गया है और पवित्र श्री गुंडीचा मंदिर तक की दिव्य यात्रा कल फिर शुरू होगी। हालांकि श्री गुंडीचा मंदिर के पास भगदड़ जैसी घटना से उत्सव का माहौल प्रभावित हुआ, जिसमें खबर है कि एक भक्त की मौत हो गई और कई अन्य घायल हो गए। गंभीर रूप से घायलों को इलाज के लिए पास के अस्पतालों में भेजा गया है। उड़ीसा सरकार ने इस घटना की उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए हैं। साथ ही उत्सव के बाकी दिनों के लिए सुरक्षा और भीड़ प्रबंधन के इंतजाम और कड़े कर दिए गए हैं। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, पुरी।
3: इस बीच गुजरात, झारखंड और दिल्ली सहित देश भर में विभिन्न स्थानों पर भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा हर्षोल्लास के साथ निकाली गई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जगन्नाथ रथ यात्रा के अवसर पर देशवासियों को बधाई दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कच्छ के नववर्ष आषाढ़ी बीज के अवसर पर कच्छी समुदाय को शुभकामनाएं दी हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि आषाढ़ी बीज कच्छी समुदाय की चिरस्थायी सांस्कृतिक विरासत और मजबूत भावना को दर्शाता है। सर्वोच्च न्यायालय ने सीबीएसई पाठ्यक्रम के तहत नवीं कक्षा में तीसरी भाषा शुरू करने पर चिंता जताई है और कहा है कि इससे विद्यार्थियों में तनाव बढ़ेगा। न्यायालय ने सुझाव दिया है कि इसे पांचवीं या छठी कक्षा में शुरू करना चाहिए ताकि विद्यार्थी इसे आसानी से अपना सकें। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं निखिल कुमार।
8: घरेलू शेयर बाजार में आज सेंसेक्स में केवल एक अंक की बढ़त हुई और ये 77,187 पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी 6 अंक गिरकर 24,073 पर पहुंच गया। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के विस्तृत बाजार के मिड कैप में 0.4% और स्मॉल कैप में 0.1% की गिरावट आई। वहीं अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया आज $1 की तुलना में 9 पैसे गिरकर 96.35 रुपए पर बंद हुआ।
3: अमरीका ने ईरान पर हमले और तेज कर दिए हैं। आज उत्तर में स्थित ठिकानों को निशाना बनाया गया और अमरीकी नौसैनिक नाकाबंदी तोड़ने की कोशिश कर रहे एक जहाज पर भी गोलीबारी की गई। जवाब में ईरान ने क्षेत्र में अमरीका के सहयोगी देशों को निशाना बनाते हुए मिसाइल और ड्रोन हमले किए हैं। ईरान ने धमकी दी है कि अगर अमरीका पुलों और बिजली संयंत्रों को निशाना बनाता है तो ईरान क्षेत्रीय बुनियादी ढांचे पर व्यापक हमले कर सकता है। इंडोनेशिया के जकार्ता में भारतीय मुक्केबाजों ने एशियाई अंडर 19 और अंडर 23 मुक्केबाजी चैंपियनशिप में 2 स्वर्ण और 3 रजत पदक अपने नाम कर लिए हैं। अंडर 23 वर्ग में विश्वनाथ सुरेश और गंगा ने स्वर्ण और वंशज ने रजत पदक अपने नाम किया। अंडर 19 में आदित्य और शुभम राजपूत ने रजत पदक हासिल किए। कार्डिफ में दूसरे एक दिवसीय क्रिकेट मैच में भारत ने ताजा समाचार मिलने तक 42 ओवर में 8 विकेट पर 214 रन बना लिए हैं। इंग्लैंड ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया। 3 मैचों की श्रृंखला में भारत 1-0 से आगे है। मौसम विभाग ने अगले 7 दिनों में पूर्वी और पूर्वोत्तर भारत, पूर्वी उत्तर प्रदेश और पश्चिमी हिमालय क्षेत्र में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। अगले 3 से 4 दिनों तक दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब में तथा 22 जुलाई तक राजस्थान में भी वर्षा होने का अनुमान है। मौसम विभाग ने मछुआरों को 21 जुलाई तक दक्षिण पश्चिमी अरब सागर में और अगले 2 दिनों तक दक्षिण बंगाल की खाड़ी और आसपास के इलाकों में न जाने की सलाह दी है। और अंत में सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत ने 1 अरब से ज्यादा लोगों को सामाजिक सुरक्षा कवरेज के दायरे में लाकर एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल हरियाणा के जींद रेलवे स्टेशन से देश की पहली हाइड्रोजन से चलने वाली रेलगाड़ी को रवाना करेंगे। दमन और नई दिल्ली के बीच सीधी व्यावसायिक विमान सेवा शुरू हुई। हवाई संपर्क के एक नए दौर की शुरुआत। ओडिशा के पुरी में भगवान जगन्नाथ की विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा में लाखों श्रद्धालु हुए शामिल। अमेरिका ने उत्तरी ईरान तक हमले किए और नौसैनिक घेराबंदी तोड़ने की कोशिश कर रहे एक जहाज पर गोलीबारी की। ईरान ने जवाबी कार्रवाई की है। जकार्ता में एशियाई अंडर 19 और अंडर 23 मुक्केबाजी चैंपियनशिप में भारत ने 2 स्वर्ण और 3 रजत पदक हासिल कर लिए हैं और कार्डिफ में भारत और मेजबान इंग्लैंड के बीच 2 एकदिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच जारी है। और इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: समाचार के बाद आप सभी का स्वागत है रेडियो रमजिम 90.4 FM पर। आइए सुनते हैं अब आगे का प्रसारण।
9: क्या हुआ? अरे ये तेरा रोज रोज का पेट दर्द।
10: अरे तो उसे डांटते क्यों हो? उसे जल्दी से ले जाओ डॉक्टर सुनील कुमार रंजन के पास।
11: यहाँ पर हर्निया, अपेंडिस, वंध्याकरण, प्रोस्टेट, पीत की थैली, किडनी की पथरी, पेशाब की नली एवं पेशाब की थैली की पथरी तथा गोला का ऑपरेशन दूरबीन विधि से, साथ ही लेजर एवं स्टेपलर विधि के द्वारा बिना चीड़ा और बिना दर्द के बवासीर, भगंदर और नासूर का ऑपरेशन सस्ते दर पर किया जाता है।
12: ध्यान दें, हमारे यहाँ आयुष्मान भारत योजना के तहत ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
11: आज ही आए जेबी हॉस्पिटल एवं स्टोन क्लिनिक, थावे रोड, गोपालगंज।
9: अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 91-626-64-498 पे।
13: गोपालगंज, अब आपकी राइड होगी और भी स्टाइलिश और पहले से ज्यादा पावरफुल,
14: क्योंकि आ चुकी है हीरो ग्लैमर एक्स और एक्सट्रीम 125R। अब उपलब्ध है नारायणी हीरो गोपालगंज में।
13: ग्लैमर एक्स, दमदार माइलेज, शानदार लुक और भरोसेमंद परफॉर्मेंस, ताकि हर दिन बने खास और सफर रहे बेफिक्र।
14: और एक्सट्रीम 125R स्पोर्टी डिजाइन, दमदार पावर और एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ हर राइड बने और एक्साइटिंग।
13: तो फिर देर किस बात की, आज ही विजिट करें नारायणी हीरो, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
14: शानदार ऑफर्स और आसान फाइनेंस सुविधा के साथ
13: नारायणी हीरो, भरोसे का नाम हर राइड के साथ।
14: कॉल नाउ 9056-59536 या 9056-57902।
15: कई दिनों से पेट के निचले हिस्से में बहुत दर्द है। रिपोर्ट में पथरी और बच्चेदानी की भी दिक्कत बताई गई है।
16: डॉक्टर ने कहा है ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन जगह ऐसी हो जहां अच्छा सर्जन भी हो और महिला डॉक्टर भी।
13: अब हर चिंता का समाधान है शल्यम हॉस्पिटल,
14: अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूरा भोजपुरवा में, NH 27 पर दक्षिण साइड, गोपालगंज में स्थित शल्यम हॉस्पिटल।
13: यहां आयुष्मान कार्ड से 5 लाख रुपए तक मुफ्त ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
14: सर्जरी विभाग हो या स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग, इलाज होता है अनुभवी विशेष द्वारा।
13: डॉक्टर मनोज कुमार गुप्ता, MBBS, MS, सर्जरी, लैप्रोस्कोपिक सर्जन और डॉक्टर डेजी सिन्हा, MBBS, MD, DNB, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
14: शल्यम हॉस्पिटल में उपलब्ध है आधुनिक मशीनें और एक ही छत के नीचे OPD, IPD, ICU, मॉड्यूलर OT, अल्ट्रासाउंड, पैथोलॉजी लैब, फार्मेसी और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा।
13: आज ही विजिट कीजिए शल्यम हॉस्पिटल, मल्टी स्पेशलिटी एंड ट्रॉमा सेंटर, RR मोड़ से करीब 800 मीटर पूरा, भोजपुरवा, NH 27, गोपालगंज।
14: कॉल करें 70-70-75-6300 या 70-70-75-4200 या हमारी वेबसाइट पर विजिट करें www.shalyamhospital.com।
17: सोहन, मैं बहुत परेशान हूँ। मुझे तुरंत अपने भाई को कुछ पैसे भेजने हैं, लेकिन बैंक में तो इतनी लंबी लाइन है कि घंटों लग जाएंगे और मेरा जियो सिम भी एक्टिवेट नहीं हो रहा। अब मैं क्या करूँ?
18: अरे टीना, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। चलो मेरे साथ माया क्लासिकल में आधार और बैंक से आसानी से पैसे निकाला जाता है और किसी भी खाते में तुरंत भेजा जा सकता है बिना किसी झंझट के। और सिम की बात कर रही हो ना, BSNL, जियो, एयरटेल, VI, जो भी चाहिए तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा।
17: मुझे कुछ जरूरी PDF प्रिंट करवाने हैं, वहाँ ये सब हो जाएगा ना?
18: बिल्कुल, माया क्लासिकल में PDF, लेमिनेशन, प्रिंट, फोटोकॉपी सब कुछ मिलेगा। तुम्हें एक धमाकेदार ऑफर भी बताता हूँ, फोटो स्टेट सिर्फ 1 रुपए प्रति प्रिंट आउट, कम से कम 50 पेज, हर ग्राहक को शानदार गिफ्ट भी मिलता है। माया क्लासिकल में सब कुछ है। माया क्लासिकल, सिनेमा रोड, शिव मंदिर के ठीक सामने, गोपालगंज। प्रोपराइटर सोनू जी, संपर्क करें 99-399-66-999।
19: अब आपको कॉस्मेटिक के लिए और परेशान होने की जरूरत नहीं, क्योंकि अब गोपालगंज में खुल गया है श्रृंगार वाटिका। जहां मिलते हैं डिजाइनर और ब्रांडेड प्रोडक्ट्स जैसे लैक्मे, शुगर, नायका, कलाबा जैसी ढेर सारी कंपनियां। साथ ही साथ डिजाइनर पर्स, होम डेकोरेशन, टॉयज एंड गिफ्ट्स, ब्राइडल ज्वेलरी और चूड़ियों की नए कलेक्शंस। और तो और वहां इंपोर्टेड परफ्यूम्स भी मिलते हैं। यहां हर शॉपिंग पे गिफ्ट्स और 5-25% तक का डिस्काउंट भी मिल रहा है। एक सामान लेना हो या शादी की शॉपिंग करनी हो, इससे अच्छी जगह कोई नहीं। श्रृंगार वाटिका,
20: आज ही आए चंद्र गोखुल रोड नियर पंजाब नेशनल बैंक गोपालगंज, या कॉल करें 86034-48652 पे।
21: कूल्हा एवं घुटना प्रत्यारोपण, आर्थ्रोस्कोपिक या दूरबीन विधि से घुटने के टूटे लिगामेंट की सर्जरी, एलिजारोव रशियन विधि से हाथ पैर की लंबाई बढ़ाना, स्पाइन सर्जरी और हड्डी जोड़ की सभी समस्याओं का समाधान।
22: मिले वरिष्ठ सर्जन डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से। संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एवं सर्जिकल सेंटर, रुस्तमपुर ढाला, गोरखपुर।
21: आज ही संपर्क करें 7388-89470 या 9198-88-6973।
23: नमस्कार, रेडियो रिमझिम से प्रस्तुत है स्थानीय हालचाल। पहले मुख्य हालचाल। हत्या और आर्म्स एक्ट में एक आरोपी को हुई आजीवन कारावास की सजा। अनुश्रवण समिति की जिला पदाधिकारी ने की बैठक। तेंदुए के हमले से एक बछड़े की मौत, स्थानीय लोगों में दहशत का माहौल। 3 दिन से लापता एक सफाई कर्मी का नाले से मिला शव, परिजनों में मचा कोहराम। गोपालगंज में आ सकते हैं सूबे के मुख्यमंत्री, स्वागत की तैयारी में जुटा जिला प्रशासन। स्थानीय हालचाल के इस अंक के साथ मैं अनिकेत मिश्र, अब हालचाल विस्तार से। मुचका गांव थाना क्षेत्र में 2012 में हुई एक हत्या और आर्म्स एक्ट के मामले में आरोपी को आजीवन सश्रम कारावास की सजा सुनाई गई, साथ ही 1,20,000 रुपए का अर्थदंड भी अदालत ने लगाया। बताया जा रहा है कि गोपालगंज में एडीजे 9 की अदालत ने मुचका गांव थाना कांड संख्या 124/2012 के मामले में सुनवाई करते हुए आर्म्स एक्ट के अभियुक्त लाल बाबू मियां, पिता शान अली साकिन छोटकी पिपराही थाना उचका गांव को दोषी पाते हुए आजीवन सश्रम कारावास और 1,00,000 रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड जमा नहीं करने पर 2 वर्ष के साधारण कारावास की सजा भी भुगतनी होगी। साथ ही 27 आर्म्स एक्ट के अंतर्गत अभियुक्त को 7 वर्ष के सश्रम कारावास और 20,000 रुपए के अर्थदंड की सजा सुनाई गई। अर्थदंड नहीं देने पर 6 महीने की साधारण कारावास भुगतनी होगी। इस मामले में सजा सुनाने के बाद पुलिस ने तुरंत आरोपी को जेल भेज दिया। बताया जा रहा है कि कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद यह फैसला सुनाया। इसमें अपर लोक अभियोजक प्रमोद कुमार शर्मा की खास भूमिका रही। साथ ही कुचायकोट थाना क्षेत्र में कांड संख्या 165/2009 दहेज उत्पीड़न के आरोपी को भी 3 वर्ष सश्रम कारावास की सजा हुई और 2,000 रुपए का अर्थदंड लगाया गया। बताया जा रहा है कि इस मामले में अभियुक्त हरिश्चंद तिवारी, पिता श्रीकांत तिवारी जो उचका गांव के वृंदावन के रहने वाले हैं, इनको अदालत ने दोषी पाया और इन्हें 3 वर्ष सश्रम कारावास और 2,000 रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई गई। अर्थदंड जमा नहीं करने पर 3 महीने के अतिरिक्त कारावास की सजा भी सुनाई गई। इनको भी पुलिस ने सजा सुनाने के बाद जेल भेज दिया। जिला पदाधिकारी समीर सौरभ की अध्यक्षता में जिला स्तरीय सतर्कता एवं अनुश्रवण समिति की बैठक हुई। इस बैठक में सांसद आलोक कुमार सुमन और बरौली के विधायक मंजीत सिंह भी उपस्थित रहे। जिला पदाधिकारी ने बताया कि वित्तीय वर्ष 2026-27 में 55,00,000 रुपए का आवंटन प्राप्त हुआ, जिसमें कुल पीड़ितों आश्रितों के बीच 54,39,000 रुपए मुआवजा के रूप में भुगतान कर दिया गया। हत्या के मामले में कुल 39 पीड़ितों का पेंशन भुगतान भी शामिल है। बैठक में उपस्थित सांसद ने निर्देश दिया के अनुसूचित एवं अनुसूचित जनजाति अत्याचार अधिनियम के तहत सभी थानाध्यक्ष अविलंब प्राथमिकी दर्ज करें, इसमें अनावश्यक विलंब एवं पीड़ितों को परेशान न करें। सांसद ने पुलिस उपाधीक्षक को भी निर्देश दिया कि हत्या के मामले में लंबित आरोप पत्र की प्रक्रिया पूर्ण करते हुए अविलंब उन्हें उपलब्ध कराया जाए, साथ ही 90 दिनों के अंदर आरोप पत्र न्यायालय में समर्पित करने में भी तेजी लाने का निर्देश दिया गया। बैठक में विशेष लोक अभियोजक, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण एवं सरकारी अधिवक्ता तथा अन्य संबंधित पदाधिकारी भी मौजूद रहे। फुलवरिया थाना क्षेत्र के सेमरवारी गांव में एक तेंदुए के आतंक से लोग परेशान हैं। बताया जा रहा है कि कल देर रात तेंदुए के हमले से एक गाय के बछड़े की मौत हो गई। तेंदुए ने आधी रात को गांव में घूमते हुए बछड़े को निशाना बनाया। इसके बाद ग्रामीणों में दहशत है। कई जगहों पर तेंदुए के पैरों के निशान मिले हैं। वन विभाग और प्रशासन की टीम तेंदुए को पकड़ने के लिए प्रयास भी शुरू कर चुकी है। बताया जा रहा है कि पंजों के निशान से गांव में तेंदुए की मौजूदगी की पुष्टि हुई। झरही नदी के किनारे छिपे होने की आशंका भी जताई जा रही है। प्रशासन ने लोगों से सतर्क रहने का अपील किया है। शहर में 3 दिनों से लापता नगर परिषद के सफाई कर्मी का शव नाले से मिला है, जिसके बाद इलाके में सनसनी फैल गई। यह घटना गोपालगंज शहर के राम नरेश नगर मोहल्ले की बताई जा रही है। मृतक की पहचान 35 वर्षीय चुन्नी राम के रूप में हुई है, जो गोपालगंज नगर परिषद में सफाई कर्मी के पद पर कार्यरत थे। बताया जा रहा है कि 3 दिनों से वे लापता थे। परिजन लगातार उनकी खोजबीन कर रहे थे, लेकिन कोई जानकारी नहीं मिल पा रहा था। इसी बीच सुबह घर के पास स्थित खुले नाले से जब बदबू आनी शुरू हुई, तो लोगों ने इसकी जानकारी पुलिस को भी दी और जांच भी किया गया, जिसके बाद नाले में शव मिला। आसपास के लोगों के सहयोग से पुलिस ने शव को निकाला और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मोहल्ले के लोगों का कहना है कि नाले पर स्लैब नहीं लगा हुआ था। परिजनों ने आशंका जताई है कि खाने पीने के दौरान नाले में गिरने से चुन्नी राम की मौत हो सकती है। हालांकि पुलिस अभी इसमें किसी भी निष्कर्ष पर नहीं पहुंची है। पुलिस का कहना है कि इस मामले में अगर परिजनों से लिखित आवेदन मिलेगा तो आगे की कार्रवाई और जाँच पड़ताल की जाएगी। फिलहाल पुलिस अपने स्तर से मामले की तफ्तीश कर रही है। प्रदेश के मुखिया सम्राट चौधरी का गोपालगंज में आगमन हो सकता है। हालांकि इस पर कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है, परंतु सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार शनिवार को मुख्यमंत्री गोपालगंज में आ सकते हैं। यहां थावे मां भवानी का दर्शन पूजन भी करेंगे, साथ ही प्रशासनिक पदाधिकारियों के साथ उनकी बैठक भी होगी। इसको लेकर जिला प्रशासन ने तैयारी शुरू कर दी है। मुख्यमंत्री के कार्यक्रम को लेकर पार्टी के कार्यकर्ता और नेता भी काफी उत्साहित हैं और मुख्यमंत्री के स्वागत के लिए जोरदार तरीके से तैयारी में लगे हुए हैं। हालांकि मुख्यमंत्री का पूरा शेड्यूल अब तक जारी नहीं किया गया है। वे कितने बजे पहुंचेंगे और जिले में उनका क्या क्या कार्यक्रम है, इसकी रूपरेखा आधिकारिक तौर पर अभी सामने नहीं आई है। भाजपा के थावे प्रखंड के नेता संजय प्रसाद गुप्ता के पुत्र सोनू गुप्ता की दुबई में ईरान हमले के दौरान हुई मौत की दुखद घटना पर आज जदयू के जिला अध्यक्ष प्रमोद पटेल और सांसद के प्रतिनिधि रामाशीष सिंह मृतक के परिजनों से मिलने उनके घर पहुंचे। इस दौरान शोकाकुल परिवार से मुलाकात कर गहरी शोक संवेदना व्यक्त करते हुए सांसद आलोक सुमन से भी पीड़ित परिवार की बात कराई गई और जल्द से जल्द मुआवजा के साथ मृतक के शव को घर मंगाने की प्रक्रिया शुरू करा दी गई। प्रमोद पटेल ने कहा कि जो भी आवश्यक दस्तावेज थे वह उपलब्ध कराए गए और सांसद महोदय के नेतृत्व में लगातार परिवार को आवश्यक सहयोग करने की दिशा में पहल शुरू कर दी गई है। मानव तस्करी के विरुद्ध गोपालगंज पुलिस ने अभियान की शुरुआत की है। इसको लेकर नया सवेरा नाम से अभियान शुरू किया गया है। इस अभियान के तहत लोगों को जागरूक करने के लिए गोपालगंज पुलिस ने एक गाना भी लॉन्च किया है, जिसमें स्पष्ट संदेश मानव तस्करी के खिलाफ लोगों को जागरूक करते हुए सुना जा सकता है। गोपालगंज के व्यवहार न्यायालय परिसर में आज NI एक्ट 138 के वादों के निष्पादन हेतु विशेष लोक अदालत का आयोजन किया जाना सुनिश्चित हुआ है। बताया जा रहा है कि व्यवहार न्यायालय के सभी न्यायालयों में लंबित NI एक्ट 138 के वादों का निष्पादन आपसी सुलह समझौता के आधार पर किया जाएगा। इससे संबंधित जिन लोगों के भी मामले लंबित हैं, वे लोग न्यायालय में या लोक अदालत के कार्यालय में संपर्क स्थापित कर सकते हैं। इधर भोरे के जगतौली थाना की पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर अभियुक्त ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह उर्फ अंकित सिंह से पूछताछ के दौरान हत्या की नियत से रखी गई एक अवैध देसी कट्टा को जब्त किया है। बताया जा रहा है कि इस कट्टा को भगवान टोला निवासी बलवंत कुमार के पास छुपा कर रखा गया था। पुलिस ने इसमें कार्रवाई करते हुए बलवंत कुमार को भी गिरफ्तार किया है और ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह की भी गिरफ्तारी हुई है। दोनों पर अब आगे की कार्रवाई की जा रही है। कृषि अनुसंधान परिषद पटना के तरफ से कृषि में सुखाड़ प्रबंधन विषय पर कृषक वैज्ञानिक संवाद का आयोजन किया गया। इस अवसर पर कृषि प्रबंधन एवं प्रसार प्रशिक्षण संस्थान
0: के निदेशक डॉक्टर पीके मिश्रा मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। कार्यक्रम का शुभारंभ स्कूली विद्यार्थियों के लिए भारतीय कृषि की वर्तमान स्थिति तथा देश के कृषि विकास में ICAR के अमूल्य योगदानों पर जागरूकता सत्र के साथ शुरू किया गया। नगर थाना की पुलिस ने चोरी की मोटरसाइकिल को बरामद किया है और एक आरोपी की गिरफ्तारी भी की है। बताया जा रहा है कि पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर लखपतिया मोड़ के पास छापेमारी करते हुए विकास कुमार पिता अजय प्रसाद, जो तिवारी टोला थाना कुचायकोट का निवासी है, इसे गिरफ्तार कर लिया। इसके पास से चोरी की मोटरसाइकिल मिली है, जिसे जब्त किया गया है। इधर सिरीपुर थाना की पुलिस ने भी चोरी के एक मामले में अप्राथमिकी अभियुक्त ब्यास बीन को गिरफ्तार कर लिया। यह उचका गांव के पिपराही का रहने वाला बताया जा रहा है। इस पर भी पुलिस विधिक कार्रवाई कर रही है। पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर कई मामलों में अपराधियों को पकड़ने के लिए पुलिस ने इनाम की घोषणा की है। मोहम्मदपुर थाना क्षेत्र में सल्लेपुर गांव के रहने वाले अभिषेक कुमार उर्फ टमाटर पर भी गोपालगंज पुलिस ने 20,000 रुपए का इनाम घोषित किया है। भोरे थाना में एक मामले में फरार चल रहे मुकेश महतो, पिता साजन महतो, साकिन सरेया पिपरा थाना गोविंदगंज जिला पूर्वी चंपारण की भी गिरफ्तारी पर 10,000 रुपए का इनाम रखा गया है। इस पर मादक पदार्थों की तस्करी का आरोप है। साथ ही जादोपुर थाना क्षेत्र में एक आरोपी राकेश राय पिता सुनेश्वर राय, जो बरई पट्टी थाना जादोपुर का निवासी है, इस पर शराब की तस्करी और आर्म्स एक्ट के मामले दर्ज है। इस पर भी पुलिस ने 20,000 रुपए का इनाम घोषित किया है। माझा थाना की पुलिस ने भी हत्या के प्रयास में फरार चल रहे 3 प्राथमिकी अभियुक्तों को गिरफ्तार किया। एक विधि विरुद्ध बालक को भी निरुद्ध किया गया है। पकड़े गए आरोपियों में नितेश कुमार पिता राम सुंदर राम और राम सुंदर राम पिता भगवान राम तथा एक विधि विरुद्ध बालक है। ये सभी माझागढ़ के प्रतापपुर के रहने वाले बताए जा रहे हैं। साथ ही एक दूसरे मामले में नामजद प्राथमिकी अभियुक्त संदीप कुमार पिता ललन प्रसाद, जो लोहिजरा थाना माझा का निवासी है, इसको भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। साथ ही मोहम्मदपुर थाना कांड संख्या 109 2026, जिसमें 24 ग्राम सोने की चैन की बरामदगी या चोरी हो गई है या इससे संबंधित सूचना देने पर पुलिस 10,000 रुपए का इनाम देगी। कटिया थाना की पुलिस ने भी 14 फरवरी 2026 में हुई चोरी के एक मामले में, जिसमें 3 किलो चांदी और 15 ग्राम सोने के आभूषणों की चोरी हुई थी, इस मामले में भी सूचना देने वाले व्यक्ति को 20,000 का इनाम देगी। पुलिस अधीक्षक ने आम जनता से अपील किया है कि किसी भी तरह की इसमें जानकारी मिले तो गोपालगंज पुलिस को सूचित करें। आपकी पहचान गुप्त रखी जाएगी और आरोपियों को पकड़वाने में अगर आप पुलिस की मदद करेंगे तो आपको उक्त इनाम दिया जाएगा। और आज के मौसम का तापमान, गोपालगंज में न्यूनतम 26 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 39 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। छिटपुट बारिश की संभावना बनी हुई है। अंत में मुख्य हालचाल एक बार फिर। हत्या और आर्म्स एक्ट में एक आरोपी को हुई आजीवन कारावास की सजा। अनुश्रवण समिति की जिला पदाधिकारी ने की बैठक। तेंदुए के हमले से एक बछड़े की मौत। स्थानीय लोगों में दहशत का माहौल। 3 दिन से लापता एक सफाई कर्मी का नाले से मिला शव। परिजनों में मचा कोहराम। गोपालगंज में आ सकते हैं सूबे के मुख्यमंत्री। स्वागत की तैयारी में जुटा जिला प्रशासन।
2: इसके साथ ही रेडियो रिमझिम से प्रसारित स्थानीय हालचाल का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
4: ठक ठक।
5: काजी, आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
24: अच्छा मिला ही नहीं।
5: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें, अब चलिए सीधे कमल श्री में।
25: जी हाँ, कमल श्री। याद रखें, सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
5: आप भी आए कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, बारी मार्केट गोपालगंज।
25: याद रहे, सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ, सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है।
26: ओम नमः शिवाय।
27: सावन के पावन अवसर पर बाबा भोलेनाथ के दर्शन का सुनहरा अवसर लेकर आया है दीपक राज टूर एंड ट्रेवल्स गोपालगंज।
26: श्रद्धालुओं के लिए विशेष तीर्थ यात्रा एवं कांवर यात्रा की व्यवस्था। पहला रूट थावे सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, राजगीर होते हुए पुनः वापसी।
27: दूसरा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, तारापीठ, जगन्नाथपुरी, गंगा सागर, काली घाट, कोलकाता, रजरप्पा, राजगीर होते हुए वापस गोपालगंज।
26: तीसरा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, गया, बोधगया, वाराणसी, अयोध्या, गोरखनाथ मंदिर होते हुए वापस गोपालगंज।
27: चौथा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, गुवाहाटी, माँ कामाख्या धाम, दार्जिलिंग, सिलीगुड़ी, गंगटोक, जनकपुर, अरेराज होते हुए वापस गोपालगंज।
26: गोपालगंज जिले के श्रद्धालु अब घर बैठे अपनी तीर्थ यात्रा के लिए वाहन बुक करा सकते हैं।
27: बिचौलियों से बचे और सीधे हमारे कार्यालय या बुकिंग नंबर पर संपर्क करें।
26: बुकिंग नंबर 9155548507 या 9162933538।
27: हेल्पलाइन नंबर 9934498845।
26: दीपक राज टूर एंड ट्रेवल्स, मुख्य कार्यालय चिराई घर पेट्रोल पंप के पास गोपालगंज, उपशाखा NH27 काली स्थान बंजारी गोपालगंज।
27: बोलबम हर हर महादेव।
1: सुनिए सुनिए सुनिए,
3: आपके शहर गोपालगंज में खुल गया है श्री कृष्णा साड़ी,
1: जिसमें आपको मिल रहा है सस्ते दामों में एक से बढ़कर एक डिजाइनों के लहंगा, फैंसी साड़ी, लेडी सूट, क्रॉप टॉप एवं कुर्ती।
3: श्री कृष्णा साड़ी दुकान है केडिया भवन, केडिया लेन, मेन रोड, गोपालगंज।
1: एक बार सेवा का मौका जरूर दें श्री कृष्णा साड़ी को।
6: टॉप रामू काका, हई इलेक्ट्रिक के इतना सारा सामान कहाँ से खरीद के ले आओ तनी?
7: ये सब सामान संतोष इलेक्ट्रॉनिक से लेके आओ तनी बाबू।
6: अरे ये सामान तो एक नंबर बुझाता और काफी डिजाइनदार भी बा।
7: अरे हाँ बाबू, अपना गोपालगंज में इतना अच्छा दुकान कहाँ बा? संतोष इलेक्ट्रॉनिक्स में सस्ता में एक नंबर के सामान मिलेला।
6: हम तो अपना नौका घरवा खातिर इलेक्ट्रॉनिक के सारा सामान दिल्ली से लेके आवे के सोचत रहनी, लेकिन हम काले संतोष इलेक्ट्रॉनिक से जाके अपन पूरा सामान ले आए।
7: अरे हाँ बबुआ, संतोष इलेक्ट्रॉनिक से लिए दिल्ली जाके पैसा बर्बाद कैले से का फायदा?
8: संतोष इलेक्ट्रॉनिक हाउस, जहाँ सस्ते दामों में बेस्ट क्वालिटी के इलेक्ट्रिक के सारे सामान मिलते हैं।
6: हमारा पता है चिराई घर पेट्रोल पंप के सामने, संतोष फर्नीचर के नीचे, कॉलेज रोड, गोपालगंज।

0: आ गया है विकसित भारत जी राम जी, जिसमें हर ग्रामीण को मिलेगी साल में 125 दिन रोजगार की गारंटी और काम वही जो ग्राम पंचायत कहे। विकसित भारत जी राम जी, गांव बढ़ेगा तभी देश बढ़ेगा। ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
1: Excuse me, boss. You have a text message.

हेलो हाय नमस्ते नमस्कार प्रणाम सलाम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप लोग मस्त एंड स्वस्थ होंगे और मैं भी मस्त एंड स्वस्थ आप सभी के बीच उपस्थित हो चुका हूं। मैं सोनू SMS फरमाइश के साथ रेडियो रिमझिम 90.4 FM पे समय 9:23 हो रहे हमारे स्टूडियो घड़ी में और कार्यक्रम शुरू होने जा रहे हैं। यदि आप इस कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हैं, अपने पसंद के गाने सुनना चाहते हैं, तो बिल्कुल हर रोज की तरह अपने पसंद के गाने सुन सकते हैं। और इसके लिए आप सभी को टेक्स्ट मैसेज करना है एक छोटा सा, जिसमें अपना नाम और गाने का नाम और कहाँ से मैसेज कर रहे हैं ये सारी बातें टाइप करना है और हमारे नंबर 7277-1665 करना है। और जैसे आपकी फरमाइश होगी आपके मैसेज हमारे पास पहुँचेंगे, वैसे आपकी फरमाइश पूरी करेंगे। तो यदि आप इस कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हैं तो बिल्कुल जुड़े, टेक्स्ट मैसेज अभी करें और ध्यान रखें कि पुराने गाने के साथ ही इस कार्यक्रम में इंजॉय किया जाता है, तो पुराने गाने की फरमाइश करेंगे। उस मैसेज और मैसेज पहला पहुंचा हुआ है तो हम शामिल करते हैं। और पहला मैसेज पहुंचा हुआ है, हेलो हाय, मैं शिल्पी बिदबरवा से और मुझे सॉन्ग सुनना है। सॉन्ग का बोल है, तुम तो परदेसी हो परदेसी। डेडिकेट आपको एंड रोशनी सिस्टर सबीना जी, निशा भारती और रेडियो सुनने वाले सभी को। तो चलिए आपके गाने के साथ इस कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। और आगे मैसेज पहुंचा, लिखा गया है कि मैं अनीस यादव विलेज डुमरा यदुवंशी टोला डिस्ट्रिक्ट सिवान बिहार से हूं और खान ग्लोबल स्टूडेंट पटना नीट का स्टूडेंट है। तो चलिए आपकी फरमाइश हम पूरी करेंगे। और आगे मैसेज पहुँचे हुए लिखा गया है कि सुनो भाई नमस्कार, तो बिल्कुल आपको भी स्वागत है इस कार्यक्रम में। कहते हैं कि कैसे हैं, तो एकदम बढ़िया, आप सभी के बीच उपस्थित हूँ। और इस मैसेज को पहुँचाने वाले रोहित जी हैं। और आगे मैसेज पहुँचा हुआ है, लिखा गया है कि हेलो सुनो भैया कैसे हैं आप, और मैं स्वीटी शर्मा वृंदावन से और मुझे सॉन्ग सुनना है। तो बिल्कुल बढ़िया है और सॉन्ग की फरमाइश है तो पूरा करने की कोशिश है। और आगे मैसेज पहुँचा लाल बाबू सिंह नवादा शहर भोजपुर से जुड़े हुए हैं और कहते हैं कि सॉन्ग है हम जैसा कहीं आपको दिलवर न मिलेगा। तो चलिए आपकी फरमाइश हम पूरी करेंगे, थोड़ा सा वक्त लगेगा। और आगे मैसेज पहुंचा हुआ लिखा गया है कि मधुसरिया से राजू यादव जी इस मैसेज को पहुंचाते हैं और कहते हैं कि सॉन्ग सुना दीजिए। तो बिल्कुल आपकी फरमाइश हम प्ले करेंगे और बने रहे हमारे साथ। और आगे बढ़ते हैं गाने के साथ इस कार्यक्रम की आगाज़ करते हैं और पहले गाने प्ले करते हैं, तुम तो परदेसी हो परदेसी।

कभी प्यारा सॉन्ग रेडियो रेम छीम 94.4 FM पे सुन रहे हैं आप सब। और कार्यक्रम चल रहा है इसमें फरमाइश का। यदि आप भी जुड़ना चाहते हैं, अपने पसंद के गाने सुनना चाहते हैं तो बिल्कुल सुन सकते हैं। इसके लिए आप सभी को टेक्स्ट मैसेज करना है एक छोटा सा, जिसमें अपना नाम और गाने का नाम, कहाँ से मैसेज कर रहे हैं, ये सारी बातें टाइप करना है और सेंड करना है हमारे नंबर 7277-1665-96 पे। यहाँ पे कुछ आगे भी मैसेज पहुँचे हुए तो मैसेज को शामिल करते हैं। और आगे मैसेज पहुँचा हुआ है, लिखा गया है कि हेलो सर, लेकिन आप कौन, अपना परिचय दें। आगे मैसेज पहुँचा हुआ है, लिखा गया है कि हम भी जुड़े हैं और हमारे मैडम जी भी सोनू बाबू जुड़ी हैं।

तो इन्हें एक मेरे माध्यम से एक सॉन्ग सुना दें, तो बिल्कुल सुनाने की कोशिश रहेगा। और मैसेज को करते हैं वीरेंद्र गुप्ता एंड लवली गुप्ता, आप दोनों का स्वागत है। और आगे मैसेज पहुंचा हुआ है, लिखा गया है कि थैंक्स, आपको भी धन्यवाद। आगे मैसेज पहुंचा, मैं शिव सागर दीवाना जम्मू एंड कश्मीर से, मुझे एक सॉन्ग सुना दीजिए। तो बिल्कुल आपकी फरमाइश हम प्ले करेंगे। और इस आगे मैसेज पहुंचा हुआ है, हेलो नमस्ते भैया, कैसे हैं? मेरे तरफ से सभी प्यारे प्यारे दोस्तों को प्यार भरा नमस्कार एंड सलाम बोल लीजिएगा। और मैं भी जुड़ गई हूँ शो से, और मेरी भी हाजिरी लगा दीजिए, और मुझे भी सॉन्ग सुनना है, सॉन्ग का बोल है। तो बिल्कुल आपकी फरमाइश हम पूरी करेंगे। और इस मैसेज को करती हैं रोशनी कुमारी मानिकपुर से, और आगे मैसेज करती हैं और लिखती हैं कि सुपर सॉन्ग, तुम तो परदेसी हो, तुम तो परदेसी, मुझे सुनाने के लिए दिल से थैंक्स सिस्टर। और आगे मैसेज पहुंचा हुआ है, लिखा गया है कि हेलो, मुझे भी गाना सुनना है, तो बिल्कुल सुनाने की कोशिश रहेगा। फिलहाल आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में। और मैसेज करती हैं निशा, आगे मैसेज पहुंचा हुआ है, लिखा गया है कि अरे फूल है गुलाब का खुशबू लिया करो, मानते हैं कि दिल आपका अपना है, पर कभी कभी गैरों को भी दिया करो। बड़रिया थाना क्षेत्र बालापुर से जुड़े हुए हैं अनुज कुमार जी, तो बिल्कुल आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में अनुज जी। और आगे मैसेज पहुंचा हुआ है, लिखा गया है कि एके पांडे सरिया गोपालगंज से, और सोनू भाई क्या हाल चाल है, मुझे भी सॉन्ग सुनना है, तो बिल्कुल आपका भी स्वागत है इस कार्यक्रम में, और बहुत दिन के बाद जुड़े हैं। आगे मैसेज पहुँचा हुआ है, लिखा गया है कि हाय सर जी, मैं निशा पांडे में भी आ चुकी हूँ, और हमें भी सॉन्ग सुनना है, अपने पसंद से कोई भी सॉन्ग सुना दीजिएगा। तो बिल्कुल सुनाने की कोशिश रहेगा, लेकिन अपना पसंद बता देती तो बेहतर रहता, क्योंकि आप लोगों के लिए ही कार्यक्रम को चलाया जाता है, और आप सभी से डिमांड किया जाता है कि आप अपने पसंद के ही गाने फरमाए तो बेहतर रहेगा, क्योंकि बाकी समय में तो प्लेलिस्ट से हम लोग सुनाते ही हैं। कुछ समय के लिए आपसे मांग की जाती है, तो उस समय भी अपना पसंद बताएं, ताकि आपकी पसंद के ही गाने सुनाए जा सके। आगे मैसेज पहुंचा हुआ है, लिखा गया है कि हाय भैया गुड इवनिंग, आप कैसे हैं? सजदा अंसारी मीरगंज से, और मैं भी प्रोग्राम सुन रहे हैं, तो बिल्कुल आपका भी स्वागत है इस कार्यक्रम में। आगे बढ़ते हैं, मैसेज तो आते जा रहे हैं, लेकिन मैसेज को अब रुकते हैं, गाने के फरमाइश अगली पूरी करते हैं। और इस गाने के फरमाइश हमारे श्रोतागण सिवान से जुड़े हुए हैं अनीस यादव जी हैं, और इनके तरफ से गाने के फरमाइश पहुंचा हुआ है, वो लड़की बहुत याद आती है। और इस गाने को डेडिकेट करते हैं मनीष यादव, सतीश यादव, नीतीश यादव, रौनक यादव, अंकिता यादव, अंजलि यादव, नंदनी यादव, मिष्टी यादव और मिल्क यादव, एंड इन सभी को डेडिकेट करना चाहते हैं। तो चलिए आपकी फरमाइश हम प्ले करते हैं और सुनते हैं आपको पसंद के गाने, हम सभी रेडियो 94.4 FM पे।

0: प्रसाद क्लिनिक।
1: स्त्री रोग, ल्यूकेरिया, यूट्रस का बाहर निकल जाना, कान का बहना, गठिया, साइटिका, कमर दर्द, अधेड़ी, थनैली, चर्म रोग के सफल इलाज के लिए मिले
0: डॉक्टर श्रीमती कुंती देवी। रोगी देखने का स्थान बुधवार और शनिवार को मिंज स्टेडियम LIC ऑफिस के पास गोपालगंज,
1: बाकी दिन जादवपुर बाजार।
2: अब बेटा बहु घर आने वाली है, सोच रही हूँ कुछ सोने की नई ज्वेलरी ले ली जाए, पर भरोसे की दुकान।
3: माँ अब घबराइए नहीं, चलते हैं मास्टर साहब की जेवर की दुकान, गुप्ता ज्वेलर्स, BIS अप्रूव्ड, शानदार डिजाइन और असली ज्वेलरी की गारंटी।
4: अपने सपनों की खूबसूरती के लिए गुप्ता ज्वेलर्स ही चुने, सिल्वर, गोल्ड या डायमंड, हर ज्वेलरी BIS अप्रूव्ड और किफायती दाम के साथ। विश्वास की परंपरा, नई डिजाइन का खजाना, बस गुप्ता ज्वेलर्स में।
5: आज ही आए गुप्ता ज्वेलर्स, मास्टर साहब की जेवर की दुकान, चंद्र गोखो लोड, गोपालगंज। मोबाइल नंबर 94395461 या 97-0975-675।
6: घर बन रहा हो तो सिर्फ ईंट और सीमेंट नहीं, टाइल्स और फिटिंग्स का चुनाव भी होना चाहिए शानदार।
5: इसीलिए गोपालगंज जिले के लोगों की पहली पसंद बन चुका है BK टाइल्स। BK टाइल्स, यहाँ मिलेंगे सभी प्रकार के डिजाइनर टाइल्स, मार्बल, ग्रेनाइट, बेसिन, कॉमोड, बाथ फिटिंग्स और घर सजाने के कई आधुनिक प्रोडक्ट,
4: वो भी किफायती दामों पर। और खास बात, गोपालगंज जिले में हमारी 4 सुविधाजनक शाखाएं,
5: RR मोड SP कोठी के पास गोपालगंज, दूसरा ब्रांच भटवा मोड़ के पास कुचायको,
4: तीसरा ब्रांच इस्लामिया कॉलेज के पास मेन रोड ठावे मीरगंज, और चौथा ब्रांच बंतरिया मोड़ भोरे।
5: और अब सिवान जिले में भी हमारी 2 शाखाएं उपलब्ध हैं, सिवान ब्रांच कुशवाहा चौक हकाम बाईपास सिवान,
4: और मैरवा ब्रांच बबनौली चौक मैरवा सिवान।
5: तो आज ही अपने सबसे नजदीकी BK टाइल्स ब्रांच पर आए और करे बेहतरीन खरीदारी।
4: अधिक जानकारी के लिए संपर्क करे गोपालगंज ब्रांच में 8460571406, मीरगंज ब्रांच 9693101611,
5: कुचाई कोट ब्रांच में 9693101602, भोरे ब्रांच में 8207856404,
4: सिवान ब्रांच में 9942071405, मैरवा ब्रांच में 8207856403।

0: छोटा सा ब्रेक हो गया खत्म और ब्रेक बाद पुनः आप सभी का स्वागत है रेडियो एमछिम 90.4 एफएम पे और शो चल रहा है एसएमएस फरमाइश का। और यहाँ पे आगे कई मैसेज पहुँचे हुए हैं और आगे मैसेज पहुँचा हुआ है, लिखा गया है कि हाय मैं राम, गाना सुनना है तू है मेरी किरण। तो बिल्कुल आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में, गाने के फरमाइश है तो पूरा करने की कोशिश है। आगे मैसेज पहुंचा हुआ है मंकी सहानी भैरवगंज वेस्ट चंपारण से, 3 बार मैसेज किया लेकिन आपने गाना नहीं बजाया। तो बिल्कुल इस बार आपके गाने हम बजाएंगे और आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में। और आगे मैसेज पहुँचा हुआ है सुपर डुपर सॉन्ग माई नेम इज दीपक एंड जेलर, तो आपका भी स्वागत है इस कार्यक्रम में दीपक एंड जेलर जी। और आगे मैसेज पहुंचा हुआ है और लिखा गया है कि थैंक यू सर, आपको धन्यवाद है रेडियो एमछिम सुनने के लिए, अनिश जी मैसेज करते हैं। आगे मैसेज पहुंचा हुआ है, ओहो बहुत दुख है, मैसेज करती हैं रोशनी मानिकपुर से। और आगे मैसेज पहुँचाए हुए हैं और इस लाइन को भेजे हुए, तो आपकी भी लाइन हम शामिल करेंगे सनोज जी थोड़ा सा देखने के बाद। फिलहाल आगे बढ़ते हैं और अगले गाने की फरमाइश हम प्ले करते हैं और इस गाने की फरमाइश करते हैं रोहित जी देहरादून से। सुनते हैं इनके पसंद के गाने हम सभी रेडियो एमछिम 90.4 एफएम पे।
1: अरे तेरी तो

0: फॉर मोर एंटरटेनमेंट।
1: काफी प्यारा शो रेडियो एमजीएम 90.4 एफएम पे सुनने आप सब, और कार्यक्रम चल रहा है इसमें इस फरमाइश का, और इस गाने की फरमाइश करने वाले थे रोहित जी, और आगे मैसेज पहुंचा हुआ है, लिखा गया है कि गाना प्ले करने के लिए सुनो भैया दिल से धन्यवाद, आपको भी धन्यवाद है रेडियो एमजीएम सुनने के लिए। और आगे मैसेज पहुंचा हुआ है, लिखा गया है कि नाइस सुपर सॉन्ग दलाल मूवी से एमडी 97 दरभंगा बाजीतपुर से जुड़े हुए हैं, कहते हैं कि बस इसी तरह सुनाते रहिए सर। बिल्कुल सुनाते रहेंगे। और आगे मैसेज पहुंचा हुआ है, और अगली गाने के फरमाइश हम प्ले करते हैं। यहाँ पे अगली फरमाइश करते हैं शिव सागर दीवाना जी, और गाने का बोल देते हैं राहों में उनसे मुलाकात हो गई। तो चलिए शिव सागर जी आपकी फरमाइश प्ले करते हैं, एंजॉय करते हैं हम सभी, और आप भी एंजॉय करें अपने गानों के साथ रेडियो एमजीएम 90.4 एफएम पे।

0: अरे माँ, ये दांत का दर्द तो जान ले लेगा, क्या करूँ?
1: अब चिंता छोड़िए, गोपालगंज में है महावीर डेंटल एंड मैक्सिलोफेशियल ट्रॉमा केयर, मल्टी स्पेशलिटी डेंटल और फेस क्लिनिक, जहाँ दांत, जबड़े और चेहरे से जुड़ी हर समस्या का आधुनिक इलाज उपलब्ध है।
2: यहाँ सेवा दे रहे हैं गोपालगंज के फर्स्ट MDS डॉक्टर पल्लव राज, वरिष्ठ जबड़ा एवं फेस सर्जन और कैंसर रोग विशेषज्ञ, साथ में डॉक्टर अभिलाषा अग्रवाल, दंत एवं मुख रोग विशेषज्ञ और कॉस्मेटिक डेंटल सर्जन।
1: यहाँ टेढ़े मेढ़े दांत, रूट कैनाल, चेहरे और मुंह से जुड़ी सभी समस्याओं का विशेषज्ञ इलाज किया जाता है।
2: ध्यान दे, आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए टूटे हुए जबड़े और मुंह का कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का मुफ्त इलाज उपलब्ध है।
1: पता, शनिवार और रविवार महावीर मेडिकल हॉल, अम्बेडकर चौक, हॉस्पिटल रोड, गोपालगंज। अन्य दिन केडिया मैक्सिलोफेशियल एंड कॉस्मेटिक केयर, मुंशी प्रेमचंद पार्क के पास, बेतिया हाता, गोरखपुर।
2: हर दिन दोनों क्लिनिक पर डॉक्टर पल्लव राज और उनकी विशेषज्ञ टीम द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है।
1: संपर्क करें 84710309 या 9765665750।
3: डॉक्टर अनुज मिश्रा, न्यूरो सर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज। ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
4: छोटा सा ब्रेक हो गया खत्म और ब्रेक बाद पुनः आप सभी का स्वागत है रेडियो एमजीएम 90.4 FM पे। सो चल रहा है इसमें फरमाइश का और यहाँ पे आगे कई मैसेज पहुँचे हुए, तो फिलहाल हम अगले गाने के फरमाइश पूरी करने वाले मैसेज को बता दें। और इस मैसेज को करते हैं मंकेश साहनी जी भैरोगंज वेस्ट चंपारण से, और कह रहे हैं कि 3 बार मैसेज किया लेकिन आपने गाना नहीं बजाए, इस बार तो गाना बजा दीजिएगा, फिल्म छुपा रुस्तम से कोई भी गाना। तो चलिए आपकी फरमाइश हम प्ले करेंगे, और कोई भी गाने की फरमाइश पहुंचा हुआ है तो अपने पसंद से। और एक और हमारे श्रोतागण हैं जिनका नाम है नीसा पांडे, पटना से जुड़ी हैं, और इनके तरफ से भी मैसेज पहुंचा हुआ है कि अपने पसंद से कोई भी गाना प्ले कर दीजिएगा। तो चलिए आप दोनों की फरमाइश एक ही गाने के साथ पूरी करते हैं और सुनते हैं हम सभी रेडियो रिमझिम 90.4 FM पे।

का भी प्यारा सॉन्ग सुन रहे हम सभी रेडियो रेमछेम 90.4 एफएम पे। अलका याग्निक कुमार शानू का आवाज़ में छुपा रुस्तम मूवी से और सो चल रहा है उसमें फरमाइश का। यहाँ पे आगे कई मैसेज भी पहुँचे हुए और यहाँ पे मैसेज पहुँचा हुआ है मंकीश सहानी जी की तरफ से लिखे हुए कि दिल जीत लिया आपने सर, मेरा पूरा परिवार झूम गया इस गाने पर। बिल्कुल आगे भी छुपा रुस्तम मूवी से ही गाने का फरमाइश पहुंचा हुआ है। हमारे श्रोतागण हैं जिनका नाम है ए के पांडे और इनके तरफ से गाने का फरमाइश छुपा रुस्तम मूवी का टाइटल ट्रैक की आई है, तो इनकी भी फरमाइश हम प्ले करेंगे अभी। और यहाँ पे आगे में से एक पहुंचा हुआ है, लिखा गया है कि गांव के मुखिया को बुखार था, मैंने मुखिया जी को पैरासीटामोल खिला दिया, अब गांव वाले चंदा इकट्ठा करके मुझे USA भेजना चाहते हैं डॉक्टर की पढ़ाई करने के लिए। हाँ बिल्कुल, ले तो इस ऑफर का लाभ उठाइए सनोज जी, कम से कम आगे तो किसी को काम आइएगा। तो आपका हमने चिटकुला शामिल कर दिए हैं, आप परेशान ना हो, जब भी समय मिलेगा वैसे वैसे आपकी जो भी चुटकुले हमारे पास पहुंचेंगे एक एक करके शामिल करने की कोशिश रहता है मेरा, लेकिन क्या ही करें बहुत कम समय रहता है मेरे पास। और आगे मैसेज कई पहुंचे और मैसेज को रुकते हैं। यहाँ पे कर मैसेज पहुंचा नाइस सॉन्ग रोशनी, आगे बढ़ते हैं, अब अगले गाने को प्ले करते हैं छुपा रुस्तम मूवी से ही और सुनते हैं हम सभी रेडियो 90.4 FM पे।

काफ़ी प्यारा सॉन्ग छुपा रुस्तम मूवी से दो गाने हम सभी इंजॉय किए और यहाँ पे आगे भी मैसेज पहुँचे हुए और आगे मैसेज पहुँचा हुआ है, आगे गाने के फरमाइश पहुँचा हुआ है रोशनी की तरफ से। और गाने का बोल है जब तक ई धरती रही जब तक ई अंबर रही। डेडिकेट आपको एंड मेरी सिस्टर हैं प्रियांशी पूजा एंड ऑल रेडियो फ्रेंड्स। तो चलिए आपकी फरमाइश हम प्ले करेंगे। यहाँ पे आगे भी मैसेज पहुँचा है कि और लिखा गया है कि अस्सलाम वालेकुम क्या हाल है, मेरा भी वेलकम कीजिए। तो बिल्कुल आपका भी स्वागत है इस कार्यक्रम में। मैसेज करती हैं शबीना और आगे बढ़ते हैं गाने को प्ले करते हैं क्योंकि देखे तो बहुत कम समय है और गाने भी इंजॉय करने हैं। तो एक दो गाने और इंजॉय किया जाए, सुनते हैं हम सभी।

रेडियो एमजीएम 94.4 एफएम सुन रहे हैं आप सब, और कार्यक्रम चल रहा है इसमें इस फरमाइश का, और भोजपुरी में काफ़ी प्यारा सॉन्ग सुन रहे थे अभी हम सभी। और आगे मैसेज पहुंचा हुआ है, थैंक्स। आगे मैसेज पहुंचा हुआ है, लिखा गया है कि गाना सुनाने के लिए थैंक यू, और इस मैसेज को करती हैं निशा पांडे। और आगे मैसेज पहुँचा हुआ है के पांडे जी की तरफ से, लिखा गया है कि सॉन्ग सुनाने के लिए थैंक यू सोनो भाई। चलिए आपको धन्यवाद है रेडियो रमजीम सुनने के लिए, और आगे बढ़ते हैं, अंतिम गाने प्ले करते हैं और इस गाने के फरमाइश करते हैं वीरेंद्र गुप्ता भैया के माध्यम से, लवली गुप्ता जी, और इन्होंने गाने की फरमाइश की है मेघारे मेघारे। लता जी और सुरेश वाडकर जी के आवाज़ों में सुनना है, और डेडिकेट है इन्हें जानने पहचानने वाले सभी को। तो चलिए आपकी फरमाइश हम प्ले करते हुए इस कार्यक्रम को समाप्त कर रहे हैं। आगे तो अभी कई गाने के फरमाइश मेरे पास है, लेकिन क्या ही करें, समय जो है हमारा पूरा हो चुका है, तो कार्यक्रम को यहीं पे समाप्त करना पड़ेगा। तो फिर अगले दिन इसी कार्यक्रम में मुलाकात होगी। आप सब सुनते रहें रेडियो रमजीम 94.4 एफएम, जो हमेशा कहता है सुनो दिल से। नमस्कार।

सुबह सवेरे आपको जगाता, दिन भर आपका साथ निभाता। रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो हर पल का है सुनो दिल से।

आप सब सुन रहल बानी बिहार के पहला सामुदायिक रेडियो रेडियो रिमझिम 90.4 FM के जौन हमेशा कहला सुनी दिल से।

सुबह सवेरे आपको जगाता, दिन भर आपका साथ निभाता। रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो हर पल का है सुनो दिल से।

आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। भारत ने सामाजिक सुरक्षा कवरेज में 1 अरब का आंकड़ा पार कर लिया है। श्रम और रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत का सामाजिक सुरक्षा कवरेज 2026 में बढ़कर 68% से अधिक हो गया है। इससे 100 करोड़ से अधिक लोग सामाजिक सुरक्षा ढांचे के दायरे में आ गए हैं। 2015 में ये मात्र 19% था। उन्होंने कहा कि ये सबका साथ सबका विकास के प्रति मोदी सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने नीट UG 2026 की पुनर्परीक्षा का परिणाम जारी कर दिया है। NTA के अनुसार 11 लाख से अधिक उम्मीदवारों ने स्नातक चिकित्सा, दंत चिकित्सा, आयुष और अन्य संबंधित पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए पात्रता हासिल की है। सभी उम्मीदवार अपने अंक पत्र आधिकारिक वेबसाइट पर देख सकते हैं। इस वर्ष पुनर्परीक्षा में देश के 551 शहरों और विदेशों के 14 शहरों में 5,440 केंद्रों पर करीब 20 लाख उम्मीदवार शामिल हुए थे। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि जलवायु परिवर्तन जैसी चुनौतियों के बावजूद भारत ने इस वर्ष 3,76,00,000 टन अनाज और 3,77,00,000 टन बागवानी उत्पादों की पैदावार की है। नई दिल्ली में श्री चौहान ने कहा कि वैज्ञानिक अब किसानों के साथ मिलकर काम करने के लिए सीधे खेतों में जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि खेत बचाओ अभियान के अंतर्गत 1,600 से अधिक वैज्ञानिक दल 728 जिलों में पहुंचे और लगभग 1 करोड़ किसानों से संपर्क किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल हरियाणा में जिंद रेलवे स्टेशन पर जिंद और सोनीपत के बीच चलने वाली भारत की पहली हाइड्रोजन रेलगाड़ी को रवाना करेंगे। पूरी तरह स्वदेशी तकनीक से विकसित ये रेलगाड़ी उन्नत रेलवे इंजीनियरिंग में देश की बढ़ती क्षमताओं को दर्शाती है। इसी के साथ भारत हाइड्रोजन रेलगाड़ियां चलाने वाले जर्मनी, जापान, चीन और अमरीका के समूह में शामिल हो जाएगा। केंद्र शासित प्रदेश दमन और नई दिल्ली के बीच सीधी व्यावसायिक विमान सेवा आज से शुरू हुई। ये हवाई संपर्क के एक नए दौर की शुरुआत है। नागर विमानन मंत्री किंजारप्पू राममोहन नायडू ने पहली उड़ान को दमन के नमो हवाई अड्डे से रवाना किया। ये ऐतिहासिक शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा हाल ही में नमो हवाई अड्डे के उद्घाटन के बाद हुई है। भारतीय रेलवे ने महाराष्ट्र के 14 किलोमीटर लंबे ताड़ाली घुगस रेलखंड के दोहरीकरण को मंजूरी दे दी है। इस परियोजना पर 200 करोड़ रुपए से अधिक खर्च होंगे। रेल मंत्रालय ने कहा है कि इस रेलखंड के दोहरीकरण से ट्रेनों का संचालन बेहतर होगा और माल ढुलाई की बढ़ती मांग को पूरा करने में मदद मिलेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल थानी से बातचीत की और फादर अमीर शेख हमद बिन खलीफा अल थानी के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया। सोशल मीडिया पर एक संदेश में श्री मोदी ने कहा कि कतर के फादर अमीर की स्थायी विरासत दोनों देशों को अपनी रणनीतिक साझेदारी और मजबूत बनाने के लिए प्रेरित करती रहेगी। सर्वोच्च न्यायालय ने CBSE पाठ्यक्रम के तहत 9वीं कक्षा में तीसरी भाषा शुरू करने पर चिंता जताई और कहा कि इससे विद्यार्थियों में तनाव बढ़ेगा। न्यायालय ने सुझाव दिया है कि इसे 5वीं या 6ठी कक्षा में शुरू किया जाना चाहिए ताकि विद्यार्थी इसे आसानी से अपना सके। ओडिशा के पवित्र शहर पुरी में आज भगवान जगन्नाथ की विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा निकाली गई। सुबह से लगातार बारिश के बावजूद लाखों श्रद्धालु बड़ा डंडा पर इस पवित्र दृश्य को देखने को लिए डटे हुए थे।
1: पुरी का पवित्र शहर भक्ति के सागर में आज डूबा रहा, क्योंकि पहंडी विजय और छेरा पहरा की पवित्र रस्म में पूरी होने के बाद लाखों भक्तों ने भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र और देवी सुभद्रा के भव्य रथों के ग्रैंड रोड पर खिसने की रस्म में हिस्सा लिया। रात होने पर रथ खिसने का काम आज के लिए रोक दिया गया है और पवित्र श्री गुंडीचा मंदिर तक की दिव्य यात्रा कल फिर शुरू होगी। हालांकि श्री गुंडीचा मंदिर के पास भगदड़ जैसी घटना से उत्सव का माहौल प्रभावित हुआ, जिसमें खबर है कि एक भक्त की मौत हो गई और कई अन्य घायल हो गए। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, पुरी।
0: देश भर में विभिन्न स्थानों पर भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा हर्षोल्लास के साथ निकाली गई। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय रेणुका। India has crossed the 1 billion mark in social protection coverage. In a social media post, Union Labour and Employment Minister Dr. Mansukh Mandaviya said, India's social protection coverage has expanded from 19% in 2015 to 68.4% in 2026, bringing more than 100 crore citizens under the umbrella of social protection framework. He said this reflects the Narendra Modi government's commitment to Sabka Saath, Sabka Vikas. India's social protection system has expanded significantly through various welfare programs aimed at providing financial security, healthcare, and food assistance to millions. These initiatives have played a crucial role in improving livelihoods and reducing poverty across the country. Prime Minister Narendra Modi will flag off India's first hydrogen train between Jind and Sonipat at Jind Railway Station tomorrow during his visit to Haryana. Designed, engineered and integrated in India, the train has been developed using indigenous technology, reflecting the country's growing capabilities in advanced railway engineering. With the introduction of this train, India joins the select group of countries that have operational hydrogen-powered trains. These include Germany, Japan, China and the United States. The train has been designed to run at a speed of 110 km per hour, but on this section, it will operate at a maximum speed of 75 km per hour. More from our correspondent.
3: India's hydrogen train features a 10 coach configuration, making it among the longest hydrogen-powered passenger trains developed so far. It is powered by 3,200 horsepower propulsion system, making it one of the most powerful hydrogen-powered train sets in operation. The train is powered by hydrogen fuel cell technology, which converts hydrogen into electricity to propel the train. The process produces only water vapor as a byproduct, resulting in zero carbon emissions during operation, supporting India's transition to sustainable transport. The train is equipped with multi-layer safety systems capable of detecting hydrogen leaks, heat, flames and smoke. Anand Kumar for Akashvani News, Delhi.
2: Mr. Modi will also launch various development projects worth around 14,700 crore rupees in Jind. He will then travel to Chandigarh, where he will unveil several development projects worth over 6,600 crore rupees. The Prime Minister will thereafter visit Jalandhar in Punjab, where he will launch multiple development projects worth over 5,470 crore rupees. Prime Minister Narendra Modi today held a conversation with the Amir of Qatar, Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani, and conveyed his condolences on the passing of Father Amir, Sheikh Hamad bin Khalifa Al Thani. In a social media post, Mr. Modi said that the Father Amir of Qatar's enduring legacy will continue to guide the two countries as they further strengthen their strategic partnership. He also recalled Father Amir's deep affection for India, his warmth towards the Indian community in Qatar, and his steadfast commitment to India-Qatar relations. The National Testing Agency NTA has declared results of NEET UG 2026 re-exam. Over 11 lakh candidates have qualified for admission to undergraduate medical, dental, Ayush and allied programs. Scorecards of all candidates are available on the official website neet.nta.nic.in. NTA said that the result has been declared in time so that the medical admission and counseling calendar for candidates stays on track. A total of close to 20 lakh candidates appeared for re-exam this year at 5,440 centres in 551 cities in India and 14 cities abroad. The grand annual Rath Yatra of Lord Jagannath is drawing lakhs of devotees across the country. While the epicentre of the festival is the holy city of Puri in Odisha, the chariot festival is celebrated with immense devotion, vibrant processions and cultural festivities across multiple states. In men's cricket, chasing a target of 234 runs set by India, England were 68 for 3 in 15 overs in second one-day international of three-match series at Sophia Gardens, Cardiff, when reports last came in. In badminton, two-time Olympic medalist PV Sindhu outclassed world number 5 Han Yui of China to storm into the quarterfinals of the Japan Open in Tokyo today. She will next face Nozomi Okuhara of Japan tomorrow. And that is the end of this news bulletin.

रात्रि न्यूज के बाद रेडियो रिमझिम परिवार को दीजिए इजाजत केवल रेडियो से। आप हमें ऐप पर पूरी रात सुन सकते हैं। सो अगर आपने ऐप को इंस्टॉल नहीं किया है तो अभी गूगल के प्ले स्टोर में जाएं, रेडियो रिमझिम लिख के सर्च करें और हमारे ऐप को डाउनलोड कर लें। उसके बाद पूरी रात आप रेडियो रिमझिम का आनंद ले सकते हैं सिर्फ और सिर्फ ऐप पर।

0: उत्तर बिहार का गौरव, सारण प्रमंडल की शान, गोपालगंज की धड़कन और अपनी भाषा की पहचान।
1: आप सुन रहे हैं अपना फेवरेट रेडियो स्टेशन रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
0: सुनो दिल से।

आप सब सुन रहल बानी बिहार के पहला सामुदायिक रेडियो रेडियो रिमझिम 90.4 FM के जौन हमेशा कहला सुनी दिल से।

आप सब सुन रहल बानी बिहार के पहला सामुदायिक रेडियो रेडियो रिमझिम 90.4 FM के जौन हमेशा कहला सुनी दिल से।

ध्वनि के तरंग 90.4 पर आप जिले की आवाज रेडियो रिमझिम को सुन रहे हैं। Power Star.

0: कहूँ जरे जेब
1: ठीक बचा।
2: उत्तर बिहार का गौरव,
3: सारण प्रमंडल की शान,
2: गोपालगंज की धड़कन
3: और अपने भाषा की पहचान,
2: रेडियो रिमझिम 90.4 FM
3: सुनो दिल से।

सुबह सवेरे आपको जगाता, दिन भर आपका साथ निभाता। रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो हर पल का है सुनो दिल से।

आप सब सुन रहल बानी बिहार के पहला सामुदायिक रेडियो रेडियो रिमझिम 90.4 FM के जौन हमेशा कहला सुनी दिल से।

0: हेलो, नमस्ते, नमस्कार, कैसे आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। मैं हूं आप सबकी दोस्त भारती और आप सुन रहे हैं रेडियो रंजन 90.4 FM। और समय हो चुका है हेलो माय चॉइस कार्यक्रम का, तो बिल्कुल समय के साथ हाजिर हूं। यदि आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो नंबर है 8029-94911। जी हाँ, 8029-94911 पर कॉल करके जुड़ सकते हैं और अपनी फरमाइश सुन सकते हैं। और बढ़ते हैं आगे और लेते हैं पहला कॉल और सुनते हैं इनकी फरमाइश।
1: हेलो, नमस्कार मैम।
2: नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रंजन 90.4 FM में।
1: जी, मैं लालन काकू बोल रहा हूँ।
2: जी, क्या हाल चाल है आपका?
1: बस बढ़िया जी, अपना सुनाइए।
2: मैं भी ठीक हूँ।
1: मौसम कैसा वहाँ का अभी?
2: मौसम ठीक है यहाँ,
1: इधर तो गर्मी पड़ रहा है दिल्ली।
2: अच्छा, बारिश नहीं हुआ है क्या अभी?
1: हुआ था, अभी फिलहाल बंद है 2-3 दिन से।
2: अच्छा, कोई नहीं, फिर घूमते फिरते जाएगा।
1: मैडम आपका नाम क्या हुआ?
2: भारती।
1: भारती जी, मुझे एक गाना सुनना है।
2: बता दीजिए।
1: गाने का बोल है, शायद मेरी शादी का ख्याल तेरी मम्मी को आया है, इसीलिए तेरी मम्मी ने मुझे चाय को बुलाया।
2: ओके, और सॉन्ग किसी को डेडिकेट किया है?
1: ये सबसे पहले चाहते और बाकी जितने भी हमारे रेडियो श्रोता गण है भाई सभी को, और मैं तो सुनना चाहता हूँ, मेरे दोस्तों लोग सुनना चाहता है गाने को।
2: ओके, तो फिर गाना प्ले करते हैं, सुनते रहिए सबके साथ रेडियो रंजन 90.4 FM।
1: ओके।

0: हेलो
1: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रूम 90.4 FM में।
0: लाल बोल रहे हैं,
1: क्या हाल चाल?
0: नहीं, सोनी जी बोल रहे हैं?
1: नहीं,
0: सिद्धार्थी जी। क्या समाचार है?
1: मेरा तो ठीक है, आप अपना बताइए।
0: मेरा भी ठीक है। टीम का नाम है आज का संजू।
1: गाना कौन सा है?
0: गाना है जीजी जीजी लसोदा का नंदलाला।
1: और सॉन्ग किसी को डेडिकेट भी है?
0: और विकास दीदी दीदी है, गुड़िया है, सीमा है, दादी भी है, आप है आप।
1: चलिए सब ठीक है, गाना प्ले कर रहे हैं, सुनते रहिए सबके साथ रेडियो 90.4 FM।

0: उत्तर बिहार का गौरव, सारण प्रमंडल की शान, गोपालगंज की धड़कन और अपनी भाषा की पहचान।
1: आप सुन रहे हैं अपना फेवरेट रेडियो स्टेशन रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
0: सुनो दिल से।
2: Now pick it up,
3: hello.
2: Now pick your phone up,
3: hello.
2: Pick it up,
3: hello.
2: Now pick your phone up,
3: hello.
4: Jab phone ghanti bajti hai to kehte hain hello.
5: ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने के फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 80029494011। जी हाँ, 80029494011। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
6: हेलो जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 FM में। वालेकुम अस्सलाम।
7: रेशमा बोल रहे हैं पठानपुर।
6: क्या हाल चाल है?
7: ठीक है, अपना बताइए।
6: हमारा भी ठीक है,
7: बड़ा इंतजार कर पा रहे हैं।
6: हो जाता है कभी कभी,
7: कभी गाना नहीं सुन पाते हैं, कभी सुन पाते हैं, कभी नहीं सुन पाते हैं। इतना मेहनत करने के बाद हमने सुन पाते हैं थे गाना सलमान खान का, कहाँ सुन पाए, नहीं सुन पाए।
6: सलमान खान का कौन सा सॉन्ग? वो तो बजा, हमने तो बजाया था,
7: हमने सुन भी नहीं किया। मगरिब टाइम हुआ था तो बंद करते हैं नमाज पढ़ने के लिए।
6: तो कितने बजे? हम तो मतलब 5 से 7 चलता है,
7: 6 बजे के बाद बंद करते हैं। मगरिब का टाइम होता है तो नमाज पढ़ने का टाइम होता है।
6: नहीं, लेकिन आपका गाना बज गया था। और सुबह में कब सुन लीजिएगा? 10 से 12 बजता है।
7: सुबह 12 बजे तक बजता है, वो भी सुनते हैं लोग।
6: 9 से 11 बजे तक चलता है।
7: आज के लिए गाना सुनवा दीजिए,
6: बता दीजिए
7: हिंदी गाना। ज्यादा तो मालूम नहीं है, थोड़ा सा मालूम है, बता देता है। आपको समझ में आ जाता है बजा जी, हमको उतना समझ नहीं आ रहा है।
6: जी जी बिल्कुल बोलिए, अगर समझ में आता है तो हम भी बजा ही देंगे।
7: कि कोई नहीं आएगा ना हिंदी ना, मैं चाहे तुझे वही लगाना सुनना है।
6: ओके, और सॉन्ग किसी को सुनाना भी है?
7: आपको सुनवाएंगे सोनी में हमको, और जितना लोग रेडियो सुनते हैं सभी को सुनाएंगे।
6: हाँ हाँ, मेरा तबीयत ठीक है।
7: नाश्ता तो हो गया? बारिश तो खूब हो रहा है अभी।
6: हाँ, अभी तो बारिश नहीं हो रहा है, अभी खुला हुआ है,
7: खुल गया। ठीक है बहन, तो गाना सुनवा दे फिर।
6: हाँ बिल्कुल, तो गाना प्ले करते हैं, सुनते रहिए सबके साथ रेडियो रिमझिम 90.4 FM।

0: नमस्कार मैडम जी।
1: जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रूम 90.4 एफएम में।
0: जी मैडम जी, मैं हैं सुनील साहू, मधुसूदनगढ़ जिला गुना मध्य प्रदेश से।
1: हाँ जी, कैसे हैं आप?
0: बढ़िया है, खाना खा के अभी फ्री हुए हैं और रिम जिम में फोन लगा जाए तो लग नहीं गया।
1: चलिए तब तो बढ़िया है
0: जी। कौन भारती जी बोल रही है? सोनी जी बोल रही है।
1: भारती,
0: अच्छा तो मेरी फरमाइश है यार, पिक्चर का नाम है दलाल और गाने के बोले मर गए फोकट में, कोई तो हमको लियो बचा ऐसा चीज चला मेरे दिल पर जिसकी मार सही ना जाए।
1: अच्छा, और सॉन्ग किसी को डेडिकेट है?
0: जी सबसे पहले आपको है और गजराज सिंह लोधी है और गोपाल ओझा कगवासा से।
1: अच्छा जी, चलिए फिर ठीक है, गाना प्ले कर रहे हैं, सुनते रहिए सबके साथ रेडियो रमजन 90.4 एफएम।
0: धन्यवाद।

0: आप सब सुन रहल बानी बिहार के पहला सामुदायिक रेडियो रेडियो रिमझिम 90.4 FM के, जौन हमेशा कहला सुनी दिल से।
1: Now pick it up,
2: hello.
1: Now pick your phone up,
2: hello.
1: Pick it up,
2: hello.
1: Now pick your phone up,
2: hello.
3: जब फोन की घंटी बजती है तो कहते हैं hello.
4: ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने के फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029994911। जी हाँ, 8029994911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
5: हेलो
6: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो 90.4 FM में।
5: एक और सुनिए,
6: नाम बता दे पहले अपन।
5: हाँ, नाम हमारे शांति कुमारी।
6: और कहाँ से?
5: अमेठी से।
6: अच्छा,
5: हो गई नहीं?
6: हाँ, हमारे तो हो गई, बराबर खा लेगी बनी।
5: हाँ, हो गई बा। गाना सुना दिए मेरे को ना, तुम मेरे हो रहा, ठीक है, हिंदी गाना।
6: अच्छा, और गाना क्योंकि सुना हो के बाद?
5: हाँ, हमारे भाइये बड़े, मम्मी बड़ी, बाबू बड़े।
6: अभी रिकॉर्डिंग होता गाना शाम के 5 बजे से बाजेला।
5: हाँ,
6: फिर बस तो फिर गाना प्ले करते नहीं, सुनते रहे सबके साथ रेडियो।
5: हाँ,

0: हेलो नमस्कार।
1: नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो 90.4 FM में।
0: इसीलिए दिल से धन्यवाद है भारती जी को। और सब सुनाइए, कैसे हैं?
1: हम तो ठीक हैं, आप बताइए आप कैसे हैं?
0: मैं भी बहुत अच्छा हूँ। मैं रामविलास प्रसाद कुशवाहा बोल रहा हूँ की पूर्वी चंपारण से। और सब सुनाइए अपना घर परिवार में और रिमझिमपुरा परिवार कैसे आप लोग?
1: हम सभी ठीक हैं और घर परिवार में भी सभी कोई ठीक है।
0: जी अच्छा रहिए, खुश रहिए। स्वास्थ्य यही कामना है बालाजी के, बाबा सुनेश्वर नाथ जी।
1: तो और बताइए क्या हो रहा है अभी?
0: जी अभी तो कोयल जैसी मधुर आपकी प्रस्तुति हेलो फरमाइश का कार्यक्रम में भाग ले रहा हूँ और अपने बातें भी कर रहा हूँ, साथ में बिजनेस व्यापार भी कर रहे हैं।
1: अच्छा जी, चलिए तो बढ़िया है।
0: और मौसम कैसा है उधर?
1: इधर का तो मौसम अभी ठीक है।
0: जी इधर तो कभी धूप कभी छांव हो रहा है, सुबह में हल्का बारिश हुई है इधर। जी
1: तो आज कौन सा गाना सुनिएगा?
0: जी फिल्म का नाम है बम ब्लास्ट और गाने का बोल है मुझे जीने नहीं देती है याद
1: रही। ओके, और सॉन्ग किसी को डेडिकेट भी है?
0: जी सबसे पहले भारती जी आपको सुनाना चाहता हूँ और दोस्त लोग संजय शाहजी, मोहम्मद अलार जी, दीपक कुमार दास जी, अंचल कुमार जी, पारसनाथ कुशवाहा जी, नगीना प्रसाद कुशवाहा जी, धनलाल प्रसाद कुशवाहा जी, राजा बाबू, विकास अभय कुमार, सुधीर कुमार, रजय कुमार, आयुष कुमार, उत्तर कुमार, सोनू कुमार, बबलू प्रसाद कुशवाहा जी, रविंद्र प्रसाद कुशवाहा जी, अंचल कुमार जी और गोपालगंज जिले के संतरा।

0: ध्वनि के तरंग 90.4 पर आप जिले की आवाज रेडियो रिमझिम को सुन रहे हैं।
1: Now pick it up, pick it up.
2: Hello.
1: Now pick your phone up.
2: Hello.
1: Pick it up, pick it up.
2: Hello.
1: Now pick your phone up.
2: Hello.
3: The phone ding ding bajti hai to kehte hain hello.
4: Hello.
5: ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने के फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029994911। जी हाँ, 8029994911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।

0: हेलो
1: हेलो
0: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रंजन 90.4 में।
1: नमस्ते मैम।
0: नमस्ते,
1: आप सोनी जी बोल रहे हैं?
0: नहीं, भारती।
1: भारती जी, बाप बहुत दिन के बाद आज आपसे बात हो रहा है जी।
0: हाँ जी, नाम बता दीजिए।
1: मैडम विकास कुमार हिमतापुर से।
0: अच्छा, कैसे हैं आप?
1: बढ़िया है, आप कैसे हैं मैडम?
0: बस ठीक है।
1: अच्छा, अभी गोपालगंज में मौसम कैसा हो रहा है?
0: गोपालगंज का मौसम अभी सुहाना है।
1: अच्छा, बारिश वरिश हो रहा है?
0: बारिश हुआ था रात को, अभी ठीक है, अभी नहीं हो रहा है।
1: और बताइए मैडम, खाना वाना हो गया?
0: हाँ, हमारा तो हो गया, आप बताइए आप कैसे हैं, आपका खाना हुआ या नहीं?
1: नहीं, हम लोग का अभी खाना नहीं हुआ, अभी सुबह का खाना हुआ है, लंच में खाना होगा 1 बजे।
0: अच्छा, सब तो ठीक ही है।
1: हाँ, सब तो बढ़िया है मैडम, धान होने लग गया सब खेत में। बहुत पैसा लगता है खेत में धान लगाने में।
0: वो तो है।
1: हम तो आए दिल्ली में, हमको आया हुआ है 15 दिन घूमने में। आज मेरे को गाना सुनवाइएगा, वो कौन सिंगर नहीं है?
0: कौन
1: सिंगर नहीं, मेरा दोस्त से बात कर लीजिए, बात करना चाहता है।
0: दे दीजिए,
1: वही फरमाइश, गाना का फरमाइश वही देगा। हेलो
0: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो 90.4 FM में।
1: नमस्कार मैम।
0: नमस्कार,
1: मुझे गाना सुनना था खेसारी लाल जी का।
0: नाम बता दीजिए पहले।
1: मेरा नाम कुलजीत है।
0: और कहाँ से?
1: कुलजीत, मैं यूपी से हूँ।
0: अच्छा, तो क्या हाल चाल है आपका?
1: बात एक बार बढ़िया है।
0: अच्छा जी, चलिए, तब बढ़िया होना ही चाहिए।
1: जी मैम, बढ़िया हूँ, आप लाल जी?
0: हाँ हाँ, हम भी ठीक है
1: जी मैम, बढ़िया चाहिए। खेसारी लाल जी का गाना सुनना था।
0: कौन सा सॉन्ग?
1: जी जान गई लू, कितना पानी में बड़ा पहचान गई लू।
0: अच्छा, और सॉन्ग किसी को सुनाना भी है?
1: हेलो, मेरे दोस्त से आप बात करें? हेलो,
0: पूछ रहे हैं उनसे कि गाना किसी को सुनवाना भी चाहते हैं।
1: गाना तो हम लोग अपने दोस्त में सुनेंगे, आपको सुनवाएंगे, जितना रेडियो रेंज सुनने वाला है सब श्रोताओं को डेडिकेट करें। फरमाइश सुन लिए?
0: हाँ सुने हैं।
1: खेसारी लाल का है बेवकाई, इनका मन है, सुनवा दीजिएगा, ठीक है ना? इनके मन पसंद से आज हम तुम अपने फरमाइश अपने खुद बात कर लो और कर दो फरमाइश।
0: जी बिल्कुल, तो इनको गाना प्ले कर देंगे। चलिए फिर,
1: ठीक है, ओके,
0: गाना प्ले करते हैं, सुनते रहिए सबके साथ।

0: हेलो
1: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 एफएम में। वालेकुम अस्सलाम
0: जी, मुझे गाना सुनना है।
1: जी गाना तो सुनाऊंगी, आपकी आवाज बहुत स्लो आ रही है, बहुत दूर से आ रही है लग रहा है।
0: जी नेटवर्क थोड़ा इधर उधर हो जाता है।
1: जो
0: गाना सुनना है दिलवाले का, मौका मिलेगा तो हम बता देंगे तुम्हें कितना प्यार करते हैं।
1: अच्छा, और सॉन्ग किसी को सुनाना भी है?
0: जी सबसे पहले आपको मासूम कौशर कमरन भाई मन भाई मन भाई भाई आयुष भाई प्रिंस भाई लक्ष्मी जी हेमा जी सभी को सुनवाना चाहता हूँ जितने रेडियो।
1: जी जी बिल्कुल, चलिए फिर आपका गाना प्ले करते हैं, सुनते रहिए सबके साथ रेडियो रिमझिम 90.4 एफएम।
0: थैंक यू मैम।

0: आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, सुनो दिल से।
1: Now pick it up,
2: hello.
1: Now pick your phone up,
2: hello.
1: Pick it up,
2: hello.
1: Now pick your phone up,
2: hello.
3: जब फोन की घंटी बजती है तो कहते हैं hello.
4: ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने के फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 80029994911। जी हाँ, 80029994911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
5: हेलो,
6: नमस्ते। बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो 90.4 FM।
5: आज भी गाने सुनवा दी।
6: नाम बता दी पहले।
5: परमात्मा कुमार।
6: तब हाल चाल ठीक बानो?
5: ठीक बाबू, कुछ सुनाई समझा
6: हमनी हो के ठीक है बानी सन।
5: बारिश गोपालगंज में होता की?
6: बारिश होता, कबो कबो होता, कबो नहीं हो, मैंने दिन में तो एक बार
5: हम निकल रहा था। बारिश काल भवे बहुत बिजली हो चुकी है, हो गए हुए बारिश बाहर के काम रहे हुए। पंजाब में बारिश काली भाई, रात ही आदि मौसम बनल बा।
6: चले ठीक है बाबा।
5: गाना सुनवा दी सुनती रहती। गाना
6: गाना बता दी कौन सा?
5: बोले पसंद के बजा दे
6: ना, पर रहुआ बताई के पड़ी।
5: एक बार हमारा बता के पड़ी।
6: हाँ,
5: बार बार सुनवा नहीं कर रहे, सुनवाई अपने भी है
6: ना। ना ये पड़ी रहुआ बताए, रहुआ बताए के पड़ी।
5: सुनती रहती गाना बजा दे। वो गाना का नाम बा गाना है वो इसी अलावा धनिया वगैरह नहीं है कौन सी के साथ जो है वह गाना बजा दे। उसी लाइन में गाना बाजी एक बात वाला कौन लगी।
6: ठीक बाबा, हाँ हाँ
5: ठीक।
6: तो गाना प्ले करते नहीं, सुनत रहे सबके साथ रेडियो रिमझिम 90.4 FM।

0: हेलो
1: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रेमझिम 90.4 FM में।
0: नमस्कार मैडम।
1: नमस्कार, क्या हाल चाल है आपका?
0: बढ़िया है, इतना सुनाइए।
1: हमारा भी ठीक है।
0: आज हम पहली बार कॉल किए हैं।
1: नाम बता दीजिए अपना।
0: मेरा नाम संजय दुबे पड़ेगा, संजय दुबे सासाराम पुणे महाराष्ट्र।
1: अच्छा
0: जी,
1: तो कौन सा गाना सुनना है आज आपको?
0: का नाम क्या पड़ेगा मैडम?
1: मेरा नाम भारती है।
0: जी जी, तो हम सुनते तो रिमझिम बहुत दिन से है, लेकिन कोशिश बहुत बार की है लेकिन लगा नहीं, बहुत देर रहता है ना एक नंबर। आज पहली बार में सोचा ट्राई करता हूँ।
1: तो पहली बार में ही लग गया। तो
0: हमें भोजपुरी गाना सुनना है।
1: बता दीजिए कौन सा गाना सुनना है।
0: कौन सी का गाना है? गुनगुना दो
1: जी, बोलिए।
0: आई हो दादा की आवाज है, रात भर घूटल रहे झारा वाड़े भीतरबा, रात भर घूटल रहे झारा वाड़े भीतरबा, आई हो दादा कैसन की आवाज है। ये गाना सुनना है।
1: और गाना किसी को सुनाना भी है?
0: जी जी, सबसे पहले आपको सुनाएंगे और रिमझिम के सभी जितने भी सुनने वाले दोस्त हो गए आगे लोगों का सुनाएंगे। और हमारे भैया है रामबिला कुशवाहा भैया, संतोष दुबे जी है, और उनके एनके विश्वकर्मा सर जी हैं, श्वेता पाठक जी हैं, और मुन्ना भाई मुंबई वाले हैं, और जितने भी सब दोस्त लोग हैं ऑनलाइन सुनने वाले सभी लोग बुलाएंगे।
1: चलिए फिर, ठीक है, गाना प्ले कर रहे हैं, सुनते रहिए सबके साथ रेडियो रिमझिम 90.4 FM।

0: आप सब सुन रहल बानी बिहार के पहला सामुदायिक रेडियो रेडियो रिमझिम 90.4 FM के, जौन हमेशा कहला सुनी दिल से।
1: Now pick it up, pick it up.
2: Hello.
1: Now pick your phone up.
2: Hello.
1: Pick it up, pick it up.
2: Hello.
1: Now pick your phone up.
2: Hello.
3: जब फोन घंटी बजती है तो कहते हैं हेलो।
4: ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने के फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029994911। जी हाँ, 8029994911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
5: हेलो मैम, नमस्कार।
6: नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रूम 90.4 FM में।
5: जी धन्यवाद जी। मैम कैसे हैं?
6: मैं तो अच्छी हूँ, आप बताइए आप कैसे हैं?
5: हम भी अच्छे हैं, उम्मीद है कि पूरा टीम अच्छा होगा। जी भारती मैम बोल रहे हैं?
6: हाँ हाँ।
5: किसी शो में गया रहता है मैम, उस शो में क्यों नहीं आती हैं?
6: आते हैं ना।
5: नहीं हम तो सुनते हैं, नहीं आती हैं।
6: हम तो सैटरडे को तो पूरा दिन हम ही थे,
5: उस दिन नहीं सुन पाए मैम। और भोजपुरी एक्सप्रेस में आएंगी तो अच्छा लगेगा।
6: भोजपुरी एक्सप्रेस में
5: मैम हम कितने नंबर पे? बहुत है ना।
6: अपना नाम भी मेंशन कर दीजिए।
5: जी मैम सफरोज अली बोल रहे हैं।
6: मुझे तो पता है लेकिन लिसनर लोग को तो नहीं पता है ना। तो और सब बताइए, और सब कैसा है हाल चाल?
5: मेरा नाश्ता हो गया।
6: मेरा तो हो गया, आपने कर लिया?
5: हम कर रहे हैं। और आपके पास अभी याद आया कि उनसे बात करे, थोड़ा ज्यादा दिन हो गया, 2-3 दिन। बुधवार दिन बात हुआ था। जी मैम तो मुझे गाना सुनना है, गाना सबको अच्छा लगता है, उस गाने कितने भी तारीफ किया जाए कम है।
6: तो मुझे भी बता दीजिए कौन सा गाना है।
5: गाना है दूल्हे का सहरा, गाना है ना। वही वाला।
6: और सॉन्ग किसी को सुनाना भी है?
5: अभी सुनने वालों को और आपको सोनी मैम को।
6: चलिए फिर ठीक है, गाना प्ले करते हैं, सुनते रहिए सबके साथ रेडियो।
5: धन्यवाद।

0: हेलो मैडम, नमस्कार।
1: नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रंजन 90.4 एफएम में।
0: जी मैं मन्नान बोल रहा हूँ कपरपुरा से।
1: क्या हाल चाल है आपका?
0: हाल चाल यही है कि दुकान पे बैठे हैं, कहीं ग्राहक ना आ जाए।
1: अच्छा,
0: इसीलिए जल्दी बात कर लेते हैं। कर्तव्य फिल्म का कोई भी गाना हो सुनवा दीजिएगा।
1: कर्तव्य मूवी का जो गाना बोले थे ना, आज बजेगा।
0: आज बजेगा?
1: हाँ,
0: तो वो तो गाना वो सुना दीजिए। मुझे पीने का शौक नहीं, पीता हूँ गम भुलाने को।
1: ओके,
0: या पीती हूँ गम भुलाने को। या आप पिए या हम पिए, जो पिए गम भुला जाएगा। तो यही गाना सुनवा दीजिएगा, डेलिकेट रहेगा आपको और सोनी जी को, और हम दो तीन आदमी हम लोग सुनेंगे, दूसरा कोई नहीं।
1: चलिए फिर गाना प्ले कर देते हैं, सुन रही है।
0: हाँ, एकदम एकदम कीजिए जल्दी। हाँ।

0: आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।
1: Now pick it up,
2: hello.
1: Now pick your phone up,
2: hello.
1: Pick it up,
2: hello.
1: Now pick your phone up,
2: hello.
3: जब फोन की घंटी बजती है तो कहते हैं hello.
4: ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने के फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029994911। जी हाँ, 8029994911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
5: हेलो जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो एमजी 90.4 FM में।
6: नमस्ते मैडम जी।
5: नमस्ते,
6: भोरे से आप बोल रहे हैं।
5: जी जी, क्या हाल चाल है आपका?
6: अच्छा है, अपना बताइए कैसे है?
5: हम भी अच्छे हैं।
6: ठीक है, अच्छे से काम है।
5: तो क्या कर रही हैं अभी?
6: अभी आपका इंतजार कर रहे हैं, तो मेरा फोन लगेगा।
5: चलिए, तब तो आपका फोन लग गया ना।
6: अभी तो सब ठीक है। नाश्ता हो गया?
5: हाँ, नाश्ता हो गया।
6: मौसम तो बहुत अच्छा है, ठंड है।
5: और बताइए कौन सा गाना सुनिएगा आज?
6: गाना सुना दीजिए उदित नारायण के, कोई भी गाना, अच्छा गाना।
5: ओके, तो फिर गाना प्ले करते हैं, सुनते रहिए सबके साथ रेडियो रंजीम 90.4 FM।
6: जी मैडम,
5: नमस्ते।

0: जी बहुत स्वागत है रेडियो रिंग 90.4 FM में। वालेकुम अस्सलाम।
1: आप कैसी हैं आप?
0: मैं अच्छी हूँ, आप बताइए आप कैसी हैं?
1: हम लोग बहुत अच्छे हैं।
0: अच्छा जी, नाम बता दीजिए अपना।
1: मेरा नाम तो साईं पलक है।
0: अच्छा,
1: और सब बताइए मैम, और आपका अच्छा है ना?
0: हाँ हाँ
1: मैम, आपका नाम श्रुति है?
0: नहीं, भारती।
1: अच्छा भारती, पहले श्रुति थी मैम। चलिए, नाश्ता पानी हो गया है?
0: हाँ, नाश्ता पानी करके आते हैं घर से।
1: मौसम कैसा हुआ है?
0: मौसम हमारे यहाँ अभी तो ठीक है, बारिश हुआ था रात को, तो अभी मौसम ठीक है।
1: चलिए,
0: कौन सा गाना सुनिएगा
1: मैम? सुना दीजिएगा बरसात वाला, टिप टिप बरसा पानी।
0: और सॉन्ग किसी को डेडिकेट है?
1: सभी निकलों को डेडिकेट है, और आपको भी, सभी आदमी को डेडिकेट है।
0: जी जी बिल्कुल
1: जी।
0: तो
1: जो छूट गए हो सभी को, सभी लिस्नर को।
0: जी जी बिल्कुल
1: जी। मैम आपसे, आपका तो मोबाइल बड़ा रेटिंग बता रहा था,
0: क्योंकि अभी कॉल बहुत
1: लाइन में अभी बिजी चल रही थी।
0: हाँ हाँ,
1: तो उस वक्त से बैठ कर लगा रहे थे, लगा से बिजी बिजी आखिरी में लगा है।
0: इधर कॉल थोड़ा स्लो हो जाता है क्योंकि लास्ट चल रहा है, और उधर सभी लोग लगातार कॉल करते हैं, तो
1: जिसे लग अच्छा उससे लग जाएगा। चलिए अच्छा,
0: चलिए फिर गाना प्ले कर रहे हैं,
1: सुनते रहिए। सुनिए, गाने मतलब गाने का समय कितना बजे? पहले हम लोग सुन रहे थे, अब हम लोग भी बिजी रहते हैं, लोग मतलब नहीं सुनते हैं लोग। गाने का मतलब टाइमिंग?
0: अच्छा, गाने का समय है 5 से 7 शाम को, और सुबह सेम रिपीट होता है।
1: योर
0: वॉइस अभी चालू हुआ है, 12 बजे से 4 बजे तक चलेगा।
1: योर वॉइस?
0: हाँ,
1: पहले चलता था 10 से 12।
0: 10 से 12 सेम अब रिपीट होता है, यही हेलो माई चॉइस जो आप अभी रिकॉर्ड कर रहे हैं हम, तो सेम वही बजता है।
1: ठीक है,
0: चलिए फिर गाना प्ले कर रहे हैं, सुनते रहिए।
1: याद कीजिएगा मैम।
0: जी
1: याद कीजिएगा हमको।
0: जी जी बिल्कुल याद रखेंगे।
1: ओके ओके, बाय टाटा।
0: टाटा।

0: आप सुन रहे हैं जिले की आवाज रेडियो रिमझिम 90.4 FM। सुनो दिल से।
1: Now pick it up, hello. Now pick your phone up, hello. Pick it up, hello. Now pick your phone up, hello.
2: Jab phone ki ghanti bajti hai to kehte hain hello.
3: ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने के फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029994911। जी हाँ, 8029994911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
4: हेलो जी, नमस्ते।
5: नमस्ते, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 FM में।
4: इसके लिए दिल से धन्यवाद। मैं नेपाल बिहार रेडियो सुशासन ग्राम सोना मंत्री चंपारण बिहार से संजय कुमार का।
5: अच्छा जी, क्या हाल चाल है आपका?
4: हाँ, मेरा हाल खबर तो बिल्कुल बढ़िया है। आप सही, आप ऐसे हैं, आपको रेडियो रिमझिम से फोन पे जा रहे हैं।
5: मैं भी ठीक हूँ और रेडियो रिमझिम के पूरे परिवार भी ठीक।
4: चलिए, बारिश हो रहा है कल से तो हम लोग बारिश से मजा लिए हैं। आप बताइए, कोई बारिश हो रहा है कहीं?
5: इधर तो रात में बारिश हुआ था, अभी फिलहाल नहीं हो रहा है।
4: रात में बारिश हुआ था?
5: हाँ
4: सर, अब हम लोग सुबह में बारिश हुआ था। ये बढ़िया बात है, अच्छा है। जो भाई के काम पे ले गया वही बहुत है, बढ़िया।
5: कौन सा गाना सुनना है आज आपको?
4: आज गाना सुना दीजिए, मेघा रे मेघा कहते हैं गाना, वही सुना दीजिए।
5: और सॉन्ग किसी को डेडिकेट है?
4: डेडिकेट में सबसे पहले आपको, आपको रेडियो जिनकी संपन्न परिवार को और दोस्त हो गया कहना था मामा साबी जी, गुमारी सुपिन कुमार जी, राम लखन कुशवा जी, कृपा गांव से अजीत कुमार कला बैकुट डांस है, नरेश सोनी, दीपक दास, उदय बहन ठाकरे, जिन्ना साहब, धर्मेंद्र जी, हमारे नाम से जाने तक तमाम दोस्तों और विशेष को राजेंद्र यादव भारती कंतलाल गौतम तमाम खास करके मोहम्मद अंसारी मजवलिया के उनको रहते हुए आपसे विदा लेंगे। नमस्कार
5: जी। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद रेडियो में कॉल करने के लिए।

0: हेलो
1: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो 90.4 FM में।
0: नमस्ते,
1: नमस्ते।
0: क्या हाल है?
1: मेरा ठीक है, आप अपना बताइए।
0: मेरा भी बढ़िया है।
1: क्या हो रहा है अभी?
0: क्या हो रहा है अभी? तो श्रीराम से आ रहे हैं तो कौन लगा रहे हैं, तो खाली पेवास लगा रहे हैं।
1: कोई नहीं, देर से पेट लग ही गया।
0: लग हो गया है। और सब बताइए।
1: और सब तो ठीक है।
0: सुनील दी कहाँ पे?
1: सुनील दी वो भी इधर ही है, काम में लगी हुई है अपने।
0: मनोरमा दीदी
1: वो भी उधर ही है।
0: वो तो चलेगा ना?
1: हाँ चलेगा।
0: और सब बढ़िया है? मौसम कैसा है?
1: मौसम तो ठीक है।
0: हमारे इधर थोड़ा धूप हुआ है।
1: अच्छा, इधर भी बारिश हुआ है। अभी बाहर तो नहीं गया देखने की कैसा है।
0: बारिश हुआ है क्या उधर?
1: नहीं, रात से हो रहा था तो सुबह में खुला है, धीरे धीरे हो रहा था सुबह में भी, लेकिन अब ठीक है।
0: नहीं, यहाँ पे तो रात ही की बरसा है, सुबह में नहीं बारिश हुआ है। धान रोपनी हो गया अपना?
1: हाँ, अपना हो गया सब।
0: चलिए ठीक है। उस दिन गए थे गोपालगंज, मतलब 3-4 दिन हो गया। गए चलाने के लिए गए थे उधर। गाने कर रहे हैं,
1: बता दीजिए।
0: कमल सिंह का व्यवसाय सॉन्ग कोई भी बजा दीजिए, बढ़िया ये बजा दीजिए, हो ही ना प्यार दोबारा।
1: अच्छा, और गाना किसी को सुनाना भी है?
0: सबसे पहले आपको सोनी मैम को, मनोरमा मैम को, सोनू सर को, अक्षर सर को, डायरेक्टर सर को, और जितना रेडियो सुन रहे सब लोग का, और मेरी बहन है करिश्मा, उसको भी।
1: चलिए फिर गाना प्ले करते हैं।
0: ठीक है,
1: सुनते
0: ही बात होगा।
1: हाँ, रेडियो रंजन 90.4 FM।

0: तो श्रोताओं, अभी आप हेलो माई चॉइस सुन रहे थे और अब समय हो चुका है शो को समाप्त करने का। तो यदि आप चाहते हैं इस कार्यक्रम से जुड़ना तो आप भी जुड़ सकते हैं 8029 94 911 पर कॉल करके। तो फिलहाल हमें आज इस शो से दीजिए जाने की इजाज़त। मिलते हैं अगले दिन। सुनते रहें 90.4 FM। नमस्कार।
1: उत्तर बिहार का गौरव,
2: सारण प्रमंडल की शान,
1: गोपालगंज की धड़कन
2: और अपने भाषा की पहचान,
1: रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
2: सुनो दिल से।

आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।

0: For more entertainment, log on and subscribe to www.youtube.com/Venus Regional.
1: उत्तर बिहार का गौरव, सारण प्रमंडल की शान, गोपालगंज की धड़कन और अपनी भाषा की पहचान।
2: आप सुन रहे हैं अपना फेवरेट रेडियो स्टेशन रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
1: सुनो दिल से।

सुबह सवेरे आपको जगाता, दिन भर आपका साथ निभाता। रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो हर पल का है सुनो दिल से।

सुबह सवेरे आपको जगाता, दिन भर आपका साथ निभाता। रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो हर पल का है सुनो दिल से।

0: गौरव,
1: सारण प्रमंडल की शान,
2: गोपालगंज की धड़कन
1: और अपने भाषा की पहचान
2: रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
1: सुनो दिल से।

आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।

0: बिहार का गौरव,
1: सारण प्रमंडल की शान,
0: गोपालगंज की धड़कन
1: और अपने भाषा की पहचान।
0: रेडियो रिद्म 90.4 FM
1: सुनो दिल से।

सुबह सवेरे आपको जगाता, दिन भर आपका साथ निभाता। रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो हर पल का है सुनो दिल से।

आप सब सुन रहल बानी बिहार के पहला सामुदायिक रेडियो रेडियो रिमझिम 90.4 FM के जौन हमेशा कहला सुनी दिल से।

0: बिहार का गौरव, सारण प्रमंडल की शान, गोपालगंज की धड़कन और अपनी भाषा की पहचान।
1: आप सुन रहे हैं अपना फेवरेट रेडियो स्टेशन रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
0: सुनो दिल से।

आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।

सुबह सवेरे आपको जगाता, दिन भर आपका साथ निभाता। रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो हर पल का है सुनो दिल से।

आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।

0: बस बस बहुत हो गया, माफ कर दिया तुम लोगों को।
1: आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, सुनो दिल से।

आप सब सुन रहल बानी बिहार के पहला सामुदायिक रेडियो रेडियो रिमझिम 90.4 FM के जौन हमेशा कहला सुनी दिल से।

सुबह सवेरे आपको जगाता, दिन भर आपका साथ निभाता। रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो हर पल का है, सुनो दिल से।

0: VCD and cassettes. Only on Chanda Cassettes.
1: बिहार का गौरव, सारण प्रमंडल की शान, गोपालगंज की धड़कन और अपनी भाषा की पहचान।
2: आप सुन रहे हैं अपना फेवरेट रेडियो स्टेशन रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
1: सुनो दिल से।

आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।

आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।

0: उत्तर बिहार का गौरव, सारण प्रमंडल की शान, गोपालगंज की धड़कन और अपनी भाषा की पहचान।
1: आप सुन रहे हैं अपना फेवरेट रेडियो स्टेशन रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
0: सुनो दिल से।

आप सब सुन रहल बानी बिहार के पहला सामुदायिक रेडियो रेडियो रिमझिम 90.4 FM के जौन हमेशा कहला सुनी दिल से।

0: VCD and cassettes. Only on Chanda Cassettes.
1: उत्तर बिहार का गौरव, सारण प्रमंडल की शान, गोपालगंज की धड़कन और अपनी भाषा की पहचान।
2: आप सुन रहे हैं अपना फेवरेट रेडियो स्टेशन रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
1: सुनो दिल से।

आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।

आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।

0: बिहार का गौरव, सारण प्रमंडल की शान, गोपालगंज की धड़कन और अपनी भाषा की पहचान।
1: आप सुन रहे हैं अपना फेवरेट रेडियो स्टेशन रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
0: सुनो दिल से।